0: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: पवित्र सावन महीने का आज आखिरी मंगलवार, मंगल गौरी व्रत के साथ बन रहा है होम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग। सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए पूजा अर्चना। जापान में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, टोक्यो में हनुमान कथा के बाद बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आधुनिकता के बीच दिखे सनातन संस्कृति के रंग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक। औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े 19 प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। वाराणसी में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट, एहतियातन प्रशासन ने जारी किए निर्देश। काशी और सोनभद्र में आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। बोलीविया में बदले मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग, पहाड़ी इलाकों में अप्रत्याशित रूप से सूखी सर्दियों में हो रही है भारी बर्फबारी। स्नोमैन और स्नो एंजल बनाकर सैलानियों ने की मस्ती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
4: ऐसे फंसे हम तो, वो हमसे बुलवा देते हैं, हम फंस जाते। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, कथा कर रहे थे, बढ़िया प्रवचन वक्ता बने थे। जब से दरबार लगाया, भूख गई, नींद गई, घर तो छूटा ही गया, हालत खराब है भैया। उन्होंने ऐसा फंसाया कि पूछो मत। लेकिन हम भी बड़े बारे चेला हैं उनके, जब भी कुछ उल्टा होता है हम कह देते हैं I am not बागेश्वर बाबा, I am धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, you are बागेश्वर बाबा। बालाजी को देख के कहते हम थोड़ी बागेश्वर बाबा है, तुम हो गुरु और न्यूज तो तुम्हारी छप रही, हमारी थोड़ी छप रही। 20% हमारे नाम की न्यूज होती, 80 तो तुम्हारी होती गुरु। तो चाहे विवाद की हो चाहे भले की हो, अभी प्रधानमंत्री जी IIT में संवाद कर रहे थे IIT के बच्चों को, तो मन की अच्छा देखो देश का प्रधानमंत्री भी कितने अद्भुत हैं। देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो हम मन की बात बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहां संवाद कर रहे थे युवाओं के साथ, चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने कहा आप क्या कहना चाहते। हम कहा कुछ नहीं कहना चाहते, देश की ये भारत की संस्कृति को, भारत के हिंदुओं को गौरव करना चाहिए कि भारत की सनातन संस्कृति में, भारत की हिंदुत्व परंपरा में, शक्तियों की परंपरा में इतनी ताकत है कि IIT के विषय में, उस हॉल में भी सनातन संस्कृति की बात चल रही है। क्योंकि हम बागेश्वर बाबा थोड़ी है, वो तो बालाजी है भैया। वो हमारे लिए नहीं कह रहे थे, बालाजी के लिए कह रहे थे I am धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हम सब हिंदू, तो हमारी तो भैया कोई महिमा नहीं, ये जो भी महिमा है इनकी है। हमारी तो कोई दया नहीं, ये जो भी दया है बालाजी की है। हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, हमारी प्रार्थना है तुम सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ो, जब तक तुम्हारा काम सफल ना हो जाएगा तब तक हम अर्जी लगाते रहेंगे, ये वचन दे देते हैं। जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार ना हो जाएगी तब तक हम उनके चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे। और यहां हमने लाखों लोगों की भैया बिगड़ी बनते देखी है, देर भरे लगेगी पर तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। यहाँ लोग रोते हुए आए, हंसते हुए गए, जाओ तुम भी यहाँ से हंसते हुए जाओगे। यहाँ सब पर कृपा की, तुम पर भी करेंगे। हमारे गुरु ने तप किया, जप किया, यहाँ पर अनवरत भंडारा चल रहा। अब 365 दिन में 6 मार्च को 365 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा और अगले साल दिव्य अस्पताल भी यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। तो हमारा उद्देश्य है कि मंदिरों में आने वाली दान पेटियों का रुपया मंदिरों में खर्च ना हो, समाज पर खर्च हो, ये हमारा उद्देश्य है। और देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता। देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है भैया, जहां पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने आए। देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां अनवरत भंडारा चल रहा। और देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम होगा, जहां कृपा और दवा दोनों प्राप्त होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का कि कच्चा? सोच लो। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? चलो खिसको खटरी के बारे। हमारे काय को हो गए, हम जिनके हो गए तुम उनके हो जाओ। बालाजी महाराज की। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। और भटको नहीं, अटको। इनके घर देर है, अंधेर, और जाओ तय है तुम्हारा काम सफल होगा, होगा, हो करके रहेगा। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना अर्जी। अब पेशी भर शुरू कर दो, काम सफल। अब हम दरबार शुरू कर रहे, बारिश तो नहीं हो रही, बैठ जाओ। अब गीला है, अरे राम राम, अब हम क्या बताएं? हमारे पास इतना रुपया नहीं है, नहीं तो नीचे हम लकड़ी का फ्लोर डलवा लेते। हमारा अब खर्चा ज्यादा है, एक तो गुरुकुलम चल रहा, वहां 70-80 बच्चे, उनका रहना खाना पुस्तकें कपड़ा टीचर, वो भी हम ही को देखना पड़ता। भंडारा रोज चल रहा, 3-4 लाख रुपया वहां लगता एवरीडे। हम रहे ना रहे खर्चा है ही है, तो यही चक्कर में हमें कथा करने जाना पड़ता कि आएंगे कहां से। सुबह हम कथा करने जाते, कुछ अमीरों को फंसाते फिर हम। अब देखो साफ बात है, देखो जो है सो मुंह पे है, हम बहुत खुले आदमी है। हम उनसे कह भी देते कि देखो चेला, हम आए कहा है दक्षिणा के लिए, हमारा भंडारा चल रहा है, इस महीने का व्यवस्था नहीं हो पाई, कुछ करो कृपा। हम पे उन्हें चमत्कार दिखाती। अब तो हमने कुछ दिनों से अंग्रेज टेकल कर लाए, अब हम भारतीयों का भी थोड़ा कम ले रहे, विदेशियों का ले रहे हैं। कह चलो लल्ला ठटरी के बरे न कटा। हम 2-3 चमत्कार दिखाते हैं सारे। क्या हूँ ठटरी के बरे, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोला हम दान कर रहे हैं इतना दान। तो हमें विवेकानंद जी की बात याद आ गई, विवेकानंद जी विदेश गए तो उनको भी शिक्षा का काम करना था तो पैसा चाहिए था। तो एक व्यक्ति के पास गए अमीर के, तो उसने चेक दी 1,000,000 की। तो उसने अंग्रेजी में विवेकानंद जी से कहा, यू से फॉर मी थैंक्स, आप मुझे धन्यवाद कहो, हमने इतने करोड़ की तुम्हें चेक दी भारत के लिए। विवेकानंद जी बोले, हमें धन्यवाद कहो, हमने तुम्हें सेवा का मौका दिया। तो हमारे पास कई लोग आते हैं, 2-4-6 दिन में एक आध कोई कन्यादान वाला आ जाता, कुछ चढ़ाने आता, गुरुदेव आशीर्वाद दो, हमने एक बेटी कर दी है। हम कहते हैं ये कुशल मनाओ कि हमने एक बेटी का कन्यादान का तुम्हें मौका दिया है। तो अब क्या बताएं, नहीं तो यहाँ टीन सेट बढ़िया डल जाता, बढ़िया रहता, धूप नहीं लगती और बढ़िया नीचे व्यवस्था रहती। पर अब जितना है उतने में काम चलाओ। अब खूब अब खर्चा भी ज्यादा, अब 365 बेटियों का विवाह आ गया, 4 महीना बाद शादी है, हर बेटी पे 2-3 लाख खर्चा होता है। डबल बेड, सोफा, LED TV, पायल, बिछिया, मतलब 3 लाख मिला करके 8-9 करोड़ रुपया लगना ही लगना है। अब चाहे वो जैसे आवे। सो यही चक्कर में हम कथा करने जाते हैं। कथा करेंगे फिर दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा मिलती है व्यवस्था बन जाती है भगवान की दया। तो कहना सरल है करना बड़ा कठिन है। तो अब इतनी अभी है नहीं है, पर जैसे ही रुपया आएगा यहाँ पे बढ़िया फ्लोर हम डलवा देंगे ताकि तुम्हें गीला ना लगे। हाँ टेंशन ना लो। अब अभी अस्पताल भी बन ही रहा है, उसका अलग काम चल रहा है, पर भगवान सब कृपा करें हो जाएगा, सब टेंशन नहीं है। भगवान देखो एक बात बोले, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमें हमारे निजी पर्सनल तौर पर इतना कह सकते, हमें प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया मिला है। हाँ, हाँ, कोई पार्टी के कारण हम उनको वो नहीं कह रहे, पर वो भैया उन्हें ये पता रहता सच्ची सेवा जहां जहां भारत में हो रही होती उसकी वो बहुत कद्र करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं, और उनके अंदर ऐसा भगवान की ऐसी दया है। जैसे हमारे जैसे कितने लोग नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग हैं, कितने बाबा नहीं होंगे, फिर भी हमारे जैसे व्यक्ति को वो याद रखते हैं, चिंता करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा, बाबा की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, बाबा निपट तो नहीं गया। अब 140 करोड़ लोग हैं, बताओ कितने बाबा नहीं। तो भैया कुछ भी कहो, अपने देश को प्रधानमंत्री तो बहुत बढ़िया मिला। अब तुम ये ना समझना कि हम तारीफ करके उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ना ना ना, जो सही बात है वो हम बोलते हैं। हमारे मुंह में देखो, तुमने नीट वाली बात थी हमने तुरंत बोली, गलत गलत है सही, अब वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, भगवान की कृपा से हम में है, बालाजी की कृपा है। लेकिन भैया कुछ भी कहो, ऐसा प्रधानमंत्री तो अद्भुत है, तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा, अगले साल हर हाल में हम अस्पताल चालू करवा के तो देंगे। और जब बहुत बड़े वाले हम बाबा बन जाएंगे ना, बहुत बड़े, तब देखना तुम 1100 बेटियों का विवाह करवाएंगे, आओ देखना तुम। और हाँ, तुम्हारा हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने बड़े बाबा हो जाएं, चाहे जितने विदेश वाले रहेंगे ऐसे, हाँ बदलेंगे नहीं ये पक्का, ठटरी तो वहां भी बारेंगे। अभी हम जापान जा रहे हैं कल, जापान में भी अपनी कथा होनी, बताओ तो कोई कल तक गांव में नहीं पूछता था, अब जापान में पूछ रहे हैं। जलवा तो देखो बजरंगबली का, हनुमान जी की कृपा तो देखो कितनी साक्षात है हमारे ऊपर। कल तक हमारा सरपंच हमारा नाम नहीं लेता था, आज देखो तुम हनुमान जी का जलवा तो देखो। कल तक इसी गांव में हम भीख मंगाते थे, घर घर जाके कोई चावल देता था, कोई आलू देता था, तब हमारी माता जी रोटी बनाती थी। इस बारिश में चूल्हे के लिए लकड़ियां भी नहीं होती थी, तो पॉलीथिन बीन बीन के रख लेते थे पन्नी, और प्लास्टिक की चप्पलें जो टूट जाती थी ना लोगों की, वो ऐसी लकड़ी से पकड़ के ले आते थे और रख लेते थे, उनको जलाते थे चूल्हे में, और जलाने के बाद में फिर माता जी रोटी बनाती थी। कई बार वो काली हो जाती थी रोटी, क्योंकि वो प्लास्टिक की पन्नी की पूरी वो चिपक जाती थी उसी में, कई बार चिपक जाती ऐसी बारिश में। एक ही कमरा था, तुम लोगों ने हमारी जन्मभूमि देखी होगी, अब ये कोई हम 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे, 15 साल पुरानी बात, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भोजन बनता था, जैसे तैसे करके भोजन मिलता था। आज उनकी दया तो देखो, भंडारा चल रहा। देखो सुबह कपड़ा पहने थे, शाम को दूसरे पहन ले हमने, एक कुर्ता में हमने ढाई ढाई साल गुजारे, एक कुर्ता में ढाई ढाई साल गुजारे। अब उनकी दया तो देखो कितने दया, भैया बालाजी से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हमने यहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनते देखी है, खुद को भी देखा, लाखों लोगों को। तुम उनके चरण भर पकड़ लो, तुम्हारी भी वो बनाएंगे, हमें भरोसा है। भगवान के घर देर है, अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है अंधेर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी नहीं भोगना पड़ा, 15 साल भोगना पड़ा, 15 साल ऐसा ही रोज रोजमर्रा की जिंदगी वही रोज। कई बार ऐसा हो जाता था गांव के लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, क्योंकि रोज रोज जाते थे ना, कोई देते ही नहीं था, बंद कर लेते। हमारे यहाँ गांव में शादी होती थी तो निमंत्रण होता था, क्योंकि हम गांव के पंडित जी हैं तो निमंत्रण होता था, तो जब निमंत्रण होता था तो हम एक दिन पहले से ही कम खाना शुरू कर देते थे, ज्यादा खाएंगे
5: वहां पर बढ़िया दिन में सपने देखते थे कि अब आज रात को निमंत्रण है, पूरी सब्जी मिलेगी, वहां जाएंगे। फिर जब वहां जाते थे तो जो नमकीन बचती थी, नमकीन और रसगुल्ला मिलते थे पंगत में, तो नमकीन जो बचती थी वो नमकीन और रसगुल्ला पन्नी लेके जाते थे, बांध लेते थे, दूसरे दिन सुबह खा लेंगे। ऐसे भी हमने दिन देखे। पर भैया उनसे बड़ा दयालु इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, वो बहुत बड़े दयालु, इसलिए तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो गांव के गवार हैं भैया, हमारी तो उनमें जैसी लाज वो रखे हैं पूछो मत, तुम्हारी भी वो रखेंगे। बस हम बैठे इसलिए कि जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक हम हिंदू होकर हिंदुओं के काम आते रहे। इसलिए हमने भंडारा चालू किया है, इसीलिए हम बेटियों का विवाह करवाते हैं, क्योंकि हमारी बहन के विवाह में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। अब हम नहीं चाहते कोई भी हिंदू का भाई, हिंदू भाई अपनी बहन के विवाह के लिए हमारी तरह रोए, उसका दर्द अब हमारा दर्द है। तो हमने सोचा है कि समाज की पीड़ा, क्योंकि समाज बालाजी ने जो हम पर कृपा की उस समाज की दर्द को हम जो है बांट सकें। और सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ा है कन्यादान, कन्यादान से बड़ा 6 मार्च को है। भले ही 1 घंटे के लिए आना, तुम्हें आना है, भले ही कोई दान ना दो हम व्यवस्था कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हम 3-4 और एक्स्ट्रा कथा करेंगे। हम तो आजकल ऐसा करने लगे, एक दिन छोड़ एक दिन कथा, यहां कथा पूरी की दूसरी कथा कल शुरू, आराम नहीं करते। उससे क्या होता है ज्यादा कथाएं हो जाती, कथा होती है तो दक्षा देखो साफ है, हम माया छोड़ने के इसलिए प्रवचन नहीं सुनाते। और माया क्यों छोड़े, और तुमसे यदि माया छोड़वा दें तो फिर अमेरिका का डॉलर 200 का ना हो जाएगा, और माया छूटनी ही नहीं है, और हम खुद माया लेके प्रवचन कर रहे हैं, और तुम्हें माया छोड़ने के प्रवचन दे के माया बेकार है, ये है वो है। बिल्कुल बेकार नहीं है बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर ऐसा कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, बुरा ना मानना, देखो सीधी बात कह रहे, हाँ हम बहुत साफ बात कह रहे, इसलिए तुम बिल्कुल भी माया छोड़ने के चक्कर में ना रहो। एक काम जरूर करो, माया में लिप्त ना हो, लिप्त बालाजी के चरणों में हो, खूब कमाओ, कमा के गरीबों की मदद करो, उसमें जो संतुष्टि है वो अलग आनंद है। खूब कमाओ बेटा, खूब कमाओ। एक अकेले हम भारत में गुरु हैं जो पैसा कमाने का ज्ञान देते, आओ अब होना चाहिए वो, इसलिए अब सब बाबा बन जाएंगे तो भारत तो भिखारी ना हो जाएगा। हाँ, माया बेकार है, इसमें मत पड़ो, ये बेकार है। अच्छा, खुद की ब्यास गद्दी पे 500 चढ़ी, अब कह दिया यदि बेकार है तो जी हमें दे दो है? सो कहते हैं रे, वो तो हम कथा सुना रहे थे ठटरी के बड़े, इसलिए हमको ये भाई लपेटे वाली बातें नहीं आती, सीधी सीधी बातें। तुम्हें अच्छी लगे आओ तो वेलकम, ना आओ सो भीड़ का। हम तो साधु आदमी है, हमारा क्या भजन पूजन करना है, नाम जप करना है, और बढ़िया कम भीड़ आएगी, कम से कम मंदिर में डले तो रहेंगे। पहले तुम लोग कमाते थे बढ़िया भजन, देखो हम इतना कह दें हम आए नहीं है, हमें भेजा गया है, और भेजा गया तो वो काम करके जाएंगे जिस काम के लिए हमें भेजा गया है। तुम ना भी हमें मानोगे हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम घर जाओगे बेटा मोबाइल तो देखोगे, हम तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगे, तुम मोबाइल पे हमें ब्लॉक कर दोगे बेटा, टीवी तो चलाओगे, अपन तो न्यूज में भी आते हैं, और तुम वहां भी हमारा चैनल बदल दोगे, कोई बात नहीं बेटा, इंस्टाग्राम तो चलाओगे, अपन रील में आते हैं, तुम रील पे बंद कर दोगे बेटा, अपने घर पे तो रहोगे, अपन तो हर सिटी में कथा करने आते हैं, तो हमारी कथा में नहीं आओगे, हम तुम्हारे मोहल्ले से निकलेंगे हूं हूं करते हुए। हाँ, अच्छा तुम दरवाजा बंद कर लोगे बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे। अब विचार करो, हमारे सब कोई विरोध करता 2-4 महीना फिर बंद कर देता, पता है क्यों? जैसे ही वो ज्यादा विरोध करता, हम कुछ करते नहीं है, देवता वेवता नहीं भेजते ना, प्रार्थना कर देते हैं लाज रखियो। अब विचार करो, सपने में अंधेरे में तुम अपने कमरे में अंधेरे में सो रहे हो, हल्की लाइट जल रही हो लैंप, और 4x4 का बंदर खड़ा हो जाए 4+4 और जगा के कहे उठा, नानी याद आ जाती है, पर नानी आओ, तो वो सुबह से ही कहता जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। तो घरवाली कहती कि दिन में तो तुम टीवी पे गाली दे रहे थे, अब जय बागे, इंटरनेशनल मामला है,
6: चेहरा।
7: ऐसे हमने कम से कम 100 अपने विरोधी देखे होंगे जो टीवी पे हमें गाली बकते थे, यार रात को आके फोटो ना खिंचवाना। तो हमने पूछा हुआ क्या है? अरे महाराज, क्या हुआ? ये देखो, लॉन्च दिया, 4 दिन से रोज आता है, अब बाथरूम भी अकेले नहीं हम जा रहे, डर लग रहा वहां ना आ जाए। हम समझ जाते हैं कि पहुंच गए गुरु। आओ, नहीं तो विचार करो, हमारे जैसे अनपढ़ गवार, हम कौन पढ़े लिखे हैं? और बताओ, हम अंग्रेजों को भी उल्लू बना रहे, उल्लू बना रहे अंग्रेजों को, किसकी दया? तो हम बहुत साफ आदमी है, सीधे आदमी है, जलेबी जैसे एकदम सीधे आदमी है, साफ तो है ही है। तो हम तुम्हारे मुंह पे कह रहे कि तुम्हें माया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, माया में पड़े रहो, खूब कमाओ बेटा, खूब कमाओ, और कमाओ और धर्म करो, अर्थ से परमार्थ की यात्रा करो, बढ़िया भजन करो, भजन करो, हाँ खूब बढ़िया आनंद लो, खूब बड़े आदमी बनो, और बाकी टेंशन ना लो, हम हैं। जब कोई साथ ना दे, इनकी चरण शरण में आ जाना, यहाँ रहना, भोजन भंडारा, तुम्हारी बेटी का विवाह, अस्पताल के बाद दवाई, सब हमारी जिम्मेदारी है।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और दिल्ली NCR में आज सुबह सुहाने मौसम के साथ हुई, सुबह से ही घने बादलों का डेरा था और फिर झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। बारिश के बीच ही कुछ लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए, तो कहीं कोई इस झमाझम बारिश के बीच योगा करता भी नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में पूरे दिन बारिश के आसार हैं, इसके अलावा 20 से ज्यादा राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है। इससे पहले सोमवार को सुबह से ही दिल्ली में हुई तेज बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ था और यहां उमस भरी गर्मी का असर खत्म हो गया। तो देखिए किस तरह से आज सुबह सुबह से ही बादलों का डेरा छाया हुआ है और हल्की हल्की बारिश पहले हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, और उसके बाद झमाझम बारिश होना शुरू हो गई। लोग इस बारिश का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग वॉक पे निकले हैं, तो देखिए किस तरह से लोग बारिश में जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ उमस भरी गर्मी से दिल्ली और NCR वालों को राहत मिली है, क्योंकि काफी दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन इन बारिश की फुहारों ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है और लोग इसका मजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, बारिश में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली NCR वालों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश की फुहारें और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द वापस आते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए

0: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक, औद्योगिक विकास, रोजगार, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े 19 प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। पवित्र सावन महीने का आज आखिरी मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए पूजा अर्चना। जापान में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, टोक्यो में हनुमान कथा के बाद बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आधुनिकता के बीच दिखे सनातन संस्कृति के रंग। बोलीविया में बदले मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग, पहाड़ी इलाकों में अप्रत्याशित रूप से सूखी सर्दियों में हो रही है भारी बर्फबारी, स्नोमैन और स्नो एंजल बनाकर सैलानियों ने की मस्ती।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: आज है सावन का आखिरी मंगलवार, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती हैं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले संकट होते हैं दूर। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया प्रसन्न। बाबा बागेश्वर ने जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन में किया सफर, आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक ट्रेन से टोक्यो से ओसाका की यात्रा की गई। टोक्यो की कथा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर ओसाका के लिए रवाना हुए, उनकी जापान यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं शेयर। जापान दौरे के दौरान बच्चियों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांधी राखी, इस भावुक पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई सामने। जापान में भारतीय परिवारों के साथ बाबा बागेश्वर की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने, एक वीडियो में वो बच्चों के साथ प्यार और अपनापन दिखाते नजर आए। टोक्यो कार्यक्रम में कथा के साथ सनातन संवाद भी रखा गया जिसमें भारतीय संस्कृति और धर्म की बात हुई, कार्यक्रम में जापान में रहने वाले भारतीयों की भी बड़ी मौजूदगी रही। द्वारकाधीश मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर ठाकुर जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूला, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारों से मंदिर गूंज उठा। ठाकुर जी के इंडोले के दर्शन शाम 5:10 से शाम 5:40

मिनट तक हुए भगवान को झूला झूलते देख भक्त भक्ति में डूबे नजर आए। द्वारकाधीश मंदिर में शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक ठाकुर जी की खास घटा सजाई गई। सावन में हर दिन अलग रंग की घटा के साथ मंदिर का नजारा बदल रहा है। ब्रिज के मंदिरों में सावन के साथ झूलन उत्सव का रंग चढ़ गया है। राधा रानी और ठाकुर जी को झूला झुलाने की अलग अलग मंदिरों में खास परंपरा है। मंदिर में मल्हार के गीत, रोशनी और झूले ने भक्ति का माहौल बना दिया। भगवान के झूला झूलने के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। उज्जैन में निकली बा महाकाल की चौथी सवारी, 4 दिव्य स्वरूपों में दिए दर्शन। सवारी मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। नगर भ्रमण पर राजा महाकाल, चंद्रमौलेश्वर, उमा महेश, मन महेश और शिव तांडव स्वरूप में दर्शन। हर हर महादेव की गूंज। पुष्प वर्षा से बाबा महाकाल का भव्य स्वागत। पुलिस वैन की धुन पर महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर। सवारी के मुख्य द्वार पर जवानों ने सलामी दी। कड़ाबीन, अश्वारोही दल और पुलिस बैंड रहे आकर्षण का केंद्र। राजसी अंदाज में निकली बाबा महाकाल की सवारी। डमरू झांझ और भजनों से भक्तिमय हुआ उज्जैन। शिप्रा जल से हुआ भव्य अभिषेक। आस्था और उल्लास का दिखा अद्भुत नजारा। आगर मालवा में निकली बाबा बैजनाथ की शाही सवारी। 1,25,000 श्रद्धालुओं से शिवमय हुआ शहर। हर हर महादेव के लगे जयकारे। अखाड़े, झांकियां, बैंड रहे आकर्षण का केंद्र। चांदी की पालकी में विराजे बाबा बैजनाथ। पुलिस बैंड ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बाबा की सवारी में दिखा सामाजिक सौहार्द। सवारी मार्ग पर नेताओं ने थामी झाड़ू। सांसद विधायक ने दिया स्वच्छता का संदेश। 50 सदस्यीय ढोल पार्टी ने बांधा समा। महिलाओं की ढोल प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। तलवारबाजी और घोड़ों के करतब ने माहौल बनाया। दिखाए हैरतअंगेज करतब। हनुमान और गोरेला के स्वांग रहे आकर्षण का केंद्र। झांसी के मड़िया महादेव मंदिर में सोलवा महागंगा अभिषेक। उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। भोलेनाथ का किया गया जलाभिषेक। ओरछा से उन्नाव गेट तक निकली भव्य कावड़ यात्रा। 1,000 से ज्यादा शिव भक्त हुए शामिल। हर हर महादेव की गूंज। 25 से 30,000 कांवड़ियों ने किया नगर प्रवेश। फूलों की बारिश से हुआ कांवड़ियों का शानदार स्वागत। कांवड़ यात्रा में दिखी भव्य धार्मिक झांकियां। डीजे, ढोल नगाड़े और डमरू पार्टी ने बांधा समा। भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। 400 महिलाओं ने सर पर कलश लेकर की यात्रा। डाक कांवड़ टीम ने 1 घंटे में पूरा किया सफर। कटिहार के प्राचीन गोरखनाथ धाम में आस्था का सैलाब। हेलीकॉप्टर से हजारों शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। हर हर महादेव से गूंजा गोरखनाथ धाम। बोलबम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। गोरखनाथ धाम में भक्तों ने भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ धाम में दिखा भव्य नजारा। शिव भक्तों ने अपने आराध्य के प्रति दिखाया जबरदस्त उत्साह। सावन में मनिहारी गंगा घाट से जल लेकर पहुंचते हैं कांवड़िए। मिनी बाबा धाम के नाम से भी है प्रसिद्ध। सहारनपुर में जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए सज रहे रंग बिरंगे सिंहासन। कान्हा ने के सिंहासन और झूलों की बड़ी डिमांड। 300 रूपये से 5,000 तक के भव्य सिंहासन। मोर, ओम और राधे राधे डिजाइन में तैयार हो रहे आकर्षक मॉडल। रंग बिरंगे सिंहासन और झूले बने श्रद्धालुओं की पसंद। कान्हा के लिए छोटे से बड़े आकार में तैयार हो रहे सिंहासन। रंग बिरंगे कपड़े और गोटे से सज रहे हैं आकर्षक डिजाइन। कान्हा के श्रृंगार में 4 चांद लगाएंगे खूबसूरत सिंहासन। सहारनपुर से दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तक पहुंच रहे हैं ऑर्डर। कारीगर परिवार रोज तैयार कर रहे हैं 5 से 6 पीस। रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार सहारनपुर के बाजार। राखियों के 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन। कपल राखी बनी पहली पसंद। फैमिली पैक की भी बाजार में खूब डिमांड। लाइटिंग और म्यूजिकल राखियों ने मचाई धूम। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां हिट। स्पाइडरमैन, छोटा भीम और टॉम एंड जेरी राखी का भी जबरदस्त क्रेज। अमेरिकन डायमंड राखियों की भी भारी मांग। 300 से 400 रुपए तक की राखियों की डिमांड। राखी खरीदने पहुंच रही हैं महिलाएं। 10 रुपए से 800 रुपए तक राखियों की रेंज। फैमिली पैक में राखियों के खास कॉम्बिनेशन। ब्रेसलेट राखियों की भी खूब डिमांड।
हाल ही में डाक विभाग का राखी से रक्षा अभियान, 25,000 से ज्यादा राखियां सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा चुकी हैं। पाली के डाकघर में स्कूली बच्चों ने सैनिकों को भेज दी हैं राखियां, सीमा पर तैनात जवानों को याद कर रहे हैं बच्चे। डाकघर परिसर में सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र, सेल्फी पॉइंट पर स्कूली बच्चे खिंचवा रहे हैं अपनी फोटो। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आस्था और भक्ति का सैलाब, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा यात्रा मार्ग। सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का होगा समापन। भाई बहन की अनोखी जोड़ी, बहन ने पजल में रिकॉर्ड बनाया तो भाई ने देशों के झंडे पहचानने में कमाल कर दिया। 4 साल की उम्र में गिरीशा ने सिर्फ 7 मिनट 56 सेकंड में 75 पीस का वर्ल्ड मैप पेजल पूरा कर बना रिकॉर्ड, गिरीशा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। गिरीशा के भाई नमिश ने महज 6 साल की उम्र में दुनिया के सभी देशों के झंडे पहचान का रिकॉर्ड बना दिया, उन्होंने सिर्फ 4 मिनट 49 सेकंड में झंडे को पहचान कर उनके नाम बताए। बच्चों को सही दिशा और साथ मिले तो छोटी उम्र में भी हासिल कर सकते हैं बड़ा मकाम, बच्चों के पेरेंट्स ने मोबाइल की बजाय उनकी रुचि पर ध्यान दिया। गिरीशा और नमिश दिखाते हैं कि खेल खेल में सीखने की आदत बच्चों को बना सकती है खास, रक्षाबंधन पर ही भाई बहन प्यार के साथ अपनी उपलब्धियों से भी बढ़ा रहे हैं दूसरे का हौसला। रक्षाबंधन पर पुलिस प्रशासन ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों ने हर शिकायत का जल्द समाधान करने और सुरक्षा का भरोसा दिया। राखी बंधवाकर पुलिस प्रशासन ने बहनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया, महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सुरक्षा के उपाय बताए गए। घनसाली में कलह कू धागू कार्यक्रम, 700 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जुटी, महिलाओं ने लोकगीत गाकर मना रक्षाबंधन, विधायक शक्तिलाल शाह को बांधी चांदी की राखी। हापा नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन अब 23 सितंबर से नियमित चलेगी, बिहार यूपी के यात्रियों को इससे सफर में बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन हर बुधवार हापा से और हर शनिवार नाहरलगुन से चलेगी, छपरा हाजीपुर बरौनी और कटिहार समेत कई स्टेशन पर इसका होगा ठहरा। भिलाई में संस्कृत महोत्सव 2026 का आयोजन, 25 स्कूलों के 300 छात्रों ने लिया हिस्सा, संस्कृत संस्कृति और संस्कार का दिया संदेश। 50 से ज्यादा संस्कृत शिक्षकों की हो रही है सहभागिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र, छात्रों ने सामूहिक प्रस्तुति से बांधा समा। पोस्टर सुलेख और ग्रीटिंग कार्ड्स में देखी प्रतिभा, बच्चों की रचनात्मकता ने जीता सबका दिल, संस्कृत के प्रति दिखाई रुचि। ईश्वर एक नाम अनेक प्रतियोगिता में देखा उत्साह, अच्छे अंक लाने वाले 234 छात्र, 7 अभिभावकों का भी हुआ सम्मान। सर्वे भवन्तु सुखीन और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, संस्कृत के जरिए मानवीय मूल्यों से जुड़ने की अपील। सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया बिहार विद्या साथी ऐप, 700 मॉडल स्कूल्स में शुरू हुई डिजिटल पढ़ाई। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए सुविधा, 38 जिलों के 3 लाख छात्रों को मिलेगा इससे लाभ। 75,000 शिक्षक देंगे लाइव ट्यूटर सपोर्ट, बिहार बोर्ड के साथ जेईई नीट की तैयारी, एआई टूल से कॉन्सेप्ट लर्निंग को बढ़ावा। भारत में बिल्डिंग द टेक इनसाइड द टेक पर जोर, चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को मिली रफ्तार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो किया जारी। सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बनने की ओर भारत, मोबाइल सीसीटीवी और एचपीसी के लिए चिपसेट का विकास, फैब्रिकेशन सुविधाओं का तेजी से हो रहा है विस्तार। माइथोलॉजिकल फिल्म महाकाली का धमाकेदार ट्रेलर आउट, शुक्राचार्य के रूप में एक्टर अक्षय खन्ना का दिखा रौद्र रूप। एक्टर इमरान हाशमी की गन मास्टर Z9 का टीजर आज होगा रिलीज, फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की द वन का भी टीजर आज होगा आउट, 25 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से उठा पर्दा, फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की 2026 की चौथी फिल्म सामू की शूटिंग, इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो गए हैं शुरू, 16 देशों के 2056 रोबोट 51 मुकाबलों में अपनी ताकत और हुनर दिखा रहे हैं।
रोबोट इंसानों की तरह दौड़ रहे हैं और कई खेलों में हिस्सा भी ले रहे हैं। एआई और खास टेक्निक से रोबोट खुद रास्ता खोजकर तेज दौड़ सकते हैं। रोबोट से पेचकस चलाने, कील ठोकने और बोतल खोलने जैसे काम भी कराए जा रहे हैं ताकि भविष्य में रोबोट घर और काम की जगह पर इंसानों की मदद कर सके। इंसान जैसा काम सीख रहे हैं रोबोट्स। बीन्स को चिमटी से उठाने जैसे काम में रोबोट इंसान के करीब 80-90% सटीकता तक पहुंच रहे हैं। इन खेलों में ब्राजील, इटली समेत कई देशों की टीमें पहुंची हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में चीन ने दुनिया के बाजार में 97% हिस्सेदारी हासिल

0: इन खेलों में रोबोट दौड़ने और वजन उठाने जैसी चुनौतियों में ले रहे हैं हिस्सा। रोबोट इंसानों के कितने काम आ सकते हैं, इस प्रतियोगिता का मकसद। पहले ऐसे मुकाबले वैज्ञानिकों और शौकीनों तक सीमित रहते थे, अब बड़ी कंपनियां भी अपने रोबोट की ताकत दिखाने पहुंच रही हैं। इस बार का रोबोट गेम्स अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। चीन इसे भविष्य की रोबोट टेक्नोलॉजी दिखाने के मंच के तौर पर पेश कर रहा है। चीन के बीजिंग में यीमा खान लोकतत्व की गुंज, हेजे लोक कला पर आधारित नाटक पेश। नेशनल थिएटर में यीमा खान की शानदार प्रस्तुति, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त यीमा खान कला। नाटक के जरिए जापान के साथ युद्ध की प्रस्तुति, यीमा खान गीत और कहानी के रूप में पेश। चीन में 40 डिग्री गर्मी में अनोखा हॉटपॉट, चोंगकिंग में पानी के बीच बैठकर खाया तीखा हॉटपॉट। पर्यटकों ने अनोखे अनुभव का लिया आनंद, हॉटपॉट और ठंडे पानी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लंदन जू में जानवरों का लिया गया वजन, इसका मकसद जानवरों की सेहत और ग्रोथ पर नजर रखना है। सबसे हल्के जानवर का वजन करीब 1 ग्राम रहा, वहीं ऊंट और जिराफ का वजन करीब 650 से 700 किलो तक पहुंचा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: किस तरह से स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, विशेष स्नान से कैसे करें ग्रहों की समस्या को दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर।

0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी यानी सिल्वर जो धातु है, उसका ज्योतिष में क्या महत्व है और चांदी के प्रयोग से आपको किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चांदी के बारे में। चांदी का महत्व क्या है? देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। मानते हैं कि चांदी का उद्भव, इसका प्राकट्य भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था। ज्योतिष में चांदी का संबंध माना जाता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। चांदी मध्यम मूल्यवान होने की वजह से ज्यादा प्रयोग की जाती है और चांदी का असर आपके मन पर, आपके सोच पर बहुत जल्दी पड़ता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि जब हम चांदी का प्रयोग करते हैं तो चांदी किस प्रकार से हमारे शरीर पर और ग्रहों पर असर डालती है। चांदी का अगर आप बुद्धिमानी से प्रयोग करें तो आपका मन मजबूत होता है। इसके साथ ही साथ चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज हो जाता है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो ये चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर देती है और ये शुक्र को मजबूत करके आपके मन को प्रसन्न रखती है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो शरीर में जमा हुआ विष निकल जाता है और त्वचा कांतिवान हो जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है। जो लोग चांदी के गिलास से पानी पीते हैं उनको त्वचा की समस्या कम होती है और उनके शरीर में विष जमा होने नहीं पाता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चांदी बड़े फायदेमंद धातु है
और जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो चांदी का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदी का एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा अंगुली में धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। जब आप सबसे छोटी उंगली में चांदी पहनते हैं तो इससे चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, मन का संतुलन अच्छा हो जाता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप चांदी की एक मोटी सी चेन भी अपने गले में पहन सकते हैं और चांदी की चेन गले में पहनने से वाणी शुद्ध हो जाती है और हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं। अगर आप अपनी कलाई में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो इससे कफ वात और पित्त नियंत्रित होते हैं। अगर आप नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या से राहत मिलती है, शरीर स्वच्छ होता है और मन प्रसन्न रहता है। चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें तो शरीर विषमुक्त हो जाएगा। छोटे बच्चे जो बार बार सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं या बार बार बीमार होते हैं उन्हें पानी या दूध जो भी पिलाएं वो चांदी के गिलास या चांदी की कटोरी में रखकर पिलाएं, या खाना भी खिला रहे हैं तो खट्टी चीज छोड़कर चावल दाल फल दूध ये चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से खिलाएं तो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए चांदी के कुछ आपको चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जिनको करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर घुटनों में कमर में जोड़ों में दर्द रहता है तो चांदी के दो छल्ले बनवा के अपने दोनों पैरों के अंगूठे में धारण कर लीजिए, जोड़ों के दर्द में पैरों के दर्द में राहत मिलेगी। अगर आप इमोशनली बहुत कमजोर हैं, अगर भावनात्मक रूप से आपको दिक्कतें बहुत होती हैं, बहुत जल्दी मेंटली कमजोर हो जाते हैं तो चांदी का एक छल्ला बनवाकर दाहिने हाथ के अंगूठे में आपको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं, सेहत की समस्याएं आपको हमेशा परेशान करती हैं तो चांदी के गिलास से या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव पालने की आदत है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं तो चांदी की एक चेन आपको गले में पहननी चाहिए। और अगर चांदी की ये चेन आप अपनी माता के हाथ से लेकर गले में पहने तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी
टिप, अगर घर में हमेशा कलेश और अशांति रहती हो तो चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में अक्षत यानी चावल के बिना टूटे हुए दो चार दाने रख दें, डिब्बी बंद कर दें और इसको पूजा स्थान पे रख दें, घर की अशांति और कलेश दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट, एहतियातन प्रशासन ने जारी किए निर्देश। काशी और सोनभद्र में आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। पवित्र सावन महीने का आज आखिरी मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए पूजा अर्चना। जापान में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, टोक्यो में हनुमान कथा के बाद बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आधुनिकता के बीच दिखे सनातन संस्कृति के रंग। बोलीविया में बदले मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग, पहाड़ी इलाकों में अप्रत्याशित रूप से सूखी सर्दियों में हो रही है भारी बर्फबारी, स्नोमैन और स्नो एंजल बनाकर सैलानियों ने की मस्ती।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं विशेष स्नान के बारे में। इसके साथ ही ये बात जुड़ी है कि अलग अलग ग्रहों की दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करने के लिए या फिर ग्रहों की शांति के लिए विशेष स्नान से किस तरह से आप इन तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे, उपाय बताएंगे, महाउपाय के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।

0: करने के बावजूद आपके करियर में सुधार नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिए और हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अपने घर में या मंदिर में ऐसा करें, आपके करियर में आपकी उन्नति अवश्य होगी।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 25 अगस्त 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 6:20 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:51 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, हम बात कर रहे हैं विशेष स्नान के बारे में। पहला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या स्नान से ग्रहों की बाधा दूर हो सकती है, क्या इसका भी भाग्य के साथ, किस्मत के साथ कोई कनेक्शन है पंडित जी?
0: जी, हम आज आपको ये बता रहे हैं कि ग्रहों की समस्या को, ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए आप विशेष तरीके से अगर स्नान करें तो आपको लाभ होगा। तो क्या नहाने से भी आपके ग्रह बेहतर हो सकते हैं? देखिए, स्नान करना, नहाना स्वास्थ्य और मन के लिए हमेशा लाभदायक है। जहां तक हो सके रोज स्नान करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से स्नान नहीं करते तो चंद्रमा और शुक्र कमजोर होते हैं। हालांकि ये देश काल पात्र पर निर्भर करता है। जो दुनिया की ठंडी जगहें हैं वहां रोज डेली स्नान नहीं हो सकता, लेकिन वहां भी जब संभव हो स्नान करना चाहिए। अगर आप स्नान करने का अवसर होने के बावजूद स्नान नहीं करते तो इससे आपकी मानसिक स्थिति पर और जीवन के आनंद पर, जीवन के सुख पर खराब असर पड़ता है। हम दैनिक जीवन में सामान्य ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान करते हैं जिससे हमें लाभ होता है, लेकिन विशेष जल से, विशेष तरीके के पानी से नहाने पर न केवल रोगों को दूर कर सकते हैं बल्कि ग्रहों से भी लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछने हैं। आते हैं राशिफल पर और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज का लिखा है।
0: मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए प्रश्न लेते हैं पंडित जी से। सवाल पंडित जी आपसे ये है कि किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो उसको अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो किस तरह का विशेष स्नान किया जा सकता है जिससे इसका फायदा होगा?
0: अब ये जानते हैं कि सूर्य को बेहतर करने के लिए किस प्रकार स्नान करना चाहिए। देखिए, सूर्य की गड़बड़ी के कारण हड्डियों की, आंखों की और हृदय की समस्या जीवन में होती है और सूर्य के कमजोर होने पर यश और मान प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं या सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य के सामने स्नान करिए या जल में केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर अगर आप नहाएं तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि सूर्य के बारे में तो आपने जानकारी दे दी कि सूर्य को मजबूत कैसे करना है, चंद्रमा को मजबूत कैसे करना है, कौन सा विशेष स्नान है जो किया जा सकता है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए?
0: अगर आपको चंद्रमा से लाभ लेना है, चंद्रमा को मजबूत करना है तो कैसे नहाएंगे? चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मन के साथ। मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण मनोरोग, डिप्रेशन, नींद की समस्या, सर्दी जुखाम, मानसिक तनाव की समस्या होती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर माता या स्त्री का सुख जीवन में नहीं मिल पाता। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए शंख में जल भर करके नहाइए या जल में सुगंधित फूल डालकर या सफेद चंदन डालकर नहाइए तो आपको लाभ होगा।
1: चले आते हैं राशिफल पर वापस और अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बताते हैं। अब बारी है कर्क सिंह और कन्या वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फ्लैश हो रही है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला सवाल कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न कृतिका जी ने हमें लिखा है और कृतिका जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 23 नवंबर 2008, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और आगे विदेश जा करके पढ़ाई करना चाहता है, क्या वो विदेश जा सकेगा? विदेश भेजकर पढ़ाई करवाना कितना उचित रहेगा? कृतिका जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से 12वीं के बाद इतनी दूर जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका बेटा कोई कंप्यूटर की, कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो अपने देश में ही करने की सलाह दीजिए, भले ही लखनऊ से दूर जाना पड़े, लेकिन अभी अगले 4 साल तक विदेश भेजना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके बेटे की कुंडली में भटकने की, बिगड़ने की संभावना बहुत है, इसीलिए जब भी भेजेंगे सही समय पर भेजेंगे, अभी विदेश भेजने का उपयुक्त समय नहीं है। आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे, जीवन में बेहतर रास्ते पे चल सके, इसके लिए आप रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप अपने बेटे के लिए करिए और अपने बेटे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके बेटे की स्थिति बेहतर होगी।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक ने इस शो में पंडित जी के लिए भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें बेंगलोर से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1980, जन्म का समय सुबह के 7:10, जन्म का स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेल लिख रहे हैं बेंगलोर से। ये कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना काम करना चाहता हूं कि नौकरी के साथ साइड में कोई व्यापार कर लूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए उचित रहेगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। विकास जी, अगर नौकरी के साथ साइड में आप खाने पीने की चीजों का, ड्राई क्लीनिंग का, फूलों का, सुगंध का कोई व्यापार करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन क्षेत्रों में आप कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के चैतन्य रहिए। सेहत को लेकर के फरवरी 2027 तक आपकी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। व्यापार जून 2027 के बाद आप नौकरी के साथ पैरेलल शुरू कर सकते हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो आपने जान लिया, बात करते हैं पंडित जी से मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो कौन सा विशेष स्नान है जो इसके साथ सीधा जुड़ता है और सीधा फायदा आपको होने वाला है, उसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे।
0: अगर आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं या मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे नहाएंगे? मंगल का सीधा संबंध होता है आपके साहस के साथ, आपके आत्मविश्वास के साथ। मंगल अगर गड़बड़ हो गया तो भय की, रक्त की, ज्वर यानी बुखार की और चोट चपेट की समस्या जीवन में होती है। मंगल के कमजोर होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी होने लगती है।

0: बेल की छाल, लाल चंदन या चुटकी भर गुड़ डालकर स्नान करिए, या तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से जल भर भर कर नहाइए तो मंगल आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: चलिए अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। पंडित जी ये बताइए कि बुध ग्रह को अगर कोई शख्स मजबूत करना चाहता है, इसकी वजह से जीवन में कोई गड़बड़ियां आ रही हैं, तो कौन सा विशेष स्नान है जो लाभकारी सिद्ध होगा?
0: अगर बुध गड़बड़ है तो इसे स्नान से कैसे बेहतर करें? बुध का मुख्य संबंध है त्वचा से और शरीर की गंध के साथ। बुध के कारण त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है, और अगर बुध गड़बड़ हुआ तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी आता है। बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, हरी सौंफ या जायफल घिसकर डालिए और उस जल से स्नान करिए, आपका बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: चलिए तमाम ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अब आते हैं बृहस्पति ग्रह के ऊपर। बृहस्पति ग्रह को कहते हैं कि इसकी वजह से अगर ये गड़बड़ा जाता है तो बीमारियां भी आपको लगती हैं। इसको अगर आप सही करना चाहते हैं अपनी कुंडली में तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन सा विशेष स्नान किया जा सकता है, पंडित जी बताएंगे।
0: बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए कैसे स्नान करेंगे? बृहस्पति के कारण पेट की समस्या, हेपेटाइटिस, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर ज्ञान नहीं मिलता और व्यक्ति के अंदर अहंकार की समस्या आ जाती है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में हल्दी, केसर या जरा सा शहद डालकर स्नान करना चाहिए, या पीतल के पात्र से, पीतल के लोटे से जल भर भर कर स्नान करना भी लाभकारी होता है।
1: चलिए अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से अब जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी आती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाता है, किसी कारणवश दिक्कतें देता है आपको, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कौन सा विशेष स्नान किया जा सकता है पंडित जी?
0: अब ये जानते हैं कि शुक्र को स्नान के द्वारा कैसे बेहतर करेंगे। शुक्र के कारण आंखों की, हार्मोन की, मधुमेह की और कभी कभी रक्त की समस्या भी होती है, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट की दिक्कत भी शुक्र की वजह से आती है। और शुक्र अगर गड़बड़ हो गया तो ये चरित्र दोष भी देगा और पारिवारिक जीवन को खराब भी करेगा। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में इलायची, गुलाब जल या सफेद फूल डालकर स्नान करिएगा। शीशे के पात्र से, कांच के मग से जल भरकर नहाने से भी आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, अब शनि ग्रह के, जिससे अक्सर हम लोग जिसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शनि की अगर गड़बड़ है कुंडली में, शनि ग्रह को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर कौन सा उपाय किया जा सकता है और कौन सा विशेष स्नान आप बताएंगे?
0: अब ये जानते हैं कि शनि को बेहतर करने के लिए कैसे स्नान करेंगे। शनि के कारण स्नायु तंत्र की बीमारी, भयंकर दुर्घटना और अपंगता जैसी स्थिति पैदा होती है लंबी चलने वाली बीमारी के पीछे शनि होता है। खराब शनि रोजगार और करियर के अवसरों को रोक डालता है। अगर आपको शनि को बेहतर करना है या शनि से राहत पानी है तो जल में काले तिल, सुरमा या लोबान डालकर नहाना चाहिए। लोहे की बाल्टी में कुछ समय तक पानी रख करके अगर आप उस जल से स्नान करें तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।
1: चले आते हैं राशिफल के अंत की तरफ और अब आपको बताएंगे मकर कुंभ और मीन राशि वालों के बारे में।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन आएगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अगला सवाल। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि कौन से दर्शक का अगला सवाल है। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न जयंत जी ने हमें लिखा है, और जयंत जी हमें पश्चिम बंगाल कोलकाता से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1975, जन्म का समय दोपहर में 2 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। जयंत जी कह रहे हैं कि व्यापार में कुछ नुकसान होने की वजह से मुझे कर्ज हो गया है, कर्ज की स्थिति काफी विकट हो गई है, तो कर्ज से छुटकारा मुझे कब तक मिलेगा और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जयंत जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपना व्यापार वाइंड अप करिए। आपके लिए बिजनेस करना बिल्कुल बेहतर नहीं है। अगर आप नौकरी की तरफ दोबारा जाएं या किसी प्रोफेशन में जाएं, फाइनेंस के, अकाउंट के, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वस्तुओं का व्यापार मत करिए। कर्ज से छुटकारा पाने में 2-2.5 साल का वक्त लगेगा। 2028 के मार्च के बाद ये संभावना बनती है कि आपका कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। 1 बार सुबह और 1 बार शाम को रोज, और एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि अंतिम सवाल कौन से दर्शक का आप तक आया है।
0: जी, अंतिम प्रश्न हमें अनिल जी ने लिखा है, और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं हिमाचल प्रदेश से। अनिल जी की जन्म की तारीख है 19 मई 1981, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जन्म का स्थान है मंडी हिमाचल प्रदेश। अनिल जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर बार बार समस्याएं आ रही हैं, कोई ना कोई विवाद पैदा हो रहा है। मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं लेकिन बेच नहीं पा रहा हूं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अनिल जी, आप अक्टूबर 2026 के बाद कोशिश करिएगा प्रॉपर्टी बेचने की, तो आप प्रॉपर्टी जरूर बेच पाएंगे। और जो विवाद या जो समस्याएं प्रॉपर्टी की हैं वो अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएंगी। सुबह और शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक मूंगा बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 25 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: दिन 25 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के बदलाव और लाभ की स्थिति बन रही है, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी आपको बताएंगे आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर भोजन में बार बार आपके कंकड़ निकलते हों तो इसका क्या अर्थ है? भोजन में बार बार कंकड़ निकलना अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपके ऊपर मंगल का खराब प्रभाव है। ऐसे में भोजन बनाने और परोसने में सावधानी रखनी चाहिए।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 25 अगस्त 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वर्तमान में जो समस्या चल रही है उस समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कर्क। इनको अपनी भावनाओं और मन पर ध्यान देना चाहिए और इनको नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए।

0: आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो तो क्या करेंगे। रोज सुबह और शाम मंगल के मंत्र का जप करेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। महिलाएं लाल फूल अर्पित करेंगी और लाल रंग के वस्त्रों के प्रयोग से परहेज करें, बचाव करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में

0: विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट का ताज सिर्फ सर पर नहीं बल्कि अपनी पहचान और उपलब्धियों पर सजता है। कहते हैं कि ताज चमकता है, लेकिन असली चमक उस महिला के आत्मविश्वास में होती है जो इसे पहनती है। कुछ यही आत्मविश्वास और खुशी से लबरेज दिखी मिस इंडिया यूनिवर्स बनी केरल की कैजिया लिज मेजो। रविवार को जयपुर में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया।

0: अपनी जिंदगी के इसी पल का मानो इंतजार था 19 साल की कैजिया लिज वीडियो को। जिन्होंने आखिरी राउंड में कुछ सेकंड्स के दरमियान अपने जीवन के संघर्ष, कठिन हालात में सकारात्मक सोच और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने बेबाक अंदाज और बुद्धिमत्ता के बूते ऐसा क्लोजिंग रिमार्क छोड़ा जो जजेस के दिल को गहराई से छू गया। भविष्य को लेकर अपना नजरिया बखूबी बयां करने वाली कैजिया रविवार रात करीब 2:30 बजे मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनते वक्त ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूली नहीं।
1: I feel on top of the world and actually on top of the universe. This has been a dream for as long as I can remember, and being able to actually wear this crown, to be able to bear the fruits of all my years of hard work, it feels so surreal, but I know that destiny works wonders and I'm so grateful to God. I've been preparing for this journey for over 3 years now, and Miss Universe has always been the goal, and now it is time for me to showcase to the world what it means to be Indian, and I'm ready to do everything to bring back the crown. We have a few months before me and I promise you that I will do everything in my powers to make sure that our country is proud at Miss Universe.
0: देर रात जयपुर के एक ऑडिटोरियम में 53 सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। सभी ने अपने अपने टैलेंट, खूबसूरती और आत्मविश्वास का हर राउंड में प्रदर्शन किया। और फिर आखिर के दौर तक आते आते फाइनल स्पर्धा के टॉप 2 पोजीशन पर केरल और तमिलनाडु की सुंदरिया पहुंची, लेकिन मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज केरल की युवा प्रतिभा कैजिया लिज मिजो को पहनाया गया। उन्नीस साल की कैजिया को 2025 की विजेता रही मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स के सम्मान से नवाजा। कैजिया एक लॉ स्टूडेंट, मॉडल और ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। इससे पहले कैजिया टीम इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रही। इतना ही नहीं, उनके नाम मिस यूनिवर्स केरल का खिताब भी है। अब मिस इंडिया यूनिवर्स बनी कैजिया प्योर्टो रिको में होने वाले मिस यूनिवर्स खिताब के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले मिस इंडिया यूनिवर्स के टॉप 5 फाइनलिस्ट में केरल की कैजिया लिज मिजो के अलावा फर्स्ट रनर अप तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही, सेकंड रनर अप रही गुजरात की अनुश्री सातवालेकर, थर्ड रनर अप का खिताब महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव को मिला, जबकि फोर्थ रनर अप के रूप में उत्तराखंड की अनुभा वशिष्ठ रही। मिस इंडिया यूनिवर्स की इन सभी हुनरमंद प्रतिभागियों ने भी आखिरी राउंड के उन चुनिंदा सेकंड्स में ज्यूरी के सामने भविष्य को लेकर अपना नजरिया और अभी तक मिली चुनौतियों पर अपनी अपनी राय रखी। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026 के जज पैनल में साल 1994 की मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, साल 2001 की मिस इंडिया यूनिवर्स सेलिना जेटली के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर प्रज्ञा कपूर और मिस इंडिया यूनिवर्स पेजेंट के मालिक निखिल आनंद समेत फैशन और मनोरंजन जगत से जुड़े कई चेहरे इस ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रहे। वहीं इस ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की संस्कृति और जयपुर की मेहमान नवाजी के साथ आधुनिक भारत का ग्लैमर भी नजर आया, जहां देश दुनिया से जुड़े करीब 800 फैशन डिजाइनर और डेलीगेट्स ने समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। फिलहाल तो इस भव्य समारोह में मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुनी गई कैजिया लिज मिजो अब मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वही मंच होगा जहां सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू जैसी प्रतिभाओं ने भारतीय ब्यूटी और इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उम्मीद है कि अब 2026 की मिस इंडिया यूनिवर्स कैजिया लिज मिजो भारत की विविधता, संस्कृति, प्रतिभा और नई पीढ़ी का हुनर प्योर्टो रिको जैसी वैश्विक मंच पर पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम चल रहा है, यानी रोबोट ओलंपिक कई मायनों में खास है। मैदान में उतरते रोबोट, दौड़ते रोबोट, फुटबॉल खेलते रोबोट और बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे को चुनौती देते रोबोट। एक पल के लिए आपको लगेगा जैसे ये कोई असली ओलंपिक हो। इस रोबोट ओलंपिक में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट हिस्सा ले रहे हैं।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार,
0: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया। यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: सच है, चाह और लगन अगर पक्की है तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितनी कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कांधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है।

0: वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, ये बात जानवर और पंछी भी खूब समझते हैं। अब मटके का नहीं नल का जमाना है, सो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लिया है। वैसे ये भी तो नए जमाने के ही हैं, इन्हें नल से पानी निकालना और फिर उसे बंद करना बखूबी आता है। मानना पड़ेगा, मटका हो या नल, कौवे का दिमाग अब भी उतना ही तेज चलता है। आए हाय, अदाएं देखिए इनकी, जींस टॉप और उस पर से काला चश्मा, गजब ढा रही है मैडम। और चाल तो देखिए इनकी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे बलखा रही हैं जैसे रैंप पर उतरी हैं। बच्ची का कॉन्फिडेंस और उसकी क्यूटनेस लोगों का दिल चुरा रही है। सब अपने ख्यालों में व्यस्त हैं और ये पेट पूजा में लगे हैं। देखिए कैसे ठेले पर रखे अंगूर में से एक एक अंगूर निकालकर मजे से मुंह में रख रहा है, मानो थाली में परोस कर मिला है खाने को। और सब कुछ इतने आराम से हो रहा है कि ना तो हाथ थामे उनकी मामा को उनके कारनामे की खबर लगी, ना ही उस दुकानदार को जिसके ठेले से अंगूर खाया जा रहा है। बच्चे की मासूमियत पर लोग मुस्कुरा रहे हैं।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत, उमस गर्मी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में भी तेज बारिश का रेड अलर्ट, काशी और सोनभद्र में आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है होम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। अयोध्या में झूलन उत्सव के मौके पर श्रीराम बल्लभ कुंज में शाम से रात तक चली झांकी महोत्सव, देखने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रंग दिखने मिले। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने किया लखिया बाबा का आशीर्वाद। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की इन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: शुभ समाचार में बात होगी बाबा बागेश्वर की, जो आजकल जापान की यात्रा पर है। 23 अगस्त को वो जापान पहुंचे और इस दौरान जापान के अलग अलग शहरों की यात्रा भी उन्होंने की। क्या है जापान के लोगों में बाबा का क्रेज, पूरी खबर आगे आपको बताएंगे।
4: तो वहीं दिल्ली में सुबह सुबह की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जैसे ही दिल्ली और NCR के लोगों की आंख खुली, फुहारों ने किया उनका स्वागत। और पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में कमी भी आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली, ये राहत कब तक मिलेगी इस पर बात करेंगे आगे।
3: तो सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की भी आगे बात करेंगे, जहां पर इन दिनों आस्था का नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस साल अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। मौसम की आंख मिचोली जा रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही और श्रद्धालु लगातार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं।
4: वहीं आपको रक्षाबंधन की रौनक भी दिखाएंगे, भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन नजदीक आ गया है। बस 2 दिन बाद 28 अगस्त को प्यार का ये त्योहार मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बहन अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, मिठाई और उपहारों की तैयारी कर रही हैं, बाजार राखियों और उपहारों से सजे नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग शहरों की तस्वीर भी इससे जुड़ी दिखाएंगे।
3: तो आपको देशभक्ति की खूबसूरत तस्वीर भी दिखाएंगे, जो कोलंबो से आई है। यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। कल भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपना शतक बनाया, तो उन्होंने जय जवान जय किसान वाली सेलिब्रेशन कर सबका दिल जीत लिया। इस तस्वीर पर भी आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन अभी वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगन न्यूज का।
4: आज सावन का आखिरी मंगलवार है, मां मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन है। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर मां की विशेष कृपा बरसती है।
3: उज्जैन में भगवान महाकाल की चौथी सवारी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बाबा महाकाल ने चंद्रमौलेश्वर, उमा महेश, मन महेश और शिव तांडव स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। पुष्प वर्षा से बाबा महाकाल का भव्य स्वागत किया गया। सवारी मार्ग पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी और पुलिस बैंड की धुन पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
4: मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सावन में बाबा वैद्यनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी निकाली गई। दोपहर करीब 1 बजे चांदी की राजसी पालकी में बाबा वैद्यनाथ को विराजित कर नगर भ्रमण किया गया और इसमें लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान शहर में करीब 4 दर्जन आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और भजन मंडलियां शामिल। मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश राजाधिराज मंदिर में ठाकुर जी महाराज ने भक्तों को विशेष दर्शन दिए। ठाकुर जी को विशेष रूप से कमल के हिंडोले और स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजित किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। आकर्षक श्रृंगार और हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी का स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा में मॉनसून के बीच भी श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह बरकरार है। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में सिख संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है। अब तक 2,73,300 से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सहारनपुर में जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए रंग बिरंगे सिंहासन सज रहे हैं। 300 रुपए से लेकर 5,000 तक के भव्य सिंहासन बिक रहे हैं। मोर, ओम और राधे राधे डिजाइन में तैयार मॉडल्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
3: बाबा बागेश्वर ने जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन में सफर किया। टोक्यो की कथा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर ओसाका के लिए रवाना हुए। उनकी जापानी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं जापान दौरे के दौरान बच्चियों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांधी राखी। इस भावुक पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई।
4: बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स शुरू हो गए हैं। इस गेम्स में 16 देशों के 2,056 रोबोट शामिल हुए। 51 मुकाबले में रोबोट अपनी ताकत और हुनर दिखा रहे हैं। रोबोट इंसानों की तरह दौड़ रहे हैं और कई खेलों में हिस्सा भी ले रहे हैं। एआई और खास टेक्निक से ये रोबोट खुद रास्ता खोजकर तेज दौड़ सकते हैं।
3: एक्शन और कॉमेडी के बादशाह अक्षय कुमार अब एलियन की दुनिया में नजर आएंगे। उनकी अपकमिंग एलियन एक्शन थ्रिलर फिल्म समु की शूटिंग शुरू हो गई है। क्रिएटर इफेक्ट्स और साथ ही डिजाइनर एलिक गिलिस है और जिन्होंने एलियन और प्रेडेटर फ्रेंचाइजी पर काम किया। उन्होंने फिल्म के मुख्य एलियन को डिजाइन किया है।
4: तो शुभ समाचार की शुरुआत बाबा बागेश्वर के साथ करेंगे। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों जापान यात्रा पर हैं। टोक्यो में कथा के बाद बाबा बागेश्वर ने जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन का सफर किया। टोक्यो से ओसाका तक का ये सफर बाबा के लिए बेहद खास अनुभव वाला रहा। जापान की रफ्तार और आधुनिक तकनीक के बीच बाबा बागेश्वर का यह आध्यात्मिक अंदाज खूब चर्चा में है।
5: ご乗車ありがとうございます。

0: कथा के मंच से लेकर जापान की हाई स्पीड ट्रेन तक पैरों में खड़ा हूं माथे पर तिलक अपने तरह का खास कुर्ता और धोती पहने बाबा बागेश्वर इन दिनों जापान के प्रवास पर हैं। टोक्यो में भगवत कथा पूरी करने के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जापान के विकास की रफ्तार का अनुभव किया। बुलेट ट्रेन में सवार होकर बाबा बागेश्वर जब टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुए तो उगते हुए सूरज का देश कहे जाने वाले जापान में अध्यात्म के साथ आधुनिकता का अनोखा संगम नजर आया। बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, रफ्तार पकड़ती है और कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म पीछे छूट जाता है। टोक्यो से ओसाका के बीच इस सफर में एक तरफ जापान की तेज रफ्तार जिंदगी तो दूसरी ओर भारतीय संत का सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया। दुनिया में जापान की पहचान बन चुकी बुलेट ट्रेन में बाबा बागेश्वर का ये सफर अपने आप में खास रहा और उन्होंने जापान की इस आधुनिक तकनीक को करीब से महसूस किया। व्यासपीठ से जहां एक ओर बाबा बागेश्वर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की बातें करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जापान की तकनीक और अनुशासन को भी करीब से जाना।
1: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
0: जापान ने जिस तरह तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पल भर में हवा से बातें करती हाई स्पीड ट्रेन में बाबा के सफर की तस्वीर अध्यात्म और आधुनिकता को एक ही कैनवस में संजोए हुए है। जापान की धरती पर एक ओर सनातन के संदेश की गूंज है तो दूसरी तरफ तकनीक और कौशल का बेजोड़ नमूना। कथा के मंच से बुलेट ट्रेन तक बाबा बागेश्वर की यात्रा में एक अलग ही रंग नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो जापान पहुंचने पर बाबा बागेश्वर ने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। बुलेट ट्रेन में सवार होकर बाबा बागेश्वर टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुए। उगते हुए सूरज का देश कहे जाने वाले जापान में अध्यात्म और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला। टोक्यो से ओसाका के बीच सफर में एक तरफ जापान की तेज रफ्तार जिंदगी तो दूसरी ओर भारतीय संत का सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया है। तो बुलेट ट्रेन में यहाँ पर जापान में बाबा बागेश्वर ने सफर किया, उसका आनंद लेते हुए वो नजर आए। अध्यात्म और आधुनिकता का संगम यहाँ देखने को मिला। जापान की यात्रा पर बाबा बागेश्वर हैं और उन्होंने एक वीडियो भी उसको लेकर बनाया। तो जापानी इतिहास और सनातन परंपरा में ये पहला अवसर है जब इतना भव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। बाबा बागेश्वर के कथा वाचन को सुनने भारी मात्रा में यहाँ भक्त पहुंचे। तो देखिए किस तरह से कथा सुनने के लिए भारी मात्रा में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और कथा सुनने के लिए सभी ललाहित दिख रहे हैं। बाबा ने किया हनुमंत कथा का वाचन जापान में। तो इस दौरान बाबा ने भक्तों से मुलाकात भी की और उनकी परेशानियों को भी सुना गया। उन्होंने कथा के माध्यम से लोगों को प्रभावित भी किया। ओसाका में बाबा से आशीर्वाद पाकर भक्तों के चेहरों पर उमड़ा भाव, श्रद्धा और सनातन भक्ति का ये दिव्य दृश्य अनूठा रहा। तो जापान में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। टोक्यो और ओसाका में आज सनातन संगम कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया जहां प्रवासी भारतीय परिवारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खास बात ये रही कि छोटी छोटी बच्चियों ने बाबा बागेश्वर को राखियां बांधी और उनका आशीर्वाद दिया। राखी के इस पवित्र अवसर पर भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान की धरती पर भाई बहन के स्नेह और भारतीय संस्कारों की झलक देखने को मिली। बच्चियों के इस प्रेम और अपनापन ने माहौल को भावुक कर दिया। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी सभी बच्चियों को आशीर्वाद दिया। विदेश में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और संस्कारों का ये संगम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, टोक्यो में आयोजित सनातन संगम में योग माता किको एकावा जी का पावन भी आगमन हुआ और इस अवसर पर बाबा बागेश्वर ने उन्हें पुस्तक भेंट की और उनका स्वागत किया। जापान और भारत की संस्कृति का अनोखा मिलन यहां पर देखने को मिला है। और आज मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार का विशेष महत्व होता है। आज इस मास का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत है। बिहार के गया जी में स्थित मां मंगला गौरी मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां सावन में विशेषकर हर मंगलवार को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। मां मंगला गौरी की महिमा के बारे में जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
0: बिहार के गया जी का वो प्राचीन मंदिर जो मां सती को समर्पित है। मंगला गौरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर न केवल 51 शक्ति पीठ में बल्कि 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है। मंगला गौरी पहाड़ी यानी भस्माकूट पहाड़ी पर स्थित इस मां मंगला गौरी मंदिर को पालन पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में मां मंगला गौरी के मंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक इस मंदिर की मान्यताओं को लेकर माता के दर्शन के लिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेषकर सावन मास में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन मास में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत माता पार्वती यानी मां गौरी को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं, तो लड़कियां मनचाहा और योग्य वर पाने के लिए ये पूजा करती हैं। सावन में लगातार चार मंगलवार मां मंगला गौरी व्रत रखने और मां गौरी की आराधना से मंगल दोष के प्रभाव कम होने की मान्यता है। इसीलिए इस मंदिर में सावन मास में हर मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहां माता की आराधना से मंगल ग्रह से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों को लाभ मिलता है।
3: कि इस स्वरूप में जगदम्बा अत्यंत मंगलकारी स्वरूप धारण करती हैं, जो कि शक्तिपीठ यहां मां मंगला गौरी उनके मंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस पावन घड़ी में श्रावण मास के इस विशेष मंगलवार में माता की आराधना प्रारंभ होती है। चूंकि यह मास चातुष्य मास वर्ण की व्यवस्था के अंतर्गत यह मंगलकारी माह से प्रारंभ होता है और इसी दौरान शिव शक्ति दोनों एक शक्ति के समान है, तो प्रथम मंगलवार से लेकर अंतिम मंगलवार यानी चार मंगलवार तक माँ भगवती के मंगला गौरी व्रत की वर्णन कई पुराणों में मिलती है।
0: विवाह की इच्छा रखने वाले युवक और युवतियां भी माँ मंगला गौरी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आती है या विवाह देरी से होती है, उन्हें यहां पूजा करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा आर्थिक समस्या, क्रोध और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलने की भी मान्यता है।
3: मंगल हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रभावशाली और बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जिनकी आराधना श्रेष्ठ है उनके इष्ट देवी यानी माता मंगला आदि जगदम्बा की पूजा करने से और इस विशेष व्रत से अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन हमारे जीवन में पड़ता है। विशेष रूप से इनकी साधना से विवाह की समस्या दूर होती है, आर्थिक लाभ होता है, मन शांति होता है और क्रोध पर नियंत्रण होता है।
0: इस मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। मान्यता के अनुसार ये अखंड ज्योति करीब 6000 वर्ष से जल रही है। इस अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व है। अग्नि को शुद्धि और ऊर्जा को प्रतीक माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में भी अग्नि को प्रथम गुरु और देव स्वरूप माना गया है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु अखंड ज्योति के दर्शन कर माँ मंगला गौरी से सुख शांति और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह और उमंग के साथ जारी है। ऐसे में यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश और आस्था लगातार बरकरार है। जहां पुंछ में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से भी शानदार इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था की गई। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और पूरा इलाका भोले की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है।
4: राष्ट्रीय शास्त्र जो जगह वो इनका अभिनंदन करेंगे। मूल नई चिंगारी है, हम भारत की नारी है।
2: और मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां अब अपने पूरे शबाब पर हैं। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पंडाल सज चुके हैं। मुंबई की सड़कों और गलियों में गूंजते ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहां भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन के साथ मंगल मूर्ति की भव्य सवारियां पंडाल की ओर बढ़ चली हैं। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ढोल ताशों की गूंज, नगाड़ों की आवाज, और गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष।
1: गणपति बाप्पा।
0: आजकल मुंबई की सड़कों पर भक्ति का ऐसा ही नजारा है। भले ही गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन यहाँ की फिजाओं में उत्सव के रंग चढ़ने लगे हैं। गणेश प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान साथ पंडालों की ओर ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या युवा, हर कोई गजानंद के स्वागत में नतमस्तक है। और हो भी क्यों ना, आखिर साल भर के इंतजार के बाद तब कहीं ये पावन मौका आता है जब भक्त अपने आराध्य से मन की मुराद कहेंगे। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है तो कोई ढोल की थाप पर झूम रहा है। मुंबई की पहचान बन चुका गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये शहर की एकजुटता, संस्कृति और सामुदायिक उत्साह की भी सुनहरी तस्वीर पेश करता है। सालों से चली आ रही इसी परंपरा की कड़ी में भक्त और उल्लास के साथ काल चौकी के राजा की भव्य सवारी भी पंडाल की ओर निकली। भव्यता ऐसी कि नजरें ठहर जाए। गजानंद की मनमोहक प्रतिमा, चेहरे पर दिव्य तेज, सिर पर सजा भव्य मुकुट और आभूषणों की चमक, बाप्पा के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की निगाहें बस अपने आराध्य पर टिकी है। किसी के हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए तो कोई बाप्पा के दिव्य दर्शन को मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सजने वाले गणेश पंडालों में आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं। बात कहें कामराज नगर चा महाराज के स्वागत के लिए उमड़े भक्तों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी।
2: जब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति पापा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है। हम सब में गणपति पापा है और हम हमेशा गणपति पापा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 साल हो गए और ये आगमन गढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा है।
0: बापा के आगमन के साथ ही मुंबई की रफ्तार में भक्ति का रंग घुल जाता है। पंडालों में तैयारियां तेज हैं, बाजारों में रौनक है और भक्तों के बीच बापा के स्वागत को लेकर जोश हाई है। गणेश प्रतिमाओं को पूरे भक्ति भाव के साथ उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब बस वो घड़ी आने वाली है जब बापा का दरबार सजेगा और भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: वहीं सावन के पावन महीने में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से लाखों कावड़िए गंगा जल लेकर देवघर की ओर अभी भी रवाना हो रहे हैं। बोलबम के जयकारों से पूरा कावड़िया पथ शिवमय हो चुका है। और इसी बीच झारखंड के गोड्रा के रहने वाले संजीव कुमार 19 बेटियों के साथ बाबा बैजनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकले और इस टोली में कई बेटियां ऐसी हैं जो कि पिछले 10 सालों से लगातार इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं। और छोटी छोटी बच्चियों से लेकर युवा बेटियां भी बाबा के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली। संजीव पिछले 40 वर्षों से लगातार सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा और तपती धूप के बावजूद बेटियों के चेहरे पर थकान नहीं है बल्कि महादेव की भक्ति नजर आ रही है। और चलिए वो आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो पहले आपको थोड़ा हैरान कर सकती है लेकिन अगले ही पल आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दरअसल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बिल्लियों की कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कोई अपनी अदा से लोगों का दिल जीत रही है तो कोई अपने कारनामों से इंटरनेट पर छाई हुई है। और खास बात यह है कि इन वायरल बिल्लियों की लिस्ट में एक नाम भारत की बिल्ली का भी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन एंटरटेन सेंसेशंस बिल्लियों से जिनकी मासूम शक्ल और अनोखी अदाएं लोगों को अपना बना रही हैं और लोग उनके फैंस बन रहे हैं।
4: हर पल चौकन्नी पैनी निगाहें, गंभीर जैसी दिखने वाली सूरत, चुस्त और चौकस वितरत, ये वह अनोखी बिल्ली है जिसका जिक्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। असल में ये मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहने वाली एक जिंजर कैट है। ये बिल्ली अक्सर मुंबई मेट्रो की रेड लाइन यानी लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन के एंट्री गेट पर बैठी रहती है, जो कभी कभार घूमती फिरती भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये मेट्रो स्टेशन पर हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही हो। मेट्रो के एक मुसाफिर संदेश सामंत ने इस बिल्ली की तस्वीर खींची और मजे लेने के लिए MMMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिना सैलरी के काम कर रही इस बिल्ली की कर्तव्य निष्ठा देखते हुए इसका कोई सरकारी पद मिलना चाहिए। MMMOCL ने भी इससे कदम आगे बढ़कर मुसाफिर की सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक में ही इस बिल्ली को चीफ फ्लाइंग ऑफिसर यानी CFO का मानद पद देने का ऐलान भी कर दिया। बहरहाल ये बिल्ली अब यात्रियों के बीच खास पहचान बना चुकी है। लोग इसे दुलारते भी हैं और ये अपनी ड्यूटी भी पूरी जिम्मेदारी से करती नजर आती है। वैसे तो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर बिल्लियां, कुत्ते और बंदर अक्सर आराम करते पाए जाते हैं, लेकिन इस बिल्ली की तो बात ही जुदा है। ये वजह है कि अब इसे चीफ फ्लाइंग ऑफिसर का खास सेलिब्रिटी स्टेटमेंट भी मिल गया है। मुंबई मेट्रो के CFO के पास न कोई कार्यालय है, न पहचान पत्र और न ही तय ड्यूटी का समय, लेकिन इतना जरूर है कि गुंडावली स्टेशन इन दिनों उसकी पंजों वाली निगरानी में है। मुंबई के वारा जिंजर कैट जैसी अनोखी बिल्लियां चीन के गासू में भी है। गासू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 बिल्लियों के लिए शानदार कैट शेल्टर बनाया गया है। इसी साल इनके बारे में खबर वायरल हुई तो प्रशासन ने इन्हें चीफ माउसर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पदवी से नवाज दिया। एयरपोर्ट के गेट D58 के नजदीक इसके लिए कैट शेल्टर के रूप में खास ग्लास रूम बनाया गया है, जिसे माउस कैचिंग ऑफिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर इन बिल्लियों के लिए बकायदा बिस्तर और दूसरी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ ये आराम फरमाती दिखती है। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए ये बिल्लियों का ये बसेरा जूबा तो है, लेकिन यादगार फोटो स्पॉट भी है। सिर्फ भारत और चीन में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में भी एक बिल्ली को वाला सरकारी अफसर का दर्जा दिया गया है। लैरी नाम की ये बिल्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तैनात है। इसे चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस की पदवी दी गई है। ये बिल्ली 2011 से यहाँ मौजूद है और अब तक 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी है। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके इंस्टा फैन अकाउंट और अनऑफिशियल एक्स अकाउंट भी हैं, जिन पर इसके बारे में जानकारी और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। इसी तरह बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पालतू बिल्ली मैक्सिमस भी सोशल मीडिया पर काफी शोहरत बटोर चुकी है। ये बिल्ली अक्सर PM बार्ट डी वेवर के साथ अपनी बॉन्डिंग के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बिल्ली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बेल्जियम के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। बेल्जियम के PM बार्ट डी वेवर को काफी गंभीर और सख्त नेता माना जाता है, लेकिन मैक्सिमस के साथ उनकी तस्वीरें आम जनता के बीच उनकी संवेदनशील और मिलनसार छवि पेश करने में मददगार है। बिल्लियों को अक्सर कुत्तों के ही समान पालतू और वफादार माना जाता है। कुत्ते जहां बाहर गतिविधियों में माहिर माने जाते हैं, वहीं बिल्लियों की पहचान अलहदा है, इसलिए इन्हें भी इंसान का बेहतरीन साथी माना जाता है।
3: फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए राखी की रौनक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में भी तेज बारिश का रेड अलर्ट, काशी और सोनभद्र में आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। अयोध्या में झूलनोत्सव के मौके पर श्री राम वल्लभा कुंज में शाम से रात तक चला झांकी महोत्सव, दिखने को मिले धार्मिक और सांस्कृतिक रंग।
14: उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद।
3: गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश।

0: खबरें के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका शुभ समाचार में। और अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में मंगलवार की सुबह भी मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और 7 बजे से पहले ही कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश का असर सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया। कई इलाकों में जलभराव हुआ तो कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थमती नजर आई। मौसम के इस बदलाव से राजधानी के तापमान में भी गिरावट महसूस की गई है। सुबह के वक्त दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही गरज चमक और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। यानी दिल्ली NCR में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। आसमान में बादल है, बारिश का दौर जारी है और फिलहाल गर्मी से भी राहत मिली है। बारिश की ये तस्वीरें राजधानी के बदले मौसम की गवाही दे रही है।
1: पिछले 24 घंटे से दिल्ली और NCR में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहाना बना हुआ है और इस बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। जो उमस भरी गर्मी लगातार पड़ रही थी उससे काफी हद तक राहत मिली है। और साथ ही साथ दिल्ली और NCR के लिए एक जो बड़ी समस्या है वो AQI, उससे भी राहत मिलती है। जब लगातार बारिश हो रही है तो उसका सीधा जो फायदा मिलता है कि AQI कम हो जाता है, साथ साथ गर्मी से तो राहत मिलती ही है। हम लोग अक्षरधाम के फ्लाईओवर पे मौजूद है और ये सामने का अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा पूरी दिल्ली में आप देखिए कैसा मौसम बना हुआ है। आज के दिन को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यानी अगर आप आज घर से बाहर निकलते हैं तो सावधान रहें, पूरे दिन बारिश हो सकती है, सड़क पर ट्रैफिक लग सकता है। अगर 2-व्हीलर से हैं तो अपने लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करके चलें कि बारिश से अगर आपको बचना हो तो फिर आप बच सके। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी से निकल रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरी परिस्थिति आज दिन के लिए है। और सुबह जो अलर्ट है ये मौसम देख करके साफ साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके का अलर्ट है। आप देखिए पूरी तरीके से मौसम जो है दिन में वो अंधेरा सा ज्यादातर इलाकों में छाया हुआ है। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
0: तो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली में आज सुबह सवेरे बारिश हुई है, मौसम खुशनुमा हो गया है और गर्मी से राहत दिल्लीवासियों को मिली है। अलग अलग जगह का हाल ये आप देख रहे हैं। कनॉट प्लेस में भी झमाझम बारिश हुई, अक्षरधाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। तो दिल्लीवासियों के लिए सुबह थोड़ी राहत हुई गर्मी से। तो देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ जगहों पर ये बारिश मुसीबत का सबब बन रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, तो SDRF ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। उत्तरकाशी में भी SDRF जवान की मुस्तैदी की वजह से एक युवक की जान बच पाई।

आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और गाड़ियाबंद में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव और कस्बों समेत शहरों के भी कुछ रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गाड़ियाबंद में हालात बाढ़ जैसे हैं। गाड़ियाबंद जिले के देवभोग में बारिश की ये चुनौती चार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। पिछले दो दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बेतहाशा बारिश से तेल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी में तेज बहाव की वजह से टिकरापारा नाला में चार लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस और एसडीआरएफ को दी तो एसडीआरएफ ने फौरन रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया।

0: कोसी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में नदियों का तेज बहाव चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उत्तरकाशी के खदारी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। इस युवक को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचा और उसी रस्सी के सहारे उस युवक को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू के बाद युवक को उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया। बारिश के इस मौसम में कई बार नदियों का तेज बहाव लोगों के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से साफ कर दिया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं होता। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अमित वाला है।
2: ओडिशा के जाजपुर में बीती रात मूसलाधार बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव की चपेट में एक कार आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार एक जगह से बहती हुई दूसरी जगह जा पहुंची। गनीमत यह रही कि उस दौरान कार में कोई सवार नहीं था, लिहाजा किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने सूचना फायर सर्विस स्टेशन को दी। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया।
3: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल 28 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। इसको लेकर देश में हर तरफ रौनक दिख रही है। पारंपरिक से लेकर स्टाइलिश राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो इको फ्रेंडली राखी बनाने का काम भी चल रहा है। बहन अपने भाई के लिए राखी की खरीदारी कर रही है, तो देश की रक्षा में तैनात जवानों को राखी भेजने का सिलसिला चल रहा है।

0: भाई बहन के रिश्ते का त्योहार और बाजार में एक से बढ़कर एक राखियों की भरमार। दुकानें राखियों से सजी हुई है तो जगह जगह राखी बनाई भी जा रही है। इन सब के साथ साथ राखी भेजने का सिलसिला भी चल रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें बहनों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। यूपी के सहारनपुर की इस दुकान में राखियों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है, जिसकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, स्टोन, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर समेत अलग अलग डिजाइन वाली राखियाँ सजी हुई हैं। इस बार कपल राखी, फैमिली पैक और अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा म्यूजिक, लाइट, टॉय और ब्रेसलेट वाली राखियां समेत करीब 15,000 डिजाइन बाजार में मौजूद हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अपनी पसंद की राखियां भी खरीदती नजर आ रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है। जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नाग वाली राखी खूब पसंद की जा रही है, जिनकी कीमत 300 रुपए से 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजार में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। इसके अलावा जगह जगह अलग अलग तरह की राखियां बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड में माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं रक्षाबंधन को लेकर प्रकृति संरक्षण से जुड़ी पहल कर रही हैं। ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षित पारंपरिक राखी बना रही हैं।
2: हिमालय क्षेत्र से ये ब्रह्म कमल पुष्प लाया हुआ है, साथ में है केदार पाती और इसी के साथ ये है भोजपत्र। तो हम इन चीजों से प्राकृतिक राखियां बना रहे हैं और साथ में अपनी आजीविका को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं।
0: वहीं गुजरात के सूरत में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ सेवकों ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अनोखी पहल की है। यहां के माधव गौशाला में प्राकृतिक चीजों से राखी बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया गया है। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जिसे कलाई से हटाने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही

0: मिट्टी में मिलने पर ये खाद का काम भी करेगी।
1: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: गोबर से राखी बनाने के पीछे गौ भक्तों का उद्देश्य गौ माता से जुड़ने का संदेश देना भी है। राखी बनाई भी जा रही है और राखी भेजी भी जा रही है। राजस्थान के पाली में स्थित इस मुख्य डाकघर की तस्वीर देखिए। यहाँ डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान के तहत इन दिनों खास तौर से स्कूली बच्चों की लाइन लगी नजर आती है। ये बच्चे सीमा पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियाँ भेजने यहाँ पहुँच रहे हैं और अब तक 25,000 से ज्यादा राखियाँ यहाँ से भेजी जा चुकी है।
2: भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
3: कि जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: यहाँ आने वाले बच्चों को डाक विभाग के अभियान और रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, सूरत से संजय सिंह राठौर और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात फैशन शो की कर लेते हैं। आमतौर पर फैशन शो का नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत मॉडल्स और रैम्पवॉक की तस्वीरें आने लगती हैं, लेकिन नागपुर में हुए एक अनोखे फैशन शो ने सोच को ही बदल कर रख दिया। यहां रैम्पवॉक पर मॉडल्स नहीं बल्कि 65 से 80 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स ने अपना जलवा बिखेरा। उम्र को पीछे छोड़ते हुए इन बुजुर्गों ने पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ रैम्प पर वॉक किया। नागपुर के इस फैशन शो में सिर्फ कपड़े और स्टाइल ही खास नहीं था, बल्कि इन सीनियर सिटीजन्स का आत्मविश्वास और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।
5: आमतौर पर रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक आपने खूब देखी होगी, लेकिन नागपुर में जब रैंप पर ये चेहरे उतरे तो नजारा ही कुछ अलग था। किसी की चाल में ठहराव था तो किसी के अंदाज में गजब की शरारत। किसी ने अपने जमाने का स्टाइल लेकर रैंप पर एंट्री मारी तो किसी ने ओल्ड फैशन से न्यू फैशन का दामन थाम लिया। 65 से 80 साल की उम्र, लेकिन जोश ऐसा कि अच्छे अच्छे मॉडल्स को मात दे दें, तो किसी ने रेट्रो लुक के साथ पुराने दौर की यादें ताजा कर दी। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्टाइलिश और फंकी अंदाज में बता दिया कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती।
6: ये रैंप में आने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसा लगा कि हम बचपन ही में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम बहुत ही खुश रहे। जैसी प्रेरणा मिली हम लोगों को स्टूडियो के पैकिंग से, तो हमने तुरंत सोच लिया कि हम यहाँ पे आएंगे और अपना परफॉर्मेंस, अपना एज भूल के सब अच्छे से काम करेंगे।
7: हम लोग यहाँ पे बुढ़ापे में जवानी हमारे अंदर आ गई है और बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी एक एक से बढ़ के एक पार्टिसिपेंट है।
5: नागपुर में हुए सेकंड इनिंग सीनियर सिटीजन फैशन शो में जैसे ही ये सीनियर सिटीजन रैंप पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। किसी ने अपनी चाल से दिल जीता, किसी ने अपनी मुस्कान से और किसी ने अपनी अदाओं से। ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ एक खूबसूरत जवाब था जो मानती है कि उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ हर कदम कह रहा था उम्र बढ़ सकती है, लेकिन स्टाइल, आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। नागपुर से योगेश वसंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कोलंबो टेस्ट में ध्रुव जुरेल के शतक के बीच उनका टैटू भी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कल दूसरे दिन टीम इंडिया का बल्ला जमकर गरजा। भारत ने 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित कर दी और इस दौरान ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक जमाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। खास बात यह रही कि 99 रन पर पहुंचने के बाद जुरेल को शतक पूरा करने के लिए 13 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। सेंचुरी पूरी होते ही उन्होंने हेलमेट उतारकर अपनी बाजू पर बना जय जवान जय किसान का टैटू दिखाया, जिसकी काफी चर्चा हुई। शतक पूरा करते ही दूसरे छोर पर मौजूद मोहम्मद सिराज भी उनके पास पहुंचे और दोनों ने गले मिलकर इस पल को सेलिब्रेट किया। मैच के बाद जुरेल ने कहा कि उनके दादा किसान थे और पिता सैनिक, ऐसे में वो अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहते, ये सेलिब्रेशन उन्हीं के लिए था। और लद्दाख में 15वीं जिला कारगिल टाइकोंडो चैंपियनशिप सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस चैंपियनशिप का आयोजन कारगिल के KSC स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था। इस चैंपियनशिप में जिले के 6 क्लब, स्कूल्स और स्पोर्ट्स सेंटर समेत कुल मिलाकर 100 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख टाइकोंडो एसोसिएशन और लद्दाख पुलिस के सहयोग से कारगिल में यह आयोजन हुआ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं विदेश, जहां गरबा के रंग अभी से दिखने लगे हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट्सबर्ग में गरबा की रंगारंग प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की शानदार झलक पेश की। ICCR के सहयोग से चेतन जेठावा के नेतृत्व वाले सप्तक लोक नृत्य समूह ने GVS हॉल में रास और गरबा की जोशीली प्रस्तुति दी। ढोल की थाप और पारंपरिक नृत्य ने पूरे माहौल को गुजरातमय बना दिया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय ने जमकर गरबा का आनंद लिया। विदेश की धरती पर भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं का एक खूबसूरत प्रदर्शन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस आयोजन ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दक्षिण अफ्रीका में जीवंत कर दिया। और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में भी पीछे नहीं है। देखिए विद्या बालन की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: दिल दे दिया है जान तुम्हें दे
9: भाई, धीरे धीरे गाले,
8: धीरे धीरे
9: स्लोली स्लोली गा।
8: ओके स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत, उमस गर्मी, गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में भी तेज बारिश का रेड अलर्ट, काशी और सोनभद्र में आज कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। अयोध्या में झूलनोत्सव के मौके पर श्रीराम बल्लभा कुंज में शाम से रात तक चला झांकी महोत्सव, दिखने को मिले धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल जात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने किया लखिया बाबा का आशीर्वाद। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी यानी सिल्वर जो धातु है, उसका ज्योतिष में क्या महत्व है और चांदी के प्रयोग से आपको किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 6:20 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:51 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चांदी के बारे में। चांदी का महत्व क्या है? देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। मानते हैं कि चांदी का उद्भव, इसका प्राकट्य भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था। ज्योतिष में चांदी का संबंध माना जाता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। चांदी मध्यम मूल्यवान होने की वजह से ज्यादा प्रयोग की जाती है और चांदी का असर आपके मन पर, आपके सोच पर बहुत जल्दी पड़ता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम चांदी का प्रयोग करते हैं तो चांदी किस प्रकार से हमारे शरीर पर और ग्रहों पर असर डालती है। चांदी का अगर आप बुद्धिमानी से प्रयोग करें तो आपका मन मजबूत होता है। इसके साथ ही साथ चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज हो जाता है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो ये चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर देती है और ये शुक्र को मजबूत करके आपके मन को प्रसन्न रखती है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो शरीर में जमा हुआ विष निकल जाता है और त्वचा कांतिवान हो जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है। जो लोग चांदी के गिलास से पानी पीते हैं उनको त्वचा की समस्या कम होती है और उनके शरीर में विष जमा होने नहीं पाता है। चांदी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चांदी बड़े फायदेमंद धातु है और जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो चांदी का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदी का एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा अंगुली में धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। जब आप सबसे छोटी उंगली में चांदी पहनते हैं तो इससे चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, मन का संतुलन अच्छा हो जाता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप चांदी की एक मोटी सी चेन भी अपने गले में पहन सकते हैं और चांदी की चेन गले में पहनने से वाणी शुद्ध हो जाती है और हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं। अगर आप अपनी कलाई में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो इससे कफ वात और पित्त नियंत्रित होते हैं। अगर आप नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या से राहत मिलती है, शरीर स्वच्छ होता है और मन प्रसन्न रहता है। चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें तो शरीर विषमुक्त हो जाएगा। छोटे बच्चे जो बार बार सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं या बार बार बीमार होते हैं उन्हें पानी या दूध जो भी पिलाएं वो चांदी के गिलास या चांदी की कटोरी में रखकर पिलाएं, या खाना भी खिला रहे हैं तो खट्टी चीज छोड़कर चावल दाल फल दूध ये चांदी की कटोरी से या चांदी की चम्मच से खिलाएं तो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
देखिए चांदी के कुछ आपको चमत्कारी प्रयोग बताते हैं जिनको करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द रहता है तो चांदी के दो छल्ले बनवा के अपने दोनों पैरों के अंगूठे में धारण कर लीजिए, जोड़ों के दर्द में, पैरों के दर्द में राहत मिलेगी। अगर आप इमोशनली बहुत कमजोर हैं, अगर भावनात्मक रूप से आपको दिक्कतें बहुत होती हैं, बहुत जल्दी मेंटली कमजोर हो जाते हैं, तो चांदी का एक छल्ला बनवाकर दाहिने हाथ के अंगूठे में आपको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं, सेहत की समस्याएं आपको हमेशा परेशान करती हैं, तो चांदी के गिलास से या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव पालने की आदत है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, तो चांदी की एक चेन आपको गले में पहननी चाहिए। और अगर चांदी की ये चेन आप अपनी माता के हाथ से लेकर गले में पहने तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में हमेशा कलेश और अशांति रहती हो तो चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में अक्षत यानी चावल के बिना टूटे हुए दो चार दाने रख दें, डिब्बी बंद कर दें और इसको पूजा स्थान पे रख दें, घर की अशांति और कलेश दूर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: ऐसे फंसे हम तो, वो हमसे बुलवा देते हम फंस जाते। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, कथा कर रहे थे, बढ़िया प्रवचन वक्ता बने थे। जब से दरबार लगाया, भूख गई, नींद गई, घर तो छूट ही गया, हालत खराब है भैया। उन्होंने ऐसा फंसाया कि पूछो मत। लेकिन हम भी बड़े बारे चेला हैं उनके, जब भी कुछ उल्टा होता है हम कह देते हैं आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यू आर बागेश्वर बाबा। बालाजी को देख के कहते हम थोड़ी बागेश्वर बाबा हैं, तुम हो गुरु और न्यूज तो तुम्हारी छप रही, हमारी थोड़ी छप रही। 20% हमारे नाम की न्यूज होती, 80 तो तुम्हारी होती गुरु, तो चाहे विवाद की हो चाहे भले की हो। अभी प्रधानमंत्री जी IIT में संवाद कर रहे थे IIT के बच्चों को, तो मन की, अच्छा देखो देश का प्रधानमंत्री भी कितने अद्भुत हैं, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और हम मन की बात बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहां संवाद कर रहे थे युवाओं के साथ, चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने कहा आप क्या कहना चाहते? हम कहा कुछ नहीं कहना चाहते, देश की ये भारत की संस्कृति को, भारत के हिंदुओं को गौरव करना चाहिए कि भारत की सनातन संस्कृति में, भारत की हिंदुत्व परंपरा में, शक्तियों की परंपरा में इतनी ताकत है कि IIT के विषय में, उस हॉल में भी सनातन संस्कृति की बात चल रही है। क्योंकि हम बागेश्वर बाबा थोड़ी है, वो तो बालाजी है भैया, वो हमारे लिए नहीं कह रहे थे, बालाजी के लिए कह रहे थे आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हम सब हिंदू। तो हमारी तो भैया कोई महिमा नहीं, ये जो भी महिमा है इनकी है, हमारी तो कोई दया नहीं, ये जो भी दया है बालाजी की है। हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, हमारी प्रार्थना है तुम सदा सदा के लिए बालाजी के चरण पकड़ो, जब तक तुम्हारा काम सफल ना हो जाएगा तब तक हम अर्जी लगाते रहेंगे, ये वचन दे देते हैं। जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार ना हो जाएगी तब तक हम उनके चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे। और यहां हमने लाखों लोगों की भैया बिगड़ी बनते देखी है, देर भरे लगेगी पर तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। यहां लोग रोते हुए आए, हंसते हुए गए, जाओ तुम भी यहां से हंसते हुए जाओगे। यहां सब पर कृपा की, तुम पर भी करेंगे। हमारे गुरु ने तप किया, जप किया, यहां पर अनवरत भंडारा चल रहा, अब 365 दिन में 6 मार्च को 365 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा और अगले साल दिव्य अस्पताल भी यहां पर प्रारंभ होने वाला है। तो हमारा उद्देश्य है कि मंदिरों में आने वाली दान पेटियों का रुपया मंदिरों में खर्च ना हो, समाज पर खर्च हो, यह हमारा उद्देश्य है। और देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता, देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है भैया, जहां पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने आए। देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां अनवरत भंडारा चल रहा, और देश का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम होगा जहां कृपा और दवा दोनों प्राप्त होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का कि कच्चा? सोच लो। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? चलो खिसको। कटरी के बारे हमारे काय को हो गए, हम जिनके हो गए तुम उनके हो जाओ। बालाजी महाराज की। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे, और भटको नहीं अटको, इनके घर देर है अंधेर, और जाओ तय है तुम्हारा काम सफल होगा, होगा, हो करके रहेगा। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना अर्जी, अब पेशी भर शुरू कर दो, काम सफल। अब हम दरबार शुरू कर रहे, बारिश तो नहीं हो रही, बैठ जाओ। अब गीला है, अरे राम राम, अब हम क्या बताएं, हमारे पास इतना रुपया नहीं है, नहीं तो नीचे हम लकड़ी का फ्लोर डलवा लेते। हमारा अब खर्चा ज्यादा है, एक तो गुरुकुलम चल रहा, वहां 70-80 बच्चे, उनका रहना खाना पुस्तकें कपड़ा टीचर वो भी हम ही को देखना पड़ता, भंडारा रोज चल रहा, 3-4 लाख रुपया वहां लगता एवरी डे, हम रहे ना रहे खर्चा है ही है। तो यही चक्कर में हमें कथा करने जाना पड़ता कि आएंगे कहाँ से, सब हम कथा करने जाते कुछ अमीरों को फंसाते फिर हम। अब देखो साफ बात है, देखो जो है सो मुंह पे है, हम बहुत खुले आदमी हैं, हम उनसे कह भी देते कि देखो चेला हम आए कहा है दक्षिणा के लिए, हमारा भंडारा चल रहा है, इस महीने का व्यवस्था नहीं हो पाई, कुछ करो कृपा, हम पे उन्हें चमत्कार दिखाती। अब तो हमने कुछ दिनों से अंग्रेज टेकल कर लाए, अब हम भारतीयों का भी थोड़ा कम ले रहे, विदेशियों का ले रहे हैं, कह चला डल्ला ठटरी के बड़े नकटा, तो कहती हूँ बाय बाय बाय बाय, नो नो ब्लेसिंग्स फॉर यू, हम 2-3 चमत्कार दिखाते हैं, सो सारे ओ हूँ क्या हूँ ठटरी के बड़े, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोला हम दान कर रहे हैं इतना दान, तो हमें विवेकानंद जी की बात याद आ गई, विवेकानंद जी विदेश गए तो उनको भी शिक्षा का काम करना था तो पैसा चाहिए था, तो एक व्यक्ति के पास गए अमीर के, तो उसने चेक दी मिलियन की, तो उसने अंग्रेजी में विवेकानंद जी से कहा यू से फॉर मी थैंक्स, आप मुझे धन्यवाद कहो हमने इतने करोड़ की तुम्हें चेक दी भारत के लिए। विवेकानंद जी बोले हमें धन्यवाद कहो हमने तुम्हें सेवा का मौका दिया। तो हमारे पास कई लोग आते हैं 2-4-6 दिन में, एक आध कोई कन्यादान वाला आ जाता, कुछ चढ़ाने आता, गुरुदेव आशीर्वाद दे हमने एक बेटी कर दी है, हम कहते हैं ये कुशल मनाओ कि हमने एक बेटी का कन्यादान का तुम्हें मौका दिया है। तो अब क्या बताएं, नहीं तो यहाँ टीन सेट बढ़िया डल जाता, बढ़िया रहता, धूप नहीं लगती और बढ़िया नीचे व्यवस्था रहती, पर अब जितना है उतने में काम चलाओ, अब खूब अब खर्चा भी ज्यादा, अब 365 बेटियों का विवाह आ गया, 4 महीना बाद शादी है, हर बेटी पे 2-3 लाख खर्चा होता है, डबल बेड सोफा LED TV पायल बिछिया, मतलब 3 लाख मिला करके 8-9 करोड़ रुपया लगना ही लगना है, अब चाहे वो जैसे आवे। सो यही चक्कर में हम कथा करने जाते हैं, कथा करेंगे फिर दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा मिलती है व्यवस्था बन जाती है भगवान की दया, तो कहना सरल है करना बड़ा कठिन है, तो अब इतनी अभी है नहीं है, पर जैसे ही रुपया आएगा यहाँ पे बढ़िया फ्लोर हम डलवा देंगे ताकि तुम्हें गीला ना लगे, हाँ टेंशन ना लो। अब अभी अस्पताल भी बन ही रहा है, उसका अलग काम चल रहा है, पर भगवान सब कृपा करें हो जाएगा, सब टेंशन नहीं है भगवान। देखो एक बात बोले, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमें हमारे निजी पर्सनल तौर पर इतना कह सकते, हमें प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया मिला है, हाँ, हाँ, कोई पार्टी के कारण हम उनको वो नहीं कह रहे, पर वो भैया उन्हें ये पता रहता सच्ची सेवा जहां जहां भारत में हो रही होती उसकी वो बहुत कद्र करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं, और उनके अंदर ऐसा भगवान की ऐसी दया है, जैसे हमारे जैसे कितने लोग नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग हैं, कितने बाबा नहीं होंगे, फिर भी हमारे जैसे व्यक्ति को वो याद रखते हैं, चिंता करते हैं कि कहां क्या चल रहा, बाबा की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, बाबा निपट तो नहीं गया। अभी 140 करोड़ लोग हैं, वो बताओ कितने बाबा नहीं, तो भैया कुछ भी कहो अपने देश को प्रधानमंत्री तो बहुत बढ़िया मिला। अब तुम ये ना समझना कि हम तारीफ करके उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ना ना ना, जो सही बात है वो हम बोलते, हमारे मुंह में देखो तुमने नीट वाली बात थी हमने तुरंत बोली, गलत गलत है सही, अब वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, भगवान की कृपा से हम में है, बालाजी की कृपा है, लेकिन भैया कुछ भी कहो ऐसा प्रधानमंत्री तो अद्भुत है, तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा, अगले साल हर हाल में हम अस्पताल चालू करवा के तुम्हें देंगे। हाँ, और जब बहुत बड़े वाले हम बाबा बन जाएंगे ना, बहुत बड़े, तब देखना तुम 1100 बेटियों का विवाह करवाएंगे, आओ देखना तुम, और हाँ तुम्हारा हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने बड़े बाबा हो जाएं, चाहे जितने विदेश वाए रहेंगे ऐसे, हाँ बदलेंगे नहीं ये पक्का, ठटरी तो वहां भी बारेंगे। अभी हम जापान जा रहे हैं कल, जापान में भी अपनी कथा होनी, बताओ तो कोई कल तक गांव में नहीं पूछता था, अब जापान में पूछ रहे, जलवा तो देखो बजरंग बली का, हनुमान जी की कृपा तो देखो कितनी साक्षात है हमारे ऊपर। कल तक हमारा सरपंच हमारा नाम नहीं लेता था, आज देखो तुम हनुमान जी का जलवा तो देखो। कल तक इसी गांव में हम भीख मंगाते थे, घर घर जाके कोई चावल देता था कोई आलू देता था, तब हमारी माता जी रोटी बनाती थी। इस बारिश में चूल्हे के लिए लकड़ियां भी नहीं होती थी, तो पॉलीथिन बीन बीन के रख लेते थे पन्नी, और प्लास्टिक की चप्पलें जो टूट जाती थी ना लोगों की, वो ऐसी लकड़ी से पकड़ के ले आते थे और रख लेते थे, उनको जलाते थे चूल्हे में, और जलाने के बाद में फिर माता जी रोटी बनाती थी। कई बार वो काली हो जाती थी रोटी, क्योंकि वो प्लास्टिक की पन्नी की पूरी वो चिपक जाती थी उसी में, कई बार चिपक जाती ऐसी बारिश में। एक ही कमरा था, तुम लोगों ने हमारी जन्मभूमि देखी होगी, अब ये कोई हम 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहे, 15 साल पुरानी बात, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भोजन बनता था, जैसे तैसे करके भोजन मिलता था। आज उनकी दया तो देखो, भंडारा चल रहा देखो, सुबह कपड़ा पहने थे शाम को दूसरे पहन ले हमने, एक कुर्ता में हमने ढाई ढाई साल गुजारे, एक कुर्ता में ढाई ढाई साल गुजारे। अब उनकी दया तो देखो कितने दया, भैया बालाजी से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, हमने यहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनते देखी है, खुद को भी देखा लाखों लोगों को, तुम उनके चरण भर पकड़ लो तुम्हारी भी वो बनाएंगे, हमें भरोसा है। भगवान के घर देर है, अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है अंधेर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी नहीं भोगना पड़ा, 15 साल भोगना पड़ा, 15 साल ऐसा ही रोज रोजमर्रा की जिंदगी वही रोज। कई बार ऐसा हो जाता था गांव के लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, क्योंकि रोज रोज जाते थे ना, कोई देता ही नहीं था, बंद कर लेते। हमारे यहाँ गांव में शादी होती थी तो निमंत्रण होता था, क्योंकि हम गांव के पंडित जी हैं तो निमंत्रण होता था, तो जब निमंत्रण होता था तो हम एक दिन पहले से ही कम खाना शुरू कर देते थे, ज्यादा खाएंगे वहां पर वो बढ़िया, दिन में सपने देखते थे कि अब आज रात को निमंत्रण है, पूरी सब्जी मिलेगी, वहां जाएंगे। फिर जब वहां जाते थे तो जो नमकीन बचती थी, नमकीन और रसगुल्ला मिलते थे पंगत में, तो नमकीन जो बचती थी वो नमकीन और रसगुल्ला पन्नी लेके जाते थे, बांध लेते थे, दूसरे दिन सुबह खा लेंगे। ऐसे भी हमने दिन देखे, पर भैया उनसे बड़ा दयालु इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, वो बहुत बड़े दयालु, इसलिए तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो गांव के गवार हैं भैया, हमारी तो उनमें जैसी लाज वो रखे हैं पूछो मत, तुम्हारी भी वो रखेंगे। बस हम बैठे इसलिए कि जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक हम हिंदू होकर हिंदुओं के काम आते रहे, इसलिए हमने भंडारा चालू किया है, इसीलिए हम बेटियों का विवाह करवाते हैं, क्योंकि हमारी बहन के विवाह में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। अब हम नहीं चाहते कोई भी हिंदू का भाई, हिंदू भाई अपनी बहन के विवाह के लिए हमारी तरह रोए, उसका दर्द अब हमारा दर्द है। तो हमने सोचा है कि समाज की पीड़ा, क्योंकि समाज बालाजी ने जो हम पर कृपा की उस समाज की दर्द को हम जो है बांट सकें। और सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ा है कन्यादान, कन्यादान से बड़ा 6 मार्च को है, भले ही 1 घंटे के लिए आना, तुम्हें आना है, भले ही कोई दान ना दो हम व्यवस्था कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हम 3-4 और एक्स्ट्रा कथा करेंगे। हम तो आजकल ऐसा करने लगे, एक दिन छोड़ एक दिन कथा, यहाँ कथा पूरी की दूसरी कथा कल शुरू, आराम नहीं करते, उससे क्या होता है ज्यादा कथाएं हो जाती, कथा होती है तो दक्षिणा देखो साफ है, हम माया छोड़ने के इसलिए प्रवचन नहीं सुनाते, और माया क्यों छोड़े, और तुमसे यदि माया छोड़वा दें तो फिर अमेरिका का डॉलर 200 का ना हो जाएगा, और माया छूटनी ही नहीं है, और हम खुद माया लेके प्रवचन कर रहे हैं, और तुम्हें माया छोड़ने के प्रवचन दे के माया बेकार है, ये है वो है, बिल्कुल बेकार नहीं है बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर ऐसा कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, बुरा ना मानना, देखो सीधी बात कह रहे, हाँ सुबह हम बहुत साफ बात कह रहे, इसलिए तुम बिल्कुल भी माया छोड़ने के चक्कर में ना रहो, एक काम जरूर करो, माया में लिप्त ना हो, लिप्त बालाजी के चरणों में खूब कमाओ, कमा के गरीबों की मदद करो, उसमें जो संतुष्टि है वो अलग आनंद है, खूब कमाओ बेटा खूब कमाओ। एक अकेले हम भारत में गुरु हैं जो पैसा कमाने का ज्ञान देते, हाँ, अब होना चाहिए वो, इसलिए अब सब बाबा बन जाएंगे तो भारत तो भिखारी ना हो जाएगा। हाँ, माया बेकार है, इसमें मत पड़ो, ये बेकार है। अच्छा, खुद की ब्याज गद्दी पे 500 चढ़ी, अब कह दी जाए यदि बेकार है तो जी हमें दे दो है? सो कहते हैं रे, वो तो हम कथा सुना रहे थे ठटरी के बड़े, इसलिए हमको ये भाई लपेटे वाली बातें नहीं आती, सीधी सीधी बातें। तुम्हें अच्छी लगे आओ तो वेलकम, ना आओ सो भीड़ का। हम तो साधु आदमी है, हमारा क्या भजन पूजन करना है, नाम जप करना है, और बढ़िया कम भीड़ आएगी, कम से कम मंदिर में डले तो रहेंगे। पहले तुम लोग कमाते थे बढ़िया भजन, देखो हम इतना कह दें हम आए नहीं है, हमें भेजा गया है, और भेजा गया तो वो काम करके जाएंगे जिस काम के लिए हमें भेजा गया है। तुम ना भी हमें मानोगे हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम घर जाओगे बेटा मोबाइल तो देखोगे, हम तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगे, तुम मोबाइल पे हमें ब्लॉक कर दोगे बेटा, टीवी तो चलाओगे, अपन तो न्यूज में भी आते हैं, और तुम वहां भी हमारा चैनल बदल दोगे, कोई बात नहीं बेटा, इंस्टाग्राम तो चलाओगे, अपन रील में आते हैं, तुम रील पे बंद कर दोगे बेटा, अपने घर पे तो रहोगे, अपन तो हर सिटी में कथा करने आते हैं, तो हमारी कथा में नहीं आओगे, हम तुम्हारे मोहल्ले से निकलेंगे हाँ हाँ करते हुए। आओ, अच्छा तुम दरवाजा बंद कर लोगे बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे। अब विचार करो, हमारे सब कोई विरोध करता 2-4 महीना फिर बंद कर देता, पता है क्यों? जैसे ही वो ज्यादा विरोध करता, हम कुछ करते नहीं है, देवता वेवता नहीं भेजते ना, प्रार्थना कर देते हैं, लाज रखियो। अब विचार करो, सपने में अंधेरे में तुम अपने कमरे में अंधेरे में सो रहे हो, हल्की लाइट जल रही हो लैंप, और 4x4 का बंदर खड़ा हो जाए 4+4 और जगा के कहे उठा, नानी याद आ जाती है, पर नानी हो, पर नानी, पर नानी आओ। तो वो सुबह से ही कहता जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, तो घरवाली कहती कि दिन में तो तुम टीवी पे गाली दे रहे थे, अब जय बागेश्वर, इंटरनेशनल मामला है, ऐसे हमने कम से कम 100 अपने विरोधी देखे होंगे जो टीवी पे हमें गाली बकते थे, यार रात को आके फोटो ना खिंचवाना, तो हमने पूछा हुआ क्या है, अरे मारा क्या हुआ, ये देखो लॉन्च दिया, 4 दिन से रोज आता है, अब बाथरूम भी अकेले नहीं हम जा रहे, डर लग रहा वहां ना आ जाए, हम समझ जाते हैं कि पहुंच गए गुरु। आओ, आओ, नहीं तो विचार करो, हमारे जैसे अनपढ़ गवार, हम कौन पढ़े लिखे हैं, और बताओ हम अंग्रेजों को भी उल्लू बना रहे, उल्लू बना रहे अंग्रेजों को, किसकी दया। तो हम बहुत साफ आदमी है, सीधे आदमी है, जलेबी जैसे एकदम सीधे आदमी है, साफ तो है ही है, तो हम तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं कि तुम्हें माया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, माया में पड़े रहो, खूब कमाओ बेटा, खूब कमाओ और धर्म करो, अर्थ से परमार्थ की यात्रा करो, बढ़िया भजन करो, भजन करो, हाँ खूब बढ़िया आनंद लो, खूब बड़े आदमी बनो, और बाकी टेंशन ना लो, हम हैं, जब कोई साथ ना दे इनकी चरण शरण में आ जाना, यहाँ रहना, भोजन भंडारा, तुम्हारी बेटी का विवाह, अस्पताल के बाद दवाई, सब हमारी जिम्मेदारी है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या

0: एक बार 4G 360 जरूर ट्राई करें।
1: 4G 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि 4G 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
2: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वही 4G 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप 4G 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
2: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप 4G 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और 4G 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये 4G 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: 4G 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही 4G 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। 4G 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है 4G 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन 4G 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने 4G 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस 4G 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से 4G 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
7: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये 4G 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है 4G 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है 4G 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
8: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ 4G 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले 4G 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
9: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये 4G 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
10: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
0: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
11: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
14: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
15: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
19: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
22: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। अयोध्या में झूलनोत्सव के मौके पर श्रीराम बल्लभा कुंज में शाम से रात तक चला झांकी महोत्सव, देखने को मिले धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। उत्तराखंड के सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की हुई शुरुआत, उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत, तापमान में भी आई कमी, आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट जारी। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: आज है सावन का आखिरी मंगलवार, माँ मंगला गौरी की आराधना और व्रत का दिन। सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और परिवार की समृद्धि का सबसे मंगलकारी पर्व माना जाता है आज का दिन। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन मां मंगला गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं पर बरसती है विशेष कृपा, मां मंगला गौरी देती हैं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। मां मंगला गौरी देवी पार्वती का अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी स्वरूप, मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक की थी कठोर तपस्या, कठिन व्रत और अटूट भक्ति के बल पर महादेव को किया था प्रसन्न। द्वारकाधीश मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर ठाकुर जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूला, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारों से मंदिर गूंज उठा। ठाकुर जी के हिंडोले के दर्शन शाम 5:10 से 5:40 तक हुए, भगवान को झूला झूलते देख भक्त भक्ति में डूबते नजर आए। द्वारकाधीश मंदिर में शाम 7 से रात 8 तक ठाकुर जी की खास छटा सजाई जाएगी, सावन में हर दिन अलग रंग की घटा के साथ मंदिर का नजारा भी बदल रहा है। ब्रज के मंदिर में सावन के साथ झूलन उत्सव का रंग चढ़ गया है, राधा रानी और ठाकुर जी को झूला झुलाने की अलग अलग मंदिरों में खास परंपरा है। मंदिर में मल्हार के गीत, रोशनी और झूले ने भक्ति का माहौल बना दिया, भगवान के झूला झूलने के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। सावन के फुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों, फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर भक्तों को दर्शन दे रहे श्रीराम और माता जानकी। अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में जारी आस्था का उत्सव, शाम होते ही मंदिरों में भजन कीर्तन और नृत्य की प्रस्तुतियों से वातावरण भक्तिमय। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग, 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाइयों, पकवानों और 1 क्विंटल फरारी मक्चर का लगाया गया भोग। ढोल डमरू और झालर की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की हुई महाआरती। आरती में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। श्रद्धालुओं में वितरित किया गया महाप्रसाद। सावन के इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को फूल मालाओं, झालरों और आकर्षक लाइटिंग से विशेष तौर पर सजाया गया। रोशनी से जगमग हो उठा पूरा मंदिर परिसर। सावन में जारी कांवड़ यात्रा में देखा एक अनोखा रंग। अपनी 19 बेटियों के साथ बाबा धाम तक कांवड़ यात्रा पर निकला एक पिता। हर साल कांवड़ यात्रा करते झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले संजीव कुमार पिछले 40 वर्ष से लगातार कर रहे बाबा बैजनाथ धाम की पैदल यात्रा। पिछले 10 सालों से लगातार अपनी बेटियों के साथ शुरू की है 105 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा। युवा पीढ़ी से सनातन संस्कृति से जुड़ने की अपील। उत्तराखंड के सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा आयोजित। हजारों लोगों ने लखिया बाबा के लिए इसमें आशीर्वाद। उत्तर भारत के प्रमुख मुखौटा पर्व में से एक है। उत्तराखंड का प्रमुख कृषि पर्व हिल यात्रा लखिया को माना जाता है वीरभद्र का अवतार। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल। बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और त्वरित सेवाओं की शुरुआत की। मात्र 10 रुपए है इन विशेष वाटरप्रूफ लिफाफों की कीमत। ताकि बारिश से मौसम में राखियां गीली ना हो, सुरक्षित रूप से देश विदेश में भाइयों तक पहुंचाई जा सके। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल की शुरुआत। गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई गई इको फ्रेंडली राखियां। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ 100% इको फ्रेंडली है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है इसका मकसद। इन राखियों को इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में डालने पर इनसे प्राकृतिक रूप से तैयार किया जा सकता है खाद। स्वदेशी उत्पादों को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा खास नजारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूली छात्रों को शामिल। सीजीआई सूर्यकांत के कलाई पे बांधी राखी। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों के साथ किया संवाद। बच्चों को बांटे तोहफे। रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह किया गया आयोजित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय रायपुर बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने शिक्षा खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। बच्चों के साथ किया संवाद। रक्षाबंधन पर पुलिस प्रशासन ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने हर शिकायत का जल्द समाधान करने और सुरक्षा का भरोसा दिया। राखी बंधवाकर पुलिस प्रशासन ने बहनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं सुरक्षा के उपाय बताए गए। घनसाली में कले को धागो कार्यक्रम। 700 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें जुटी। महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया रक्षाबंधन। विधायक शक्ति लाल शाह को बांधी चांदी की राखी। हापा नाहलगुन स्पेशल ट्रेन अब 23 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी। बिहार यूपी के यात्रियों को इससे सफर करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन हर बुधवार हापा से और हर शनिवार नाहल लगुन से चलेगी। छपरा, हाजीपुर, बरौनी और कटिहार समेत कई स्टेशनों पर इसका होगा ठहराव। भाई बहन की अनोखी जोड़ी। बहन ने पजल में रिकॉर्ड बनाया तो भाई ने देशों के झंडे पहचानने में कमाल कर दिया। 4 साल की उम्र में गिरिशा ने सिर्फ 7 मिनट 56 सेकंड में 75 पीस का वर्ल्ड मैप पजल पूरा कर बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। गिरिशा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। गिरिशा के भाई नमिश ने महज 6 साल की उम्र में दुनिया के सभी देशों के झंडे पहचान कर बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। सिर्फ 4 मिनट 49 सेकंड में झंडों को पहचान कर बताए सभी के नाम। हरियाणा को मुंबई में मिला 66,000 करोड़ रुपए का निवेश। एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सीएम नायब सैनी ने निवेशकों को दी 5 गारंटी। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना और हरियाली राजस्थान अभियान के प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों को दिया कड़े निर्देश। बाबा बागेश्वर ने जापान के मशहूर बुलेट ट्रेन में किया सफर, आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक ट्रेन से टोक्यो से अमेरिका से ओसाका की यात्रा की गई। टोक्यो की कथा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर ओसाका के लिए रवाना हो गए, उनकी जापान यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जापान दौरे के दौरान बच्चियों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांधी राखी, इस भावुक पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई सामने। जापान में भारतीय परिवारों के साथ बाबा बागेश्वर की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने, एक वीडियो में वो बच्चों के साथ प्यार और अपनापन दिखाते हुए नजर आए। टोक्यो कार्यक्रम में कथा के साथ सनातन संवाद भी रखा गया, जिसमें भारतीय संस्कृति और धर्म की हुई बात। कार्यक्रम में जापान में रहने वाले भारतीयों की भी बड़ी मौजूदगी रही। सावन में पवित्र हरिद्वार को मिली खास पहचान, ओम पुल के पास विराजे 21 फीट ऊंचे महादेव। भव्य सफेद रंग महादेव की भव्य विशाल प्रतिमा, जटाओं से निकल रही गंगा की धार, सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया इसका लोकार्पण। झारखंड के अजीराबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव का भव्य समापन, राज्यपाल संतोष गंगवार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने महिला उद्यमियों से किया खास संवाद, उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की सराहना करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दी बधाई। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना था इस गौरव उत्सव का मकसद, जनजातीय कला एवं स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने पर भी दिया विशेष जोर। केरल के पथनमथिट्टा में ओणम समारोह, इस दौरान बच्चों ने पारंपरिक पुलिकली लोक कला को किया पुनर्जीवित। पुलिकली कला में दर्शाया जाता है कि बाघ के गांव में घुसने और स्थानीय शिकारियों द्वारा उसके शिकार किए जाने का दृश्य, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लद्दाख में 15वीं जिला करगिल टाइक्वांडो चैंपियनशिप हुई संपन्न, युवा खिलाड़ियों ने दिखाया अपने जौहर। इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने लिया हिस्सा, 6 क्लबों, स्कूलों और स्पोर्ट्स सेंटरों में के एथलीट्स हुए इसमें शामिल। लद्दाख पुलिस के सहयोग से करगिल टाइक्वांडो एसोसिएशन ने किया इसका आयोजन, नशे को जीवन से रखें दूर, टाइक्वांडो अपनाएं था चैंपियनशिप का मुख्य संदेश।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
0: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
6: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
6: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
9: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था, अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
10: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
11: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
13: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
0: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
24: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
25: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
15: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
16: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
25: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़।
20: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: उत्तराखंड के सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। अयोध्या में झूलन उत्सव के मौके पर श्रीराम बलबा कुंज में शाम से रात तक चला झांकी महोत्सव, देखने को मिले धार्मिक और सांस्कृतिक रंग। केरलम में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, बुधवार को मनाया जाएगा यह जश्न। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का भी पर्व है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। देखिए बाजारों में राखी की जो रौनक है वो देखने लायक है। भाई बहन एक दूसरे के लिए तोहफे चुन रहे हैं, हर घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक और भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या इस ग्रहण का कोई असर पड़ने वाला है।

0: इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों की मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं, भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 28 अगस्त 2026 सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला यह खगोलीय संयोग भी इसे बेहद खास बना रहा है। देखिए, सवाल यह है कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके जहन में भी ये सवाल है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: 28 अगस्त 2026, एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वही ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां

0: पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये सहयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है, सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूँकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा। सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राखी की तारीख तय है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त आखिर कौन सा है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेगी। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त है, ये भी आपको बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है

0: कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
1: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
2: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे। और जिस कामना से हम रक्षा बंधन करने जा रहे हैं, बहने रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्योहार को हम बनाए।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
1: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि, ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है, या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
1: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का, अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती रहे।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है। और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है। और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको सोचने पर हैरान कर देंगे।
10: सच है, चाह और लगन अगर पक्की है तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितनी कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कंधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है।

0: वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, ये बात जानवर और पंछी भी खूब समझते हैं। अब मटके का नहीं नल का जमाना है, सो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लिया है। वैसे ये भी तो नए जमाने के ही हैं, इन्हें नल से पानी निकालना और फिर उसे बंद करना बखूबी आता है। मानना पड़ेगा, मटका हो या नल, कौवे का दिमाग अब भी उतना ही तेज चलता है। आए हाय, अदाएं देखिए इनकी, जींस टॉप और उस पर से काला चश्मा, गजब ढा रही है मैडम। और चाल तो देखिए इनकी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे वलखा रही हैं जैसे रैंप पर उतरी हैं। बच्ची का कॉन्फिडेंस और उसकी क्यूटनेस लोगों का दिल चुरा रही है। सब अपने ख्यालों में व्यस्त हैं और ये पेट पूजा में लगे हैं। देखिए कैसे ठेले पर रखे अंगूर में से एक एक अंगूर निकालकर मजे से मुंह में रख रहा है, मानो थाली में परोस कर मिला है खाने को। और सब कुछ इतने आराम से हो रहा है कि ना तो हाथ थामे उनकी मामा को उनके कारनामे की खबर लगी, ना ही उस दुकानदार को जिसके ठेले से अंगूर खाया जा रहा है। बच्चे की मासूमियत पर लोग मुस्कुरा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में हुआ नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। केरलम में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, बुधवार को मनाया जाएगा ये जश्न, 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष, व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: सावन के फुहारों के बीच में अयोध्या के मठ मंदिरों, फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर भक्तों को दर्शन दे रहे श्री राम और माता जानकी। द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूला, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग, 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाई और पकवानों, 1 क्विंटल फरारी मिक्सचर का लगाया गया भोग। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा आयोजित किया गया, हजारों लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। सावन में जारी कांवड़ यात्रा में दिखा एक अनोखा सा रंग, अपनी 19 बेटियों के साथ बाबा धाम तक कांवड़ यात्रा पर निकला एक पिता।
5: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल, बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और तत्वरित सेवाओं की शुरुआत की। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई गई इको फ्रेंडली राखियां।
7: रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला खास नजारा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूली छात्र हुए शामिल। सीजेआई सूर्यकांत की कलाई पर बांधी राखी। आजमगढ़ में पुलिस और स्थानीय लोगों ने मनाया राखी का त्यौहार। पुलिस प्रशासन ने राखी बंधवाकर दोहराया बहनों की सुरक्षा का संकल्प। महिला संवाद कार्यक्रम भी आयोजित। घनसाली में कलैकू धागू कार्यक्रम। 700 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जुटी। महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया रक्षाबंधन। विधायक शक्तिलाल शाह को बांधी चांदी की राखी। सैलानियों से गुलजार श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील। सुहाने मौसम के बीच में पर्यटक ले रहे शिकारा राइड का मजा। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब। फाइनल में मैक्सिको बेलारूस की जोड़ी को हराया। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेलेंगे एक एग्जीबिशन मैच। माइथोलॉजिकल फिल्म महाकाली का धमाकेदार ट्रेलर आउट। शुक्राचार्य के रूप में एक्टर अक्षय खन्ना का दिखा रौद्र रूप। एक्टर इमरान हाशमी की गनमास्टर Z9 का टीजर आज होगा जारी। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की द वन का भी टीजर आज होगा और 25 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की 2024 की चौथी फिल्म सामु की शूटिंग। इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर।
8: बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो गए हैं शुरू। 16 देशों के 2056 रोबोट 51 मुकाबलों में अपनी ताकत और हुनर दिखा रहे। इन खेलों में रोबोट दौड़ने वजन उठाने जैसी चुनौतियों में हिस्सा ले रहे रोबोट इंसानों के कितने काम आ सकते हैं इस प्रतियोगिता का ये मकसद है। चीन के बीजिंग में यीमा कान लोक कला की गूंज हिजेन लोक कला पर आधारित नाटक पेश किया गया। लंदन जू में जानवरों का वजन लिया गया इसका मकसद जानवरों की सेहत और ग्रोथ पर नजर रखना। बोलिविया की राजधानी लापा में एल ऑल्टो में हुई भारी बर्फबारी लोग बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
7: अब 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है
8: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
7: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा जारी है। अब तक 2,73,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह।
8: जापान में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार। टोक्यो में हनुमान कथा के बाद बुलेट ट्रेन से ओसाका पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आधुनिकता के बीच में दिखे सनातन संस्कृति के रंग।
7: तो देशभर में रक्षाबंधन से पहले सज गए बाजार। सहारनपुर में 15,000 नए डिजाइन बने आकर्षण का केंद्र। कपल राखी से लेकर अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड।
8: दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश के साथ दिन की शुरुआत। उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। तापमान में कमी दर्ज की गई। आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट।
7: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट में विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ते ही दिखाया जय जवान जय किसान का टैटू। लोगों में चर्चा का रहा विषय। सेलिब्रेशन कर सबका जीता दिन।

0: और चलिए लंच टाइम है आज। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे आस्था के सफर पर और बात करेंगे उस सफर की जो कदम कदम पर मौसम की दुश्वारियों से भरा है। हम बात कर रहे हैं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की, जहां इन दिनों आस्था का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस साल अब तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेक चुके हैं, जबकि इस यात्रा के खत्म होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त भी बचा है।
1: तो 23 मई से शुरू हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, लिहाजा हेमकुंड साहिब की यात्रा को इसके अत्यधिक कठिन भौगोलिक परिवेश, अत्यधिक ऊंचाई और कठिन मौसम के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है।
0: और देखिए, इस यात्रा के बारे में आपको बताएं तो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान ठंडा बर्फीला मौसम उनका कड़ा इम्तिहान लेता है, लेकिन हर चुनौती पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ती है। ये रिकॉर्ड दर्शन इसी अनंत आस्था का सबूत माना गया है।

0: ऊंचे पहाड़, चुनौतियों से भरा मौसम और कुदरत की खूबसूरती से सजा हेमकुंड साहिब तीर्थ। हिमालय की चोटियों में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिखों के इस पवित्र गुरुद्वारे में इन दिनों आस्था उमड़ रही है। मॉनसून के इस मौसम में पहाड़ों के ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है। यहाँ मौसम किसी भी वक्त करवट ले लेता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद मौसम खुल भी जाता है। रुक रुक कर हो रही बारिश से हेमकुंड साहिब में पारा भी लुढ़कने लगा है। लेकिन मौसम की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह ने इस बार हेमकुंड साहिब में आस्था का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। अभी तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक चुके हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहा है। गुरुद्वारे में लगातार चल रहे लंगर में गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने के रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रशासन और एजेंसियां भी मुस्तैद है।
1: बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। हम मुंबई से आए हैं और ये ट्रैक वगैरह तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। रास्ता पूरा कोई दिक्कत नहीं आई हमको इतनी दूर आते आते, और ऊपर आके तो ये नजारा कमाल है। और यहाँ सब लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत।
0: हेमकुंड साहिब तीर्थ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस तीर्थ स्थल के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद से चमोली में मौसम कई बार करवट ले चुका है। यात्रा शुरू होते समय जमकर बर्फबारी हो रही थी और अब लगातार हो रही बारिश रोज नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऊंचे पहाड़ों पर होने की वजह से इस तीर्थ स्थल पर कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी परेशानी होती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुरुद्वारे में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थयात्रियों की आस्था मौसम की दुश्वारियों पर भारी पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा कैसे चुनौतियों से भरी है, यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: आस्था का एक ऐसा मार्ग जहां पल पल पर कुदरत भक्तों का इम्तिहान लेती है, जहां कदम कदम पर श्रद्धालुओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन ना तो आस्थावानों का जोश कम होता है और ना ही हौसला। 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद ये यात्रा है श्री हेमकुंड साहिब की, सिख समुदाय का बेहद पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल, जहां पहुंचना तीर्थयात्रियों के लिए किसी तपस्या से कम नहीं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान उनके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा चलती रहती है। अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, खड़ी चढ़ाई, कठिन ट्रैक, अनिश्चित और ठंडा बर्फीला मौसम तीर्थयात्रियों का हमेशा इम्तिहान लेता रहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 15,225 फीट यानी 4,634 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। हेमकुंड साहिब की यात्रा हर साल मई से अक्टूबर के बीच में होती है। जब बर्फ कुछ हद तक कम होती है, तब भी मई के महीने में 10 से 12 फुट तक बर्फ होती है। हालांकि बाद के महीनों में बर्फ कम हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत मिलती है। अक्टूबर से मई तक यहां बर्फ का साम्राज्य होता है, इसलिए उन दिनों यात्रा बंद रहती है। यात्रा का पहला चरण गोविंद घाट से शुरू होकर बेस कैंप गांघरिया तक जाता है, जो काफी लंबा और थका देने वाला है। इस दौरान श्रद्धालुओं को 13 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। घांघरिया से हेमकुंड साहिब की 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है। तीर्थयात्रियों की असली चुनौती घांघरिया से ही शुरू होती है। वैसे तो ये केवल 6 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई है। इसमें पत्थरों से बने संकरे रास्ते और लगातार चढ़ते रहने वाले घुमावदार मोड़ है। अत्यधिक ऊंचाई की वजह से हवा का दबाव कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा काफी घट जाती है। अचानक इतनी ऊंचाई पर पहुंचने से यात्रियों को सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मौसम मिनटों में बदल जाता है। तेज धूप के बीच अचानक बारिश, तेज बर्फीली हवाएं या घना कोहरा छा जाता है। हेमकुंड साहिब में अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी को भी रात में वहां रुकने की अनुमति नहीं होती। सभी यात्रियों को एक ही दिन में दर्शन करके वापस नीचे घांघरिया बेस कैंप लौटना पड़ता है। यानी एक ही दिन में 6 किलोमीटर चढ़ना और 6 किलोमीटर उतरना शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। इतनी मुश्किल यात्रा के बावजूद तीर्थयात्रियों का जोश कम नहीं होता। हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान उनके लिए डंडी कंडी, पालकी, घोड़ा, खच्चर की भी सुविधा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और देखिए, हेमकुंड साहिब सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसकी मान्यता सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ती है। इसका जिक्र खुद गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलता है। हालांकि आधुनिक युग में इसकी खोज सैकड़ों सालों बाद हुई। गुरुद्वारे के पास एक अमृत सरोवर है, जिसकी मान्यता भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से भी जुड़ी हुई है।
2: श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जितनी कठिन और मुश्किल भरी है, उतनी ही आस्थावानों से भरी है। रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जोश इस मुश्किल को मानो आसान बना रहा है। श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। इसकी मान्यता सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्व जन्म के तप और इस पवित्र स्थान की खोज से जुड़ी है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई वर्षों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक पे इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा है, जिसके बाद दो सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह अपने अस्तित्व में आई थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वही ये गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में इस जगह की भौगोलिक पहचान बताते हुए लिखा, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। इसका अर्थ है कि वो स्थान हेमकुंड पर्वत है जो सात बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। इसी संकेत के आधार पर भविष्य में इस पवित्र स्थान को ढूंढा गया। यहाँ पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। ये स्थान हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई पर छिपा हुआ था, इसलिए सदियों तक किसी को इसके सटीक स्थान की जानकारी नहीं मिली थी। इससे पहले 19वीं सदी के अंत में सिख विद्वान भाई संतोख सिंह ने इस स्थान की खोज शुरू की। इसके बाद भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार और परम भक्त संत सोहन सिंह जी ने इस स्थान को ढूंढने का संकल्प लिया। खोज करते हुए वो लोकपाल झील के पास पहुँचे, जिसे स्थानीय लोग लक्ष्मण मंदिर के कारण पूजते थे। जब उन्होंने देखा कि ये झील हूबहू सात पहाड़ियों से घिरी है, तो उन्हें यकीन हो चला कि यही गुरु महाराज की तप स्थली है। उन्होंने बाबा मोदन सिंह जी के साथ मिलकर इस स्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि की। 1937 में यहां पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया और एक छोटे से गुरुद्वारे का निर्माण शुरू हुआ, जो एक भव्य और विशाल गुरुद्वारे का रूप अब ले चुका है। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या हिम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में नहाते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने तक बर्फ से ही ढका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब बात उत्तराखंड की प्राचीन हिल यात्रा उत्सव की कर लेते हैं। पिथौरागढ़ के सोरघाटी के कुमौड़ गांव में आस्था, विश्वास और संस्कृति का प्रतीक हिल यात्रा पर्व का धूमधाम से आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने हिल यात्रा पर्व में शिरकत कर आशीर्वाद लिया। भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है। दिल को रोमांचित करने वाले ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व के रंग आइए आपको दिखाते हैं।

0: उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हिल जात्रा उत्सव। अलग अलग तरह के मुखौटों से सजा सोर घाटी। सोर घाटी की ऐतिहासिक कुमौड़ हिल यात्रा का आयोजन आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुआ है। कुमौड़ के मैदान में जब लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों से बांधकर लाया गया तो हजारों लोग उस पल के गवाह बने। ये परंपरा ही हिल यात्रा की सबसे खास पहचान भी है।
1: सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर।
2: पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल। तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: काला परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए लखिया भूत का जब मैदान में प्रवेश होता है तो भक्त उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
3: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है।
0: माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है।
4: इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी, और इस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था, और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेत में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज का चित्रण होता है। हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हौल, नेपाली हौल, बड़ी हौल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरी की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है। समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज़ टुडे।
5: चलिए जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह उमंग के साथ जारी है। यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश और आस्था लगातार बरकरार है। जहां पुंछ में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से शानदार इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पूरा इलाका भोले की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। और मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां अपने पूरे शबाब पर हैं। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पंडाल सज चुके हैं। मुंबई की सड़कों और गलियों में गूंजते ढोल नगाड़े के बीच बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहां भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन के साथ मंगल मूर्ति की भव्य सवारियां पंडाल की ओर बढ़ चली हैं। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ढोल ताशों की गूंज, नगाड़ों की आवाज, और गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष।
1: गणपति बाप्पा मोरया।
0: आजकल मुंबई की सड़कों पर भक्ति का ऐसा ही नजारा है। भले ही गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन यहाँ की फिजाओं में उत्सव के रंग चढ़ने लगे हैं। गणेश प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान साथ पंडालों की ओर ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या युवा, हर कोई गजानंद के स्वागत में नतमस्तक है। और हो भी क्यों ना, आखिर साल भर के इंतजार के बाद तब कहीं ये पावन मौका आता है जब भक्त अपने आराध्य से मन की मुराद कहेंगे। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है तो कोई ढोल की थाप पर झूम रहा है। मुंबई की पहचान बन चुका गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये शहर की एकजुटता, संस्कृति और सामुदायिक उत्साह की भी सुनहरी तस्वीर पेश करता है। सालों से चली आ रही इसी परंपरा की कड़ी में भक्त और उल्लास के साथ काल चौकी के राजा की भव्य सवारी भी पंडाल की ओर निकली। भव्यता ऐसी कि नजरें ठहर जाए। गजानंद की मनमोहक प्रतिमा, चेहरे पर दिव्य तेज, सिर पर सजा भव्य मुकुट और आभूषणों की चमक, बाप्पा के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की निगाहें बस अपने आराध्य पर टिकी है। किसी के हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए तो कोई बाप्पा के दिव्य दर्शन को मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सजने वाले गणेश पंडालों में आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं। बात कहें कामराज नगरचा महाराज के स्वागत के लिए उमड़े भक्तों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी।
2: जब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति बप्पा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है। हम सब में गणपति बप्पा है और हम हमेशा गणपति बप्पा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 तारीख, 23 साल हो गए और ये आगमन गढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: बापा के आगमन के साथ ही मुंबई की रफ्तार में भक्ति का रंग घुल जाता है। पंडालों में तैयारियां तेज हैं, बाजारों में रौनक है और भक्तों के बीच बापा के स्वागत को लेकर जोश हाई है। गणेश प्रतिमाओं को पूरे भक्ति भाव के साथ उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब बस वो घड़ी आने वाली है जब बापा का दरबार सजेगा और भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, सावन के पवित्र महीने में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से लाखों कांवड़िये गंगा जल लेकर देवघर की तरफ रवाना हो चुके हैं। बोलबम के जयकारों से पूरा कांवड़िया पथ शिवमय हो गया है। इसी बीच झारखंड के गोड्डा के रहने वाले संजीव कुमार 19 बेटियों के साथ बाबा बैजनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस टोली में कई बेटियां ऐसी हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं और छोटी छोटी बच्चियों से लेकर युवा बेटियां भी बाबा के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। संजीव पिछले 40 सालों से लगातार सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा और तपती धूप के बावजूद बेटियों के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि महादेव की भक्ति नजर आती है।
4: आज मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार का विशेष महत्व होता है। आज इस साल का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत है। बिहार के गया जी में स्थित मां मंगला गौरी मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां सावन में विशेषकर हर मंगलवार को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। मां मंगला गौरी की महिमा के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
0: बिहार के गया जी का वो प्राचीन मंदिर जो मां सती को समर्पित है। मंगला गौरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर न केवल 51 शक्ति पीठ में बल्कि 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है। मंगला गौरी पहाड़ी यानी भस्माकूट पहाड़ी पर स्थित इस मां मंगला गौरी मंदिर को पालन पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में मां मंगला गौरी के मंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक इस मंदिर की मान्यताओं को लेकर माता के दर्शन के लिए यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेषकर सावन मास में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन मास में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत माता पार्वती यानी मां गौरी को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं, तो लड़कियां मनचाहा और योग्य वर पाने के लिए ये पूजा करती हैं। सावन में लगातार चार मंगलवार माँ मंगला गौरी व्रत रखने और माँ गौरी की आराधना से मंगल दोष के प्रभाव कम होने की मान्यता है। इसीलिए इस मंदिर में सावन मास में हर मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ माता की आराधना से मंगल ग्रह से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों को लाभ मिलता है।
5: कि इस स्वरूप में जगदम्बा अत्यंत मंगलकारी स्वरूप धारण करती हैं, जो कि शक्तिपीठ यहाँ माँ मंगला गौरी उनके मंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस पावन घड़ी में श्रावण मास के इस विशेष मंगलवार में माता की आराधना प्रारंभ होती है। चूंकि यह मास चातुष्य मास वर्ण की व्यवस्था के अंतर्गत यह मंगलकारी माह से प्रारंभ होता है और इसी दौरान शिव शक्ति दोनों एक शक्ति के समान है, तो प्रथम मंगलवार से लेकर अंतिम मंगलवार यानी चार मंगलवार तक माँ भगवती के मंगला गौरी व्रत की वर्णन कई पुराणों में मिलती है।
0: विवाह की इच्छा रखने वाले युवक और युवतियाँ भी माँ मंगला गौरी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आती है या विवाह देरी से होती है, उन्हें यहाँ पूजा करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा आर्थिक समस्या, क्रोध और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलने की भी मान्यता है।
5: मंगल हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रभावशाली और बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जिनकी आराधना श्रेष्ठ है उनके इष्ट देवी यानी माता मंगला आदि जगदम्बा की पूजा करने से और इस विशेष व्रत से अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन हमारे जीवन में पड़ता है। विशेष रूप से इनकी साधना से विवाह की समस्या दूर होती है, आर्थिक लाभ होता है, मन शांति होता है और क्रोध पर नियंत्रण होता है।
0: इस मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। मान्यता के अनुसार ये अखंड ज्योति करीब 6000 वर्ष से जल रही है। इस अखंड ज्योति का भी विशेष महत्व है। अग्नि को शुद्धि और ऊर्जा को प्रतीक माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में भी अग्नि को प्रथम गुरु और देव स्वरूप माना गया है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु अखंड ज्योति के दर्शन कर माँ मंगला गौरी से सुख शांति और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। गया जी से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जापान में बाबा बागेश्वर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त।
8: उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद।
7: केरलम में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, बुधवार को मनाया जाएगा जश्न, 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम।
8: आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना।
7: गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा संदेश।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
8: खबरें के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों जापान यात्रा पर हैं। टोक्यो में कथा के बाद बाबा बागेश्वर ने जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन का सफर किया। टोक्यो से ओसाका तक का ये सफर बाबा के लिए बेहद खास अनुभव वाला रहा। जापान की रफ्तार और आधुनिक तकनीक के बीच बाबा बागेश्वर का ये आध्यात्मिक अंदाज खूब चर्चा में है।

0: कथा के मंच से लेकर जापान की हाई स्पीड ट्रेन तक पैरों में खड़ा हूं माथे पर तिलक अपने तरह का खास कुर्ता और धोती पहने बाबा बागेश्वर इन दिनों जापान के प्रवास पर है। टोक्यो में भगवत कथा पूरी करने के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जापान के विकास की रफ्तार का अनुभव किया। बुलेट ट्रेन में सवार होकर बाबा बागेश्वर जब टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुए तो उगते हुए सूरज का देश कहे जाने वाले जापान में अध्यात्म के साथ आधुनिकता का अनोखा संगम नजर आया। बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, रफ्तार पकड़ती है और कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म पीछे छूट जाता है। टोक्यो से ओसाका के बीच इस सफर में एक तरफ जापान की तेज रफ्तार जिंदगी तो दूसरी ओर भारतीय संत का सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया। दुनिया में जापान की पहचान बन चुकी बुलेट ट्रेन में बाबा बागेश्वर का ये सफर अपने आप में खास रहा और उन्होंने जापान की इस आधुनिक तकनीक को करीब से महसूस किया। व्यासपीठ से जहां एक ओर बाबा बागेश्वर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की बातें करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जापान की तकनीक और अनुशासन को भी करीब से जाना।
1: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए और हाँ अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
0: जापान ने जिस तरह तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पल भर में हवा से बातें करती हाई स्पीड ट्रेन में बाबा के सफर की तस्वीर अध्यात्म और आधुनिकता को एक ही कैनवस में संजोए हुए है। जापान की धरती पर एक ओर सनातन के संदेश की गूंज है तो दूसरी तरफ तकनीक और कौशल का बेजोड़ नमूना। कथा के मंच से बुलेट ट्रेन तक बाबा बागेश्वर की यात्रा में एक अलग ही रंग नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए कुछ और तस्वीरें इसी यात्रा से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। जापान पहुंचने पर बाबा बागेश्वर ने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। बुलेट ट्रेन में सवार होकर बाबा बागेश्वर टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुए। उगते हुए सूरज का देश कहे जाने वाले जापान में आध्यात्म और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला। टोक्यो से ओसाका के बीच इस सफर में एक तरफ जापान की तेज

पहला अवसर है जब इतना भव्य हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। बाबा बागेश्वर के कथा वाचन को सुनने भारी मात्रा में यहां भक्त पहुंचे। देखिए, जापान में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं की खूबसूरत तस्वीर यहां देखने को मिली। टोक्यो ओसाका में आयोजित सनातन संगम कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां प्रवासी भारतीय परिवारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खास बात यह रही कि छोटी छोटी बच्चियों ने बाबा बागेश्वर को राखियां बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। राखी के इस पवित्र मौके पर भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान की धरती पर भाई बहन के स्नेह और भारतीय संस्कारों की झलक दिखाई दी। बच्चियों के इस प्रेम और अपनेपन ने माहौल को भावुक कर दिया। वहीं बाबा बागेश्वर ने सभी बच्चियों को आशीर्वाद दिया। विदेश में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और संस्कारों का ये संगम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। अट्ठाईस अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन है। इसको लेकर देश में हर तरफ रौनक दिख रही है। पारंपरिक से लेकर स्टाइलिश राखियों से बाजार गुलजार है, तो इको फ्रेंडली राखी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं, तो देश की रक्षा में तैनात जवानों को राखी भेजने का सिलसिला भी चल रहा है।

0: भाई बहन के रिश्ते का त्योहार और बाजार में एक से बढ़कर एक राखियों की भरमार। दुकानें राखियों से सजी हुई है तो जगह जगह राखी बनाई भी जा रही है। इन सब के साथ साथ राखी भेजने का सिलसिला भी चल रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें बहनों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। यूपी के सहारनपुर की इस दुकान में राखियों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है, जिसकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, स्टोन, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर समेत अलग अलग डिजाइन वाली राखियाँ सजी हुई हैं। इस बार कपल राखी, फैमिली पैक और अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा म्यूजिक, लाइट, टॉय और ब्रेसलेट वाली राखियां समेत करीब 15,000 डिजाइन बाजार में मौजूद हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अपनी पसंद की राखियां भी खरीदती नजर आ रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है। जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नाग वाली राखी खूब पसंद की जा रही है, जिनकी कीमत 300 रुपए से 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजार में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। इसके अलावा जगह जगह अलग अलग तरह की राखियां बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड में माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं रक्षाबंधन को लेकर प्रकृति संरक्षण से जुड़ी पहल कर रही हैं। ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षित पारंपरिक राखी बना रही हैं।
2: हिमालय क्षेत्र से ये ब्रह्म कमल पुष्प लाया हुआ है, साथ में है केदार पाती और इसी के साथ ये है भोजपत्र। तो हम इन चीजों से प्राकृतिक राखियां बना रहे हैं और साथ में अपनी आजीविका को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं।
0: वहीं गुजरात के सूरत में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ सेवकों ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अनोखी पहल की है। यहां के माधव गौशाला में प्राकृतिक चीजों से राखी बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया गया है। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जिसे कलाई से हटाने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही मिट्टी में मिलने पर ये खाद का काम भी करेगी।
3: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: गोबर से राखी बनाने के पीछे गौ भक्तों का उद्देश्य

0: गौ माता से जुड़ने का संदेश देना भी है। राखी बनाई भी जा रही है और राखी भेजी भी जा रही है। राजस्थान के पाली में स्थित इस मुख्य डाकघर की तस्वीर देखिए। यहाँ डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान के तहत इन दिनों खास तौर से स्कूली बच्चों की लाइन लगी नजर आती है। ये बच्चे सीमा पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेजने यहां पहुंच रहे हैं और अब तक 25,000 से ज्यादा राखियां यहां से भेजी जा चुकी है।
1: भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
2: जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: यहाँ आने वाले बच्चों को डाक विभाग के अभियान और रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, सूरत से संजय सिंह राठौर और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सूरत में इस रक्षाबंधन का कुछ ऐसा रंग देखने को मिल रहा है जो भाई बहन के रिश्ते के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। जहां गौशालाओं और सामाजिक संगठनों की टीमें गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं, तो इन राखियों में प्राकृतिक रंग और सूती धागों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन राखियों को बनाने में गोबर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस्तेमाल के बाद ये राखियां मिट्टी में घुलकर जैविक खाद का काम करेंगी। सूरत की यह पहल त्यौहार को पर्यावरण से जोड़ने की एक अनोखी कोशिश के रूप में देखी जा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए अब बात करते हैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की, जो हर रविवार को अपने फैंस से मिलने जलसा से बाहर आते हैं। अमिताभ बच्चन का दीदार करने हर रविवार को सैकड़ों की संख्या में उनके घर के बाहर जलसा के बाहर फैंस आते हैं। अमिताभ भी सभी फैंस से मुलाकात करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। इसे रविवार दर्शन कहा जाता है। एक दिन पहले 24 अगस्त को अमिताभ बच्चन ने इस रविवार दर्शन की झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अद्भुत स्नेह जिसे मैं देखकर अभिभूत हर संडे को होता हूं, निशब्द। इस वीडियो में दिखता है कि जलसा के बाहर फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं, कोई उन्हें गाना गाकर पुकारता है तो कोई उनका नाम लेकर आवाज देता है। इसी बीच अमिताभ बच्चन अपने सफेद कुर्ता और शॉल ओढ़े जलसे से बाहर दिखाई देते हैं। पहले मंदिर में शिव पर जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और फिर ट्रॉली में सवार होकर मेन गेट तक आते हैं। हर फैन की तरफ अभिभूत होकर देखते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। आमतौर पर फैशन शो का नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत मॉडल्स और रैंप वॉक की तस्वीर सामने आती है, लेकिन नागपुर में हुए एक अनोखे फैशन शो ने इस सोच को ही बदल कर रख दिया। यहां रैंप पर मॉडल्स नहीं बल्कि 65 से 80 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स ने अपना जलवा बिखेरा। उम्र को पीछे छोड़ते हुए इन बुजुर्गों ने पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ रैंप पर वॉक किया। नागपुर के इस फैशन शो में सिर्फ कपड़े और स्टाइल ही खास नहीं थे बल्कि इन सीनियर सिटीजन्स का आत्मविश्वास और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 65 से 80 साल की उम्र के प्रतिभागियों ने जिस एनर्जी के साथ रैंप पर कदम रखा, इसे देखकर हर कोई तालियां बजाने को मजबूर हो गया।
2: आमतौर पर रैंप पर मॉडल्स की कैटवॉक आपने खूब देखी होगी, लेकिन नागपुर में जब रैंप पर ये चेहरे उतरे तो नजारा ही कुछ अलग था। किसी की चाल में ठहराव था तो किसी के अंदाज में गजब की शरारत। किसी ने अपने जमाने का स्टाइल लेकर रैंप पर एंट्री मारी तो किसी ने ओल्ड फैशन से न्यू फैशन का दामन थाम लिया। 65 से 80 साल की उम्र, लेकिन जोश ऐसा कि अच्छे अच्छे मॉडल्स को मात दे दें। तो किसी ने रेट्रो लुक के साथ पुराने दौर की यादें ताजा कर दी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने स्टाइलिश और फंकी अंदाज में बता दिया कि फैशन की कोई उम्र नहीं होती।
3: ये रैंप में आने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसा लगा कि हम बचपन में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम बहुत ही खुश रहे, जैसी प्रेरणा मिली हम लोगों को स्टूडी के पैकिंग से, तो हमने तुरंत सोच लिया कि हम यहाँ पे आएंगे और अपना परफॉर्मेंस, अपना एज भूल के सब अच्छे से काम करेंगे।
4: हम लोग यहाँ पे बुढ़ापे में जवानी हमारे अंदर आ गई है और बड़ा ही आनंद आ रहा है और सभी एक एक से भर के एक पार्टिसिपेंट है।
2: नागपुर में हुए सेकंड इनिंग सीनियर सिटीजन फैशन शो में जैसे ही ये सीनियर सिटीजन रैंप पर पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। किसी ने अपनी चाल से दिल जीता, किसी ने अपनी मुस्कान से और किसी ने अपनी अदाओं से। ये सिर्फ फैशन शो नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ एक खूबसूरत जवाब था जो मानती है कि उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ हर कदम कह रहा था उम्र बढ़ सकती है, लेकिन स्टाइल, आत्मविश्वास और जिंदगी जीने का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। नागपुर से योगेश वसंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ जगहों पर ये बारिश मुसीबत का सबब भी बन रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। एसडीआरएफ ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया। उत्तरकाशी में भी एसडीआरएफ के जवान की मुस्तैदी की वजह से एक युवक की जान बच गई। देखिए रिपोर्ट।

0: आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और गाड़ियाबंद में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव और कस्बों समेत शहरों के भी कुछ रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गाड़ियाबंद में हालात बाढ़ जैसे हैं। गाड़ियाबंद जिले के देवभोग में बारिश की ये चुनौती चार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। पिछले दो दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बेतहाशा बारिश से तेल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी में तेज बहाव की वजह से टिकरापारा नाला में चार लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस और एसडीआरएफ को दी तो एसडीआरएफ ने फौरन रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। शाम ढलने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल भी हो गया। सबसे पहले एसडीआरएफ का एक जवान एक रस्सी के सहारे पानी में फंसे चार लोगों तक पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों को रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। जिन्हें खुद इस पानी से निकलने में दिक्कत हुई उन्हें एसडीआरएफ के जवान ने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में नदियों का तेज बहाव चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उत्तरकाशी के खदारी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। इस युवक को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचा और उसी रस्सी के सहारे उस युवक को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू के बाद युवक को उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया। बारिश के इस मौसम में कई बार नदियों का तेज बहाव लोगों के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से साफ कर दिया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं होता। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ओडिशा की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ के जाजपुर में बीती रात मूसलाधार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव की चपेट में एक कार आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार एक जगह से बहती हुई दूसरी जगह पहुंच गई। गनीमत यह रही कि उस दौरान कार में कोई सवार नहीं था, लिहाजा किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। लोगों ने सूचना फायर सर्विस स्टेशन को दी। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया।
2: और इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
1: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल जात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। केरल में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, बुधवार को मनाया जाएगा जश्न, 10 दिन तक चलने वाला ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम। आज सावन महीने का अंतिम मंगलवार, मंगला गौरी व्रत के साथ बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना। गुजरात के सूरत में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सीकर में धूमधाम से संपन्न हुआ झूलन महोत्सव, 6 दिनों से जारी था सावन के माह में भव्य उत्सव। खास अंदाज में हुआ नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, रंग बिरंगे फूलों से हुई मनमोहक सजावट। अमरनाथ की झांकी के रूप में भव्य तरीके से सजाई गई श्री ठाकुर जी की प्रतिमा, रात को राधा कृष्ण को पालने पर भक्तिभाव से झूले पर झुलाया गया। बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त, शहर भर के मंदिरों में विशेष कीर्तन पूजन का आयोजन। पूरे मंदिर परिसर को रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया, दूधिया रंग से रोशनी से नहाया नजर आया मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर ठाकुर जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूला, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारे से मंदिर गूंज उठा। ठाकुर जी के हिंडोले के दर्शन शाम 5:10 से शाम 5:40 तक हुए। भगवान को झूला झूलते देख भक्त भक्ति में डूबे नजर आए। द्वारकाधीश मंदिर में शाम 7 से 8 बजे तक ठाकुर जी की खास घटा सजाई जाएगी। सावन में हर दिन अलग रंग की घटा के साथ मंदिर का नजारा भी बदल रहा है। ब्रिज के मंदिरों में सावन के साथ झूलन उत्सव का रंग चढ़ गया। राधा रानी और ठाकुर जी को झूला झुलाने की अलग अलग मंदिरों में खास परंपरा है। मंदिर में मल्हार के गीत, रोशनी और झूले ने भक्ति का माहौल बना दिया। भगवान के झूले के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। सावन की बुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिर फूल और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़े थिंडोले पर भक्तों को दर्शन दे रहे श्रीराम और माता जानकी। अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में जारी आस्था का उत्सव, शाम होते ही मंदिरों में भजन कीर्तन और नृत्य की प्रस्तुति से वातावरण भक्तिमय। मध्यप्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग। 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाइयां पकवान और 1 क्विंटल फरारी मिक्सचर का लगाया गया भोग। ढोल डमरू और झालर की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की हुई महाआरती, आरती में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। सावन के इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को फूल मालाओं, झालरों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया, रोशनी से जगमगा उठा पूरा मंदिर परिसर। सावन में जारी कावड़ यात्रा में दिखा एक अनोखा रंग, अपनी 19 बेटियों के साथ बाबा धाम तक कावड़ यात्रा पर निकला एक पिता। हर साल कावड़ यात्रा करते हैं झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले संजीव कुमार, पिछले 40 वर्षों से लगातार कर रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम की पैदल यात्रा। पिछले 10 सालों से लगातार अपनी बेटियों के साथ शुरू की है 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा, युवा पीढ़ी से सनातन और संस्कृति से जुड़ने की अपील। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा आयोजित, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। उत्तर भारत के प्रमुख मुखौटा पर्व में एक है उत्तराखंड का प्रमुख कृषि पर्व हिल यात्रा, लखिया को माना जाता है वीरभद्र का अवतार। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल, बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और त्वरित सेवाओं की शुरुआत की। मात्र 10 रुपए है इन विशेष वाटरप्रूफ लिफाफों की कीमत, ताकि बारिश के मौसम में राखियां गीली ना हो और सुरक्षित रूप से देश विदेश में भाइयों तक पहुंच सके। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई गई इको फ्रेंडली राखियां। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ 100% इको फ्रेंडली है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना इनका मकसद। इन राखियों को इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में डालने पर इनसे प्राकृतिक रूप से तैयार किया जा सकता है खाद, स्वदेशी उत्पादों को भी इससे मिलेगा बढ़ावा। रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला खास नजारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूली छात्र हुए शामिल। सीजेआई सूर्यकांत की कलाई पर बांधी राखी। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों के साथ किया संवाद, बच्चों को बांटे तोहफे। रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह आयोजित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, बच्चों के साथ संवाद भी किया। रक्षाबंधन पर पुलिस प्रशासन ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने हर शिकायत का जल्द समाधान करने और सुरक्षा का भरोसा दिया। राखी बंधवाकर पुलिस प्रशासन ने बहनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सुरक्षा के उपाय बताए गए। घनसाली में कलह कूद हागू कार्यक्रम, 700 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुटी। महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया रक्षाबंधन। विधायक शक्तिलाल शाह को बांधी चांदी की राखी। हापा नाहर लगुन स्पेशल ट्रेन अब 23 सितंबर से नियमित चलेगी। बिहार यूपी के यात्रियों को इस सफर में बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन हर बुधवार हापा से और हर शनिवार नाहर लगुन से चलेगी। छपरा, हाजीपुर, बरौनी और कटिहार समेत कई स्टेशन पर इसका होगा ठहरा। भाई बहन की अनोखी जोड़ी। बहन ने पजल में रिकॉर्ड बनाया तो भाई ने देश के झंडे पहचानने में कमाल कर दिखाया। 4 साल की उम्र में गिरीश ने सिर्फ 7 मिनट 26 सेकंड में 75 पीस का वर्ल्ड मैप पजल पूरा कर बनाया रिकॉर्ड। गिरीशा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। गिरीशा के भाई नमिश ने महज 6 साल की उम्र में दुनिया के सभी देशों के झंडे पहचान कर बनाया रिकॉर्ड। सिर्फ 4 मिनट 39 सेकंड में झंडे को पहचान कर बताए नाम। हरियाणा को मुंबई से मिला 66,000 करोड़ का निवेश। एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। सीएम नायब सैनी ने निवेशकों को दी 5 गारंटी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना और हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बाबा बागेश्वर ने जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन में किया सफर। आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक ट्रेन से टोक्यो से ओसाका की यात्रा की गई। टोक्यो की कथा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर ओसाका के लिए रवाना हुए। उनकी जापान यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। जापान दौरे के दौरान बच्चों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बांधी राखी। इस भावुक पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई सामने। जापान में भारतीय परिवारों के साथ बाबा बागेश्वर की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। एक वीडियो में वो बच्चों के साथ प्यार और अपनापन दिखाते नजर आए। टोक्यो कार्यक्रम में कथा के साथ सनातन संवाद भी रखा गया, जिसमें भारतीय संस्कृति और धर्म की बात हुई। कार्यक्रम में जापान में रहने वाले भारतीयों की भी बड़ी मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएफएस के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनी से बातचीत की। युवा राजकीयों से तकनीक, निवेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने को कहा। योगी सरकार ने स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड किया मंजूर। 3,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए 604 करोड़ का बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों के बांटे गए नियुक्ति पत्र। लखनऊ में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। राजस्थान के स्कूल में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। विद्या संबल योजना के तहत रखे जाएंगे 76,000 टीचर। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड। हाइजीन मानकों में खामियां मिली। सावन में पवित्र हरिद्वार को मिली एक खास पहचान। ओम पुल के पास विराजे 21 फीट ऊंचे महादेव। भव्य सफेद रंग की महादेव की भव्य और विशाल प्रतिमा। जटाओं से नील रही है गंगा की धार। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया लोकार्पण। झारखंड के हजारीबाग में आज जनजातीय गौरव उत्सव का भव्य समापन। राज्यपाल संतोष गंगवार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने महिला उद्यमियों से किया संवाद। उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की सराहना करते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए दी बधाई। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना इस गौरव उत्सव का मकसद। जनजातीय कला एवं स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने पर भी विशेष जोर। केरल के पथानम थिट्टा में ओणम समारोह। इस दौरान बच्चों ने पारंपरिक पुलिकली लोक कला को किया पुनर्जीवित। पुलिकली कला में दर्शाया जाता है एक बाघ के गांव में घुसने और स्थानीय शिकारियों द्वारा उसका शिकार किए जाने का दृश्य, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लद्दाख में 15वीं जिला कारगिल टाइकोंडो चैंपियनशिप संपन्न। युवा खिलाड़ियों ने दिखाए अपने जौहर। इस चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ये 6 क्लब स्कूल्स और स्पोर्ट्स सेंटर्स के एथलीट्स इसमें शामिल हुए। लद्दाख पुलिस के सहयोग से कारगिल टाइकोंडो एसोसिएशन ने किया आयोजन। नशे को जीवन से दूर रखें, टाइकोंडो अपनाएं, था चैंपियनशिप का मुख्य संदेश। हिमाचल में लैंडस्लाइड का मंजर आया सामने। चंबा के भरमौर में भरभराकर गिरा पहाड़। बाल बाल बचे लोग सड़क पर मलबा गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ के पानी में बही कार। फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वेलोर के गुड़ियाथम में किसानों की मांग पर मोरथाना बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी, तस्वीरें आई सामने। बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद, दोनों ओर वाहन फंसे। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। दिन भर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के आसार, अलर्ट जारी। सैलानियों से गुजरा श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील। सुहाने मौसम के बीच पर्यटक ले रहे हैं शिकारा राइड का मजा। राजधानी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। उन्होंने सेमीफाइनल्स में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब। फाइनल में मेक्सिको बेलारूस की जोड़ी को हराया। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर। न्यूयॉर्क के आर्थर एच स्टेडियम में खेलेंगे एक एग्जीबिशन मैच। इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9 का टीजर जारी होगा। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना का अहम रोल। इस फिल्म के जरिए करीब 2 दशक बाद बतौर डायरेक्टर आदित्य दत्त, म्यूजिक कंपोजर के रूप में हिमेश रेशमिया और अभिनेता के तौर पर इमरान हाशमी साथ आएंगे नजर। माइथोलॉजिकल फिल्म महाकाली का धमाकेदार ट्रेलर आउट। शुक्राचार्य के रूप में एक्टर अक्षय खन्ना का दिखा रौद्र रूप। पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में देगी दस्तक। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की 2026 की चौथी फिल्म सामो की शूटिंग। इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो गए हैं शुरू। 16 देशों के 2056 रोबोट 51 मुकाबलों में अपनी ताकत और हुनर दिखा रहे हैं। रोबोट इंसानों की तरह दौड़ रहे हैं और कई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। एआई और खास टेक्निक से ये रोबोट खुद रास्ता खोजकर तेज दौड़ सकते हैं। रोबोट से पेचकस चलाने, कील ठोकने और बोतल खोलने जैसे काम भी कराए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में रोबोट घर और काम की जगह पर इंसानों की मदद कर सके। इंसान जैसा काम सीख रहे हैं रोबोट्स। बीन्स को चिमटी से उठाने जैसे काम में रोबोट इंसान की करीब 80-90% सटीकता तक पहुंच रहे हैं। इन खेलों में ब्राजील, इटली समेत कई देशों की टीमें पहुंची हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में चीन ने दुनिया के बाजार में 97% हिस्सेदारी हासिल की है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब नजर ला देते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
7: सच है, चाह और लगन अगर पक्की है तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितनी कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कांधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है।

0: वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, ये बात जानवर और पंछी भी खूब समझते हैं। अब मटके का नहीं नल का जमाना है, सो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लिया है। वैसे ये भी तो नए जमाने के ही हैं, इन्हें नल से पानी निकालना और फिर उसे बंद करना बखूबी आता है। मानना पड़ेगा, मटका हो या नल, कौवे का दिमाग अब भी उतना ही तेज चलता है। आए हाय, अदाएं देखिए इनकी, जींस टॉप और उस पर से काला चश्मा, गजब ढा रही है मैडम। और चाल तो देखिए इनकी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे वलखा रही हैं जैसे रैंप पर उतरी हैं। बच्ची का कॉन्फिडेंस और उसकी क्यूटनेस लोगों का दिल चुरा रही है। सब अपने ख्यालों में व्यस्त हैं और ये पेट पूजा में लगे हैं। देखिए कैसे ठेले पर रखे अंगूर में से एक एक अंगूर निकालकर मजे से मुंह में रख रहा है, मानो थाली में परोस कर मिला है खाने को। और सब कुछ इतने आराम से हो रहा है कि ना तो हाथ थामे उनकी मामा को उनके कारनामे की खबर लगी, ना ही उस दुकानदार को जिसके ठेले से अंगूर खाया जा रहा है। बच्चे की मासूमियत पर लोग मुस्कुरा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। उत्तराखंड की सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा का आयोजन, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। केरलम में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, बुधवार को मनाया जाएगा जश्न, 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स, बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 30 से अधिक देश लेंगे भाग। दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों पर अब से कुछ देर में दिल्ली सरकार की अहम बैठक, सरकारी अस्पतालों में तैयारियों की होगी समीक्षा, टेस्टिंग बेड दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की होगी समीक्षा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। जब तेज धूप होती है ना तो एक सही पेयर ऑफ सनग्लासेस सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि हमारे लुक को भी बना देता है स्टाइलिश। ये जो सनग्लासेस है ना, ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने का जरिया नहीं है बल्कि आजकल तो ये हैं एक फैशन स्टेटमेंट। और देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी, जैसे कि राउंड, रेक्टेंगुलर, ओवल, ओवरसाइज, एविएटर, कैट आई, जो हर फेस टाइप और हर पर्सनालिटी के लिए एक अलग स्टाइल है। तो आज तो सनग्लासेस के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप सनग्लासेस खरीदने जाएं सिर्फ फैशन को ही ना देखें बल्कि यूवी प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ उसका फिट कैसा है आपके चेहरे पर उसे भी जरूर चेक करें। तो चलिए फिर शेयर करेंगे आज आपके साथ ढेर सारी टिप्स स्पेशली सनग्लासेस को लेकर और उसके साथ साथ आई केयर भी। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल पेला।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए आरंभी का होगा गृह प्रवेश, शुरू होगा नया तमाशा, फिर एक बार माधवी करेगी वृंदा पर अत्याचार। सीढ़ियों से गिरेगी दादी, संभालेगी राध्या।
6: जब तुम
5: देव की यादों में तड़पेगी वसुधा।
6: फूल खिलेंगे
5: सीरियल जगधात्री में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार, क्या चैन भी बांधेगी शिवाय को राखी। निहाल का फूटेगा रुचिता पर गुस्सा। और गुड न्यूज देगी ऋतु चौहान, ऋतु और अंकुर करवाएंगे मैटरनिटी फोटोशूट, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही।
3: खूबसूरती ना बाहरी खूबसूरती नहीं होती, ये तो तब होता है जब आपका मन खुश होता है और कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर झलकता है। ऐसे में सनग्लासेस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही है आपका असली औजार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
5: राध्या बनी दादी की रक्षक। फिर लगाया राध्या पर इल्जाम। मुश्किलों में घिरी राध्या। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी को तो बस मौका चाहिए राध्या पर इल्जाम लगाने का, और आज उन्होंने अपना नया पैतरा आजमा लिया। जरा देखिए कैसे वो खिड़की से ताका झाकी कर रही हैं और चीख चीख कर लोगों को बुलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जब उनकी नजर पड़ी प्रथम के आने की, तो देखिए कैसे उन्होंने अपनी नौटंकी शुरू कर दी और सीधा दौड़ते भागते पहुंच गई सीढ़ियों के पास ताकि गिरने का ड्रामा कर सके। लेकिन यहाँ उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि एन मौके पर वहाँ पहुँच गई है राध्या बनकर उनकी रक्षक।

0: दादी तो झूठ मूठ का गिरने का नाटक कर रही थी, लेकिन राध्या और प्रथम दोनों उनके रक्षक बन गए। लेकिन दादी ने मौका नहीं छोड़ा और देखिए कैसे सभी के सामने जो राध्या उनका ख्याल रख रही है उसी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और नाराजगी जता रही है। जैसे ही प्रथम ने सच बताना शुरू किया, दादी की तो डर के मारे हालत खराब हो गई और उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। और देखिए कैसे पल में जो शोला थी वो पल में पिघल गई और सभी के सामने वो राध्या पर प्यार जताने लगी और तो और माफी भी मांगने लगी। खैर वो बीमारी का बहाना कर वहाँ से निकल तो गई और आज उनका षड्यंत्र भी फेल हो गया, लेकिन अगली चाल वो जरूर चलेंगी। वहीं दूसरी ओर आज राध्या अपनी कान की बाली ढूंढते हुए फंस गई है बेड के नीचे और देखिए कैसे प्रथम राध्या की मदद कर रहा है।
1: राध्या, मैं बजरंगबली हूँ क्या?
2: नहीं प्रथम सर, आप तो हमारे लिए हमारे बाहुबली
1: हैं। हाय, अब तो ये बेड उठाना ही पड़ेगा राध्या। रुको।

0: अरे कदम सर उठाइए ना। कदम सर क्या हुआ?
1: राधा दूसरी बार तुम्हें खींच के बाहर निकालना होगा।
0: क्यों?
1: राधा मैंने आज प्रोटीन नहीं खाया ना तो एनर्जी थोड़ी फील हो रहा है। तुम फिक्र मत करो मैं निकालता हूँ तुम्हें।
0: खींचे
1: राधा थोड़ी हेल्प करो। राधा

अब प्रथम ने जैसे तैसे कर राध्या को निकाल तो लिया, लेकिन राध्या गिरने वाली थी, ऐसे में उसे संभाल भी लिया और दोनों के बीच नजदीकियां देखकर दादी दरवाजे पर खड़ी चिढ़ रही है। अब देखना होगा कि दादी कौन सी नई साजिश रचेगी दोनों को अलग करने की। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

डार्क शेड्स, इंटेंस नजरें और थोड़ा सा एटीट्यूड। अगर प्यार का कोई सनग्लासेस वाला लुक होता ना तो उसका नाम होता इश्क जुनूनी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में। आज इनकी कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट जोरदार, क्योंकि कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा होता ही रहता है जो लेकर आता है बदलाव। लेट्स चेक इट आउट।

0: इतना प्यार करते हो, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या जवाब। फूल ले तो आया उनको देने के लिए, गुलाब ले तो आया उनके लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जो खुद में गुलाब है उन्हें गुलाब क्या दूं।
1: ये सब किस खुशी में?
0: आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है ना, कल तुम हमसे बहुत नाराज हो गई थी, तुमने सोचा कि खुद गुलाब एक गुलाब मम्मी दे दे।
2: अब रूहानी को क्या पता कि गुरु मक्खन लगा रहा है, वो उसके साथ अस्पताल जो जाना चाहता है। हालांकि रूहानी ने उसे मना कर दिया, लेकिन गुरु ठहरा जिद्दी। ऐसे में गुरु उसके साथ अस्पताल तो पहुंच गया, लेकिन रूहानी उसने तो अपने अलग ही प्लान बना रखे हैं। वो सच का पता लगाना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे गुरु केबिन के बाहर इंतजार कर रहा है। तो रूहानी केबिन के अंदर जाते ही अपने कपड़े बदल रही है। इतना ही नहीं, उसने तो अपना चेहरा भी ढक लिया। और देखिए कैसे चुपचाप केबिन से बाहर निकल गुरु से दूर भागने की कोशिश की। हालांकि गुरु को शक तो होने लगा, लेकिन इसी बीच गुरु ने उससे अपने कंपाउंडर के बारे में पूछा। ऐसे में रूहानी बातें घुमाकर वहां से निकल भागी और गुरु बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, गुरु अंदर चला गया और देखा कि रूहानी की साड़ी सामने रखी हुई है। ऐसे में गुरु समझ गया कि रूहानी उसे चकमा देकर निकल चुकी है। बस फिर क्या, केबिन से बाहर निकलते ही गुरु ने रूहानी को कॉल लगा लिया, ये जानने के लिए कि आखिर रूहानी है कहाँ।

0: हेलो
1: हॉस्पिटल में तो तुम हो नहीं, इसलिए मैं झूठ की फिर की बात है। बताओ हमें चकमा देकर कहाँ चली गई थी? हम जानते हैं वो घूमगढ़ वाली औरत तुम ही थी ना
0: गुरु। वो मैं जरूरी काम से बाहर आई, क्यों क्या कैसे ये सब मैं भूलकर बताऊं।
1: पगला गई हो तो हम यहाँ काम धंधा छोड़ के तुम्हारी चाकरी में लगे, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, तुम हमसे ही छुप छुपा के निकल गई। सीधा बताओ कहाँ हो तुम, हम अभी आ रहे हैं तुम्हें लेने।
0: गुरु वो मैं

0: रूहानी के अचानक फोन कटने से गुरु बेहद परेशान हो गया है। अब देखना होगा क्या गुरु रूहानी का पता लगा पाएगा और क्या नया दुश्मन गुरु के सामने आ पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: टिश्यू या फिर कपड़े से मत पूछे, ये जो सनग्लासेस केस में माइक्रो फाइबर क्लॉथ आता है ना, उसी से इन्हें वाइप करें, और जब हो सके जब आप उन्हें यूज ना कर रहे हो तो वापस उसके बॉक्स में रख दें ताकि उस पर कोई भी खरोच ना आए। तो बस आप भी अपने साथ साथ रखें अपने सनग्लासेस का ख्याल, और यहाँ रखेंगे हम आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तभी तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये अगली खबर जो जुड़ी है आपकी फेवरेट कहानी से, जहाँ पर फिर आया है एक नया मोड, यानी आपके लिए अनलिमिटेड ड्रामा। कैसे? ऐसे।
2: रुचिता पर फूटा निहाल का गुस्सा। रब बहन को लेकर शुरू हुआ बवाल। जानवी हुई शौक।

0: और रुचिता कहीं जा रहे होते हैं कि पीछे से निहाल आ जाता है और देखिए कैसे रुचिता के बालों से रबर बैंड खींच कर निकालता है, जिससे रुचिता निहाल पर ही गिर जाती है। और फिर निहाल का गुस्सा रुचिता पर फूटता है, वो उसे डांटता है कि उसने ये रबर बैंड आखिर लगाया तो लगाया कैसे।
1: तो कैसे ये रबर बैंड लगा

है रुचिता, निहाल को बता दी है उसने मेरा रबर बैंड क्यों बांधा, लेकिन निहाल रुचिता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो उस पर बरसता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है।

0: असल में निहाल की कुछ यादें हैं जो इस रबर बैंड से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इतना भड़क गया है। खैर, तभी वहाँ पर नानी पहुँचती है जो रुचिता पर ही इन सब का इल्जाम लगा देती है।
1: ने कुछ भी नहीं किया, निहाल जी तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे थे।
2: मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसे थोड़ी कोई गुस्सा हो जाएगा। क्या किया तुमने बोल?
1: सोचता नहीं कुछ किया।
0: शादी की रस्मों की ये तो बस शुरुआत है और ड्रामों की भी अभी तो और रस्में होने बाकी हैं और सच के खुलासे होने बाकी हैं।
3: पूनम जी, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए क्योंकि मुहूर्त जो है 2 दिन के बाद का ही है। ऐसे मैंने अभी तक मेरी समधन की तस्वीर भी नहीं देखी, जरा दिखाना।
4: वैसे रस्म के हिसाब से लड़के की उतरी हल्दी लड़की को लगाई जाएगी और लड़की की उतरी हल्दी लड़के को लगाई जाएगी ताकि दोनों एक ही हल्दी के रंग में रंग जाएं।
0: तो हो जाइए तैयार शादी में ढेर सारे तमाशे देखने के लिए और ये भी देखने के लिए कि आखिरकार निहाल की जोड़ी किससे बनती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आपने एक सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ डेनिम्स पहन रखे हैं, बस उसके साथ आप एविएटर या फिर ओवरसाइज्ड ग्लासेस लगाइए, देखेगा इंस्टेंटली आपका लुक चेंज हो जाएगा, स्टाइलिश एंड ग्लैमरस। देखा, मैं तो शेयर करती हूँ आपके साथ हमेशा अमेजिंग स्टाइलिंग टिप्स और उसी के साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर जिससे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म। कैसे? ऐसे।
0: अभिषेक का हैप्पी वाला बर्थडे। पार्टी में शामिल करीबी दोस्त और सितारे। शुरू हुई जन्मदिन की शानदार शाम। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, लाफ्टर शेफ्स जैसे शोज में नजर आ चुके हैं अभिषेक कुमार और ऐसे में मौका है अभिषेक के बर्थडे का। बीती शाम उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो की, देखिए कैसे मीडिया के साथ केक काटा, बांटी खुशियां और इसी के साथ इनकी बर्थडे पार्टी में इन्हें ढेर सारी बधाइयां देने के लिए पहुंचे कई सारे सितारे। तो अभिषेक की बर्थडे पार्टी के ये नज़ारे सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार कौन कौन हुआ शामिल अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में। पार्टी में साथ साथ नजर आई अद्रिजा और अनु यानी कि निहारिका चौकसी। भाई आज तो दोनों ने वेस्टर्न अंदाज चुना है, सीरियल में तो ये सीधी सिंपल साड़ी में रहती हैं, लेकिन पार्टी में आज इनका मॉडर्न अंदाज देखने को मिला। इसके अलावा बर्थडे पार्टी में शामिल हुए हैं कई और हसीनाएं जैसे कि आकांक्षा चमोला। फरहाना भट्ट, शेफाली बग्गा, अदिति शर्मा,

0: Ankita Lokhande, Jannat Zubair, Nia Sharma, Chinky Minky,
1: बाद में ना कहना
0: नियति फतनानी
1: दे दू वार्निंग पार्टी चलेगी टिल
0: कश्मीरा शाह
1: मॉर्निंग जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला ले
0: सुरभि चांदना अपने हस्बैंड संग यहां पहुंची है इसके अलावा शाइनी दोषी
1: जिसको अपनी जान प्यारी चुपचाप वो फ्लोर पे आके नाचे गाए
0: और कई और सितारे जो पहुंचे अभिषेक को पोते की बधाइयां देने के लिए वैसे आज पार्टी मोड ऑन हो चुका है इसलिए ज्यादातर सभी काले रंग में रंगे हुए हैं पर कुछ ने लाल रंग भी चुना है और अलग अलग आउटफिट्स पहनकर सभी पहुंचे हैं इस बर्थडे पार्टी में।

लेकिन सभी हैं एकदम मॉडर्न अंदाज में। भाई बात करें टीवी के मुंडों की, तो यहाँ पर अपने दोस्त अभिषेक के लिए पहुँचे हैं करण मेहरा, शालीन भनोत, एली गोनी, प्रिंस नरूला, करण वाही, अर्जुन बिजलानी, विशाल आदित्य सिंह और कई और सितारे। भाई ये तो रहे रेड कार्पेट के नजारे, अब नजर डालते हैं इनसाइड विजुअल्स पर, जहां जमकर हो रही है पार्टी। हमारी तरफ से भी अभिषेक को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां।

0: SBS의 뷰러 리포트. अब कुछ लुक्स इतने शानदार होते हैं कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां पर है आपके लिए एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ, क्योंकि यहां है अलग अलग खबरें. कुछ कर देंगी आपको शॉक तो कुछ सरप्राइज. रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
1: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. बात करते हैं बिग बॉस सीजन 20 की. भाई खबरों की माने तो बतौर कंटेस्टेंट इस सीजन में नजर आ सकते हैं जैन इबाद खान, और इसका हिंट दिया है विशाल आदित्य सिंह ने अपने इस वीडियो से.
2: बिग बॉस आपका स्वागत है. बिग बॉस क्या बता रही है ब्रो?
1: इसी के साथ इन्फ्लुएंसर सुभश्री शाओ का भी नाम सामने आ रहा है. वो भी बिग बॉस सीजन 20 के लिए अप्रोच किए गए हैं. इसी के साथ बिग बॉस का ये नया प्रोमो सामने आया है, जहां पर फैंस को लेना है फैसला कि बिग बॉस के सीजन 20 में लव किल कलाकार बतौर कंटेस्टेंट आएंगी या फिर रिया आहिर, जो कि दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं.
3: सोच रहा हूँ घर वालों के साथ साथ एक वरदान फैंस का भी बनता है, तो इस बार फिर होगा फैंस का फैसला. इनमें से जिसको मिलेगा बिग बॉस में जाने का वरदान, वो आप डिसाइड करेंगे अपने फेवरेट को सीधे घर के अंदर.
1: चलता आने वाला है रोडीज का नया सीजन. ऐसे में खबरों की माने तो फरहाना भट्ट को अप्रोच किया गया है न्यू गैंग लीडर बनने के लिए, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है.

शगुन शर्मा के आने वाले नए शो में नजर आएंगे न्यू कमर कर्तव्य, जिसने शो के कास्ट को ज्वाइन किया है। इसी के साथ बात करें शगुन शर्मा की, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस रूमर पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जहां लोग कह रहे थे कि उन्हें गौरव खन्ना से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

भाई खबरें थी कि रणबीर कपूर के अपोजिट ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, लेकिन दीपिका पादुकोण के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए बताया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है।

जल्द ही कलर्स टीवी के दो दो सीरियल्स यानी कि महादेव एंड सन्स और जूही मुई का इंटीग्रेशन एपिसोड होने वाला है, तो हो जाइए फैंस तैयार।

0: इस वार्ड बेस हॉस्पिटल में आज तक इस तरह का कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ।
1: नजर डालीजिए 108 बेस हॉस्पिटल पूरी के इस नए प्रोमो पर, जहां खतरे में पड़ेगी नैना की जान।
2: अंदर जाने दो।
0: इस वार्ड बेस हॉस्पिटल में आज तक इस तरह का कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ।
2: हमारी लड़की हमारा फैसला।
3: मैं तुझे खा जाऊंगी।
4: अगर हम अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए, यहाँ से बाहर निकलकर हमें बहुत बड़ी भीड़ का सामना करना होगा।
0: वन जीरो एट बेस हॉस्पिटल उरी।
1: खबरों की माने तो पति पत्नी और पंगा के नए सीजन में नजर आ सकते हैं शरद केलकर, उनकी वाइफ कीर्ति के साथ। भाई शो के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: आज तो सनग्लासेस के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, शेयर कर रहे हैं आपके साथ कुछ स्टाइलिश टिप्स और उसके साथ साथ सेल्फ केयर टिप्स भी। वैसे सनग्लासेस और फोटोशूट ये भी है ना एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अब जिक्र हो ही गया है फोटोशूट का, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस इंटरेस्टिंग फोटोशूट पर जहां आपका फेवरेट सितारा है आप सबके लिए एकदम तैयार। गेट सेट चीज।
1: ऋतु और अंकुर की गुड न्यूज। जल्द आएगा नन्हा मेहमान। पति पत्नी और फोटोशूट।
2: मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे।
1: सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं ऋतु और अंकुर भाई। जल्द ही ये दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं और ऐसे में इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है और इस खुशी में ये करा रहे हैं अपना प्रेगनेंसी वाला फोटोशूट। भाई आपको बता दे कि आप ऋतु चौहान को सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है जैसे कि मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, यहाँ के हम सिकंदर और कई और सीरियल्स। इसके अलावा वो फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे में भी नजर आ चुकी है। और बात करें अंकुर मल्होत्रा की तो वो इंजीनियर थे जो अब एक्टर बन चुके हैं। वो नजर आ चुके हैं दबंग 3, द पिंक फाइल, ट्रंक कॉल जैसी फिल्मों में और अब जल्द ही इनके घर में गूंजने वाली है किलकारियां। और इस खास मौके पर ये पहुंच गए हैं समंदर किनारे करवाने अपना फोटोशूट। तो चलिए सबसे पहले इनकी एक्साइटमेंट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कितना बेसब्री से वो अपने नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सास बहू और बेटियां के जरिए ही ऋतु और अंकुर अपने फैंस तक ये खुशखबरी पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली।
3: क्या बोलना
4: है? क्या बोलना है मतलब जो हो रहा है वो बताना है सबको।
3: तो बताओ ना, तुम बता दो यार मुझे।
4: तुम्हें क्या शर्म आ रही है उसमें?
3: गुड न्यूज है।
4: गुड न्यूज है
3: क्या? गुड न्यूज है मैंने स्पेशली बोला भी था कि मैं ये वाली न्यूज आउट आप लोगों के साथ ही करने वाली हूँ, सास बहू और बेटियों के साथ।
4: मैंने अभी तक बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है,
3: किसी को भी नहीं पता,
4: पता चलने वाला है।
3: एग्जैक्टली यही है वो लोग जो सब लोगों तक पहुँचाएंगे ये बात। ऑलमोस्ट 7 years।
4: ऑलमोस्ट क्या होता है?
3: 7 years।
4: हम पूरा बताना, 6 साल 8 महीने ऐसा कुछ बताना।
3: 7 years
4: करो जाहिर भाई।
3: जाहिर तो ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है। और दूसरा हमने सोचा कि इस चीज़ को ऐसी याद बना दी जाए जो हम लाइफ टाइम इसको याद रखें। तो हम एक छोटा सा मैटरनिटी फोटोशूट भी करवा रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो हम बीच पर हैं इस टाइम। हम सुबह सुबह 7 बजे निकल कर यहाँ आए हैं, भीड़ भी कम होती है बीच पे, और हमने कहा अच्छे से कुछ प्लान करते हैं और इस याद को हमेशा के लिए अपने कैमराज में मेमोरीज में कैद करके रख लेते हैं।
4: स्ट्रांग होते हैं भाई लड़कियाँ, मैं तो इसको देख के डर जाता हूँ चीज़ों को देख के। हाँ भाई, क्योंकि हम कभी भी नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना हम कभी ये चीज़ें। डर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, फ्रेंकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है तो वो वाला थोड़ा सा डर है, बाकी हैप्पीनेस ही ऑब्वियस बात है।
3: हाँ वैसे ही खुद ही बच्चा है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर लग रहा होगा ना तुम्हें। अब बच्चा बच्चे को कैसे पालेगा? मेरी पूरी पिया की टीम होगी, मेरी पूरी बड़े घर की छोटी बहू की टीम होगी जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और आपने अगर मेरा सोशल मीडिया देखा होगा तो मैंने बहुत टाइम से कुछ ऐसा पोस्ट भी नहीं
4: करा। हैप्पीली शॉक्ड होने वाले,
3: हैप्पीली शॉक्ड होने वाले, किसी के जहन में भी नहीं होगा कि
4: ऐसी सरप्राइज।
1: तो भाई फोटोशूट के लिए आज इनके पास है ढेर सारे प्रॉप्स। भाई आज ऋतु अपना बेबी बम तो फ्लॉन्ट करेंगी ही, लेकिन साथ है मॉम डैड वाली ये कैप, बच्चे के छोटे छोटे कपड़े और कई और खिलौने और ढेर सारे प्रॉप्स जिन्हें यूज कर आज ये अपना फोटोशूट करवाएंगे और अपने इन हसीन पलों को याद बनाकर कैमरे में कैद करेंगे।
3: फोटोशूट करते हैं शुरू। काफी कुछ लेकर आए हैं हम, खाने पीने का भी अब पता ही है ना जो
4: में तुम खाने पीने की चीज़।
3: खाना पीना ही दिखाई देता है आजकल सबसे ज्यादा। ये क्यूट क्यूट हमारी कैप्स हैं, ये हमने पहन के थोड़ा थोड़ा कर भी लिया है शूट। ये बेबी शूज हैं, वो फ्लावर्स हैं, बेबी का काफी कुछ इसमें सामान बेबी का ही है, हम लोगों का कुछ नहीं है।
4: बेबी ये है, अच्छा ये खुलवा दिया, मेरे को आइडिया भी आ गया क्या।
3: ये क्यूट क्यूट बेबी के कपड़े हैं,
4: मैं पहन लूं?
3: तुम पहन लो। और क्या क्या है, उसकी बॉटल भी है, निकालना क्यूटी निकाल दो।
4: ये भी है, अब काफी है, बाकी वो हैं, खुद भी हैं, खुद भी हैं,
3: खुद भी हैं, और भी है काफी कुछ। और शूट करना अभी शुरू कर रहे हैं हम, बचा हुआ काफी कुछ बचा हुआ है, अभी हमने जल्दी शुरू कर दिया था, लेकिन अभी काफी कुछ है जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब शूट करने वाले हैं।
1: हो चुकी है फोटोशूट की शुरुआत, जहां इस समंदर किनारे व्हाइट ड्रेस पहने मॉम टू बी ऋतु खड़ी है हाथों में फ्लावर लेकर।

मम्मी पापा का प्यार तो दिख ही रहा है होने वाले बच्चे के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ ऋतु और अंकुर की केमिस्ट्री भी साफ देखने को जाहिर है। समुन्दर की लहरों से ये दोनों बातें कर रहे हैं और आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बेसब्री से।

0: कई फोटोशूट का ये पहला पड़ाव तो पूरा हो चुका है, तो आइए इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका ये एक्सपीरियंस।
1: भाई बहुत अच्छा शूट चल रहा है अभी तक, तो बहुत मजा आ रहा है। और बाय द गॉड ग्रेस वेदर भी बहुत अच्छा है, हमें लग रहा था बारिश हो जाएगी लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। और अब तो थोड़ा सन भी आने लगा है, सन भी आ गया है और शूट तो कमाल चल रहा है। अब जब सन आ गया है तो और हमें थोड़ा अच्छा शूट करने के लिए मिल जाएगा। प्रॉप्स हमने बहुत सारे यूज़ किए हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है जो हम करने वाले हैं, वो बेडशीट पे बैठ के हम कुछ खेलेंगे, अभी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, वो अभी हम करने वाले हैं। और काफी कुछ हमने
2: कैप्स
1: यूज किए हैं,
2: छोटे शूज,
1: सब बच्चे का सब क्यूट चीजें।
2: कैप्स तो हमारी थी,
1: हाँ कैप्स ही हमारी थी, बस पूरे शूट में सिर्फ कैप्स ही हमारी हैं, बाकी सारे प्रॉप्स बेबी के। स्कैन भी दिखाया है, मतलब बड़ा अलग सी फीलिंग है उस स्कैन को देखने की बार बार। और मैं कभी कभी घर में बैठे बैठे भी ना अपनी वो फाइल खोल लेती हूँ जो डॉक्टर वाली फाइल है, उसमें सारे स्कैन्स रखे हुए हैं। और मैं ना ऐसे ऐसे एक एक स्कैन को ना जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखते हैं ना, इसमें क्या क्या दिख रहा है बच्चे का, वो तक देखती हूँ कि इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है स्कैन में। रैंडम आप देखो तो समझ में नहीं आता, लेकिन डिटेलिंग में अच्छे से देखो ना।
2: जब आपका अपना बेबी का स्कैन हो तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, दूसरे किसी का कभी देखोगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, आप सोचते रह जाओगे ये क्या वियर्ड सी चीज़ है।
1: ये बात
2: तो अपना जब दिखा रहा ना तब समझ में आना शुरू हुआ था, वैसे तो बहुत लोगों को देखा कुछ समझ में नहीं आया।
1: कभी कभी हाथ दिखाई देता है, कभी उसका पाँव दिखाई देता है, तो वो बड़ी मतलब अलग सी ही फीलिंग है। हम दोनों के लिए पहली बार है सब कुछ।
2: नहीं, हमने देखा था ना, लोग एक्साइट हो जाते हैं स्कैन देख के, आज तक समझ में नहीं आता, अब समझ में आता
1: है क्या रहा है इस स्कैन में, दिख क्या रहा है, लेकिन स्कैन में दिखता है।
0: इन्होंने ये व्हाइट चादर समंदर की रेत पर बिछाई है, साथ ही रखे हैं ये सारे प्रॉप्स यानी कि आने वाले बच्चे के कपड़े, शूज और साथ ही ये बोर्ड जिसमें लिखा है बेबी लोडिंग, जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका ये वाला फोटोशूट।
1: तो बचा हुआ शूट शुरू कर लें अब। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: वैसे फोटोशूट कराते कराते आ गई है बरसात भी, और देखिए कैसे होने वाले बच्चे के मम्मी पापा ने ले लिया है छतरी का सहारा, समंदर किनारे बैठे इन छोटे कपड़ों, शूज और कैप्स के साथ, बेबी लोडिंग के बोर्ड के साथ ये इस मौसम का तो मजा ले ही रहे हैं, साथ ही साथ फोटोशूट का भी मजा उठा रहे हैं।
1: तो फाइनली हमें रैप अप करना पड़ रहा है और ऑलमोस्ट हो भी गया हमारा, बारिश भी हो गई है, अम्ब्रेला हम लाए थे शूट के लिए लेकिन यूज हो रहा है बारिश के लिए, तो कोई बात नहीं, मल्टीपर्पज काम
2: लेकिन
1: हो गया,
2: शूट हमारा हो
1: शूट
2: गया है,
1: काफी अच्छा हो गया हमारा,
2: पिक्चर्स बचे हुए हैं,
1: बस फोटोज बच गए हैं,
2: पता नहीं बट बारिश में
1: थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या चला जाता, बट चलो नहीं है,
2: और मिल जाए ना,
1: मिल जाए मतलब मांगो फिर, खैर व्हाटएवर,
2: आधा घंटा बारिश रोक दो बस। बहुत मजा आया, और ये लास्ट वाला जो हमारा सीक्वेंस था प्रॉप्स वाला, इसमें तो बहुत ही मजा आया, बेबी की सारी चीजें जो हमने लगाई यहाँ पर सजाई वो बहुत ही अच्छी फीलिंग। टाइम तो अब थोड़ा बचा है वैसे, थ्री मंथ्स टू गो, जल्दी खुशखबरी आने वाली है लिटिल बेबी की।
0: पर इस फोटोशूट के लिए आज ऋतु और अंकुर ने अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी यूज की है, मैं यही तो यादें वो कैमरे में कैद कर रहे हैं जो इन्हें जीवन भर याद रहेंगी, क्योंकि ये हैं इनके स्पेशल मोमेंट्स।

0: ही दूसरा पड़ाव भी हुआ पूरा। अब बारी अगले पड़ाव की और निकल पड़े हैं ये इस सफर पर जहाँ ऋतु ने अपने आउटफिट भी चेंज कर लिए हैं और अब ये जा रहे हैं ग्रीनरी की तरफ जहाँ होगा ग्रीनरी वाला फोटोशूट।
1: भाई शूट काफी हद तक हमने कर लिया है अक्सा में, अब कुछ एक शॉट्स हैं जो मैं ना ग्रीनरी में लेना चाहती हूँ, तो अब हम लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। और देखो मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है, व्हाइट से मैं येलो में आ रही हूँ। हमारे स्टिल बच गए हैं बहुत सारे स्टिल फोटोज स्टिल पिक्चर्स, और एक तो ग्रीनरी में शॉर्ट ग्रीन में मैं येलो में चलती भी आऊंगी। अंकुर शायद ब्लू ब्लू ही पहन
2: कभी गिरने न दूंगा जरा।
3: चेंज हम दोनों ने कर लिया है और हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट जो हमें प्लान किया है शूट करने के लिए। फाइनली वो जगह भी मिल गई है जहाँ मैं एक्चुअली मैं चाहती थी कि थोड़ी ग्रीनरी हो, इधर उधर जहाँ भी नजर घुमाऊं ग्रीनरी दिखे और हम ऐसी जगह पे शूट करें। बीच तो अच्छा होता ही है और अब हम यहाँ ग्रीनरी में शूट करने वाले हैं।
0: तो फाइनली ये पहुंच गए हैं इस स्पॉट पर और देखिए कैसे ऋतु और अंकुर दोनों ने ही इस हरियाली के बीच ढेर सारी तस्वीरें खींची, क्योंकि हर तस्वीर है खास।

0: सास बहू और बेटिया में पहली बार ऋतु और अंकुर ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है और ये खबर आप तक सास बहू और बेटिया एक्सक्लूसिवली लेकर आया है। तो भाई हमारी तरफ से भी ऋतु और अंकुर को ढेर सारी बधाइयाँ।
1: बहुत बहुत बहुत इंजॉय किया और शूटिंग इज ऑलवेज अ फन, मतलब ये एक एलिमेंट है जो अपने आप में एक वो दे रहा है कि कुछ अलग हो रहा है हमारी लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में। एंड द सेम टाइम
2: अलग तो है ही है,
1: नया हो रहा है और द सेम टाइम हम दोनों का प्यार भी शूट है, शूट करना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट है आज।
2: हम दोनों का प्यार है, मैं कंफ्यूज हो गया क्या शूट करना हम दोनों का प्यार है।
1: हाँ जी यही बोल रही हूँ मैं।
2: नहीं ये भी तो हम दोनों का प्यार ही है।
1: हाँ ये भी तो प्यार है।
2: बस कुछ महीने,
1: बस इंतजार की घड़ियाँ टिक टिक टिक टिक टिक
2: टिक टिक टिक
1: खत्म होने वाली हैं और जल्दी से ही खुशखबरी आप सबको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों फिर से जल्दी से मुलाकात करते हैं आप सबसे, आज के लिए बाय बाय
2: बाय।
0: भाई हम तो यही कहेंगे कि जल्द ही ऋतु और अंकुर की दुनिया खुशियों से भर जाए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सनग्लासेस आपके लुक को पूरा बदल देते हैं, उसी तरह ये जो ट्विस्ट आते हैं ना हमारी कहानियों में, ये इन्हें पूरी तरह बदल देते हैं। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। ये ट्विस्ट ही तो बनाते हैं कहानियों को और भी मजेदार। तो चलिए लेट्स ट्विस्ट।
4: रक्षित सा, रक्षित सा।
5: तो फटुका आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है फटुका। पर तुम कैसे होगी, तुम्हें तो क्या किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में मुश्किल में फंस गए हैं रक्षित। कोल्ड स्टोरेज में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनका हाल हो रहा है बेहाल।
5: वाले आ जाएंगे सुबह तक, अपने आपको जिंदा रख रक्षित।

0: Hamilton. Put that out. Hamilton. Put that out.
1: तो वहीं दूसरी तरफ अपराजिता रक्षित को लेकर काफी परेशान नजर आ रही है।
2: रक्षित सर,

0: ये उड़ने वाला तूने ये सब पता होगा रक्षित सर का, इसे जाने नहीं दे सकती मैं।
1: मेरा हाथ चिपक गया।

0: Rakshasa! Please! Rakshasa!
1: जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, रक्षित की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। ठंड से वो ठिठुर तो रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।

0: 血色。 सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। फोन
1: सही समय पर वहां पहुंच गई है अपराजिता। अब देखना होगा कि क्या अपराजिता रक्षित की जान बचा पाएगी या नहीं।
2: ताला
0: अंदर, रक्षित सर लॉक हो गए।
2: यहाँ तो ताला लगा हुआ है।
0: तो कुछ कीजिए प्लीज।
2: मैं कॉल करता हूँ दुकानदार को।
0: रक्षित सर मैं आ गई हूँ, अब डरना मत।
2: दुकानदार तो फोन नहीं उठा रहा, दरवाजा कैसे खोलेंगे आप? मैडम पक्का कोई अंदर है ना?
0: मुझे पता है, रक्षित सर है अंदर।

Próximo.

दीवानी। स्टॉपलेस के सीरियल अनुपमा में होने वाला है ग्रैंड फिनाले, और ऐसे में देखिए कैसे सभी लोग नाच गा रहे हैं और मना रहे हैं खुशियाँ। देख लीजिए इन सभी का ये डांस स्टेशन।

0: लेकिन इस फिनाले एपिसोड में आएगा एक ट्विस्ट। अब देखना होगा किसकी होगी जीत, किसकी हार।
1: वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले।
2: मुझे कुछ स्वाद नहीं आ रहा है, मैं जीतूंगी कैसे?
1: ग्रैंड फिनाले के विनर को मिलेंगे 50 लाख रुपए। इस आखिरी राउंड में मसाले चख कर सही मात्रा में डालने हैं।
3: टेस्ट अभी तक वापस नहीं आया है, नमक और चीनी में धोखा खा गई तो।
1: अब सिर्फ 1 मिनट बचा है।
3: क्या है शक्कर, नमक, क्या है?
0: हमारी डॉक्टर आलम भी हमसे यही कह रही हैं कि ये जो सनग्लासेस हैं ये सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाते हैं। तो स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ केयर भी। वैसे हम तो चाहते हैं कि यहाँ आप भी रखें अपना ख्याल, क्योंकि देखिए आपकी कहानी में इतना तूफान है, इतना तूफान है, इतने ट्विस्ट हैं कि यहाँ आपकी आंखों में हमेशा बने रहते हैं आंसू, जबकि हम तो देखना चाहते हैं आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरबी के सेट पर।
4: हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बात।
0: आरंभी का हुआ ग्रह प्रवेश, सासू माँ ने उतारी आरती, घर वालों ने जमकर किया आरंभी का स्वागत।

0: टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में इन दिनों आरंभी काफी परेशान थी, क्योंकि उसे ये साबित करना था कि दहेज का जो ड्रामा हुआ था उसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन आरंभी ने नहीं दी थी। इसलिए आज वो अपने घर लौट कर आई है और देखिए कैसे घर में हो रहा है आरंभी का स्वागत। फिर एक बार घर की बहू रानी का गृह प्रवेश हो रहा है। आरती उतार कर, तिलक लगा कर, ये थाली बजा कर, जोरों शोरों से आरंभी का स्वागत किया जा रहा है और ये सब हो रहा है ध्रुव और वियान की वजह से।
1: मम्मा का वेलकम तो बनता है ना?
2: Yes, yes, बनता है ना।
1: वेरी गुड। कुछ आइडिया है आपके दिमाग में क्या करना चाहिए?
3: डीसी सर प्लीज, मैं अपने घर आ रही हूँ, खान के पास वापस आ रही हूँ, कोई जरूरत
4: नहीं। कोई पूछ नहीं रहा है। डॉक्टर सुनील आप बताइए आपको क्या लगता है?
2: दादू प्लीज मुझे मम्मा का वेलकम करना है, इतने दिन से मैं सैड था। लेट्स सेलिब्रेट ना दादू प्लीज। आपने मम्मा को इतना डांटा था, बच्ची वो जीत गई। लेट्स सेलिब्रेट ना दादू।
5: उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो अब उसकी घर वापसी सबके सामने पूरे मान सम्मान के साथ होनी चाहिए। आरती का थाला, अपनी बहू का स्वागत।
6: शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई सपनों की।
0: देखिए कैसे ना चाहते हुए भी डिंपल को अपनी बहुरानी डॉक्टर आरंभी का स्वागत करना पड़ रहा है और उसमें उन्हें टीज करता नजर आया ध्रुव।
7: अरे आपकी बहू है, घर में वापस आ रही है, जितना चाहे तब न्याय लीजिएगा। फिलहाल वेलकम करते हैं, वी वाज वेटिंग।
6: सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।
7: कभी कब ही
6: जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है।
7: सब कुछ बहुत रूखा सूखा जैसा है। बेहान थोड़ा म्यूजिक मस्ती पार्टी शादी कुछ हो जाए।
2: यस, पर हमने तो गोल पार्टी बुलाई नहीं है ना डीसी ब्रो।
7: अरे बड़ी कोई नहीं, मैं हूँ ना। एक काम करो, आप किचन में जाओ और थाली और चम्मच ले आओ, फिर देखना धन तना।
2: चम्मच अभी लाए, चलो चाचू।

0: इनफैक्ट थैंक यू तो टंडन डंडे को कहना चाहिए, आरंभी ने अपनी जान पे खेल के इनके बारिश को तो बचाया।
1: तो भाई पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर आरंभी का घर में स्वागत तो हो गया और अब डॉक्टर आरंभी इसी घर में रहेंगी। लेकिन इसके लिए आरंभी ने कई पापड़ बेले हैं। खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए वो लेकर आई हैं ये पेन ड्राइव, जिसमें ये सबूत मिला है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन और पेन ड्राइव देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोना है, जो कि है अवंतिका की दोस्त। ऐसे में डॉक्टर आरंभी तो बेगुनाह साबित हो गई, लेकिन ठीकड़ा फूट गया अवंतिका पर।
2: राज,

0: आशीष को फोन लगाओ प्लीज, उससे गलत पेन ड्राइव तो नहीं दे दिए।
1: स्टॉप इट, इनफ आरुणी, इनफ। शर्म करो आरुणी, ये सब बहाने बनाना बंद करो।
0: अभी पता चल जाएगा इसमें कि वो मैं नहीं थी जिसने पेन ड्राइव पुलिस को दी थी।
2: मोना, वही वाली मोना दिखा ना राज। डैम, ये तो वही मोना है ना जो डॉक्टर रमंते का दोस्त है, और इसी मोना के रिसोर्ट के पूल में बेहान गिर भी गया था। मैंने प्लान किया कि वो घर से शादी, उसके बाद आलमगीर ने डिसाइड किया कि वो घर से सारी शादी प्लान कर सकती है, इसलिए आप लोग घर आ गए। तो मोना का नुकसान भी तो हुआ होगा।
0: What nonsense?
2: उसके पास एक एजेंडा है, मोटिव है उसके पास।
0: कुछ
2: ये टंडन्स को बर्बाद करने का मोटिव, आलमगीर को बर्बाद करने का मोटिव, उस पे ब्लेम डालने का मोटिव शी हैज़ इट।
0: ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा I don't think so, she's my friend.
3: सच बाहर आ गया। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि सच बाहर आ गया। क्या हुआ? Honestly, सब आपने करवाया। जवाब दीजिए।
2: जवाब दो ना, पूछ रही है वो कुछ।
4: भाई कहाँ तो अवंतिका और डिंपल मिलकर आरंभी को घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन आरंभी ने बाजी पलट दी और फिर एक बार घर में री एंट्री कर ली। और अब तो वो वियान के साथ भी रहेगी और डॉक्टर विश्वास के साथ आरंभी का तलाक भी नहीं होगा।
2: एक सेकंड, इंस्पेक्टर साहब यहीं उनसे पूछ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जो जिससे चोरी की थी पुलिस स्टेशन में, उसकी हाइट कितनी थी? मतलब शॉर्ट हाइट थी या एक लंबी हाइट वाली कोई लेडी थी?
5: इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग इसे सॉर्ट कर लेंगे आपस में ही। वैसे आपको यहाँ किस तरह है, आप क्यों आए?
1: देखिए मैडम, हम लोग यहाँ पे चाय पीने नहीं आए, आपके बेटे डॉक्टर विश्वास ने बुलाया।
2: सर अरे एक बात बतानी पड़ी, आपकी बेटी को डॉक्टर आपने बनाया, पर क्या है डॉक्टर बनने का अपनी चॉइसेस ना लाइफ में कभी कभी भारी पड़ जाती है और हमें साथ नहीं डूबती। वो तो भला हुआ डॉक्टर सुनील का कि इन्होंने 2 दिन की मोहलत दी थी आरोपी को, वो तो इनसे प्रूफ करेंगे। वरना आज
6: आज के बाद इस घर में डिवोर्स सिस्टम में सुनना बेहतर है। परिवार जितना हमारा है।
4: चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन इन खुशियों में कब और कैसे ट्विस्ट का ब्रेक लग जाए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अवंतिका चुप नहीं बैठेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: जिस तरह सनग्लासेस हमें तेज धूप से बचाते हैं, उसी तरह अपनों का प्यार हमें जिंदगी की मुश्किलों से बचाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर वसुधा की कहानी में, जहाँ पर है रिश्तों का वक्त। अब वो बात अलग है कि कभी कभी कहानी में आ जाता है कंफ्यूजन या फिर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकर चलते हैं आपको वसुधा के सेट पर।

की यादों में खोई वसुधा। परिवार से दूर वसुधा की तड़प, क्या वसुधा के सामने आएगा मुंडवा का राज? जी टीवी के सीरियल वसुधा में वसुधा देव से एक साल के लिए दूर हो गई है और अपने परिवार से दूर होकर वो मुंडवा रहने के लिए आ गई है, लेकिन यहाँ आकर उसने अपना बसेरा बनाया है महादेव के मंदिर को। जरा देखिए कैसे शिवलिंग के आगे वो चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन देव की यादों में खोई हुई है। एक एक कर उसके दिन गुजर रहे हैं और देव के लिए उसकी तड़प भी बढ़ रही है।

0: व्रत करने के लिए तो मैं आ गई हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली मैं मुंडवा गांव में ही पहुँच गई हूँ जहाँ पे देवी हुकुम का सपना शुरू होता है। तो अभी यहाँ आ गई हूँ तो वसुधा को ये फील हो रहा है कि वो किसी वजह से आई है, और उसे गुरुजी ने भी कहीं ना कहीं बोला था कि तुम जहाँ जा रही हो जरूर वहाँ पे भगवान ने तुम्हें कोई बदलाव करने के लिए भेजा होगा। तो वसुधा तो पहले इसी डिलेमा में होती है कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, मेरे होते हुए ना मेरे थ्रू कौन से बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि शायद ये जो चौहानों का पास्ट है वो कहीं ना कहीं उसे बुला रहा है, और सच में ऐसा ही हर एक नए सीन के साथ एक नई कड़ी खुल रही है। और मुझे तो पर्सनली ये ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये वसुधा में टोटली डिफरेंट एक मुझे भी डिटेक्टिव का रोल प्ले करने को मिल रहा है यहाँ पे, कि मतलब मैं जानकारी लेती हुई आगे बढ़ रही हूँ। और फिलहाल तो देव भी मेरे साथ नहीं है तो अब वसुधा अकेले ही सब कर रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सब तो बता दूंगी, फिर आप क्या देखोगे।
1: खैर, मुंडवा में रहकर वसुधा ने अपने जीने का जरिया ढूंढ लिया है। वो एक किराने की दुकान में काम करने लगी है, और देखिए कैसे काम करते करते वो गांव वाले से चौहान परिवार की फैक्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रही है।
2: पापा, मैं आपसे नहीं कहा था कि चौहानों की फैक्ट्री में कोई ना कोई अपशगुन होता रह गया है, कोई ना कोई दुर्घटना होती रह गई, कोई
3: जान बुझ कर
2: हो सकते
3: हैं। बेटा, इस सवाल का जवाब मैं तो के गांव का कोई भी इंसान ना दे पाएगा। हमारा छोरा भी उसी कारखाने में काम कर रहे हैं। कारखाने की मालकिन चंद्रिका सिंह जी हुकुम बड़ी ही नेक औरत है। वो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का बड़ा अच्छा ख्याल रखे हैं। सबने समय पे पगार मिल जा रहे हैं, साथ में वो लेके मेरे पीएफ, हाँ पीएफ और बीमा सब मिले हैं, और गरीब मजदूरों को दो टाइम का खाना भी मिल जा रहे हैं। रोहिना, मजदूरों के बच्चों के स्कूल की फीस भी हुकुम ही भरे हैं। अपन तो हमेशा अपनी चिंता बनाए रखे, लेकिन एक बात बन समझ में ना आती, कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के लिए इतना सब कुछ करे हैं, फिर भी इतने सालों में आज तक इस गांव में ना तो हुकुम ना ही उनके परिवार का कोई भी सभ्य यहाँ पे आया। जब भी हर महीने गांव में कोई ना कोई हादसा होते ही रह रहे हैं, पता नहीं कौन उनका दुश्मन बना बैठा है।
0: कंपनी देखो, जो चौहान की कंपनी है उसका तो पहले ही पता था कि मुंडवा में कुछ तो है जो देवी हुकुम किसी को नहीं जानने देती, वहां पे इतने हादसे होते हैं। देव को भी ये बहुत बड़ा डाउट था कि मासा ऐसे करती क्यों है कि मतलब कोई मुंडवा नहीं जा सकता एंड ऑल। तो अब वसुधा को वो चीज़ें खुल रही हैं, और धीरे धीरे अभी वो रास तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ उसे पता चला है कि मुंडवा बहुत ही अपशगुन माना जाता है, वो फैक्ट्री ही बहुत हॉन्टेड है।
1: भाई, गांव वाले तो वसुधा से बहुत खुश हैं क्योंकि वसुधा पूरी ईमानदारी से काम जो करती है। ऐसे में उस किराने वाले ने खुश होकर वसुधा के किए हुए काम के बदले कुछ सामान दे दिया ताकि वसुधा अपना जीवन व्यतीत कर सके। खैर, वसुधा तो इस मुंडवा में आकर बहुत खुश है, लेकिन उसने उसी किराने वाले से इच्छा जाहिर की है कि वो उस फैक्ट्री में जाना चाहती है।
3: मुसीबत के पास कोई खुद चल के जावे है क्या? बहुत मनहूस जगह है वो, कोई उसका नाम तक ना लेता, थारे को क्यों जाना है वहाँ?
1: अब इस फैक्ट्री का राज क्या है और चंद्रिका का मुंडवा से क्या कनेक्शन है, इस बात का पता वसुधा लगा कर ही रहेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सही सनग्लासेस हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हिम्मत और कॉन्फिडेंस, और जगदात्री इसी कॉन्फिडेंस को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ती है, यही तो है उनकी स्ट्रेंथ। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास, और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।
5: रक्षाबंधन का त्योहार, जान भी बांधेगी शिवाय के हाथों पर राखी। जगदात्री ने किया प्लान। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का ये त्योहार, जहां जगधात्री का पूरा परिवार एकजुट हुआ है। सभी लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और खुशी खुशी बहन भाई के अटूट बंधन का ये त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में परिवार के बीच आ गई है जानवी और देखिए कैसे माया जानवी का स्वागत कर रही है।
6: I'm so sorry, मैंने तुम्हें इतने शॉर्ट नोटिस में इनवाइट किया।
7: नो नो, थैंक यू सो मच मायावी, आपने मुझे आपके फैमिली सेलिब्रेशन में इनवाइट किया।
6: फेस्टिवल का असली मजा फैमिली के साथ ही आता है ना?
7: एग्जैक्टली,
6: इसीलिए तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया कि तुम भी आके हमारे साथ ये फेस्टिवल एंजॉय करो। वो मैं जानती हूँ कि शायद तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं है, दैट्स व्हाई।
7: हाँ, और आज के दिन तो मैं और भी अकेली फील करती हूँ।
5: भाई जगधात्री को पता चल गया है कि जानवी का कोई भाई नहीं है। ऐसे में वो देती है जानवी को आइडिया कि वो शिवाय को राखी बांधे और देखिए कैसे बड़ी ही चालाकी से जगधात्री शिवाय को ले भी आती है और जानवी के हाथ में थमा देती है राखी। शिवाय ने अपनी कलाई आगे कर ली है और जानवी तैयार है उसे राखी बांधने के लिए।
7: एक्चुअली मैं सिंगल चाइल्ड हूँ ना, इस फेस्टिवल की मेमोरी सारी मेरे कजिन के साथ ही रही है।
6: शिवाय है ना, आपका खुशी खुशी भाई बन जाएगा।
7: क्यों शिवाय?
6: एक मिनट, ये इनमें से कोई भी राखी चूज कर, जो भी तुम्हें पसंद आए शिवाय के हाथों में। आई थिंक वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा ही है ना।
7: शिवाय और मैं अच्छे दोस्त हैं।

0: करने वाली, इसीलिए मौका पाते ही बहाना देखकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गई और उसने शिवाय को आखिरकार राखी नहीं ही बांधी। ये देखकर जगधात्री जानवी से गुस्सा जरूर हुई, लेकिन उसे त्योहार भी नहीं खराब करना था।
1: Come on, जानवी. Come on. रुद्र।
0: लेकिन जानवी भी कम नहीं है, उसने जाकर रुद्र को राखी बांध दी।
1: मुझे ना हमेशा तुम्हारे जैसा ही चाहिए।
2: मेरे जैसा?
1: इनफैक्ट मैं ना तुम्हारे लिए राखी भी लेके आई। सोचा था कि अगर तुम मेरे से राखी बनवाओगे तो मैं बांध दूंगी, मैं बांध सकती हूँ।
2: Why not?
3: बांध दूंगी।

0: से तुम्हें क्या बोला जानवी या फिर जानवी दीदी?
1: उम्र में तो सबसे बड़ी तो दीदी कहना चाहिए, बट
0: आई एम ओके विद जानवी। आई एम ओके विद दीदी।
1: I'm so sorry, आप लोग मैंने आप लोगों का फोटो सेशन खराब कर दिया। अब प्लीज कंटिन्यू चरदात्री, अब प्लीज फोटो लो ना।
0: या ऑफ कोर्स, अब तो तुम भी फैमिली हो, आ जाओ।
2: तो भाई इस बार तो जगधात्री का प्लान फेल हो गया है, लेकिन जगधात्री सभी का एक एक कर खुलासा जरूर करेगी और सच को सामने लाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: क्लासेस सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, देखिए बहुत ही जरूरी है कि सही पेयर ऑफ सनग्लासेस आपको वो यूवी प्रोटेक्शन जानकारी भी दें कि एक्चुअली वो आपकी आंखों को यूवी रेस से बचा रहे हैं या नहीं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और इसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये जरूरी खबर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।

0: माधवी का वृंदा पर अत्याचार, फिर एक बार फूटा वृंदा पर माधवी का गुस्सा। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा घर लौटी है और वो काफी खुश भी है। ऐसे में माधवी पहले तो वृंदा को खाने के लिए इनवाइट करती है, उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। हालांकि ये देखकर वृंदा काफी शौक में है कि अचानक स्वाति की मम्मी माधवी को ये हुआ क्या है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद माधवी का असली रूप सामने आता है। वह वृंदा खाना खाने के लिए मना करती है, लेकिन जबरन देखिए कैसे माधवी गुस्से में वृंदा के मुंह में खाना ठूस रही है, जिस वजह से वृंदा का हाल बेहाल हो गया है। और खाना ठूसते ठूसते माधवी वृंदा को कड़वी बातें भी सुना रही है।
1: बाहर से आई हूँ, थक के आई हूँ, भूख तो लगी होगी सब?
2: नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी।
1: अरे बाद में कैसे, तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो इस घर के लिए, पता है तुम्हें? इतनी इम्पोर्टेंट हो कि स्वाति ने अपने ससुराल में जाके तुम्हारे लिए हेल्प मांगी है, तो तुम खाना खाओ जैसे मेरी खुशियां खा गई हो वैसे खाओ। ये लो मुखल, कम कम कम खाओ खाओ खाओ खाओ।

माधवी को पहले तो गुस्सा है कि वृंदा यहाँ पर है, अम्मू यहाँ पर है, स्वाति उसको लेकर आई है और हमारे घर में वैसे ही कलेश उसकी वजह से होते रहते हैं। अब स्वाति ने अम्मू को संजू के घर पे इन्वॉल्व कर दिया है और संजू के घर पे भी जाके उसने संजू को बोला है कि उसकी कोई ज्वेलरी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन में जाके ढूंढो ये वो, और माधवी को ये पता चल जाता है। अभी ये लोग भी ऐसे समझ में नहीं आता, मैं खुद लॉयर हूँ, अगर मेरे पास आते तो मैं फटाक से ढूंढ के देती, पर नहीं, स्वाति को जाना था संजू के पास और फिर संजू जाएगा पुलिस स्टेशन में और वो पता करेगा जो भी है। पर माधवी को लगता है कि इसमें अम्मू की गलती है कि अम्मू

0: की वजह से अब ये बात उसके ससुराल तक पहुंच गई है। फिर माधवी छोड़ेगी थोड़ी ना, टॉर्चर जो भी हो निकालूंगी तो सही मैं इसको, बिकॉज माधवी ने एक चीज ठान ली है तो करके तो रहेगी वो, पर कैसे करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
1: भाई माधवी वृंदा को टॉर्चर कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहन जी आ जाते हैं, जो देखिए वृंदा को बचा रहे हैं, लेकिन उस पर भी माधवी शांत नहीं हुई। वो वृंदा के लिए कड़वी बातें बोल ही रही है और मोहन जी वृंदा की ढाल बनकर खड़े हैं, और ऐसे में वृंदा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। भाई उसकी तो गलती भी कुछ नहीं है, लेकिन माधवी उस पर ही सभी चीजों का इल्जाम लगाए जा रही है, क्योंकि स्वाति की जिंदगी में परेशानियां हो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वृंदा ही है, ऐसा माधवी को लगता है।
2: मुझे प्लीज उसकी हालत तो देखिए,
3: उसकी हालत देखूं मैं, हमारे घर की हालत देख लूं। जब से ये इस घर में आई है सिर्फ कलेश होता है इस घर में, और रीजन ये होती है।
2: प्लीज रो रही है।
3: मैं भी रो रही हूँ मोहन जी, आपकी ये बिचारी इस घर की भगवान बन चुकी है मोहन जी। आपकी बेटी स्वाति पूजा करती है इसकी, सब कुछ इसके लिए होता है इस घर में, इसके अलावा स्वाति को और कुछ सोचता नहीं है।
2: लेकिन माधवी जी इसने किया क्या है?
3: जब से इस घर में आई है तब से कलेश हो रहे हैं। इस नौकरानी की वजह से हमारी बेटी संजू को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कह रही है, और आप मुझे बोल रहे कि मैं शांत हो जाऊं। आपको दिखता नहीं है हर प्रॉब्लम की जड़ है गले में, पता नहीं किस मन में उस घड़ी में स्वाति से उठा कर लेकर आई थी।
4: उसके जुस्से

0: ये तो रही सीन की बात, लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन की तो देखिए, रियल लाइफ में माधवी जितनी कठोर है, रियल लाइफ में गौरी टोंग उतनी ही नरम दिल है। तभी तो सीन कट होते ही कैसे वो वृंदा यानी प्रियांशी का चेहरा साफ कर रही है। असल में इनका उपवास है और ऐसे में अन्न का दाना मुंह में जाना सही नहीं है, लेकिन सीन तो फिल्माना है। इसीलिए बिहाइंड द सीन देखिए कैसे गौरी प्रियांशी की केयर करती नजर आई।
1: देखो हम क्लासी लोग हैं, हम चक्के वटके नहीं देते, हम पेट फुल करके टॉर्चर करते हैं। इन अवे बेचारी प्रियांशी को टॉर्चर हो रहा था आज, बिकॉज उसका फास्ट है। हम तीनों का फास्ट है, मैं, स्वाति और प्रियांशी, मतलब अमू, हम तीनों का मंडे का फास्ट होता है, और उसका फास्ट है, उसके मुंह में खाना ठूसना था। सो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था करते हुए, बिकॉज ऑफकोर्स व्रती लोगों को समझ में आता है दूसरे व्रती के ऐसे, तो हम शॉर्ट कट होते, सब क्लीन कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, बट उसने बहुत अच्छा किया।
0: खैर सीन की बात करें तो अब माधवी हाथ धोकर वृंदा के पीछे पड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कहानी में और कौन कौन से नए तमाशे होते हैं।
2: आज ना बा का वो सड़क पे एक्सीडेंट होते होते बचा, पता नहीं कहाँ से एक बड़ा इंसान आया और उसने बा को बचा लिया।
3: उसको हमारा दोस्त बोलता है
4: और हमारे एंगेजमेंट के दिन तो
3: ट्रैकिंग पे चला गया।
4: मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है।
5: संजू तू कल सुबह मुंबई के लिए निकल।
4: माँ की तबीयत ठीक नहीं है अभी, मुंबई तो क्या मैं ऑफिस तक नहीं जाऊँगा।
6: किस्मत मौका दे रही है, ऐसे ठुकराते नहीं है संजू।
0: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: संजू वापस आएगा, तेरी हालत बद से बदतर हो चुकी होगी।
8: एंटरटेनमेंट की दुनिया में कभी लुक बदलता है तो कभी स्टाइल, और देखिए एंटरटेनमेंट के रंग भी यूं ही बदलते हैं। तभी तो आती हैं कभी कभी हमारे लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड खबरें जो कर देती हैं हमें शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: अक्षय कुमार और सैफ अली खान जल्द नजर आने वाले हैं उनकी आने वाली फिल्म हैवान में। सामने आया है इसका ट्रेलर, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।
9: शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, एक ही जीप की आवाज बार बार सुनाई दे रही
10: है। ये खुली उन्होंने मन में पैदा किया है हम सबको कंफ्यूज करने के लिए।
11: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।

शाम हुई आवारा पंटू की सक्सेस पार्टी, जिसमें नजर आए इमरान हाशमी, दिशा पटानी, मोहित सूरी, पलक मुचाल, मिथुन और कई और सितारे। इसी के साथ इमरान हाशमी की अगली फिल्म भी आने वाली है, जिसका नाम है गन मास्टर। जल्द ही इसका टीजर भी सामने आने वाला है।

सोनी लिव के आने वाली नई सीरीज में, जिसका नाम है बुरा नाम मिलिया कोई में, नजर आएंगे धुरंधर में काम कर चुके विनोद थरानी, जो गौरव गेरा के इस कास्ट को इस वेब सीरीज में ज्वाइन करने वाले हैं।

0: जल्द आने वाली है फिल्म महाकाली, जिसकी कास्ट को अब ज्वाइन किया है जितिन ने। इसमें नजर आएंगे अक्षय खन्ना।
1: रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो।

0: आज के एपिसोड में हमने देखे इन शेड्स के कितने सारे स्टाइल्स एंड कलर्स। देखिए, ये जो सनग्लासेस हैं सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं है, बल्कि आपकी आंखों की केयर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी है। तो आज के बाद जब भी आप सनग्लासेस खरीदने जाएं, सिर्फ उसके लुक को ना देखें, बल्कि ये देखें कि वो आपके चेहरे पर फिट कैसा होता है और उसमें यूवी प्रोटेक्शन कितना है। क्योंकि देखिए, फैशन तो तभी हिट होता है जब उसके साथ साथ सेल्फ केयर भी हो। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: DRDO की विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरित करने पर रक्षा मंत्रालय की मुहर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिली किससे मजबूती। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 30 से अधिक देश लेंगे भाग। रामराज कॉटन ने 3000 धोतियों से बनाया एशिया का सबसे बड़ा पुक्कलम, ओणम के जश्न के लिए एक नया रिकॉर्ड किया कायम, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया अपना नाम। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, बेड, दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं की हुई समीक्षा। सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सीकर में धूमधाम से संपन्न हुआ झूलन महोत्सव, 6 दिनों से जारी था सावन के माह में भव्य उत्सव। खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, रंग बिरंगे फूलों से हुई मनमोहक सजावट। अमरनाथ की झांकी के रूप में भव्य तरीके से सजाई गई श्री ठाकुर जी की प्रतिमा, रात को राधा कृष्ण को पालने पर भक्ति भाव से झूले पर झुलाया गया, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। शहर भर के मंदिरों में विशेष कीर्तन पूजन का आयोजन, पूरे मंदिर परिसर को रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया, दूधिया रंग से रोशनी से नहाया नजर आया मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर ठाकुर जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूला, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारों से मंदिर गूंज उठा। ठाकुर जी के हिंडोले के दर्शन शाम 5:10 से लेकर 5:40 तक हुए, भगवान को झूला झूलते देख भक्ति में डूबे नजर आए भक्त। द्वारकाधीश मंदिर में शाम 7 से रात 8 बजे तक ठाकुर जी की खास घटा सजाई जाएगी, सावन में हर दिन अलग रंग की घटा के साथ मंदिर का नजारा भी बदल रहा है। ब्रज के मंदिरों में सावन के साथ झूलन उत्सव का रंग चढ़ा हुआ नजर आया, राधा रानी और ठाकुर जी को झूला झुलाने की अलग अलग मंदिरों में खास परंपरा है। मंदिर में मल्हार के गीत, रोशनी और झूले ने भक्ति का माहौल बना दिया, भगवान के झूला झूलने के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्यवाद। सावन के फुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों, फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोले पर भक्तों को दर्शन दे रहे श्री राम और माता जानकी। अयोध्या के करीब 5000 मंदिरों में जारी आस्था का उत्सव, शाम होते ही मंदिरों में भजन कीर्तन और नृत्य की प्रस्तुतियों से वातावरण हुआ भक्तिमय। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग, 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाइयों, पकवानों और 1 क्विंटल फरारी मिक्सर का लगाया गया भोग। ढोल डमरू और झालर की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की हुई महाआरती, आरती में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल, श्रद्धालुओं में वितरित किया गया ये महाप्रसाद। सावन के इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को फूल मालाओं, झालरों और आकर्षक लाइटिंग से विशेष तौर पर सजाया गया, रोशनी से जगमगा उठा पूरा मंदिर परिसर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल, बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और त्वरित सेवाओं की शुरुआत की गई। मात्र 10 रुपए है इन विशेष वाटरप्रूफ लिफाफों की कीमत, ताकि बारिश के मौसम में राखियां गीली न हो और सुरक्षित रूप से देश विदेश में भाइयों तक ये राखी पहुंचाई जा सके। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई गई इको फ्रेंडली राखियां। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ 100% इको फ्रेंडली है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है इसका मकसद। इन राखियों को इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में डालने पर इनसे प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है खाद, स्वदेशी उत्पादों को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला खास नजारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूली छात्रों शामिल, सीजीआई सूर्यकांत की कलाई पे बांधी राखी। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों के साथ किया संवाद, बच्चों को बांटे ट्रॉफी। रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह किया गया आयोजित, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित, बच्चों के साथ किया संवाद। रक्षाबंधन पर पुलिस प्रशासन ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों ने हर शिकायत का जल्द समाधान करने और सुरक्षा का भरोसा दिया। राखी बंधवा के पुलिस प्रशासन ने बहनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया, महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं सुरक्षा के उपाय बताए गए। घनसाली में कलह को धागु कार्यक्रम, 700 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसमें जुटी, महिलाओं ने लोकगीत गाकर मनाया रक्षाबंधन, विधायक शक्ति लाल शाह को बांधी चांद की राखी। हापा नाहर लगुन स्पेशल ट्रेन अब 23 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी, बिहार यूपी के यात्रियों को इस सफर में बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन हर बुधवार हापा से और हर शनिवार नाहर लगुन से चलेगी, छपरा, हाजीपुर, बरौनी और कटिहार समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। उत्तराखंड के सोर घाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल जात्रा आयोजित, हजारों लोगों ने लिया लखिया बाबा का आशीर्वाद। उत्तर भारत के प्रमुख मुखौटा पर्व में उत्तराखंड का प्रमुख कृषि पर्व हिल जात्रा आयोजित किया गया, इस लोक पर्व में दिखाई देती है पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप। 500 सालों से चली आ रही है हिल जात्रा की ये परंपरा, स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को माना जाता है भगवान शिव का गढ़ और कुमौड़ का ग्राम देवता। केरलम में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, कल धूमधाम से मनाया जाएगा ये जश्न। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम, ताजे रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक रंगोली से सजाए जाते हैं घरों और मंदिरों के आंगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएफएस के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनी से की खास बातचीत, युवा राजनयिकों से तकनीक, निवेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने को कहा। भारत में ऐतिहासिक यूपीआई के 10 साल हुए पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, भारत के डिजिटल पेमेंट के सफर में बताए से एक बड़ा बदलाव। यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर अमित शाह ने भी किया सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा हमारे देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम तैयार किया। डीआरडीओ के विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरित करने पर रक्षा मंत्रालय की मोहर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी इससे मजबूती। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 30 से अधिक देश लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को बांटे नियुक्ति पत्र, लखनऊ में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं के साथ ली सेल्फी, नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं की मांग पर उनके बीच पहुंचे थे सीएम योगी। योगी सरकार ने स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड किया मंजूर, 3,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए बजट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: डीआरडीओ की विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरित करने पर रक्षा मंत्रालय की मोहर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी इससे मजबूती। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट, बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 30 से अधिक देश लेंगे भाग। ओणम के जश्न में मना नया रिकॉर्ड, 3000 धोतियों का उपयोग करके बनाया 30 फीट व्यास का पुकल्लम, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, बेड, दवाइयों और
1: न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
13: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। मंगलवार पर जब प्रदोष का योग बनता है तब होता है भौम प्रदोष। महादेव और हनुमान जी की उपासना का बहुत खास दिन है भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन तो वैसे भी हनुमान जी की पूजा की जाती है और प्रदोष की तिथि पर पूजा जाता है, महादेव को भी पूजा जाता है और मान्यता है कि प्रदोष व्रत में शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजन करने वाले व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, मंगल संबंधी समस्या हो तो निवारण कर सकते हैं। भौम प्रदोष का और क्या कुछ महत्व है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

0: che si giuola in questo piton. Bambole, bambole, bam, bam, bam.
1: सावन का महीना और भौम प्रदोष का व्रत। जब माँ गौरी संग बरसेगी हनुमान जी की कृपा। परम फलकारी भौम प्रदोष पर मिलेगा वरदान। महादेव संग महावीर करेंगे कल्याण। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये तिथि है भगवान शिव के साथ रुद्रावतार वीर हनुमान के अनंत कृपा पाने की। माना जाता है कि महादेव की पूजा से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही हनुमान जी की उपासना करने वाले साधक को संकट छू भी नहीं सकता है।
2: भगवान स्वयं है ना प्रकट हुए हैं इस चातुर्मास के अंदर, उनके हाथ में ही इस समस्त संसार की बागडोर है। ऐसे में श्रावण मास में यदि आप प्रदोष व्रत वाले दिन, प्रदोष के दिन भगवान को सेवा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो जो फल आपको शायद एक साल अभिषेक करने का मिलता, वो क्षण भर में ही उसी एक दिन के अंदर आपको फल प्राप्त हो जाएगा।

0: और आपकी मन की कामना पूर्ति तुरंत ही हो जाती है।
1: ज्योतिषी कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन शिव की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब से लगने जा रही है भौम प्रदोष की तिथि। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को सुबह 6:21 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 26 अगस्त को सुबह 7:59 पर होगा। भौम प्रदोष व्रत के पूजन का समय 25 अगस्त शाम को मिल रहा है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से रात 9:04 तक है। इस काल में महादेव संग माँ गौरा और हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं।
0: इस बार तो बहुत ही सुंदर योग आपने बता दिया, साथ में त्रिपुष्कर भी बन रहा है। उस दिन मंगलवार के दिन श्रावण मास में हर मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन भी होता है, साथ में भौम प्रदोष भी उस दिन पड़ गया, त्रिपुष्कर योग भी है। तो आप ये समझ लीजिए ऐसा सुंदर और दुर्लभ संयोग आपके जीवन में बार बार तो संभव नहीं है। इसका लाभ उठाकर अपने जीवन का कल्याणार्थ प्रयोग करें।
1: पंचांग की तिथि कहती है कि हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि आती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि एक माह में दो प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों भौम प्रदोष की तिथि को ज्योतिषी इतना कल्याणकारी मानते हैं। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं, साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष की तिथि पर शाम की पूजा उपासना महाफलदायी है।
0: जैसे सोमवार को पड़ने वाला सोम प्रदोष मंगलवार को पड़ने वाला भौम प्रदोष कहते हैं, यदि श्रावण मास के भौम प्रदोष में व्यक्ति भगवान का रुद्राभिषेक करे तो भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है उसके अतिरिक्त मंगल ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा जीवन में चली आ रही है, या आपका कोई संपत्ति विवाद चल रहा है या संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सबसे सुंदर आपको असर भौम प्रदोष वाले दिन मिलेगा।
1: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि सावन में आने वाला हर मंगलवार माँ महागौरी को समर्पित होता है, जिस तिथि पर विवाह संबंधित बाधा का निदान होने की मान्यता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस तिथि पर शाम की पूजा करने वाले भक्तों की मंगल संबंधी परेशानियों को भी महादेव दूर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं भौम प्रदोष की पूजन विधि। संध्या काल में स्नान करने के बाद संध्या वंदना करें, भगवान शिव की पूजा करें, घर के ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करें, शिव जी को पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वोत्तम होगा। अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें, निर्धनों को भोजन कराएं। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में कर लें तो और भी उत्तम होगा। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभदायी होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भौम प्रदोष के दिन मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से होने वाली समस्याएं भी समाप्त होती हैं। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा लाभदायी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि मंगल दोष की समस्या अगर हो तो कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं।
0: मंगल ग्रह की शांति प्राप्त, भगवान शिव की कृपा प्राप्त, इसके अतिरिक्त अगर मंगल ग्रह से होने वाली पीड़ा है अर्थात लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मुकदमे आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो भौम प्रदोष वाले दिन आप उपवास भी रखें और भगवान का जलाभिषेक भी करें, रुद्राभिषेक भी करें, सब पीड़ाएं दूर होकर आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है और आपके सारे कार्य सुगम होने लगते हैं।
1: भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं, भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें, मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें, हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांटें, मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली में मंगल खराब हो तो जीवन में कर्ज बढ़ जाता है।

0: जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है। और अगर मंगल खराब होने पर लिया गया कर्ज उतारना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे में भौम प्रदोष वो दिन है जब आप महादेव और हनुमान जी से कर्जों से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं।
1: यदि किसी व्यक्ति को कर्ज से लगातार परेशानी चल रही हो, चाहे वो ऋण बैंक का हो चाहे वो निजी ऋण लिया हो, भौम प्रदोष वाले दिन उपवास रखने के पश्चात भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक में विशेष सामग्री एक जरूर रखें, वो है पीली सरसों। पीली सरसों भगवान को लगातार चढ़ाएं, मंत्र के साथ हर सामग्री के बाद पीली सरसों चढ़ाते जाएं। जैसे जैसे पीली सरसों आपकी पूर्ण होगी, अभिषेक संपन्न होने तक आपके ऋण मुक्ति का बहुत सुंदर उपाय हो जाएगा।
0: कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि को करें। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितने आपकी उम्र है। हम हनुमते रुद्रात्म काय हूँ फट का 11 माला जप करें, सारे लड्डू बांट दें। भौम प्रदोष की तिथि पर जीवन में आने वाली कई परेशानियों को खत्म करने के कुछ खास महा उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उपाय करने से जीवन की बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं। आगे हम आपको बताएंगे भौम प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले कुछ महाप्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: भौम प्रदोष के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शाम की पूजा विशेष महत्व रखती है। कैसे? आप आज शाम को महादेव और हनुमान जी के पूजन से उनकी कृपा पा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन शाम को आप कुछ खास कर सकते हैं, ज्योतिषीय प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं वो प्रयोग क्या है।

0: अद्भुत है सावन का आखिरी मंगलवार। माँ मंगला गौरी की उपासना से होगा चमत्कार। माना जाता है कि सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की उपासना करने से साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही बजरंग बली की उपासना से संकटों का नाश होता है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष की तिथि पर आपको क्या करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें, अन्न वस्त्र या दक्षिणा का दान कर सकते हैं, दिन भर सात्विक विचार और आचरण रखें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें।
1: तो हम प्रदोष में विशेष तौर पे एक वस्तु का है, बाकी रुद्राभिषेक समान ही होता है भगवान का, मंत्र भी विशेष होते हैं, लेकिन उस दिन विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें कि भगवान को लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करें या पीली सरसों के साथ भगवान का अभिषेक अवश्य करें, तो आपको भौम प्रदोष का सारा फल प्राप्त होगा और साथ में आप संपत्ति निर्माण अवश्य कर पाएंगे जीवन में।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी के स्वामी हैं श्री राम और श्री राम भी महादेव को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए सावन में आने वाली भौम प्रदोष की तिथि मंगलकारी हो जाती है, क्योंकि महादेव की साधना करने वाले भक्त की न सिर्फ सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि साधक को हनुमान जी से भी अभय होने का वरदान मिल जाता है।
1: मंगल ग्रह पीड़ा अगर आपको दे रहा है तो भगवान शिव सभी ग्रहों को शांत

करने में सक्षम है। तो रुद्राभिषेक करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, उनकी आपत्ति आपको नहीं आती। पर भौम प्रदोष वाले दिन अगर आप करते हैं तो विशेष तौर पे मंगल ग्रह यदि पीड़ा दे रहा है, ग्रह गोचर आदि में कहीं पीड़ा में है, तो इस केवल एक रुद्राभिषेक भौम प्रदोष वाले दिन उपवास के बाद करने से, उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर भी जाए, हनुमान जी के मंदिर में अवश्य है ना प्रसाद चढ़ाएं और उनके बाएं पांव का

0: व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी भूमि संपत्ति विवाद और जीवन की सुरक्षा भवन निर्माण आदि करने में लाभ प्राप्त कर लेता है।
1: लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं, तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करें, गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। माना जाता है कि भौम प्रदोष की तिथि पर शाम को भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना आपकी सभी तरह की चिंता दूर कर देगी। तो मंगलवार की शाम को कीजिए महादेव संग महावीर की उपासना का खास प्रयोग, जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो सके। आगे हम आपको भौम प्रदोष की तिथि की सावधानियां भी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
2: हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शक्ति और हनुमत भक्ति एक साथ करने से साधक के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी, गौर से देखिए।

0: आस्था कहती है कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त का हमेशा ही कल्याण होता है, लेकिन खास तिथियों पर की गई पूजा उपासना से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। इन्हीं तिथियों में से एक खास तिथि है भौम प्रदोष की। जब भगवान गौरी शंकर संग बरस सकती है पवन पुत्र की कृपा।
1: भगवान को रक्त चंदन लगाएं अवश्य। रक्त चंदन चढ़ाने के पश्चात माता को, माता का जो स्वरूप है साक्षात बिल्व पत्र, बिल्व पत्र के ऊपर लाल चंदन से त्रिभुजा बिल्व पत्र लेकर लाल चंदन से राम लिखें और भगवान शिव को अर्पण करते हैं। एक वर्ष के अंदर ऋण मोचन अवश्य हो जाएगा, नारायण पर विश्वास।
0: हमने आपको भौम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास महा उपाय बताए, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें, शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें, शिव जी को केतकी केवड़ा अर्पित न करें, अगर उपवास न रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। शिव की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस खास तिथि पर आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। भौम प्रदोष की तिथि पर तामसिक भोजन से बचें, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें, किसी के साथ विवाद या अपशब्दों का प्रयोग न करें, जानबूझकर किसी का अपमान न करें। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसे व्रत रखने से पहले अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि महादेव के पूजन में जलाभिषेक ही संपूर्ण श्रृंगार है, साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा, भोलेनाथ की प्रिय सामग्री। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आप महादेव के पंचाक्षरी मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप भी विधि विधान से भोलेनाथ की भक्ति में खो जाइए, जिससे माँ गौरी शंकर संग बरसेगी बजरंग बली की कृपा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियां देखिए उफान पर हैं और कुछ जगहों पर ये बारिश मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से कुछ लोग अब पानी के तेज बहाव में फंस गए। SDRF ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया। उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में भी SDRF जवान की मुस्तैदी की वजह से एक युवक की जान बचाई गई।

0: आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और गाड़ियाबंद में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव और कस्बों समेत शहरों के भी कुछ रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गाड़ियाबंद में हालात बाढ़ जैसे हैं। गाड़ियाबंद जिले के देवभोग में बारिश की ये चुनौती चार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। पिछले दो दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बेतहाशा बारिश से तेल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी में तेज बहाव की वजह से टिकरापारा नाला में चार लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस और एसडीआरएफ को दी तो एसडीआरएफ ने फौरन रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। शाम ढलने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल भी हो गया। सबसे पहले एसडीआरएफ का एक जवान एक रस्सी के सहारे पानी में फंसे चार लोगों तक पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों को रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। जिन्हें खुद इस पानी से निकलने में दिक्कत हुई उन्हें एसडीआरएफ के जवान ने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में नदियों का तेज बहाव चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उत्तरकाशी के खदारी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। इस युवक को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचा और उसी रस्सी के सहारे उस युवक को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू के बाद युवक को उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया। बारिश के इस मौसम में कई बार नदियों का तेज बहाव लोगों के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से साफ कर दिया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं होता। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अमित वाला है
2: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
3: सच है, चाह और लगन अगर पक्की है तो राही मुश्किलों से नहीं घबराते। इन छोटी बच्चियों को देखिए, कितनी कठिन डगर है पढ़ाई की, लेकिन मुश्किलों से डरकर जो हार मान जाए ये वो नहीं है। आसमान बरस रहा है, पहाड़ी रास्ता है, कीचड़ है, फिसलने का डर है, लेकिन भारी बैग कांधे पे लादे संभल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। छोटी बच्चियों का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है।

0: वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है, ये बात जानवर और पंछी भी खूब समझते हैं। अब मटके का नहीं नल का जमाना है, सो उसी हिसाब से खुद को तैयार कर लिया है। वैसे ये भी तो नए जमाने के ही हैं, इन्हें नल से पानी निकालना और फिर उसे बंद करना बखूबी आता है। मानना पड़ेगा, मटका हो या नल, कौवे का दिमाग अब भी उतना ही तेज चलता है। आए हाय, अदाएं देखिए इनकी, जींस टॉप और उस पर से काला चश्मा, गजब ढा रही है नाजम। और चाल तो देखिए इनकी, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे बलखा रही हैं जैसे रैंप पर उतरी हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसकी क्यूटनेस लोगों का दिल चुरा रही है। सब अपने ख्यालों में व्यस्त हैं और ये पेट पूजा में लगे हैं। देखिए कैसे ठेले पर रखे अंगूर में से एक एक अंगूर निकालकर मजे से मुंह में रख रहा है, मानो थाली में परोस कर मिला है खाने को। और सब कुछ इतने आराम से हो रहा है कि ना तो हाथ थामे उनकी मामा को उनके कारनामे की खबर लगी, ना ही उस दुकानदार को जिसके ठेले से अंगूर खाया जा रहा है। बच्चे की मासूमियत पर लोग मुस्कुरा रहे हैं।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: DRDO की विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरण करने पर रक्षा मंत्रालय की मोहर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स। बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 30 से अधिक देश लेंगे हिस्सा।
7: रामराज कॉटन ने 3,000 धोतियों से बनाया एशिया का सबसे बड़ा पुक्कलम। ओणम के जश्न के लिए एक नया रिकॉर्ड किया कायम, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, बेड, दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं की हुई समीक्षा। सीकर में धूमधाम से हुआ झूलन महोत्सव का समापन, खास अंदाज में नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार, बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त।

स्वाइन फ्लू का बुखार, क्या हो उपचार? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज इसी को लेकर, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि नॉर्मल खांसी जुकाम नॉर्मल बुखार से ये कितना अलग है। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान होंगे हमारे साथ, दरअसल राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। इसमें हालात को देखते हुए सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है, मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। तो स्वाइन फ्लू हर द्वार कैसे करे पलटवार, मॉनसून में सर्दी जुकाम क्यों हुआ आम, कैसे बढ़ाएं शरीर की इम्यूनिटी ताकि हम सेफ रहें, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स।

0: तो इस मॉनसूनी सीजन में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कहां कहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली, कर्नाटक समेत देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा केसेस हैं, तो वहीं दिल्ली की बात करें तो 1800 मामले। केरल तमिलनाडु में भी सांस में दिक्कत से जुड़े कई केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हालात पर लगातार नजर है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की है। मंत्रालय में राज्यों को जांच बढ़ाने और ऐसे मामलों के तुरंत उपचार की सलाह दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR का भी बयान आया है। उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू का कोई फिलहाल नया स्ट्रेन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार में भी H1N1 वायरस पर कई बैठकें हुई हैं। आज खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक बुलाई है। इस मॉनसून में सर्दी जुकाम के मामलों में इजाफा हुआ है, ये हर घर में सामने आ रहा है। और दिल्ली के अस्पतालों में भी फिलहाल आदेश ये दिए गए हैं कि बेड इसी को देखते हुए बढ़ा दिए जाएं। मरीजों की जांच को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि मई 2009 में देश में पहला मामला स्वाइन फ्लू का सामने आया था और दिसंबर 2009 से मार्च 2010 तक केस बढ़े थे। 2009 में WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। हालांकि 2010 की बात करें तो इसे वैश्विक महामारी की सूची से हटा दिया गया था, लेकिन 2014-15 में फिर से स्वाइन फ्लू के केस सामने आए और कई लोग इससे संक्रमित हुए थे। और इसके बाद 2019 में भी देश में कई मामले सामने आए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्वाइन फ्लू कभी खत्म नहीं हुआ था, कई साल इसका संक्रमण कम रहा जिससे केस नहीं बढ़े, पर अब इम्यूनिटी घटी है तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हर जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है, जिस पर सरकार और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं।
1: 25 टाइम 73 टेस्ट्स आर डन फॉर ऑल वायरसेस, सो वी नो एट एनी पॉइंट इन टाइम दैट विच वायरसेस आर सर्कुलेटिंग इन दीज हॉस्पिटल्स, बिकॉज दीज हॉस्पिटल्स आर बिग हॉस्पिटल्स, दे ड्रेन बिग एरियाज। So we, this is the sentinel surveillance that we are having. This is the syndromic surveillance. ऐसी syndromic surveillance हमारी diarrhea के लिए भी है, meningoencephalitis के लिए भी है, और fever without rash or with rash दोनों के लिए एक ही है। fever के लिए जो undifferentiated fever है, मतलब 5 दिन तक कोई और सिम्टम नहीं होता, सिर्फ बुखार होता। तो ये चार सिंड्रोम क्यों लिए हैं? क्योंकि ये चारों इम्पोर्टेंट हैं पब्लिक हेल्थ के हिसाब से और किसी भी आउटब्रेक के हिसाब से यही सिंड्रोम सबसे कॉमन है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो रेस्पिरेटरी सर्वेलेंस हमें दिखा रही है कि देर इज अ लॉट ऑफ सर्कुलेटिंग H1N1 विच इज इन्फ्लुएंजा ए होता है, एक इन्फ्लुएंजा बी होता है, ये दोनों ह्यूमंस में होते हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा ए में जो सबसे कॉमन हमें मिल रहा है, तो ए सबसे कॉमन है, उसमें H1N1 सबसे ज्यादा कॉमन है, और H3N2 जो है वो सिर्फ 2-3% है, बाकी 98% इज H1N1। बट इन एडिशन we are also finding some influenza B circulating, which is of the Victoria type. देश में दो होते हैं पर आजकल एक ही सर्कुलेट करता है, पर वो प्रीडोमिनेंट नहीं है, प्रीडोमिनेंट H1N1 ही है। और तीसरा के SARS-CoV-2 जो कोविड के भी कुछ केसेस अभी तक थोड़े ज्यादा आ रहे थे और अब वो डिक्लाइन पर हैं, पर आ रहे हैं। There is a mix of all three happening in the surveillance data that we are seeing. It is not a new strain. It is not a new virus that will cause anything very different. That is not what we, the picture we are seeing.
0: तो स्वाइन फ्लू के मामले दिल्ली में बढ़े हैं। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी अहम बैठक बुलाई और इसमें स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल रहे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है और अस्पतालों में तैयारी पूरी रखी गई है।
2: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, लगातार देखा जाए तो तेजी के साथ H1N1 के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार की क्या तैयारी है?
3: देखिए, सरकार पूरी तरह सजग है, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहे हैं हम पहले से सजग हैं हर चीज के लिए। हमने इसके लिए अलग से बेड, अलग से डॉक्टर, सबका व्यवस्था कर रखी है। कहीं भी कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब चीज कंट्रोल में।
2: एडवाइजरी जारी की है अस्पतालों को,
3: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को हमने आगे एडवाइजरी दी है, वही सोशल डिस्टेंस, भीड़ों में कम रहना, मास्क पहनना, थोड़े समय के लिए इस चीज को एडवाइजरी जारी की है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है हमारे दिल्ली अस्पतालों में, आप जाइए इलाज कराइए और चीजें कंट्रोल में है। सबसे बेस्ट बात है कि अभी तक कोई भी सैंपलिंग का रिपोर्ट कहीं से नहीं आई है, पेशेंट आए इलाज करा के अपने घर गए।
2: नंबर कितने केसेस जो है अब तक?
3: देखिए H1N1 के 2308 केसेस हुए हैं और इन्फ्लुएंजा को मिला के लगभग 3000 केसेस हैं, जिसके काफी लोग के इलाज होकर अपने घर गए हैं।
0: तो चलिए, सरकार और प्रशासन लगातार दावा कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, हालात काबू में है, तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि बावजूद इसके इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड हो, मरीजों का टेस्ट लगातार किया जाए और उस हिसाब से उपचार हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हमने LNJP अस्पताल में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की।
2: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से आज एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है दिल्ली के तमाम अस्पतालों और एजेंसीज को लेकर के। और ऐसे में जो 2000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर बढ़े उसको लेकर के अस्पतालों में तैयारियां भी जो है वो तेजी के साथ इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। ये LNJP का स्पेशल वार्ड जो है वो H1N1 के लिए जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि फिलहाल यहाँ अभी पेशेंट जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी पेशेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज के हैं और खांसी जुकाम के सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं। हमारे सर LNJP के डॉक्टर हैं। सर, क्या तैयारी है सरकार की, कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं फिलहाल LNJP के अंदर अभी?
4: जी, ऑलमोस्ट 0.5-1% के लोग जो है सर्दी खांसी और बुखार के प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। हमारे पास, हमने अभी 7 बेड का इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें 2 वेंटिलेटर भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम उनको यहाँ पर रखकर इलाज कर सकते हैं, फिर उनकी जांच के बाद उचित तौर पर इलाज किया जाएगा।
2: सावधानी बरतने की जरूरत है और अगर इस तरीके के जो सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर वो सिम्टम्स हैं तो उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से ये वार्ड जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि खासकर लोगों को हाई फीवर रहता है और ऐसे में फ्लूड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए ORS की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि लोग जो है वो पेशेंट अगर यहाँ पर आए तो उनको इस तरीके से क्या मेडिकेशन देना है वो सब तैयारी जो है वो की गई है। स्पेशल स्वाइन फ्लू का ये वार्ड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया और हर अस्पताल के अंदर इस तरीके के वार्ड तैयार करने की सरकार की तरफ से हिदायत जो निर्देश है वो दिए गए हैं।
0: और इस बीच बहुत अहम हो जाता है एम्स की पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया इस पर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, एक बार उनको सुनते हैं।
5: तो H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट केसेज आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजली सी ड्यूरिंग।
0: तो राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू H1N1 के केस बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैसा अभी आप सुन ही रहे थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बताया कि 2300 से ज्यादा मामले इसमें सामने आए हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव बगई पद्मश्री अवार्डी हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर वली पद्मश्री अवार्डी अगेन, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा हैं, CEO है ICRC के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर बगई, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर देते हैं डॉक्टर साहब। एक नॉर्मल खांसी जुकाम, एक नॉर्मल बुखार, उसमें और स्वाइन फ्लू, दोनों में अंतर क्या है? एक आम मरीज किस तरीके से इसको पहचान सकता है? कौन सी वो स्टेज है जहां हमें लगे कि अब स्थितियां खराब है और अब हमें टेस्ट के लिए जाना है? क्योंकि बहुत से लोग एक नॉर्मल कोल्ड का, फ्लू में, बुखार में, वो डॉक्टर तक को विजिट नहीं करते हैं, एक पैरास्टामोल से अपना काम चला लेते हैं। डॉक्टर साहब ऑडियो म्यूट है डॉक्टर साहब,
6: सॉरी जी। जो हम अभी देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जो केसेस बढ़ रहे हैं जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, ये सीजनल फ्लू है। पहला पॉइंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो 2025 के एंड में जो इन्फ्लुएंजा था और इसमें बीच में कोई अंतर नहीं है, लीनियज में कोई अंतर नहीं है, कोई नया खास म्यूटेशन आया नहीं है। ये सीजनल फ्लू है, सेल्फ लिमिटिंग है। इसका जो लक्षण है बनिस्पत एनी अदर वायरल इन्फेक्शन जो थ्रोट को इफेक्ट करता है, पहले एक दिन दो दिन एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। जो तीन कार्डिनल चीज होती है, हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट, दूसरा सोर थ्रोट गले में दर्द, और तीसरा खांसी जुकाम। बॉडी एक एंड मायल्जिया हेडेक वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है उसके बाद। पहले दो दिन खाली पैरासिटामोल काफी रहता है। आपको हॉस्पिटल जाने की कब जरूरत पड़नी चाहिए या डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, अगर आपका फीवर डे थ्री डे फोर क्रॉस करे, अगर आपका फीवर हाई ग्रेड हो 103-104, बॉडी एक और शिवरिंग ज्यादा हो, वॉमिटिंग लूज मोशन हो, पेट में दर्द हो या कोई रैश हो, छोटे बच्चों में अगर बच्चे का सेंसोरियम यानी कि बच्चे की अलर्टनेस कम हो, फीडिंग कम हो, तब डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करें। हर एक फीवर इन्फ्लुएंजा नहीं होता और हर एक इन्फ्लुएंजा का टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। 95-98% ये जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड इन्फेक्शन होती है, अक्सर देखा गया एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, ये आके ऑटोमेटिकली चले जाती है। इसका सिंपल प्रिकॉशन घर में रखना है कि अगर आपको कोई खांसी जुकाम बुखार गले में दर्द हो, कम से कम 5-7 दिन आप अपने आप को आइसोलेट करें घर में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 दिन रहता है, पीक 4th दिन होता है और इन्फेक्टिविटी पीरियड 8 और 10 दिन रहता है। तो कम से कम 7-8 दिन आप घर में रहिए, मास्क पहनिए, अपने आप को एक्सपोज मत करिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये बिल्कुल सेफ है। इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन 60-65% है, 80-85% प्रोटेक्शन है टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सिवियर डिजीज, स्पेशली बच्चों में, एल्डरली में जिनको कोमॉर्बिड है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनको जरूर वैक्सीन लगाना चाहिए। बिल्कुल सेफ है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, रेडिली अवेलेबल है। इसमें जो हम कहते हैं एनुअल फ्लू शॉट उस प्रकार से दिया जाता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
0: ठीक,
6: इसका टेस्टिंग तब करना चाहिए जब डॉक्टर कहे। अगर आप टेस्ट पहले दिन ऑफ फीवर में कराएं, डे वन ऑफ फीवर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, ये टेस्टिंग का जो डिसीजन है वो डॉक्टर का होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा इस टाइम पर, सिंपल पैरासिटामोल काफी रहता है घर में। छोटे बच्चों में ज्यादा कॉफ सिरप नहीं देना चाहिए, वो ज्यादा हानिकारक है। कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स या कॉम्बिनेशन पेन किलर फीवर मेडिसिन नहीं देना चाहिए। निमोसिलाइड, एस्पिरिन, ब्रूफिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल होता है और इसमें कोई रोल एंटीबायोटिक का नहीं है, कोई होम रेमेडी का रोल नहीं है। सिंपल बेड रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन, अच्छे से पानी पिए, रेस्ट करें, अपने आप को आइसोलेट करें, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है।
0: ठीक है, यानी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी। डॉक्टर वली, अब आपके पास आते हुए, डॉक्टर साहब केसेस आप भी देख रहे होंगे इस वक्त काफी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं डॉक्टर बगई की बात से ही आगे आपसे पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब आजकल क्योंकि इसको लेकर हम चर्चा बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, नॉर्मल अगर फीवर की बात करें, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर वाली आप ही से सवाल है, नॉर्मल फीवर की भी अगर आजकल हम बात करें, वायरल जिसकी चर्चा अक्सर होती है, 7-10 दिन तक नॉर्मल लोगों को वायरल रहता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बगई ये कह रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है 4-5 दिन तक अगर फीवर उतना रहता है तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट के लिए जाना है। डॉक्टर साहब इस पर एक राय मैं आपकी भी जानना चाहूंगी।
7: हाँ नवजोत जी, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, चिंता का विषय बन गया है। मीटिंगें हो रही हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सर जोड़ के बैठा है, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब दिखा रहे हैं ना, पूछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बरसात तो अब आपे से बाहर हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब हमारे यहाँ वो जो 3 ऋतुएं पढ़ाई जाती थी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, वो नहीं हो रहा है। अब कभी भी बरसात है तो पानी को मत इकट्ठा होने दो, गंदगी को कम करो, और दो बातें मैं डॉक्टर बगई के साथ हूं, जो जो बताया उन्होंने, आई फुली एंडोर्स हिम। प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी वैक्सीन रिकमेंडेड है उनको भी, और सबसे जो बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूं, जिन बच्चों को बुखार आ रहा है उनके माँ बाप उनको स्कूल ना भेजें, नंबर वन। कोई आदमी मुझे सड़क पे 4-5 के अलावा 100 में ऐसा नहीं दिखता जो रेनकोट पहन के घर से निकल रहा हो, बारिश में भीग रहे हैं लोग, तो ये प्रोन कर रहा है स्वाइन फ्लू के लिए। और तीसरा सबसे बड़ी मुझे जो शिकायत है, लोग इसको भूल गए, संतरी को भूल गए, सिपाही को भूल गए, रक्षक को भूल गए, इसको मैं याद दिला रहा हूं, ये है मास्क, मेरा अपना स्वास्थ्य कवच, MASK, इसका मैंने नाम दिया था कोविड में, मेरा अपना स्वास्थ्य कवच। तो ये मास्क से हम बच सकते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाइए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताएंगे, डॉक्टर बगई जैसे डॉक्टर्स हमारे देश में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं सस्ती, अच्छी और हमेशा उपलब्ध हैं। हमारे डॉक्टर रात के 12-12 बजे फोन लेते हैं पेशेंट्स के, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। हमारे पेशेंट्स को चाहिए सेल्फ मेडिकेट ना करें, नंबर वन। नंबर टू, टीका के लिए उपयुक्त योग जैसे डॉक्टर बगई ने अभी पॉइंट आउट किया है, वो सब टीका लगवाएं, एनुअल फ्लू शॉट लगवाएं, अभी वाला एक शॉट आ गया है जो और भी इम्यून अच्छा करता है, इन्फ्लुवैक के नाम से आता है, फ्लुवेरिक्स के नाम से आता है, वैक्सीग्रिप के नाम से आता है, ये सब है। तो ये वैक्सीन्स बहुत जरूरी हैं लगाने और इनसे बचाव होगा, लेकिन सबसे जरूरी हमारा परम मित्र जो है वो मास्क है
0: जी।
7: मास्क पहली रुकावट है, पहला जेल का दरवाजा है, और मास्क जो है बैरियर है, मास्क हमारा दोस्त है, मास्क इससे मिलती जुलती सभी बीमारियों से बचाव है,
0: ठीक है।
7: और स्वास्थ्य स्टेट में भी लगाएंगे तो पोल्यूशन से बचाव है, जापान के लोग मास्क लगाते हैं स्वस्थ रहते हैं, ये तो सीखा है हमने उनसे कोविड में, लेकिन हम भूल गए। नवजोत जी आप सही याद दिला रही हैं आज सबको, मैं सोचता हूँ कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
7: और हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से अभी भी बचना चाहिए।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटती हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा यहीं से, मास्क जरूरी है, डॉक्टर वली कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, यानी वन मास्क, नंबर टू सोशल डिस्टेंसिंग, और नंबर टू सैनिटाइज करना। क्या मतलब तमाम जो कोविड वाले नियम हैं, वक्त आ गया है कि उन्हीं को दोबारा फॉलो किया जाए, क्योंकि वायरस जो है वो बहुत देर तक सस्टेन करता है, तो ऐसे में क्या हमें उन्हीं नियमों को फॉलो करना चाहिए?
8: ज्योति जी, इसमें तो मेरे ख्याल दो राय हो ही नहीं सकती हैं। अब जब कोविड आया था 5-6 साल हो गए, अब तो 2000 से 2026 खत्म होने जा रहा है, उस समय का जो माहौल था ये तो नहीं कि उस समय ये स्वाइन फ्लू नहीं था या और तरीके के सर्दी जुखाम नहीं होते थे, पर चूंकि उस समय हम लोग सब लोग सतर्क थे क्योंकि जान का भी खतरा था, और कहीं ज्यादा सीरियसली इन प्रिकॉशन जो हमारे डॉक्टर वली ने और डॉक्टर जिंदी ने बोला कि मास्क लगा रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में थूक नहीं रहे हैं, अगर छींक रहे हैं तो उसके अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन ले रहे हैं, कॉफ कर रहे हैं तो उसका रास्ता रोक रहे हैं, ये 4-5 चीज जो हम लोगों ने करी थी वो हम तो चाहते हैं कि फिर से, मे बी उतनी मात्रा में नहीं होगा कि भाई सब दुकानें बंद हो जाए, ऑफिस बंद हो जाए, वो ऑब्वियसली नहीं है इस समय, पर जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो मेरे ख्याल से हम लोग को कंटिन्यू करने चाहिए कोविड वाले। अभी भी जैसे कि डॉक्टर संजीव ने बताया कि कोविड भी चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है, बट ऑब्वियसली वो वाला हाल नहीं है, पहले के मुकाबले में रिलेटिवली बहुत नंबर कम है, और साथ साथ में लोग बाय एंड लार्ज जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, और साथ साथ में डेथ्स भी उसकी वजह से ऊपर वाले का शुक्र है नहीं हो रही है। तो अगर चाहते हैं लोग कि किसी वजह से, जैसे लास्ट ईयर करीबन 270 केसेस रिपोर्ट हुए थे इस पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू के, इस साल हमारे ऑलरेडी जैसे कि आप लोगों ने दिखाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि 2500 के आसपास नंबर आ गया है, और इसमें से कई ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं करे जाते हैं, कम से कम 30-40-50% जो होंगे वो रिपोर्ट नहीं करे जाते हैं। आमतौर पे अगर इंडिविजुअल हेल्दी है इसकी वजह से बहुत सीरियस इशू नहीं आते हैं, डेथ नहीं होती है, बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में या कि बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडीज में, खासतौर से जो भी उम्र वाले लोग हैं उसमें खासतौर से आदमी को ज्यादा प्रिकॉशन लेने हैं, और इन्फ्लुएंजा से डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं, हमारे देश में भी होती हैं, लोगों को ये पता नहीं है, कहने को चाहिए सीजनल फ्लू है, सिंपल फ्लू है, वो बिल्कुल ठीक है, पर जिन इंडिविजुअल्स में ये इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है उसमें काफी मामला सीरियस हो सकता है। तो इसको हल्के में ना लें, पर ये भी नहीं कि इमीडिएटली आप पैनिक बटन दबा दें और फौरन जाके उसका बड़े महंगे महंगे टेस्ट कराएं। जो प्रिकॉशंस अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई अगर बहुत सीरियस मामला नहीं है, बुखार तीन दिन में हल्का फुल्का है, ठीक हो जाता है, तो पैरासीटामोल लेके काम चला लें। पर आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि हमें क्या वही प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेरे समझ से यस।
0: बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति, अभी आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का वेदर है, हालांकि अलनीनो इफेक्ट है, एक दिन बारिश, एक दिन बहुत कड़क धूप, फिर बारिश, फिर धूप, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। काफी हद तक कहा जा रहा है कि यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक नॉर्मल फ्लू और हमें अब टेस्ट के लिए जाना है, बेसिक सिम्टम्स एक मरीज में कौन से होते हैं और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, और ये हर वर्ग के लोगों के लिए आप अलग अलग अगर बताएं, और अगर आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी आप अगर दे पाए हमें तो।
9: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर आज हम बात करें तो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो खांस रहा है, छींक रहा है, जिसे बुखार है, सर्दी है, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सबको H1N1 हो गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए जिस H1N1 की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है जो हम लोगों के बीच में आया है, कई सालों से यही स्ट्रेन हम लोगों को इन्फ्लुएंजा करता रहा है, सीजनल जो बीमारियां होती हैं इसकी वजह से सर्दी खांसी निमोनिया ये सब होता रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात है, देखिए अगर नॉर्मल किसी को जो है सर्दी खांसी हो रही है या इन्फ्लुएंजा की हो रही है, तो शुरू के दिनों में कई बार बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि किस कारण से हो रहा है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर बगई ने भी बोला कि अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, खांसी बहुत ज्यादा है, या किसी को बहुत ज्यादा लूज टूल्स वॉमिटिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये पेट के सिम्टम्स लेकर के भी सामने आ सकता है, या किसी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो ये ज्यादातर वो मामले हैं जहां ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये H1N1 पॉजिटिव हो सकते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को टेस्टिंग भी करानी चाहिए, ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलकर के जो ट्रीटमेंट है वो भी शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिंपल सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ा बुखार है, आपको लग रहा है घर में पैरासिटामोल लेके, थोड़ा एंटी एलर्जिक लेके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप तुरंत टेस्टिंग के लिए भागे या तुरंत आपको जो है कुछ इसके लिए स्पेशल मेडिकल केयर लेने की जरूरत है। लेकिन आपको डेफिनेटली घर में मास्क लगाने की जरूरत होगी, या घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चे हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको फिर भी करनी है, चाहे आपको H1N1 पता है या नहीं है, सिंपल आपको सर्दी खांसी भी हो रही है तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा जो बहुत जरूरी चीज इस वक्त है वो है हाइड्रेशन, यानी कि हम सब लोगों के लिए पानी अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों में, तो इस बात का खासतौर से ध्यान रखें। और अगर आपको पहले से अस्थमा है, कोई सांस की दिक्कत है, या पहले से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्या है, तो अगर आपके पास घर में नेबुलाइजर है तो उसको हैंडी रखिए, क्योंकि इस वक्त इनहेलर है तो उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे लोगों को अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो वल्नरेबल ग्रुप है, इनमें पूरी तरह से कई बार सिम्टम्स उभर करके सामने नहीं आते, इनको निमोनिया भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इस वर्ग को खासतौर से ध्यान रखना है और डॉक्टर से संपर्क करना।
0: बिल्कुल, अब डॉक्टर बगई में आप के पास आना चाहूंगी सर, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। देखिए हालांकि डॉक्टर वली ने कहा है कि अगर जरा सा भी बच्चे में खांसी जुकाम कुछ भी लग रहा है तो उसे स्कूल नहीं भेजिए, लेकिन अब स्कूलों में भी क्या मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या आप उनके लिए रिकमेंड करेंगे बच्चों को कैसे सावधानी बरतनी है?
6: मेरे ख्याल जो कोविड के जो हमें लेसन मिले हैं वो पिछले 2-3 साल में ज्यादातर पैन इंडिया लोग भूल गए। मैं चार इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम या बुखार है, उस दिन बच्चे को स्कूल मत भेजिए, हर दिन को आप रिव्यू करिए। अगर सर्दी जुकाम बुखार जैसे जस्ट अ पासिंग वायरल है, सीजनल वायरल है, सेटल हो जाता है तो अगले दिन या तीसरे दिन भेज सकते हैं। स्कूल के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन द चेयर्स एंड द बेंचेस जरूरी है। जो ये वायरस है H1N1 ये 7 feet तक ट्रेवल करता है, ये माइक्रो एरोसोल है, ये एयरबॉर्न है, ये खांसी जुकाम स्नीजिंग के साथ फैल सकता है। दूसरी चीज है बच्चों को स्पेशली अगर पूरी क्लास हो मास्क पहनने का एडवाइस देना चाहिए। तीसरी चीज हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। एक सिंपल चीज है कि आप एक हैंड सैनिटाइजर हर क्लास में रखें, बच्चे को दोबारा एजुकेट करें हैंड वॉशिंग के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली जो बाहर का खाना है ताकि बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग ना हो, फास्ट फूड है वो अवॉइड करें, गुड न्यूट्रिशन दें, एडिक्वेट हाइड्रेशन दें। बच्चों में डिहाइड्रेशन क्योंकि फीवर के कारण, फीवर एक स्ट्रेस होता है, तो जो बच्चे का जो फ्लूड लेवल होता है क्योंकि उनकी बॉडी रिजर्व्स कम रहती हैं वो जल्दी कम हो जाता है, तो वो डिहाइड्रेशन के ज्यादा प्रोन होते हैं। सो कोई एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं देने, शुगरी ड्रिंक्स नहीं देने, सिंपल होम लिक्विड्स। इम्पॉर्टेंट है कि आजकल दोबारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, और जैसे ये वायरल इन्फेक्शन होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और होममेड डॉक्टर्स तो पूरी दुनिया में ही उभर आते हैं। जो केले का रस, करेले का रस, पपीता का लीव्स या लौकी का जूस, ये सब चीज इन्फ्लुएंजा को कोई असर नहीं करती है। इसके साथ बच्चे को और हानि हो सकती है, बेनिफिट नहीं होता। सिंपल पैरासिटामोल, नो डीकंजेस्टेंट, कोई कॉफ कोल्ड फीवर कॉफ कोल्ड की मेडिसिन नहीं देनी। डे टू के पहले तो प्लीज टेस्ट कराइए मत, और अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। अपने आप एंटीवायरल प्लीज शुरू मत करिए। मैंने बहुत से एडोलेसेंट्स देखे हैं, यंग पेरेंट्स देखे हैं, वो एंटीवायरल जिसे हम कहते हैं ऑस्टेमिविर, वो पहले शुरू करके आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एंटीवायरल्स वो खाली तब रिजर्व रखते हैं अगर कोई पेशेंट सिवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, या हम पहले 48 hours में इस दवाई को शुरू करें। घूमते घामते day 3, day 4, day 5 में आप ये शुरू करेंगे तो उसका कोई असर नहीं है। सो सिंपल मैसेजिंग की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। सिंपल मैसेज है प्लीज डू नॉट पैनिक,
0: पैनिक नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, एक लाइन और जोड़ दूं कि खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से ही आपको अपने बच्चे का इलाज शुरू करना, या फिर अपना भी अगर इस तरह की सिचुएशन यहां पर आती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, बिना पैनिक किए किस तरीके से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना है और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना, इन सब पर चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का मिनट।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: स्वाइन फ्लू का बुखार क्या हो उपचार, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वली, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद भी यह है कि लोग पैनिक नहीं करें, और ये चीज हमने पहले भी देखी है, कोविड टाइम पे भी देखी है कि जरा सा खांसी जुकाम फीवर होता है, वो थोड़े दिन और ज्यादा अगर एक्सटेंड हो भी जाता है तो लोग तुरंत से टेस्ट के लिए चले जाते हैं। अब अभी डॉक्टर बगे ने बहुत अच्छी बात कही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और जो खुद लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ये सबसे गलत है, डॉक्टरी सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को फीवर है, किसी को फीवर है, फीवर बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए?
1: डोज की बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। ठीक है, पैनिक तो होता है घर में भाई, उसको हम लोग डिफ्यूज करते हैं। पेशेंट तो करता है पैनिक, माँ करेगी बच्चे को स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, क्यों नहीं करेगी? मैं एक बाप हूं, आप एक माँ है, क्यों नहीं करेंगे? पैनिक है, बट पैनिक से पहले की सावधानी भी तो है, ये वाली ये जो सावधानी हम बता रहे तो इसको जरूरी करना है। ठंडा पानी ना पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, बाहर का खाना शायद बताया गया है अभी ना खाओ, पेन किलर, हाँ पेन किलर वो वाले जो हम लोगों के मना होते हैं, जो ब्लड को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हम खास तौर से डेंगू में मना करते हैं, उस टाइप के नहीं लेने चाहिए। पैरासीटामोल बेस्ड पेन किलर्स लेने चाहिए, एक गोली की जगह दो गोली ले सकते हैं अगर एक से फायदा होगा। और कोल्ड बात, ये ठंडे पानी से नहाना, ये बरसात में भीग के आ गए और फिर नहा लेना, तो ये अवॉइड करना चाहिए, ये सावधानियां हैं। मैं शुभ हूं, ये क्यों होता है, हम लोग क्यों नहीं सीखते? कब तक नवजोत तो और डॉक्टर वाली, डॉक्टर बगाई और अपनी डॉक्टर साहिबा बताती रहेंगी हैं। ये हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम खाली बैठ जाए, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वली, डॉक्टर बगाई, पब्लिक इतनी समझदार हो जाए कि वो खुद हाइजीन प्रैक्टिस करे, खुद बीमारी से बचे, खुद एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे, अपने लंग्स को पावरफुल बनाए, और जागते समय मानता कोई नहीं नवजोत जी ये ट्रेजिडी तो यही है हमारे यहाँ, पढ़ लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री सबके पास है, मानेगा कोई नहीं। अच्छी बात बार बार याद दिला रहा हूँ, मास्क, ये मेरा मास्क है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और सबको करना चाहिए, दूसरे भीगने से परहेज। आपने बहुत अच्छी बात शुरू में बीच में सबने भी की है कि बरसात के मौसम की बीमारी, अब तो बरसात ही बेकाबू हो गई, आप इसे बाहर हो गई, आपने एल नीनो की बात कर ली, ब्रिलियंट, अब तो यही नहीं पता बरसात कब होगी, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से भी नहीं होती कभी कभी, तो बरसात में भीगने से परहेज करना है। ये मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, और मैं बहुत शुभ हूँ कि हम लोग जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे।
0: बिल्कुल,
1: और ये खैरियत है कि स्ट्रेन वेरिएंट जो है लाइट है, माइल्ड है, म्यूटेट नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो क्या करोगे भाई, तो उसका इंतजार मत करिए, आप अपनी सुरक्षा, हिफाजत, डिसिप्लिन, अनुशासन, और समय से सोना, समय से उठना, ताजा खाना खाना, ये सब जनरल जो प्रिकॉशन है हेल्थ की प्रिकॉशंस तो लीजिए ना, उसमें ये भी आ जाएगा। उस अभी एक चैनल पे मैंने मलेरिया और डेंगू की बात करी है, वो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। अब क्या क्या नहीं हो रहा है बरसात में, एक तरफ हम भीग रहे हैं, दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग हो रही है, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। हमको अच्छी चीजें जो जानते हैं उनका पालन करना चाहिए। और मैं आखिरी बात ये कह के आपसे वार्तालाप का कटा कलाम करूंगा कि पीपल शुड नो अबाउट देयर सो मच दैट वी गेट अनएम्प्लॉयड। इतना अच्छा आप अपनी सेहत को रखिए कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े।
0: बिल्कुल, जिसको हम डॉक्टर साहब सरल शब्दों में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर मेहरोत्रा आपके पास आऊंगी। वैक्सीन की जब बात होती है, दो सवाल, पहली बात कब लगानी है, किसे लगानी है, और जो कोमोबिडिटीज वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी जरूरी हो जाती है?
2: बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन जो है वो सिर्फ बच्चों को लगाने की जरूरत है, बड़ों को जरूरत नहीं होती है। तो छोटा सा एक फैक्ट, आई एम श्योर आपकी ज्यादातर जो व्यूअर है वो जानते हैं कि इन एडिशन टू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि हर हालत में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है छोटे बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन और क्रॉनिक डिजीज यानी कि ऐसे डायबिटीज है या और कोई क्रॉनिक डिजीज है जिससे कि इम्यून सिस्टम कम होता है कैंसर से पीड़ित लोग हैं या ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रही है चाहे जिस उम्र के हों उनके लिए ये अहम होता है। वैसे तो मैं कहूंगा हर एक को लगानी चाहिए विदेशों में तो वो सब इंडिविजुअल्स को 17 साल के बाद कहते हैं कि ये वैक्सीन हर साल आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वैक्सीन जो आप जानते हैं जिसको कि हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कैंसर की वैक्सीन बच्चों को लगती है 9-14 साल के बीच में HPV वैक्सीन खासतौर से लड़कियों को अब लड़कों के लिए भी लगने होगी जरूरत साथ साथ में उम्र के साथ में 65 साल की उम्र के बाद खासतौर से न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जरूरी है। ये तीन वैक्सीन इन्फ्लुएंजा न्यूमोकॉकल और तीसरा होता है शिंगल्स यानी कि हर्पीस ज़ोस्टर उसको बोलते हैं। तो ये तीन वैक्सीन बड़ों में भी लगाई जाती हैं खासतौर से हर्पीस और न्यूमोकॉकल तो एल्डरली लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अधिकांश लोग नहीं जानते हैं इस बारे में पर धीमे धीमे करके अब लोग समझने आगे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी वैक्सीन खासतौर से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पहले के मुकाबले में ज्यादा अवेलेबल है बहुत ज्यादा महंगी नहीं है और जैसे बात हो रही थी कि फॉर्चुनेटली ये वाला जो इस बार H1N1 है ये वही स्ट्रेन है इसमें कोई चेंज नहीं है इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। और अगर ये जो आप लगाते हैं वैक्सीन इसमें कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है और एट द सेम टाइम इसको जितनी जल्दी आप लगा सकें क्योंकि इसका असर आते
0: वही है डॉक्टर साहब की डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही लगाते हैं। इसका असर कितने दिन में होता है डॉक्टर साहब?
2: इसको 2 हफ्ते लग जाते हैं इसके असर आते आते तो इसलिए जैसे आज आपको मालूम है कि डायग्नोसिस हुई तो उस समय लगाने का कोई फायदा नहीं है ये कायदे से तो पहले लगानी चाहिए। जैसे ये हर साल होता है कि बरसात शुरू हुई और ये कोविड साथ में मलेरिया डेंगू और H1N1 करीबन हर साल ये आते हैं तो मैं तो बोलूंगा कि जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है हर आदमी को लगा लेनी चाहिए।
0: ठीक है डॉक्टर स्वाति अब आपके पास आते हैं डॉक्टर सब लौटते हैं डॉक्टर स्वाति बहुत देर से इंतजार करिए डॉक्टर स्वाति क्योंकि देखिए प्रिकॉशंस अब कहा जा रहा है बिल्कुल कोविड जैसी आपको मास्क लगाना जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइज खुद को करके रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं खासतौर पर अगर इम्यूनिटी ठीक करनी है तो क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे ही सीधा निशाना लगाता है।
3: बिल्कुल देखिए अभी डॉक्टर मेलिसा ने भी इस चीज के बारे में बात करी थी क्योंकि हम एक तरफ जहां गर्मी है ह्यूमिडिटी है वहीं क्या होता है कि हम जब बाहर से अंदर आते हैं हम ऑफिस में स्टेप इन करते हैं स्कूल पहुंचते हैं या हम घर आते हैं बाहर से गर्मी में तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं एकदम चिल्ड वाटर पीने की कोशिश करते हैं या फ्रिज से निकाल करके एकदम ठंडा पानी जो है वो लोगों को चाहिए होता है या बच्चों को चाहिए होता है। ये एक हमारी प्रैक्टिस है जो हमें नुकसान देती है क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों के गले खराब होते हैं सर्दी खांसी होती है हमारा इम्यूनिटी लेवल ये डाउन करती है तो एक तो हमें ये डेफिनेटली अवॉइड करना है कि अगर हम बहुत गर्मी से बाहर से आए तो एकदम से ठंडी चीजें नहीं लेनी है। दूसरा अभी के समय में हमें कुछ जो फ्रिज की बहुत ठंडी चीजें होती हैं वो बच्चों के साथ इस वक्त अवॉइड करनी चाहिए हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब चीजें आ जाए तब उनको दें। साथ ही जो मौसम के फल सब्जियां होते हैं इनका प्रयोग हमें जो है बढ़ाना है इनको हमें बच्चों को भी खासतौर से सिखाना है कि कुछ फ्रूट्स जो है स्पेशली वो बच्चों के लिए भी खाने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जो नेचुरल विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं जो आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि स्विगी जोमैटो ये सब चीजों का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं या पेरेंट्स भी सहूलियत की वजह से बच्चों को ऐसा खाना परोस रहे हैं तो ये हमें डेफिनेटली देखने की जरूरत है कि हम हेल्दी फूड बच्चों को और खुद भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं इस चीज का खासतौर से ध्यान रखना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है जैसे हमने पहले बोला था कि अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं होगा तो इम्यूनिटी लेवल भी वो प्रभावित करता है। तीसरी चीज हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम इस वक्त जो भी चीजें हम जैसे बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके बाहर निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं जैसे वैक्सीन के बारे में अभी बात करी गई तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या खासतौर से जो वल्नरेबल ग्रुप है वो वैक्सीन लगवाए लेकिन अगर किसी को बुखार हो रहा है या H1N1 हो गया है तब आप डेफिनेटली ये वैक्सीन मत लगवाइए। इस बात को ध्यान रखिए कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि अगर किसी को H1N1 है या आज मुझे सर्दी खांसी हो गया है तो मैं सोचूं कि आज ही वैक्सीन लगवा लेती हूं तो मुझे H1N1 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये पहले से प्रिवेंटिव के तौर पर लगानी है कि अगर, ताकि एक आपको इससे इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन दूसरा कई बार वैक्सीन के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन होता है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये हमने कोविड के साथ भी देखा था। लेकिन एडवांटेज ये है कि तब आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि अगर इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीन के बाद तो वो बहुत सिवियर नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह फॉल नहीं होंगे, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन एक अच्छी चीज है, और खास तौर से जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, लंबे समय से पर है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, ये खास तौर से ऐसा वर्ग है जिनको वैक्सीन डेफिनेटली लगवाना चाहिए, सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए इस वक्त बैठ के कि लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए। और वहीं बच्चों का वर्ग भी एक ऐसा है, क्योंकि बच्चों में बहुत तेजी से स्कूल में ये मामले फैलते हैं और बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आपने कहा करना बहुत मुश्किल होता है, तो बच्चों को भी ये वैक्सीन जो है पेरेंट्स को इस वक्त लगवानी चाहिए। और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ओपीडी में भी जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत सिक पेशेंट्स नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको बुखार है, सर्दी खांसी है, और हम थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो 2-3 दिन में लोग घर में ठीक हो रहे हैं, इसलिए पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोविड के समय में ऑक्सीजन बहुत फॉल हो रहा था, लोगों को हॉस्पिटल में बहुत हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था, ये सिचुएशन अभी नहीं है, इसलिए डेफिनेटली हम थोड़े से जैसे आपने कहा प्रिकॉशंस अगर रखें और इन बातों का ध्यान रखें जो यहां सभी लोग बता रहे हैं, तो हम आसानी से जो ये इन्फ्लुएंजा का अभी वेव आया है इसको क्रॉस कर जाएंगे।
0: बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब, विटामिन सी कितनी इम्पोर्टेंट है ऐसे समय में?
3: डेफिनेटली देखिए, विटामिन सी जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध विटामिन सी खाने लग जाए। वो मौसम के फल सब्जी आते हैं, अगर आप उनका ही सेवन करें तो आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा, तो थोड़ा, लेकिन बस वही है, देखिए अगर हम प्रोसेस्ड फूड जंक फूड खाएंगे तो हमें कोई भी विटामिन नहीं मिलता, सी तो बहुत दूर की बात है।
0: बिल्कुल,
3: तो इसलिए अगर हम जब तक फल सब्जियां नहीं खाएंगे वो हमें नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल, आखिर में डॉक्टर बगई क्या नहीं करना है, क्योंकि डूज तो हम सब जानते हैं लेकिन डोंट को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
4: तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये समझना जरूरी है कि ये सीजनल फ्लू है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट नंबर टू, होम रेमेडीज, अलग अलग प्रकार के फल के या छिलकों का रस पीना बिल्कुल हानिकारक है। तीसरी चीज, मेडिसिंस जैसे आइबुप्रोफेन, निमोसिलाइड, एस्पिरिन, प्लीज हाथ मत लगाइए। अगर फीवर है, कैलकुलेटेड डोज, अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं क्योंकि वो कम डोज देते हैं पैरासिटामोल की, डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे पर हिसाब से कैलकुलेट करके आप पैरासिटामोल दीजिए, केवल पैरासिटामोल। तीसरी चीज, एंटीबायोटिक अपने आप मत शुरू करिए, अपने आप टेस्ट के लिए मत भागिए, एंटीवायरल बिल्कुल मत भागिए,

0: से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ओणम यानी खुशियों, रंगों और परंपराओं का त्योहार, लेकिन इस बार के ओणम में केरलम की धरती पर परंपरा ने कुछ ऐसा आकार लिया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि यहाँ फूलों से नहीं बल्कि करीब 3,000 नोतियों से तैयार किया गया 30 फीट का विशाल पुकलम। रामराज कॉटन ने कोची में ऐसा अनोखा पुकलम तैयार किया है जिसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। कुल मिलाकर ओणम के रंग, केरल की परंपरा और भारतीय परिधान की पहचान, जब ये तीनों एक साथ आए तब ये अनोखा नजारा तैयार हुआ। कोची के फोरम मॉल में रामराज कॉटन ने विशाल पुकलम तैयार किया और इसी के साथ रामराज कॉटन ने धोतियों से बनाया गया सबसे बड़ा पुकलम डिस्प्ले का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यानी जिस धोती को आमतौर पर भारतीय परंपरा और पुरुषों के पारंपरिक पहनावे के साथ जोड़ा जाता है, यहाँ हमारी उसी पुरानी परंपरा को नए अंदाज में पेश किया गया।
2: For recognizing our achievements, I think when the host mentioned that we had 3,000 varieties of dhotis in that two column, I think the forum mall did not have enough space because we have 7,000 varieties of dhotis. So next year, this record will be broken with 7,000 varieties of dhotis.
1: 28 अगस्त को भाई बहन की पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है और इसको लेकर देश भर में रौनक दिख रही है। पारंपरिक से लेकर स्टाइलिश राखियां बाजारों में है, इको फ्रेंडली राखियां भी लोगों को काफी लुभा रही। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं, तो देश भर में कैसी रौनक है आपको दिखाते हैं।

0: लेकर बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें बहनों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। यूपी के सहारनपुर की इस दुकान में राखियों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है, जिसकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, स्टोन, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर समेत अलग अलग डिजाइन वाली राखियाँ सजी हुई हैं। इस बार कपल राखी, फैमिली पैक और अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की खास डिमांड देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा म्यूजिक, लाइट, टॉय और ब्रेसलेट वाली राखियाँ समेत करीब 15,000 डिजाइन बाजार में मौजूद हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अपनी पसंद की राखियाँ भी खरीदती नजर आ रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नाग वाली राखी खूब पसंद की जा रही है, जिनकी कीमत 300 रुपए से 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजार में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। इसके अलावा जगह जगह अलग अलग तरह की राखियां बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड में माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं रक्षाबंधन को लेकर प्रकृति संरक्षण से जुड़ी पहल कर रही हैं। ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षित पारंपरिक राखी बना रही हैं।
2: हिमालय क्षेत्र से ये ब्रह्म कमल पुष्प लाया हुआ है, साथ में है केदार पाती और इसी के साथ ये है भोजपत्र। तो हम इन चीजों से प्राकृतिक राखियां बना रहे हैं और साथ में अपनी आजीविका को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं।
0: वहीं गुजरात के सूरत में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ सेवकों ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अनोखी पहल की है। यहां के माधव गौशाला में प्राकृतिक चीजों से राखी बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया गया है। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जिसे कलाई से हटाने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही मिट्टी में मिलने पर ये खाद का काम भी करेगी।
3: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है, एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: गोबर से राखी बनाने के पीछे गौ भक्तों का उद्देश्य गौ माता से जुड़ने का संदेश देना भी है। राखी बनाई भी जा रही है और राखी भेजी भी जा रही है। राजस्थान के पाली में स्थित इस मुख्य डाकघर की तस्वीर देखिए। यहाँ डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान के तहत इन दिनों खास तौर से स्कूली बच्चों की लाइन लगी नजर आती है। ये बच्चे सीमा पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियाँ भेजने यहाँ पहुँच रहे हैं, और अब तक 25,000 से ज्यादा राखियाँ यहाँ से भेजी जा चुकी है।
4: भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है, और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
5: जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: यहाँ आने वाले बच्चों को डाक विभाग के अभियान और रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, सूरत से संजय सिंह राठौर और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई बहन के रिश्ते का त्योहार और बाजार में एक से बढ़कर एक राखियों की भरमार। दुकानें राखियों से सजी हुई है तो जगह जगह राखी बनाई भी जा रही है। इन सब के साथ साथ राखी भेजने का सिलसिला भी चल रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। जहां जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, वहां भारतीय संस्कृति की पहचान दिखती है। पेरिस के पास बनकर तैयार हुआ स्वामी नारायण मंदिर भी इसी पहचान की मिसाल है। आज चाय पर चर्चा में जानेंगे इस मंदिर की कहानी और दुनिया में इसकी विरासत।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, बप्पा के स्वागत में सज रहे हैं पंडाल, हेमकुंड साहिब में आस्था का नया कीर्तिमान और उत्तराखंड की हिल यात्रा की खास तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था और परंपरा की खूबसूरत तस्वीरें आज होंगे।
2: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देखिए कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं तेज धूप तो कहीं बर्फबारी, मौसम का अजब मिजाज आपको दिखाएंगे और बताएंगे दुनिया भर में मौसम क्यों पहेली बन गया है, इसकी तस्वीरें भी आई हैं। दिल्ली NCR में धूप बादल और बारिश के बीच में मौसम का क्या हाल है ये भी जानेंगे।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए भारत में करीब 10 साल पहले शुरू हुआ UPI अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। देखिए UPI कैसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, इसकी पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार इसे भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रीढ़ आखिर क्यों मानती है।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोट्स का दमदार प्रदर्शन जारी है। रोबोट्स खेलों में कैसे चुनौतियां पार कर रहे हैं और अपनी ताकत किस तरीके से दिखा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देश भर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। देवभूमि में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, करीब 17 लाख भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भी करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मध्य प्रदेश के इंदौर में निकली भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा, बैंड बाजे की धुन पर थिरके शिव भक्त, बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग भी हुए शामिल। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी बनाएगी मिसाइल, डीआरडीओ देगा टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
7: तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और खबर शानदार है और बेहद शुभ और गुड न्यूज तो है ही। देखिए, विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेता है तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती हैं, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसी ही एक खूबसूरत पहचान है। सितंबर में बीएपीएस के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है।
8: बिल्कुल, देखिए स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरती जितनी खास है उतनी ही खास है इसकी कहानी। विदेश में बना ये मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक दिखाता है। यहां आने वालों को पूजा के साथ भारत की कला, वास्तुकला और संस्कारों का भी एहसास होता है, यानी सात समंदर पार भी भारत की मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की रोशनी कायम है। तो आइए अब आपको करवाते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन।
9: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो बैप्स स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। बैप्स यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि बैप्स के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। बैप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में बैप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। बैप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। बैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। बैप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और पेरिस के पास बना बैप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: चलिए बात बाबा बागेश्वर की कर लेते हैं। वैसे आजकल वो जापान टूर पे हैं और बुलेट ट्रेन का सफर कर रहे हैं।
11: हाँ, सुबह हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं। इनफैक्ट उनकी एक बात जो उन्होंने कही ना वहां जाकर कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि जापान में जापान के लोग, जापान का कल्चर, जापान की संस्कृति, ये सब कुछ पहले है, बाकी सब चीजें धर्म, जाति, ये सब बाद में आता है। सो ही फेल्ट दैट।
4: अगर आप देखेंगे ना तो धीरेन्द्र शास्त्री को मैं बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व भी करती हूँ। बहुत अंतर्राष्ट्रीय टूर्स पे रहे हैं, अभी जकार्ता भी गए थे, और जिस तरीके से सनातन संस्कृति का वो प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, वाकई में सराहनीय। और अब देखिए जापान तक पहुंच गए, छोटी सी जगह में जन्मे और अब जापान तक का सफर, वाकई सराहनीय है।
12: बिल्कुल, जितने भी इंटरनेशनल टूर्स उन्होंने किए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है कि भाई जो भी भारतीय है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में वो वहां पर जाते हैं, अपनी भागीदारी दिखाते हैं और उनके प्रोग्राम्स में वो जरूर मतलब मेक श्योर करते हैं कि वो शामिल हों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
5: और फिर जब ऐसे वर्ल्ड टूर पे जाते हैं ना, तब आपने देखा होगा महाकुंभ में भी बाहर से लोग आते हैं क्योंकि वो संस्कृति को जाकर समझा रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं।
10: चलिए आपको दिखाते हैं उनकी जापान यात्रा।

0: जापान की सड़कों पर जब बाबा बागेश्वर पारंपरिक खड़ाऊ, तिलक और कुर्ता धोती में दिखाई दिए तो तस्वीर अपने आप में खास बन गई। आधुनिक इमारतों और व्यवस्थित सड़कों के बीच भारतीय संत का ये पारंपरिक रूप जापान में भारतीय संस्कृति की अलग पहचान पेश कर रहा था। टोक्यो में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति की बात की। बड़ी संख्या में लोगों के बीच उन्होंने आध्यात्मिक संदेश दिया, लेकिन इसके साथ ही जापान को समझने की कोशिश भी की। जापान को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, जबकि भारत सूर्यवंशी राम की धरती है। उनके मुताबिक दोनों देशों की पहचान में सूर्य का एक खास स्थान है। बाबा बागेश्वर के इस दौरे में धार्मिक मंच के अलावा उनका एक अलग अंदाज भी नजर आया। टोक्यो स्टेशन पर हाई स्पीड ट्रेन के सफर का अनुभव लेते हुए वो जापान की तकनीकी क्षमता को करीब से देखते नजर आए। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हुई और कुछ ही देर में उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। बाबा बागेश्वर के लिए ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं था, बल्कि जापान की उस व्यवस्था को देखने का मौका भी था जिसकी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। समय की पाबंदी, सार्वजनिक व्यवस्था और तकनीक का रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल जापान की पहचान का हिस्सा है। बाबा बागेश्वर भी जापान की इस कार्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई दिए।
1: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव। यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया। इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप चला गया।
0: भारत अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया में जाना जाता है, जबकि जापान ने तकनीक, अनुशासन और विकास के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। बाबा बागेश्वर के जापान दौरे में इन दोनों पहलुओं का मेल दिखाई दिया। कथा के मंच से लेकर बुलेट ट्रेन तक का ये सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की तस्वीर नहीं है, ये उस भारत की झलक भी है जो अपनी परंपराओं को साथ लेकर दुनिया को देख रहा है, और उस जापान की तस्वीर भी जिसने अपनी परंपराओं को बचाते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाया है। यही वजह है कि जापान में बाबा बागेश्वर की तस्वीरें सिर्फ एक संत की विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जापानी आधुनिकता के एक दिलचस्प संगम की कहानी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए बात करते हैं गणेश उत्सव की। देखिए, मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे जोश में है, लेकिन नोएडा में कितनी तैयारियां है वो बताइए। देखिए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने तो डेकोरेशन का सोचना शुरू कर दिया कि किस तरीके से पंडाल लगाया जाएगा।
3: और हम आप लोगों ने कॉस्ट्यूम्स का सोचना शुरू कर दिया है कि हम पहले दिन क्या पहनेंगे। क्यों, हमने प्लानिंग नहीं की?
4: एक हफ्ते पहले बोल दिया था शगुफ्ता ने, तो क्या पहनेंगे
3: सब एक बार कोऑर्डिनेटेड
5: बता भी दीजिए लोगों को, सुन ही रहे होंगे क्या क्या
4: पहनेंगे। मेरा तो वीक ऑफ है वैसे, लेकिन आप
2: पहनने का डिसाइड किया था, जैसे पहले भी हमने किया था, बप्पा आए थे हमारे ऑफिस में, तो वैसा कुछ होने वाला है ना।
4: सीरियस नोट पे मैं बताऊं, मुंबई जाओ तो क्या मजा आता है, दिल्ली में मुझे लगता है।
5: लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो मैं खुद में फील कर रही हूँ जब से मैं यहाँ दिल्ली नोएडा आई हूँ, कि भाई कहने को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ये उत्सव है, लेकिन अब दिल्ली में भी ऑलमोस्ट हर घर में बप्पा जो है वो भी विराजमान हो रहे हैं। कई लोग एक दिन डेढ़ दिन के गणपति, डेढ़ दिन के दो दिन के रखने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दही हांडी यहाँ पर होने लगी है, और हर साल जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दिल्ली के राजा, जैसे मुंबई के वो लाल बागचा राजा है, तो दिल्ली के राजा भी दिखाती हूँ, तो हर जगह यहाँ भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए हर तरफ बप्पा के स्वागत की तैयारियां हैं और पंडाल भी सजने शुरू हो गए हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर किसी को इंतजार है अपने प्यारे गणपति बप्पा की एक झलक का।
5: बिल्कुल, हर कोई गणपति बप्पा की एक झलक पाना चाहता है, तो मुंबई की गलियों में आपको बता दे इस वक्त बस बप्पा का ही रंग नजर आ रहा है। ढोल की थाप पर नाचते गाते भक्त और भव्य सवारियां पंडालों की ओर बढ़ रही है। कहीं फूलों से सजा रास्ता है तो कहीं बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय है, यानी कि मुंबई में गणेश उत्सव का जोश देखते ही बन रहा है।

0: ढोल ताशों की गूंज, नगाड़ों की आवाज, और गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष।
1: गणपति बाप्पा मोरया।
0: आजकल मुंबई की सड़कों पर भक्ति का ऐसा ही नजारा है। भले ही गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन यहाँ की फिजाओं में उत्सव के रंग चढ़ने लगे हैं। गणेश प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान साथ पंडालों की ओर ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या युवा, हर कोई गजानंद के स्वागत में नतमस्तक है। और हो भी क्यों ना, आखिर साल भर के इंतजार के बाद तब कहीं ये पावन मौका आता है जब भक्त अपने आराध्य से मन की मुराद कहेंगे। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है तो कोई ढोल की थाप पर झूम रहा है। मुंबई की पहचान बन चुका गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये शहर की एकजुटता, संस्कृति और सामुदायिक उत्साह की भी सुनहरी तस्वीर पेश करता है। सालों से चली आ रही इसी परंपरा की कड़ी में भक्त और उल्लास के साथ काल चौकी के राजा की भव्य सवारी भी पंडाल की ओर निकली। भव्यता ऐसी कि नजरें ठहर जाए। गजानंद की मनमोहक प्रतिमा, चेहरे पर दिव्य तेज, सिर पर सजा भव्य मुकुट और आभूषणों की चमक, बाप्पा के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की निगाहें बस अपने आराध्य पर टिकी है। किसी के हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए तो कोई बाप्पा के दिव्य दर्शन को मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सजने वाले गणेश पंडालों में आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं। बात कहें कामराज नगरचा महाराज के स्वागत के लिए उमड़े भक्तों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी।
2: जब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति बप्पा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है, हम सब में गणपति बप्पा है। और हम हमेशा गणपति बप्पा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने। हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 साल हो गए और ये आगमन गढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: बापा के आगमन के साथ ही मुंबई की रफ्तार में भक्ति का रंग घुल जाता है। पंडालों में तैयारियां तेज हैं, बाजारों में रौनक है और भक्तों के बीच बापा के स्वागत को लेकर जोश हाई है। गणेश प्रतिमाओं को पूरे भक्ति भाव के साथ उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब बस वो घड़ी आने वाली है जब बापा का दरबार सजेगा और भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में इन दिनों आस्था का सैलाब आपको नजर आएगा। इस साल अब तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेक चुके हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडा मौसम और मुश्किल चढ़ाई भी श्रद्धालुओं के हौसले को कम नहीं कर पा रही। हर कदम के साथ श्रद्धालुओं के चेहरे पर आपको आस्था उत्साह साफ साफ नजर आएगा।
4: वैसे सिर्फ हेमकुंड साहिब ही नहीं, बल्कि अगर आप खबरें देख रहे हो बाकी चारों धामों में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मौसम, हालांकि मौसम की दुश्वारी अपनी जगह, लेकिन आस्था कम नहीं हुई है।
3: मुझे लगता है मौसम ही ऐसी जगह पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना। अगर आप उसको ओवरकम कर गए, मतलब फिर तो कोई बड़ी बाधा आपको रोक
5: सभी जगहों पे, हेमकुंड साहिब और चारों धामों में भी, उसमें बीच में प्रशासन की तरफ से रोका भी गया था। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी तो इस वजह से भी, क्योंकि मुश्किलें तो है, क्योंकि वो डिफिकल्ट टेरेन ऑलरेडी है और ऐसे में अगर बर्फबारी होने लगे, बारिश होने लगे तो लोगों को थोड़ा सा और,
3: लेकिन कुछ भी जितनी भी मुश्किलें बढ़ती है ना, हर साल उतने श्रद्धालु और
6: बढ़ते हैं। लोगों की आस्था है, उनकी भक्ति है कि मौसम की दुश्वारियां हो, कोई भी चुनौतियां हो। हालांकि जैसे अभी नवजोत बता रही थी कि प्रशासन सतर्क रहने के लिए लोगों से जरूर कहता है, चेतावनी देता है, लेकिन लोग वहां पर लगातार पहुंचते हैं तो उनकी आस्था ही

0: ऊंचे पहाड़, चुनौतियों से भरा मौसम और कुदरत की खूबसूरती से सजा हेमकुंड साहिब तीर्थ। हिमालय की चोटियों में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिखों के इस पवित्र गुरुद्वारे में इन दिनों आस्था उमड़ रही है। मॉनसून के इस मौसम में पहाड़ों के ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है। यहाँ मौसम किसी भी वक्त करवट ले लेता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद मौसम खुल भी जाता है। रुक रुक कर हो रही बारिश से हेमकुंड साहिब में पारा भी लुढ़कने लगा है, लेकिन मौसम की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह ने इस बार हेमकुंड साहिब में आस्था का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। अभी तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक चुके हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहा है। गुरुद्वारे में लगातार चल रहे लंगर में गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने के रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रशासन और एजेंसियां भी मुस्तैद है।
1: बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। हम मुंबई से आए हैं और ये ट्रैक वगैरह तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। रास्ता पूरा कोई दिक्कत नहीं आई हमको इतनी दूर आते आते, और ऊपर आके तो ये नजारा कमाल है। और यहाँ सब लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत।
0: हेमकुंड साहिब तीर्थ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस तीर्थ स्थल के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद से चमोली में मौसम कई बार करवट ले चुका है। यात्रा शुरू होते समय जमकर बर्फबारी हो रही थी और अब लगातार हो रही बारिश रोज नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऊंचे पहाड़ों पर होने की वजह से इस तीर्थ स्थल पर कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी परेशानी होती है, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सोर घाटी पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में सोमवार को आस्था का अनोखा रंग देखने को मिला। ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व के मौके पर हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक रंगों के बीच हर किसी की नजरें टिकी थी लखिया भूत पर। मान्यता है कि लखिया भूत भगवान वीरभद्र का अवतार है और उनका आशीर्वाद सौभाग्य लेकर आता है।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि हिल यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपरा और संस्कृति की पहचान है। साथ ही साथ पर्व के दौरान आस्था, रोमांच और लोक संस्कृति का ऐसा यहां संगम दिखा जिसने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पिथौरागढ़ की इस अनोखी हिल यात्रा की खास तस्वीरें।

0: उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हिल जात्रा उत्सव। अलग अलग तरह के मुखौटों से सजा सोर घाटी। सोर घाटी की ऐतिहासिक कुमौड़ हिल यात्रा का आयोजन आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुआ है। कुमौड़ के मैदान में जब लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों से बांधकर लाया गया तो हजारों लोग उस पल के गवाह बने। ये परंपरा ही हिल यात्रा की सबसे खास पहचान भी है।
1: सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर।
2: पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल। तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: काला परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए लखिया भूत का जब मैदान में प्रवेश होता है तो भक्त उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
3: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है।
0: माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है।
4: इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसे की बलि दी गई थी, और इस भैंसे की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था, और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेत में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज का चित्रण होता है। हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हौल, नेपाली हौल, बड़ी हौल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरी की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है। समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज़ टुडे।
5: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों आजकल तूफानी बना हुआ है मौसम।
6: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देश भर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। रक्षाबंधन पर खजराना, गणेश मंदिर में अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, अनोखी राखी में राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। चलिए मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम बादल देखते हैं और दिन में एकदम तीखी गंदी वाली धूप,
3: बेहद,
1: और अगर सुबह धूप हुई तो दिन में इतनी तेज बारिश।
3: सुबह जैसे दिल्ली में बारिश हुई थी, नोएडा तक पहुंचते तो धूप हो जाती है, उसके बाद अब बारिश होने लगी, समझ ही नहीं आ रहा इंसान क्या तैयारी करे।
1: आपको बचपन की वो कहावत याद है, घर वाले कहते होते थे कि अगर ये मोर नाच रहा है कहीं बारिश हो रही है तो, है ना, तो यही लगता है किसी इलाके में तो नाच रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो धूप निकली होती है।
4: सुबह जिस हिसाब से बादल छाए थे ना, वैसे लग रहा था कि भाई नोएडा में बहुत जबरदस्त बारिश होगी, और बाय द टाइम 9 बजे से एकदम
1: थोड़ी सी छींटे तो पड़े हैं यहाँ पे ऑफिस में भी देखा,
3: मतलब बूंदाबांदी टाइप,
1: बूंदाबांदी,
5: इतना अनप्रिडिक्टेबल हुआ हुआ है। मेरे घर में तो यही जोक चल रहा है कि दो ही चीजें अनप्रिडिक्टेबल है, एक मेरा मूड और एक दूसरा मौसम, तो दिल्ली के मौसम का कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए कब धूप आ जाए।
4: तो तीन तस्वीरें देखिए आप, कब बारिश हो जाए और कब
5: धूप आ जाए,
4: यही हाल है। तो सोमवार सुबह जिस तरीके से जमकर बादल बरसे, आज सुबह से माहौल वैसे ही बना हुआ था दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का, लेकिन फिलहाल नोएडा वालों को ये बारिश नसीब नहीं हुआ। जैसे दीपिका कह रही हैं कि अभी बाहर मौसम बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि चाय वाला माहौल बना देते हैं ना इंद्रदेव,
1: बिल्कुल मूड सबका अच्छा हो जाता
4: है, हैरान करने वाला पूरा मौसम।
3: बिल्कुल, देखिए कई जगह पर बादल हैं तो कई धूप है, समझ पाना मुश्किल है कि किस पल बारिश हो सकती है। बारिश के बाद हवा में नमी काफी बढ़ जाती है और जब इसके साथ ही धूप निकलती है तो उमस और ज्यादा महसूस होने लगती है। दिल्ली एनसीआर में गर्म जमीन, हवा में मौजूद नमी और बदलती हवाओं का असर मिलकर मौसम को बेहद तेजी से बदल सकता है, इसलिए कभी काले बादल घिरते हैं तो कभी अचानक तेज धूप निकल आती है और कुछ देर बाद फिर बारिश का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ आज के मौसम का नहीं है बल्कि आने वाले दिनों का भी है कि क्या ऐसे बदलते मिजाज को आने वाले दिनों के लिए एक संकेत माना जाए।
6: एक तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर आज की, दोनों तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर के उस बदलते मौसम की कहानी बयां की जा रही है जिसने लोगों को हैरान भी किया और परेशान भी। कभी तेज धूप, फिर अचानक आसमान में बादलों का डेरा और देखते ही देखते तेज बारिश। दिल्ली एनसीआर में पिछले दो दिनों से मौसम का यही बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है। सोमवार को दोपहर बाद बादल जमकर बरसे और मंगलवार को एक बार फिर बारिश ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन सवाल है, आखिर मौसम का मिजाज इतना तेजी से बदल क्यों रहा है? धूप के बाद अचानक बादल क्यों घिर रहे हैं और फिर कुछ ही देर में तेज बारिश क्यों हो रही है, ये सवाल लोगों के जहन में है। दरअसल दिल्ली के मौसम में इस वक्त दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं बड़ा खेल कर रही है। एक तरफ उत्तर दिशा से सूखी हवाएं दिल्ली की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के आसपास बने कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर पहुंच रही है। जब ये अलग अलग हवाएं दिल्ली एनसीआर में आमने सामने आती है तो वातावरण में अस्थिरता बढ़ जाती है, नतीजा तेज गरज चमक, अचानक बादलों का बनना और फिर कम समय में तेज बारिश। उत्तर भारत और खासकर दिल्ली एनसीआर में बने इस पूरे सिस्टम में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की भूमिका बेहद अहम है। कम दबाव का क्षेत्र इन नम हवाओं को उत्तर पश्चिम की ओर खींच रहा है। दिल्ली में पहले से मौजूद गर्म और नम वातावरण के साथ जब ये हवाएं मिलती है तो बादल तेजी से बनने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ देर पहले तक जहां धूप नजर आती है वहां अचानक आसमान बादलों से ढक जाता है और फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। दिल्ली के मौसम में पिछले कुछ दिनों से एक और दिलचस्प पैटर्न देखने को मिल रहा है। बारिश होती है, फिर लंबा सूखा मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान तापमान बढ़ता है और वातावरण में नमी बनी रहती है। इसके बाद जैसे ही नम हवाओं को किसी सिस्टम का साथ मिलता है तो मौसम बदलने लगता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। यही अस्थिरता इस बार के मौसम का नया पैटर्न बनकर सामने आई है। मौसम के इस बदलते पैटर्न को जलवायु परिवर्तन और बारिश के बदलते तौर तरीकों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कल और आज दिल्ली एनसीआर में दिखे मौसम के इसी अस्थिर मानसून पैटर्न की तस्वीर मानी जा रही है। गर्मी, उमस, बंगाल की खाड़ी से आई नमी और अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं, इन सभी ने मिलकर दिल्ली के आसमान को ऐसा बना दिया है जिस पर फिलहाल तो भरोसा करना जरा मुश्किल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: देखिए, इसी बीच देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कुछ जगहों पर ये बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात हैं। बारिश की वजह से कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए।
7: बिल्कुल, आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके सभी को हालांकि सही सलामत बाहर निकाल लिया है। उत्तरकाशी में भी एसडीआरएफ जवान की मुस्तैदी की वजह से एक युवक की जान बच गई।

0: आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो इस मुश्किल घड़ी में SDRF के जवान देवदूत बनकर आए। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और गाड़ियाबंद में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव और कस्बों समेत शहरों के भी कुछ रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गाड़ियाबंद में हालात बाढ़ जैसे हैं। गाड़ियाबंद जिले के देवभोग में बारिश की ये चुनौती चार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। पिछले दो दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बेतहाशा बारिश से तेल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी में तेज बहाव की वजह से टिकरापारा नाला में चार लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस और SDRF को दी तो SDRF ने फौरन रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। शाम ढलने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल भी हो गया। सबसे पहले SDRF का एक जवान एक रस्सी के सहारे पानी में फंसे चार लोगों तक पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों को रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। जिन्हें खुद इस पानी से निकलने में दिक्कत हुई उन्हें SDRF के जवान ने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में नदियों का तेज बहाव चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उत्तरकाशी के खदारी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। इस युवक को बचाने के लिए SDRF की टीम ने मोर्चा संभाला। खबर मिलने के बाद SDRF की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। SDRF का एक जवान रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचा और उसी रस्सी के सहारे उस युवक को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू के बाद युवक को उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया। बारिश के इस मौसम में कई बार नदियों का तेज बहाव लोगों के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन SDRF के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से साफ कर दिया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं होता। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो वाराणसी से अब एक राहत की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे आ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए घाटों पर अभी भी गंगा का पानी जो है वो मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत भी दे रहा है। श्रद्धालुओं से लेकर नाविकों और स्थानीय लोगों तक सभी की नजर अब गंगा के घटते पानी पर है। सावन के बीच उम्मीद जगी है कि जल्द ही घाट फिर अपने पुराने रंग में लौट जाएगा और काशी एक बार फिर उसी रौनक के साथ नजर आएगी।

0: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
1: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
0: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
2: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग को थोड़ा रियायत हो जाता।
0: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उफनती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नज़ारा भी देखने लायक होता है क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: ऐसा नहीं है कि मौसम केवल भारत के लिए ही बदला है। दुनिया भर में कई देश इन दिनों मौसम के बदले अंदाज से रूबरू हो रहे हैं। कहीं अमेरिका की भीषण गर्मी, कहीं पश्चिमी यूरोप में आई बाढ़ ने लोगों को हैरान किया।
4: और इसी दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बवंडर, आसमानी बारिश लगातार देखने को मिल रही, कहीं बर्फबारी भी हो रही है। कैसा है मौसम का ऊटपटांगा मिजाज पूरी दुनिया में आपको दिखाते हैं।

0: दुनिया के लिए मौसम एक पहेली सा हो गया है। अब इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। आसमान में घने काले बादल, तेज हवाएं और फिर बादलों के बीच से जमीन की तरफ तेजी से घूमता हुआ बवंडर। फ्रांस के दक्षिणी इलाके में सोमवार को मौसम ने अचानक खतरनाक करवट ली और देखते ही देखते टोर्नेडो ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार शाम करीब 5 बजे फ्रांस के गांव में अचानक टोर्नेडो उठा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ मकान तो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए, जबकि करीब 2800 घरों की बिजली गुल हो गई। दरअसल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अजब गजब खेल जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो कहीं गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहीं आसमान से पानी नहीं बल्कि बर्फ गिर रही है। अब आपको हजारों किलोमीटर दूर बोलिविया ले चलते हैं, जहां बर्फबारी ने पूरा ही नजारा बदल दिया है। बोलिविया के लापाज और एल ऑल्टो इलाके में भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढक गई हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है और कई रास्तों पर तो आवाजाही ही प्रभावित हो गई है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से बेहद सावधानी के साथ सफर करने की अपील की है, जबकि ला कुम्ब्रे इलाके की एक अहम सड़क पर ट्रैफिक भी प्रतिबंधित करना पड़ा है। लेकिन बोलिविया में मौसम की मार के बीच एक खुशनुमा नजारा भी दिखाई दिया। सफेद बर्फ की चादर में लिपटे इलाके और इसी बर्फ के बीच लोग मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। कहीं बच्चे बर्फ से खेलते नजर आए, तो कहीं लोग इस बदले हुए नजारे को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। फिलहाल तो मौसम का तेजी से बदलता मिजाज पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हाल के दिनों में अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी और पश्चिमी यूरोप में आई बाढ़ सुर्खियों में रही है। वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बवंडर, भारी बारिश और असामान्य बर्फबारी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और अजब गजब मौसम के बीच कनेक्शन पर दुनिया का ध्यान खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सोची ट्रैक पर खिलाड़ी इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हों और सामने हो 400 मीटर की ऐसी रेस जिसमें रास्ता बिल्कुल आसान नहीं हो। बीजिंग में हुए दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। और इस बार रोबोट्स को सिर्फ दौड़ना नहीं था बल्कि रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों को भी पार करना था। कहीं क्रॉलिंग टनल, कहीं आसमान झूला यानी सीसा, और कहीं टायरों के बीच से निकलना, और कहीं बेहद संकरी जगह में एल शेप मोड़ लेना।
2: बिल्कुल, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि रेस में हिस्सा लेने वाले सभी रोबोट्स को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया गया, यानी कि ऑपरेटर की कमांड और रोबोट का संतुलन, दोनों का शानदार तालमेल इस रेस की असली परीक्षा थी। इस साल पहली बार जोड़ी गई 400 मीटर की ये रेस पिछले साल की 100 मीटर बाधा दौड़ से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। ट्रैक पर कुल 16 ऑब्स्टेकल्स पॉइंट्स बनाए गए थे ताकि रोबोट की बैलेंसिंग, बॉडी कोऑर्डिनेशन और रास्ते में आने वाली बाधाओं से बचने की क्षमता परखी जा सके।
1: और देखिए, बीजिंग में इन दिनों इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट अपनी ताकत का दम दिखा रहे हैं। वो

0: बैठा और सीधे जजों के टेबल की तरफ जा गिरा। अधिकारियों ने तुरंत मुकाबला रोक लिया, उस प्रयास को खत्म घोषित कर दिया।
1: और देखिए, खास बात यह है कि इन रोबोट्स की चुनौती सिर्फ वजन उठाना नहीं बल्कि मानव जैसी बॉडी बैलेंस और कंट्रोल दिखाना भी है। यानी ताकत के साथ साथ मशीन को यह भी सीखना है कि कब शरीर को संभालना है और कब कदम रोकना है। और इस रोबोट गेम्स में सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही नहीं बल्कि सोमवार को चेयर लीडिंग और बोतल खोलने जैसे मुकाबले भी शामिल हुए। अब सोचिए जरा, सामने इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट खड़ा है और वो लंबी छलांग लगाने जा रहा है। बीजिंग में चल रहे दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में एक रोबोट ने ऐसा कमाल किया कि देखने वाले भी दंग रह गए। इस रोबोट ने 7.97 मीटर की लंबी छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।
2: लेकिन खास बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रोबोट ने छलांग लगाई बल्कि हर कोशिश के साथ इसकी छलांग और लंबी होती गई। 7.97 मीटर की छलांग लगाने के बाद रोबोट सिर्फ जमीन पर गिरा नहीं बल्कि दोनों पैरों पर बिल्कुल स्थिर होकर लैंडिंग की। यानी छलांग भी शानदार और लैंडिंग भी परफेक्ट।
3: और चलिए अब आपको एक ऐसा एंटरटेनिंग वायरल वीडियो दिखाते हैं जो कि उज्जैन में एक दुकान के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सुर्खियां बटोर गया एक रोबोट। दरअसल इस उद्घाटन के दौरान दुकान मालिक के फैमिली मेंबर्स और मेहमान मौजूद थे, लेकिन दुकान मालिकों ने कुछ अलग करने की सोची तो बुला लिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट को, जिसके वहां पहुंचने पर बकायदा पहले रोबोट को तिलक लगाया गया। यही नहीं, इसके बाद तो रोबोट को जैसे ही गमछा पहनाया गया उसने डांस करना शुरू कर दिया।
0: तो देखिए, रोबोट का ये रोचक अंदाज देखकर मौके पर मौजूद लोगों को खूब वो एंटरटेन हुए। वायरल वीडियो में ह्यूमनॉइड रोबोट गले में परंपरा के मुताबिक नारंगी रंग का गमछा पहने हुए था। वो रेड कार्पेट पर खड़ा दिखा। पूजा के बाद रिबन कटिंग की रस्म हुई। इस रोबोट की मजेदार एक्टिविटीज ने सबका ध्यान खींचा जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
4: तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे कार पर लिपस्टिक के निशान एक शख्स को महंगा पड़ गया।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो देखिए, ग्वालियर में एक कार इन दिनों खूब चर्चा में है और इसकी वजह है इस कार पर बने 3400 लिपस्टिक के निशान। देखिए, पूरी कार पर इतने मार्क्स कि देखने वाला भी एक पल के लिए ठिठक जाए। आखिर माजरा क्या है? दरअसल लिपस्टिक के मार्क्स प्यार की निशानी थे, लेकिन प्यार के ये निशान बॉयफ्रेंड को इतने भारी पड़े कि 5500 रुपए का चालान कट गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कार सड़क पर उतरी, लोगों की नजर इस पर टिकी रही। कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते मामला ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच गया।
2: इसके बाद पुलिस ने कार रुकवाई और फिर बॉयफ्रेंड से कार पर बने लिपस्टिक के निशान साफ भी करवाए। यानी प्यार के जो निशान कभी यादगार बनाने के लिए लगाए गए थे, उन्हें खुद ही उसे अपने हाथों से ही मिटाना पड़ा। यानी कहानी खत्म। वैसे निशान तो मिटे ही, साथ ही साथ जेब भी ढीली करनी पड़ी। 5500 रुपए निकालने पड़े जेब से। पहली तस्वीर उस कार

0: की है, जिस पर 3400 मार्क्स ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी लिपस्टिक मार्क्स ने, और दूसरी तस्वीर पुलिस की कार्रवाई की है, और तीसरी तस्वीर है बॉयफ्रेंड की।
1: देखिए, पुलिस के सामने खुद अपने हाथों से कार पर लगे लिपस्टिक के निशान साफ करता हुआ ये लड़का आपको नजर आ जाएगा, और सोशल मीडिया पर आपने आई एम श्योर की ये तस्वीरें देखी होंगी। थोड़ा सा भारी पड़ गया ये।
2: तो चलिए अब आपको ये कहानी थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आदित्य सिकरवार की कार पर करीब 3400 किस के निशान दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदित्य की गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पर एक विदेशी वीडियो देखा था, जिसमें एक कार को किस के निशानों से सजाया गया था। वीडियो देखने के बाद उन्होंने भी अपनी कार को इसी तरह से सजाने का फैसला किया। इसके बाद प्यार जताने के इस अनोखे अंदाज के लिए कार पर जगह जगह लिपस्टिक से निशान बनाए गए। कार को इस तरह से सजाने में करीब 3.5 घंटे लगे,
0: और इस दौरान कार की अलग अलग जगहों पर करीब 3400 निशान बनाए गए। इसके लिए कई लिपस्टिक्स का इस्तेमाल भी किया गया। लगातार काफी देर तक कार पर काम भी हुआ। इतनी बड़ी संख्या में निशान होने की वजह से सफेद रंग की कार सड़क पर बाकी कारों से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी, और दूर से ही कार पर बने लिपस्टिक के निशान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन जो चीज शुरुआत में प्यार और मनोरंजन का अंदाज लग रही थी, वही बाद में कार मालिक के लिए परेशानी बन गई।
3: और देखिए, ट्रैफिक पुलिस की नजर जब इस अनोखी कार पर पड़ी तो कार को रोक लिया गया। इसी के साथ तो पुलिस ने कार को रंग रूप से छेड़छाड़ करने को लेकर कार्रवाई की और 5,500 रुपए का चालान काट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने कार पर लगे लिपस्टिक के सभी निशान भी साफ करवाए, यानी गर्लफ्रेंड का प्यार जताने का ये अंदाज बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा महंगा पड़ा। बताया जा रहा है कि कार के रंग रूप में बदलाव के साथ साथ तेज रफ्तार या स्टंट को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की।
2: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: तो चलिए अब एक ड्रोन वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें घने जंगलों के बीच वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। यकीन मानिए, वंदे भारत ट्रेन जंगलों के बीच बिछी पटरियों पर ऐसे दौड़ रही है मानो सांप लहराते हुए चल रहा हो।
2: बिल्कुल, देखिए वंदे भारत ट्रेन का ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि लोग इस ड्रोन वीडियो को बार बार लूप में देखने के लिए मजबूर हो गए। ट्रेन का केसरिया और ग्रे रंग चारों तरफ फैले घने हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में बेहद अलग और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।
3: जो यात्री ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं उनके लिए ये शायद सफर का एक आम हिस्सा होता है, लेकिन जब इसी खूबसूरत नज़ारे को आसमान की ऊंचाई से देखा जाए तो इसकी खूबसूरती देखने लायक है। फिलहाल तो वंदे भारत ट्रेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
4: तो आज की चाय और खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। रक्षाबंधन पर खजराना गणेश मंदिर में अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, अनोखी राखी में राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। देवभूमि में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, करीब 17 लाख भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन, हेमकुंड साहिब में करीब 3 लाख श्रद्धालु ने टेका मत्था। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में कमिशनिंग। साठ साल से ऊपर महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त में यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा फायदा।
0: सोना खरीद गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जयंती स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बेइंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार, लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

0: यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहर जयपुर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा बिखेर रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें मार्केट में अपने भाई के लिए उनकी पसंद की राखी ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाई मार्केट में अपनी बहनों के लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स की तलाश में है। और अभी जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों ही ऑप्शंस एक ही छत के नीचे, क्योंकि भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही हैं जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है थेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं, तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली ये ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने, तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती हैं। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियाँ अब इसमें आप देख सकते हैं। जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे जो वो पूरी हमेशा पहन सके। भाई जी, सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है, भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी की भाव, तो ये भी चीज है कैसी है, हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको अब भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। नेक पीस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कलेक्शन देखने में बिल्कुल रॉयल लुक देता है और बजट में भी फिट बैठता है।
1: अच्छा, राखियां तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से आप रेनोवेट कर सकते हैं, पर अब बहनों की जब हमने बात कर ही ली तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए। यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है, कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं।
0: राखियों की तरह ही रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए आपके बजट में काफी ऑप्शन मौजूद है।
2: जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी है उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म चले और फिनिशिंग पूरी गोल्ड वाली है।
0: परंपरा और आधुनिकता का ये अनोखा मेल रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को और भी खास बना रहा है। तो इस बार कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बल्कि राजस्थान की 400 साल पुरानी विरासत और कला का एक यादगार तोहफा सजने जा रहा है, जो न सिर्फ आपके बजट में होगा बल्कि यादगार के तौर पर आपके साथ लंबे समय तक रहेगा।
1: यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने दिखाए हैं आपको कि किस तरीके से राखियां तो है ही जिसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं, पर ये ज्वेलरी भी है, और इस ज्वेलरी की खासियत ये भी है कि राखी जिस तरीके से कस्टमाइज हो रही है वैसे ही हो रहे हैं। आप यहाँ डिजाइन देखिए और आप अपने हिसाब से इनको कलर्स बता सकते हैं या स्टोन्स बता सकते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं वो सेमी प्रेशियस यूज हो रहे हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये दिखने में सोना लग रही है, बहुत ही हैवी लुक की भी है, बहुत मिनिमल लुक की भी है, पर ये है चांदी की जो कि इसको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाता है। हालांकि जो ठेवा कला है उसमें सोना बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी सोने की राखी बजट में यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग डिजाइंस में मिल रही है, चाहे आप अपने भाई के नाम का इनिशियल लिखवा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल राखी जो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड बन चुकी है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप बाद में एज अ पेंडेंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ये यूनिक जो रेंज है ये जयपुर में सोन कांच में नजर आ रही है इस रक्षाबंधन के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज स्टडी जयपुर।
3: देखिए, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए सबसे खास धागे को चुन रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे हैं। यही वजह है कि इस बार देश भर के बाजारों में परंपरा के साथ इनोवेशन वाली राखी का खूब ट्रेंड है।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन अब दूर नहीं है, ऐसे में बाजारों में रौनक अभी से ही दिखने लगी है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें और रौनक से सराबोर बाजार, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बाजारों की रंगत इस बात की गवाही दे रही है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व अब नजदीक है। बाजार में रौनक अपने शबाब पर है। इस बार बाजार में 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन मौजूद हैं, जिसमें कपल राखी से लेकर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की भारी डिमांड है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भी बाजार की रौनक में चार चांद लगा रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां भी इन दिनों खूब डिमांड में है, जिनकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजारों में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें करनाल के कर्ण गेट बाजार में भी नजर आ रही हैं, जहां इन दिनों रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
2: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो, और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
3: मैं तो यही कहूंगी सभी बहने आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का, कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है। बहुत जड़ी का है, प्लस का और कुछ का है ना, सारी पैटर्न इस टाइम में है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
5: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी, अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: एक तरफ जहां रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो वहीं सूरत में कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। यहां गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये अनूठी पहल है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है।
1: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: उत्तराखंड में माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने भी एक अनोखी पहल की है। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाएं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षक और पारंपरिक राखियां बना रही हैं।
2: ये हमने प्राकृतिक राखी बना रखी है, हमने केदार पाती ला रखी है और इसके साथ हमारा भोज पत्र है। ये हमारे जो है जंगलों में मिलता है यहाँ पर, हमने जो उसकी राखी बना रखी है। ये ब्रह्म कमल भी है, ये ब्रह्म कमल भी हमने जो है जंगल से ला रखा है। ये हमारे जंगल में होता है, ये सारे हमने जो है जंगल से ला रखे हैं और इसी से हम जो है राखी तैयार कर रहे हैं।
0: जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक है, वहीं राजस्थान के पाली में डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जहां स्कूली छात्राएं सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। अब तक यहां से देश के जवानों के लिए 25,000 से ज्यादा राखियां भेजी जा चुकी हैं।
3: माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
4: जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन, एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा बंधन से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आए।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: पुणे में छात्राओं का जोश हाई, उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक हमला। क्लासरूम में गूंजा हर हर महादेव। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: राजकोट का रेस कोर्स ग्राउंड एक बार फिर से बनने जा रहा है आस्था, संस्कृति और मनोरंजन के भव्य संगम का गवाह, क्योंकि सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। 2-6 सितंबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय लोक मेले में कुल 228 स्टॉल और प्लॉट होंगे, जबकि रोमांच पसंद करने वालों के लिए 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स आकर्षण का केंद्र बनेगी। 2 सितंबर को मेले का भव्य आगाज नेवी बैंड की प्रस्तुति के साथ होगा। इसके बाद 5 दिनों तक लोक संस्कृति और संगीत की रंगारंग महफिल सजेगी। देश के 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से मेले में 4 चरण लगाएंगे। आयोजन को लेकर अनुमान है कि 5 दिनों में 10-12 लाख लोग यहां आएंगे, यानी राजकोट ही नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग हिस्सों से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ेगा। रक्षाबंधन के मौके पर भाई की कलाई पर सजेगा प्यार का धागा, लेकिन इंदौर में इस बार ये धागा सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव, सनातन संस्कृति और सामाजिक चेतना का संदेश लेकर आएगा। खजराना गणेश को अर्पित होने वाली ये भव्य राखी अपने आप में बेहद खास है। 40 इंच लंबी और 40 इंच चौड़ी इस राखी को तैयार करने में करीब 2.5 महीने की मेहनत लगी है। राखी में भगवान जगन्नाथ, बाबा महाकाल, माँ वाग्देवी, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूपों को उकेरा गया है। इनके जरिए शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, आस्था, राष्ट्र चेतना का संदेश देने की कोशिश है। इस भव्य राखी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग सांस्कृतिक केंद्रों से खास सामान मंगाए गए, जैसे कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से आए सलमा सितारे, नग, मोती और जरी ने राखी को बेहद आकर्षक और अलौकिक रूप दे दिया है। समंदर की सतह के नीचे जहां चुनौतियां ज्यादा हैं, हर मिशन में सटीकता बेहद जरूरी है। वहीं भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है एक नया और अत्याधुनिक साथी INS निपुण। 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निपुण को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। यह दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और तैयार किया है। यानी निपुण सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक भी है। निपुण को खासतौर पर डीप सी डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक डाइविंग सिस्टम, अंडर वाटर इंटरवेंशन क्षमता और मेडिकल सपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण। 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का फ्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। रक्षाबंधन पर खजराना गणेश मंदिर में अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, अनोखी राखी में राष्ट्र गौरव और सनातन संस्कृति की झलक। देवभूमि में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, करीब 17 लाख भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भी करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने टीका बंधा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
9: त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार ने दी गुड न्यूज, लोगों को उपलब्ध कराएगी सस्ता प्याज और चीनी। रेखा गुप्ता सरकार के ऐलान, नेफिट से खरीदार, दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे सस्ता प्याज। चीनी की बढ़ी कीमतों के बीच बड़ा ऐलान, 35 रुपए किलो की दर पर चीनी बेचेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाद्य मंत्री और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की, प्याज और चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में चीनी कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में हर महीने 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, इसके मुकाबले 28 लाख टन का स्टॉक। दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज, हर घर तक साफ और बिना रुकावट पानी पहुंचाने के लिए अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार कर रही है सरकार। सीएमओ ने कहा दिल्ली जल बोर्ड को ADB से 2500 करोड़ की फंडिंग मिल रही है। इंदौर में किन्नर समाज की भव्य शिवमय शोभायात्रा निकली, बैंड बाजों की धुन पर किन्नर समाज के लोग शिव भक्ति में झूमते हुए नजर आए। नंदलालपुर के प्राचीन मठ से निकली शोभायात्रा, विंटेज कार और बग्घियों और राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुति ने शोभायात्रा को बना दिया खास। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी यात्रा में हुई शामिल। मानसून के बीच चार धाम और रहीमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दोनों धामों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। पिछले साल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे कुल 16,60,224 श्रद्धालु। इस साल तक 16,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से हो रहे भगवान के दर्शन। मानसून के बाद और पितृपक्ष के दौरान यात्रा में तेजी आने की उम्मीद। हेमकुंड साहिब में पिछले साल 2,74,441 श्रद्धालु पहुंचे थे। इस साल अब तक 2,75,787 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर जताई खुशी। इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। सीकर में धूमधाम से संपन्न हुआ जुनून महोत्सव। 6 दिनों से जारी था सावन के माह में भव्य उत्सव। खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार। रंग बिरंगे फूलों से हुई सज्जा। अमरनाथ की झांकी के रूप में भव्य तरीके से सजाई गई श्री ठाकुर जी की प्रतिमा। बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे भक्त। शहर भर के मंदिरों में विशेष कीर्तन पूजन। पूरे मंदिर परिसर को रंग रोगन से आकर्षक ढंग से सजाया गया। दूधिया रंग से रोशनी से नहाया नजर आया मंदिर। सावन की फुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर भक्तों के दर्शन दे रहे हैं श्री राम और माता जानकी। अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में जारी है आस्था का उत्सव। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग। ढोल डबरू और झालर की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की हुई महाआरती। सावन के इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को फूल मालाओं झालरों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल। बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और त्वरित सेवाओं की शुरुआत। मात्र 10 रुपए है इन विशेष वाटरप्रूफ लिफाफों की कीमत। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल। गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई गई इको फ्रेंडली राखियां। ये राखी दिखने में सुंदर होने के साथ साथ 100% इको फ्रेंडली है। इन राखियों के इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में डालने पर इनमें प्राकृतिक रूप से तैयार किया जा सकता है खाद। रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला खास नजारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूली छात्र शामिल हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों के साथ संवाद किया बच्चों को बांटे तोहफे। रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामले पर दिल्ली सरकार की पैनी नजर। स्कूलों को लेकर जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली के स्कूलों के लिए जारी की गई है गाइडलाइंस। स्वाइन फ्लू और H1N1 की रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। छात्रों को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। खांसी गले में खराश बुखार सिरदर्द और सांस लेने में दिक्कत H1N1 के संभावित लक्षण। देश की सरहद की रक्षा में जुटे अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर योजना सेल बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल अग्निवीरों को रोजगार दिलाने में बनेगा मददगार। उत्तराखंड की सोरघाटी में ऐतिहासिक रहस्य और रोमांच का पर्व हिल यात्रा आयोजित किया गया। उत्तर भारत के प्रमुख मखौटा पर्व में एक है उत्तराखंड का यह प्रमुख कृषि पर्व हिल यात्रा। 500 सालों से चली आ रही है हिल यात्रा की परंपरा। स्थानीय मान्यता में तकिया भूत को माना जाता है भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता। केरल में थिरुवोणम पर्व की तैयारियां शुरू, कल धूमधाम से मनाया जाएगा जश्न। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के अंतिम दिन मनाया जाता है थिरुवोणम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IFS के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनिंग से बातचीत की। युवा राजनयिकों से तकनीक निवेश और नागरिक केंद्रीय सेवाओं पर जोर देने को कहा। भारत में ऐतिहासिक UPI के 10 साल हो गए पूरे, प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट। भारत के डिजिटल पेमेंट के सफर में बताया एक बड़ा बदलाव। UPI के 10 साल पूरे होने पर अमित शाह ने भी पोस्ट लिखा, हमारे देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना दिया। DRDO की विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरित करने पर रक्षा मंत्रालय की मोहर। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,446 प्रविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के साथ सेल्फी ली, नियुक्ति पत्र पाने वाली युवाओं की मंच पर उनके बीच पहुंचे थे मुख्यमंत्री। योगी सरकार ने स्कूलों के लिए 1 करोड़ का फंड मंजूर कर दिया। 3,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए 604 करोड़ बजट। राजस्थान के स्कूल में टीचरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, विद्या संबल योजना के तहत रखे जाएंगे 76,000 टीचर। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की 5 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड। राजगढ़ में 120 किलोमीटर की रफ्तार से ब्यावरा सोनकच्छ के बीच पहली बार दौड़ी ट्रेन। ट्रायल रन के लिए 2 दिन के दौरे पर मुंबई से आई है टीम। CRS गुरु प्रकाश कर रहे हैं टीम की अध्यक्षता। ट्रायल के दौरान मोटर ट्रोली से नए रेलवे ट्रैक का बारीकी से किया जा रहा है निरीक्षण। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना और हरियालू राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला। सावन में पवित्र हरिद्वार को मिली खास पहचान, ओम पुल के पास विराजे 21 फीट ऊंचे महादेव। सफेद रंग की है महादेव की भव्य और विशाल प्रतिमा, जटाओं से निकल रही है गंगा धार। झारखंड के हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव का भव्य समापन किया गया, राज्यपाल समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने महिला उद्यमियों से संवाद किया, उनके उत्पादों की सराहना की। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना था इस गौरव उत्सव का मकसद, जनजातीय कला एवं स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ना मकसद। केरल के पथान मथिट्टा में ओणम समारोह हुआ, बच्चों ने पारंपरिक का पुलिकली लोक कला का किया पुनर्जीवित। पुलिकली कला में दर्शाया जाता है एक बाघ के गांव में घुसने और स्थानीय शिकारियों द्वारा उसका शिकार किए जाने का दृश्य। लद्दाख में 15वीं जिला करगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई संपन्न। चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने हिस्सा लिया, 6 क्लबों स्कूलों और स्पोर्ट्स सेंटरों के एथलीट्स शामिल हुए। लद्दाख पुलिस के सहयोग से करगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन ने किया आयोजन। हिमाचल में लैंडस्लाइड, चंबा के भरमौर में भरभराकर गिरा पहाड़, बाल बाल बचे लोग। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ के पानी में बही कार, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वेलोर के कुड़िया थम में किसानों की मांग पर मोरथाना बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी। बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद, दोनों ओर वाहन फंसे। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश, दिनभर रुक रुक कर हो रही है बारिश। सैलानियों से गुलजार श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील, सुहाने मौसम के बीच पर्यटक ले रहे हैं शिकारा राइड का मजा। बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों पर एक्शन में रेखा सरकार, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, बेड, दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फिनाले में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर R. प्रज्ञानंद। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर। इमरान हाशमी की फिल्म ग्रैंडमास्टर G9 का टीजर जल्द जारी होगा, फिल्म 27 नवंबर को दस्तक देगी। इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और पारशक्ति खुराना नजर आएंगे। माथोलॉजिकल फिल्म महाकाली का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, शुक्राचार्य के रूप में नजर आ रहे हैं अक्षय खन्ना। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से उठ गया पर्दा। अक्षय कुमार ने नंदन में शुरू की 2026 की चौथी फिल्म सामुक। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो गए शुरू, 16 देशों के 2056 रोबोट शामिल। रोबोट इंसानों की तरह दौड़ रहे हैं और कई खेलों में हिस्सा भी ले रहे हैं एआई और खास तकनीक से लैस। रोबोट से पेचकस चलाने, कील ठोकने और बॉटल खोलने जैसे काम भी कराए जा रहे हैं। इंसान जैसा काम सीख रहे हैं रोबोट, बीन्स को चिमटी से उठाने जैसे काम में रोबोट इंसान के करीब 80-90% सटीक तक पहुंच रहे हैं। इन खेलों में ब्राजील, इटली समेत कई देशों की टीमें पहुंची। लंदन जू में जानवरों का लिया गया वजन, मकसद जानवरों की सेहत और ग्रोथ पर नजर। सबसे हल्के जानवर का वजन करीब 1 ग्राम रहा, वहीं पर ऊंट और जिराफ का वजन करीब 650 से 700 किलो। जानवरों को जबरदस्ती तराजू पर नहीं चढ़ाया जाता, कीपर ऐसे इंतजाम करते हैं कि जानवर खुद ही वजन वाली जगह पर पहुंचाए। लंदन जू में पक्षियों का वजन जानने के लिए खास पर्च स्केल किए जाते हैं इस्तेमाल। वजन से डॉक्टरों को इलाज में भी मिलती है मदद। बोलीविया की राजधानी लापास और एल ऑल्टो में हुई भारी बर्फबारी, लोग बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए। लापास में लोगों ने भारी बर्फबारी का खूब आनंद लिया, कहीं पर स्नोमैन बना तो कहीं पर लोग बर्फ में खेलते और स्नो एंजल बनाते हुए नजर आए। एल ऑल्टो में तेज बर्फबारी के बीच केबल कार

0: बर्फबारी के कारण एल ऑल्टो एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें कुछ समय के लिए रोक दी गई, कई फ्लाइट्स लेट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: पुणे में छात्राओं का जोश हाई, उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक हमला। क्लासरूम में गूंजा हर हर महादेव। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: देश के कई राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ जगहों पर यह बारिश मुसीबत का सबब भी बन रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। SDRF ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। उत्तरकाशी में भी SDRF जवान की मुस्तैदी की वजह से एक युवक की जान बचाई गई।

0: आसमान से जब आफत की बारिश हुई तो इस मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ और गाड़ियाबंद में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव और कस्बों समेत शहरों के भी कुछ रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गाड़ियाबंद में हालात बाढ़ जैसे हैं। गाड़ियाबंद जिले के देवभोग में बारिश की ये चुनौती चार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। पिछले दो दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बेतहाशा बारिश से तेल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी में तेज बहाव की वजह से टिकरापारा नाला में चार लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस और एसडीआरएफ को दी तो एसडीआरएफ ने फौरन रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। शाम ढलने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल भी हो गया। सबसे पहले एसडीआरएफ का एक जवान एक रस्सी के सहारे पानी में फंसे चार लोगों तक पहुंचा। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों को रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। जिन्हें खुद इस पानी से निकलने में दिक्कत हुई उन्हें एसडीआरएफ के जवान ने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में भी मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुछ इलाकों में नदियों का तेज बहाव चुनौती बनकर सामने आ रहा है। उत्तरकाशी के खदारी में पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। इस युवक को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से युवक तक पहुंचा और उसी रस्सी के सहारे उस युवक को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। रेस्क्यू के बाद युवक को उसके परिवार तक पहुंचा दिया गया। बारिश के इस मौसम में कई बार नदियों का तेज बहाव लोगों के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी से साफ कर दिया है कि अगर तैयारी पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं होता। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अमित वाला है।
2: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़।

0: का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
1: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
2: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
1: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
3: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट 2 एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ, तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग को थोड़ा रियायत हो जाता।
1: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
11: कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT University गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
15: दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देश भर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे,
15: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दी आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, और सबसे बड़ी गुड न्यूज है रक्षाबंधन, जो कि 2 दिन बाद 28 अगस्त को भाई बहन के पवित्र त्यौहार को मनाया जाएगा। इसको लेकर देश में हर तरफ उत्साह का माहौल है, पारंपरिक से लेकर स्टाइलिश राखियों से बाजार गुलजार है, तो इको फ्रेंडली राखी बनाने का काम भी चल रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है रक्षाबंधन पर सोने चांदी की प्रीमियम राखी की बड़ी डिमांड। जी हाँ, देखिए, बहनें अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए राखी की खरीदारी कर रही है, तो देश की रक्षा में तैनात जवानों को राखी भेजने की मुहिम भी चल रही है।
16: रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, जिसके लिए बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियों और उपहारों से बाजारों में रौनक है, तरह तरह की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही हैं। आजकल सोना और चांदी के राखियों की डिमांड बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर लखनऊ के सराफा बाजार में सोने और चांदी की राखियों की धूम है, लोग इन्हें निवेश के तौर पर भी खरीद रहे हैं। आभूषण के दुकानों पर भी बहनें चांदी और सोने की राखियों को खरीदने के लिए पहुँचने लगी है।
17: इसमें मतलब सिल्वर लगा है गोल्ड के फॉर्म में, ये देखने में काफी यूनिक है और हैंडमेड है। गोल्ड का भी राखी ले सकती हूँ अपने भाई के लिए।
16: ज्वेलर्स ने भी रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारी की है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सोने और चांदी की आकर्षक राखियों का नया स्टॉक बाजार में उतारा है। 500 रुपए की चांदी की राखी से लेकर 50,000 रुपए तक की प्रीमियम सोने की राखियां बाजार में मौजूद हैं। चांदी की राखियों की ज्यादा डिमांड है।
18: हम लोग राखी में विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जिसमें वृद्धा राखी है, भाई बहन की राखी है, मेरे भैया राखी है, इस तरह कई तरह के अलग अलग नाम से राखी को बनाया गया है। और स्टर्लिंग सिल्वर में विशेष तौर से हम लोगों ने गोल्डन राखी उतारी है, जिसमें गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है।
16: रक्षाबंधन पर सूरत के कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी हुई इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है। ये राखियां लोगों को न केवल पर्यावरण की रक्षा का संदेश देंगी बल्कि गौमाता के सम्मान से भी जोड़ेगी। सूरत के माधव गौशाला में प्राकृतिक चीजों से राखियां बनाई जा रही हैं। इन राखियों को बनाने में गाय के गोबर और लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। ये राखी दिखने में सुंदर तो है ही, 100% इको फ्रेंडली भी है। यही नहीं, उपयोग के बाद इसे कूड़े में फेंकने की बजाय अगर गमले में डाल दी जाए तो ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाएगी।
19: और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इसका महत्व है, जिसमें पंच तत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी और ये सब इसके पंच तत्व से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने, जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक भाई एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे, जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो स्पर्शता चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं।
16: रक्षाबंधन का त्योहार सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि गौ सेवा और पर्यावरण सुरक्षा का हमारी परंपरा से जुड़ाव है। इन लोगों का कहना है कि सूरत में बन रही इन राखियों को भारत के हर हिस्से में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के पाली में स्थित इस मुख्य डाकघर की तस्वीरें देखिए। यहाँ डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान के तहत इन दिनों खास तौर से स्कूली बच्चों की लाइन लगी नजर आती है। ये बच्चे सीमा पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेजने यहाँ पहुँच रहे हैं और अब तक 25,000 से ज्यादा राखियां यहाँ से भेजी जा चुकी है। यहाँ आने वाले बच्चों को डाक विभाग के अभियान और रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ी हुई है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें बहनों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। दुकानों में राखियों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है, जिसकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, स्टोन, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर समेत अलग अलग डिजाइन वाली राखियां सजी हुई है।
20: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। इस बार फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है, वो लोग सब मांग रहे हैं।
16: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं, जिनकी कीमत 300-400 रुपए के करीब है। बाकी बाजार में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भरत भूषण जोशी और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है, ऐसे में अब जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई है। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान मिलने लगे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। वेस्ट मटेरियल से बन रहा कान्हा जी का सिंहासन, आपको बता दें एक तरफ सहारनपुर में कारीगर कान्हा जी के सिंहासन बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी डिमांड बढ़ गई है।

0: रंग बिरंगे सिंहासन, कोई लाल तो कोई मरून। अलग अलग रंगों के मेल से बने ये सिंहासन कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है तो डिमांड अभी से होने लगी है। इनकी सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए। जब बात कृष्ण कन्हैया की हो तो क्या कहने, सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। आजकल तो ये दिन रात काम में लगे हुए हैं। इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है और जहां तक कीमत की बात है, ये 150 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक का है।
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5,000 प्लस भी हो जाता है। काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल तो।
0: अंकुर बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने बनाने के लिए भी कहा। तब से जो शुरुआत हुई अब व्यापार बन गया है।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला। हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है।
0: लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। 4 सितंबर को देश में जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। जन्माष्टमी के नजदीक आने पर डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।
2: और सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में मौसम प्रतिकूल होने के बाद भी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। यहां पर बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है, मौसम प्रतिकूल लेकिन हेमकुंड साहिब में आस्था भरपूर। जी हाँ, हेमकुंड साहिब में आस्था का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस साल अब तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। खास बात यह है कि गुरुद्वारे पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

0: ऊंचे पहाड़, चुनौतियों से भरा मौसम और कुदरत की खूबसूरती से सजा हेमकुंड साहिब तीर्थ। हिमालय की चोटियों में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिखों के इस पवित्र गुरुद्वारे में इन दिनों आस्था उमड़ रही है। मॉनसून के इस मौसम में पहाड़ों के ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है। यहाँ मौसम किसी भी वक्त करवट ले लेता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद मौसम खुल भी जाता है। रुक रुक कर हो रही बारिश से हेमकुंड साहिब में पारा भी लुढ़कने लगा है। लेकिन मौसम की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह ने इस बार हेमकुंड साहिब में आस्था का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। अभी तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक चुके हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहा है। गुरुद्वारे में लगातार चल रहे लंगर में गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने के रास्ते में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रशासन और एजेंसियां भी मुस्तैद है।
1: बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। हम मुंबई से आए हैं और ये ट्रैक वगैरह तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। रास्ता पूरा कोई दिक्कत नहीं आई हमको इतनी दूर आते आते, और ऊपर आके तो ये नजारा कमाल है। और यहाँ सब लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत।
0: हेमकुंड साहिब तीर्थ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस तीर्थ स्थल के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद से चमोली में मौसम कई बार करवट ले चुका है। यात्रा शुरू होते समय जमकर बर्फबारी हो रही थी और अब लगातार हो रही बारिश रोज नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऊंचे पहाड़ों पर होने की वजह से इस तीर्थ स्थल पर कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी परेशानी होती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात उत्तराखंड के प्राचीन हिल यात्रा उत्सव की। पिथौरागढ़ के सोर घाटी के कुमौड़ गांव में आस्था, विश्वास और संस्कृति का प्रतीक हिल यात्रा पर्व का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है धूमधाम से मना रहस्य और रोमांच का त्यौहार हिल यात्रा। जी हाँ, इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है, लिहाजा इस मौके पर हजारों लोगों ने हिल यात्रा पर्व में शिरकत कर आशीर्वाद लिया।
3: उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हिल यात्रा उत्सव। अलग अलग तरह के मुखौटों से सजा सोर घाटी। सोर घाटी की ऐतिहासिक कुमौड़ हिल यात्रा का आयोजन आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुआ है। कुमौड़ के मैदान में जब लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों से बांध कर लाया गया तो हजारों लोग उस पल के गवाह बने। ये परंपरा ही हिल यात्रा की सबसे खास पहचान भी है। काला परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए लखिया भूत का जब मैदान में प्रवेश होता है तो भक्त उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
4: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है।
3: माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है।
5: इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसे की बलि दी गई थी और इस भैंसे की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और
3: हिल यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेत में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज का चित्रण होता है। हिरण चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं गलिया बैल छोटी हौल नेपाली हौल बड़ी हौल हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। ढोल नगाड़े हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है। समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज़ टुडे।
2: सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में शिवालयों की रौनक देखते ही बनती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जहां पर सावन के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर मिठाइयों का महाभोग लगाया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पंचमुखी महादेव को 151 प्रकार की मिठाइयों का महाभोग। जी हाँ, पंचमुखी महादेव को ये भोग लगा है। सोमवार को महादेव मंदिर में 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाइयों पकवानों और 1 क्विंटल मिक्सर का महाभोग लगाया गया है। इस मौके पर मंदिर को फूलमालाओं झालरों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था।
6: सावन का पावन महीना चल रहा है और इस मौके पर शिवालयों में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पंचमुखी महादेव का, जहां सावन महीने में महादेव का श्रृंगार किया जाता है और भगवान को मिठाइयों और मिक्सचर का महाभोग लगाया जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में अति प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ मंदिर में भगवान को 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल अलग अलग मिठाइयों से महाभोग लगाया गया था। मिठाइयों के अलावा महादेव को 1 क्विंटल फलाहारी मिक्सचर का भी भोग लगाया गया
7: और बहुत लोग दूर दूर से भगवान दर्शन कर रहे हैं। भगवान सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी आता जो यहाँ से लेके जाता खाली हाथ नहीं देता। भगवान बहुत प्राचीन मूर्ति। हम 5-6 पीढ़ी से पूरे रहे, 6 पीढ़ी 7 से सबको मनोकामना जो भी आता है सबकी इच्छा पूरी होती है। भगवान बोलना सबको इच्छा पूरी करें।
6: इस दौरान मंदिर को फूल मालाओं झालरों और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था जिससे पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा। रात 8 बजे ढोल और डमरू की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की महाआरती हुई जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं सहित बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया।
8: आज 56 भोगली आज 151 तरह की मिठाई बनाई गई है और कम से कम आज 1.25 क्विंटल मिठाइयों का भोग लगाया गया है और उसके साथ ही हमने 1 क्विंटल का फरियाली मिक्सचर बनाया है वो भी चल रहा है प्रसाद में और सभी अतिथि सभी श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेके आनंद लेते हुए सावन के महीने के।
6: राजगढ़ का पंचमुखी महादेव मंदिर अति प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ पर स्थित महादेव की मूर्ति 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस मंदिर में महादेव पूरे शिव परिवार के साथ विराजित है। यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। खास करके सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
9: यहाँ मैं पंचमुखी महादेव का दर्शन करने आया हूँ और ये बहुत प्राचीन मूर्ति और चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है। जिनकी शादी नहीं होती है या बच्चे नहीं होते हैं या और कोई कार्य नहीं होते हैं वो पूर्ण होते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने पर।
10: यह एक प्राचीन मंदिर है। बचपन से मेरी इस मंदिर से बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर मेरी हर मनोकामना हमेशा सिद्ध हुई है। बाबा महाकाल सभी भक्तों पर उनकी कृपा आशीर्वाद बरसाए रखे।
6: सावन के हर सोमवार को इस मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए इस मंदिर में 151 प्रकार की 1.25 क्विंटल मिठाइयों और 1 क्विंटल फलहारी मिक्सर का महाभोग लगाया गया है। इस मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक ने मंदिर विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।
11: और मुझे भी यहाँ से आशीर्वाद मिला है, मेरे साथी लोगों ने, मेरे शुभ चिंतकों ने यहाँ मन्नत भी मांगी थी और उसकी इन लोगों की मेहनत से वो मन्नत भी पूरी हुई है, इसलिए मैं यहाँ का इस स्थान का बहुत ऋणी हूँ। और मैंने आज 5 लाख रुपए देने की बात कही है कि मैं अभी अभी 5 लाख रुपए दूंगा, उससे यहाँ का काम चालू करवा दूंगा।
6: इस मंदिर के प्रति भक्तों की बहुत आस्था है और पंचमुखी महादेव मंदिर में सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। पंकज शर्मा, राजगढ़, गुड न्यूज टुडे।
2: भारत में उत्तर प्रदेश के अमेठी में पूरी तरह से स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल शेर तैयार कर लिया है। आपको बता दें, स्वदेशी राइफल का सफल परीक्षण किया गया है। इस राइफल को इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL द्वारा तैयार किया गया है। सितंबर में इसको सेना में शामिल किए जाने का ट्रायल होगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दहाड़ने को तैयार स्वदेशी शेर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा फैसिलिटी में पहली पूरी तरह से स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का सफल टेस्ट फायर किया गया। शेर नाम के इस राइफल को इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL ने बनाया है। ये भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर है, जिसे 2019 में भारत में AK-203 राइफलें बनाने के लिए शुरू किया गया था। शेर के पहले 100% स्वदेशी प्रोटोटाइप ने सफलतापूर्वक फायर किया, जिसमें बर्स्ट मोड भी शामिल था और शुरुआती नतीजे बहुत शानदार रहे। इस प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किए गए सभी कंपोनेंट और इनपुट मटेरियल भारतीय इंडस्ट्री से लिए गए थे। अब IRRPL सशस्त्र बलों को करीब 6 लाख राइफलें सप्लाई करने के अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत AK-203 का प्रोडक्शन बढ़ाने में जुट गई है। लगभग 5,200 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मूल रूप से अक्टूबर 2032 तक AK-203 की डिलीवरी पूरी होनी है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2030 तक प्रोग्राम को पूरा कर लेना है, जो कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा से लगभग 22 महीने पहले है। IRRPL अब हर 100 सेकेंड में एक AK-203 के प्रोडक्शन का लक्ष्य बना रही है।
12: तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय सेना को अब शेर की शक्ति मिल चुकी है। शेर यानी भारत में निर्मित पहली 100% इंडिजनाइज AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसे अमेठी के कोरवा में बनाया गया है। IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड में बनाई जा रही AK-203 को 100% इंडिजनाइज कर लिया गया है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए अब 100% लोकलाइज हो चुकी इस AK-203 को अब भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। अगर AK-203 की बात की जाए तो ज्वाइंट वेंचर के तहत बनने वाली 55,000 से ज्यादा राइफल्स पहले ही भारतीय सेना को सौंपी जा चुकी हैं और 6 लाख राइफल्स का लक्ष्य 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी अब जब AK-203 शेर तैयार है तो इसका प्रोटोटाइप भारतीय सेना को दिया जाएगा और यूजर ट्रायल्स के बाद 100% इंडिजिनस यानी स्वदेशी शेर भारतीय सेना के हाथों में दहाड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से।
2: और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। यहां पर बने आंवला के प्रोडक्ट अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार की योजना से जुड़कर यहां के किसान आंवला से बने उत्पादों से लाखों की कमाई कर रहे हैं और खास बात यह है कि इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। प्रतापगढ़ में आंवला के बदले स्वरूपों से बदल रही है किस्मत। जी हाँ, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी और अमृत फल आंवला का गढ़ कहा जाता है। यहाँ का आंवला देश भर में मशहूर है। पहले यहाँ किसान सिर्फ कच्चा आंवला बेचते थे, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई है। अब जिला प्रशासन और उद्यान विभाग किसानों को आंवले की उन्नत खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। इससे आंवले से अब सिर्फ फल नहीं बल्कि दर्जनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। आंवला कैंडी, आंवला चार, आंवला मुरब्बा, आंवला जूस, आंवला पाउडर, च्यवनप्राश, हेयर ऑयल और औषधीय उत्पाद, इन सभी का निर्माण प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में आंवला के 15 से ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट लग चुके हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आंवला उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को सब्सिडी, लोन और मार्केटिंग की सुविधा भी दे रही है। इससे प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद अब ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर भी मिल रहे हैं। पिछले साल प्रतापगढ़ में करीब 50 करोड़ से ज्यादा का आंवला कारोबार हुआ है, जिससे किसानों को खूब फायदा मिला है।
13: किसानों को जो है अभी पूरा फायदा ही फायदा हो रहा है। पूरा जब से हम लोग देख रहे हैं दवा के साथ से फसल भी अच्छी हो रही है। फसल के होने से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। ये माल कुल जाता है कटनी, जबलपुर, हरियाणा, पंजाब, नेपाल, हर राज्य में जाता है। अपने यहाँ भी ज्यादा खपत होता है। हम लोग किसान हैं, पूरा लाते हैं यहाँ मंडी में, बेचते भी हैं, बाहर सप्लाई भी करते हैं। पूरा कटनी जाता है, जाबा जमन पलाश बनता है, फायदा अच्छा है।
14: जैसे हम मंडी में गए, अपना औला धो लेके गए, जो है पूरा ट्रक में जो है लग गए, जिसमें जो क्या होता था, बिचौलिए आते थे बीच बीच में, ऐसे अपना व्यापारी को पकड़ लेते थे, हाथ दबा के ऐसे कुछ अपने सारा कर लेते थे। उसमें हमको नहीं पता लगता था कि वो कितने में बेच रहा है। अगर हमने उसको जो है 10 रुपये किलो दिया है वाला, तो उसने 20 में बेचा कि 40 में बेचा, ये हमको जानकारी नहीं पाती है। तो इसका लाभ बिचौलिए लेता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है। इसमें इसका लाभ जो है अब हम लोग को मिलने लगा है। अब वो लोग हट गए हैं बीच से, इसका अब हम लोग को लाभ सीधा मिलने लगा है।
15: कितना फायदा हो जाता है
14: अब ये समझिए, जो है जहाँ हम लोग का 30% फायदा होता था, अब उन लोग कटने से हम लोग का 70% फायदा होने लगा है।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
17: पुणे में छात्राओं का जोश हाई, उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक हमला। क्लासरूम में गूंजा हर हर महादेव। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: श्रावण मास में झूलन उत्सव के रंग, प्रभु श्री राम की नगरी में झूलनोत्सव, हुनर को भगवान का आशीर्वाद, सोने चांदी की राखी है सदा के लिए। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देश भर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा में को धुंधला कर देती है। पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है तस्वीरों में जो असलियत से कोसों दूर लगे। लेकिन हम सच और झूठ के बीच की रेखा के बीच का फर्क आपको बताते हैं, जहां झूठे दावों और अफवाहों की होती है पड़ताल और हम आप तक लाते हैं सही और सच्ची खबर। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या है इसकी सच्चाई आगे जानिए। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि हाल ही में ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। क्या है इसकी सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये 22 अगस्त का वीडियो है जब राहुल गांधी ने पुणे में एक कार्यक्रम किया था, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं की समस्या भी सुनी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की। इसी से जोड़कर ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है, लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पुणे में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में बेटियों की गूंज। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में लोगों का हुजूम दिख रहा है। लोग झूम रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 22 अगस्त को पुणे में हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान का है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो किसी स्टेडियम का लग रहा है जहां पर लोग हाथों में झंडा लिए हुए झूम रहे हैं। और फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो और 22 अगस्त को पुणे में हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम की तुलना की तो फर्क साफ नजर आया। इससे यह इशारा मिल रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वीडियो में एक जगह पर मैक्सिको लिखा हुआ भी नजर आया और साथ ही वीडियो में लोगों को मैक्सिको का झंडा लिए हुए भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में हमें वायरल हो रहे वीडियो पर शक हुआ। वायरल दावे के सही होने की कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें कहीं भी कोई ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट नजर नहीं आई जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके कि ये जो वीडियो है ये राहुल गांधी के पुणे का ही वीडियो है। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और कार्यक्रम से जुड़े वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक थ्रेड्स अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर किया गया था। मौजूदा जानकारी के मुताबिक वीडियो मैक्सिको के जोकालो सिटी का है जहां फुटबॉल फैंस मैक्सिको टीम के गोल करने पर जश्न मना रहे थे। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक खेल पत्रकार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 1 जुलाई 2026 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये मैक्सिको के जोकालो सिटी में फुटबॉल फैंस के जश्न मनाने का है। प्रोफाइल को खंगालने पर हमें वायरल वीडियो से मिलते जुलते कई वीडियो भी मिले। जांच के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट को 1 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको ने इक्वाडोर को हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई थी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को इस मैच में 2-0 से हराया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम के नाम पर वायरल वीडियो मैक्सिको का है। जुलाई 2026 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच हुए फुटबॉल मैच का है जिसमें मैक्सिको ने इक्वाडोर को हरा दिया था। फुटबॉल फैंस इस जीत का जश्न मना रहे थे जिसे अब गलत दावे के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: ईरान और इसराइल तनाव से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर हाइफा शहर में तबाही मचाई। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव से जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया और उसके हाइफा शहर में तबाही मचा दी। यह वीडियो उसी हमले का है। एक एक्सयूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग, ईरान ने इसराइल के हाइफा शहर में कई जगहों पर चुपके से हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी और ये वीडियो साफ तौर पर दिखाता है कि उस इलाके को कितना नुकसान पहुंचा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके हाइफा शहर में तबाही मचाई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो फिर ये साफ हुआ कि इसराइल में इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। मतलब वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को जब फ्रेम दर फ्रेम देखा तो इसमें इशारा मिला कि ये हमले का वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर मिसाइल से हमला हुआ होता तो फिर धुआं देखने को मिलता। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहां पर किसी तरह कोई बवंडर है या फिर ऐसे हालात भी हैं, क्योंकि बिजली भी कड़क रही है और वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं वो बड़े आराम से इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर वाकई ये मिसाइल अटैक हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल होता, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 8 नवंबर 2025 को पोस्ट किया हुआ मिला। पोस्ट के अनुसार ब्राजील के पराना राज्य के कैंडोई और रियो बोनिटो डो इगुआकू में एक बवंडर ने तबाही मचाई थी। ब्राजील के एक और राजनेता लुइस मारिनो ने भी 8 नवंबर को एक्स पर ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पराना में बवंडर से प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता जाहिर की थी। सर्च के दौरान हमें ब्राजील के एक न्यूज आउटलेट पर 8 नवंबर 2025 को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें टॉर्नेडो के बारे में भी जानकारी मिली। रिपोर्ट के अनुसार यह बवंडर 7 नवंबर 2025 को पराना से गुजरा था। इसने राज्य के मध्य, दक्षिण और पश्चिम में स्थित रियो बोनिटो डू इगुआकू, कैंडोई और पोर्ट्रो बेरेइरो में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ब्राजील सरकार ने उस समय कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। पराना के गवर्नर रातिनो जूनियर के हवाले से 9 नवंबर 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रियो बोनिटो डू इगुआकू में कम 6 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 49, 57 और 83 साल के 3 पुरुष और 57 और 14 साल की 2 महिलाएं शामिल थी और गुआर पुआवा शहर में 53 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो ब्राजील के पराना का है, जहां नवंबर 2025 में टॉर्नेडो की वजह से तबाही हुई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: श्रावण मास में झूलन उत्सव के रंग, प्रभु श्री राम की नगरी में झूलनोत्सव, हुनर को भगवान का आशीर्वाद, सोने चांदी की राखी है सदा के लिए। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: को ले चलते सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
9: इन दिनों ये बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के कच्चे आंगन में नंगे पैर खड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे ने अपने एक हाथ में केले का गुच्छा पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों को पीछे बांध रखा है। इसके बावजूद वो अपनी जांघों, पैरों और सिर के संतुलन से फुटबॉल को लगातार हवा में जगल करता हुआ नजर आ रहा है। गांव के एक साधारण माहौल में बना वीडियो ये साबित करता है कि हुनर किसी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। बच्चे के चेहरे पर ना तो कोई झिझक है और ना ही एकाग्रता की कमी। वो पूरी मग्नता के साथ नंगे पैरों से फुटबॉल पर ऐसा नियंत्रण दिखाता है जैसा पेशेवर खिलाड़ी सालों के अभ्यास के बाद हासिल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बच्चे की कला और एकाग्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्कूल क्लासरूम का प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पढ़ाई के माहौल के बीच बच्चे शिव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक बच्चा क्लासरूम के अंदर ढोलक बजाता नजर आ रहा है, उसके आसपास बैठे दूसरे बच्चे भी उसका उत्साह बढ़ाते हुए तालियां बजा रहे हैं। देखते ही देखते पूरा क्लासरूम भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई देता है। वीडियो की शुरुआत में बच्चा भगवान शिव का जयकारा लगाता है। वो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलता है।

0: pasando a rajaje. एक पापा ही होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वायरल हो रहा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में एक बच्ची हाथ में टेलकम पाउडर लेकर अपने भाई के पास जाती है। वो भाई को पाउडर लगाना चाहती है लेकिन भाई मना कर देता है। फिर बच्ची अपने माँ के पास जाती है, माँ भी मना कर देती है। फिर बच्ची अपने पिता के पास जाती है, पिता लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। बेटी के हाथ में टेलकम पाउडर देखकर पिता मना नहीं करते हैं और आराम से लगा लेते हैं। ये देखकर बेटी खुश हो जाती है और पिता की गोद में बैठकर खूब मस्ती करती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ शादी में फोटोग्राफर का काम करती हुई नजर आ रही है और गोद में अपने बच्चों को संभाल रही है। वीडियो के जरिए ये कहा जा रहा है कि पति के गुजर जाने के बाद भी इस महिला ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे की परवरिश के लिए खूब मेहनत कर रही है। लोग इस माँ की मेहनत को सलाम कर रहे हैं। माँ की ममता और काम के प्रति समर्पण ने कई लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग दंग हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक जमीन पर बैठकर अपने पैरों और हाथों को इस तरह से लॉक करता है मानो वो कोई इंसानी पजल सुलझा रहा हो। इसके बाद वो जिस तरह से पीछे झुककर अपने कंधों और रीढ़ की हड्डी को मोड़ता है, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। हद तो तब हो जाती है जब वो झुके हुए शरीर के साथ ही अपना मुंह बिल्कुल उल्टा घुमाकर कैमरे की तरफ देखता है। जिसने भी देखा यह नजारा वो देखता ही रह गया। कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होती और देसी जुगाड़ के मामलों में भारतीयों का कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक बुजुर्ग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दादाजी के इस अनोखे आविष्कार को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा।
1: ये देखिए दादाजी की जो है साइकिल स्टेयरिंग के साथ, अच्छा ब्रेक, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब अपने से बनाए हैं, बहुत बढ़िया दादा कला आपके पास, और पूरी व्यवस्था लेके चल रहे हैं ना, पंप छाता पाना पंच, अरे वाह वाह।
0: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग दादाजी ने अपनी पारंपरिक साइकिल के हैंडल को फटाकर उसमें चार पहिया गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लगा रखा है।
1: ठीक है दादा, ओके।
0: वो बहुत आसानी और संतुलन के साथ सड़क पर स्टीयरिंग घुमाते हुए साइकिल चला रहे हैं। केवल स्टीयरिंग ही नहीं बल्कि दादाजी ने साइकिल का ब्रेक सिस्टम भी खुद ही मॉडिफाई करके तैयार किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सब उन्होंने खुद बनाया है तो उन्होंने गर्व से सहमति जताई। दादाजी की साइकिल में सिर्फ तकनीक ही खास नहीं है बल्कि वो अपनी जरूरत की हर चीज साइकिल में ही बांधकर चलते हैं। उनकी साइकिल में पंखा, धूप से बचने के लिए छाता और हवा भरने वाला पंप भी फिट है।
1: ब्रेक भी देखिए, ब्रेक है। ठीक है दादा, ओके।
0: क्या आपने कभी किसी प्राइवेट जेट को एयरपोर्ट के रनवे के बजाय शहर की आम सड़कों पर ट्रैफिक के बीच में दौड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो अमेरिका के फ्लोरिडा से आया ये नजारा आपको हैरान कर देगा। हाल ही में फ्लोरिडा के मशहूर डेटेना बीच की सड़कों पर ऐसा अनोखा वाहन देखा गया जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। दूर से देखने पर यह किसी लग्जरी प्राइवेट जेट जैसा दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह हवा में उड़ने के लिए नहीं है बल्कि सड़कों पर दौड़ने के लिए बनाई गई एक बहुत दिलचस्प खास प्लेन कार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि साफ सुथरी सड़क पर जहां आम कारें और गाड़ियां चल रही हैं, वहीं उनके बीचों बीच ये सफेद रंग का प्लेन कार भी पूरे टेल के साथ दौड़ रहा है। इसमें प्लेन की बॉडी, कॉकपिट और जेट इंजन जैसा ढांचा बना हुआ है। हालांकि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए इसके पंख छोटे और मॉडिफाई किए गए हैं। गाड़ी के पीछे लगे पहिए और इसका अनोखा डिजाइन इसे बिल्कुल किसी छोटे हवाई जहाज का लुक देता है।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में एक सफेद बुलेरो पिकअप का ड्राइवर ऐसा कारनामा करके दिखाता है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। लोग दो गुटों में बट गए हैं। कुछ लोग कमेंट में ड्राइवर को उस्ताद बता रहे हैं, उसकी ड्राइविंग को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा गुट कह रहा है कि ये हुनर नहीं, सीधा सीधा मौत के साथ खिलवाड़ है। वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है। सामने का नजारा देखकर ही डर लगने लगता है। एक कच्चा पक्का पहाड़ी रास्ता जिसका बीच का पूरा हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। नीचे झांको तो गहरी खाई और उसमें तेज बहता हुआ पानी। ऐसी जगह से तो पैदल निकलना भी मुश्किल लगे, गाड़ी निकालना तो दूर की बात है। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज देखने को मिलती है। सड़क के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए वहां किसी ने जुगाड़ से दो पतली पतली लोहे की गोल पाइप्स रख दी है। बस यही दो पाइप उस वक्त पुल का काम कर रही हैं। इसी पर से बुलेरो पिकअप वाला निकालने की तैयारी करता है। वीडियो देखकर दिल मुंह को आ जाता है। ड्राइवर बड़ी हिम्मत करके गाड़ी को धीरे धीरे उन दो पाइपों पर चढ़ाता है। गाड़ी के चारों पहिए सिर्फ उन दो सक्रिय पाइपों पर टिके हुए, जरा सी भी स्टेयरिंग इधर उधर हुई सीधा नीचे खाई में। सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां गलती सुधारने का कोई चांस नहीं है। दोनों तरफ मौत का कुआं। वीडियो में आसपास कुछ लोग और मजदूर भी खड़े दिख रहे हैं जो हाथ के इशारे से ड्राइवर को बता रहे हैं कि थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं। ड्राइवर भी पूरी होशियारी दिखा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एक एक इंच गाड़ी को नाप नाप कर आगे बढ़ रहा है। करीब एक मिनट तक ये सीन चलता है और फिर आखिरकार ड्राइवर गाड़ी को सही सलामत दूसरी तरफ निकाल ले जाता है। जैसे ही गाड़ी दूसरे किनारे पर पहुंचती है, देखने वालों की जान में जान आती है। कहते हैं कि एक डॉक्टर के लिए उसका फर्ज सबसे पहले आता है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, कैसी भी हो। केरल के कन्नूर में हुई एक शादी में इस बात की वानगी देखने को मिली। शादी के दौरान दुल्हन बनी डॉक्टर ने जो किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। यहाँ दुल्हन बनी डॉक्टर शिरीन सुबैर अपने मंगेतर डॉक्टर रिजास के साथ शादी के बंधन में बंध रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था और रिश्तेदार रस्मों में बिजी थे। तभी अचानक शादी के कैटरिंग स्टाफ में शामिल दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। अपनी शादी के रस्मों के बीच कैटरिंग टीम की दो महिलाओं की तबीयत खराब होती ही दुल्हन डॉक्टर शिरीन सुबैर तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंची। शादी का जोड़ा पहनी मरीजों का इलाज करती अब इस दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। श्रावण मास में झूलन उत्सव के रंग आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए राम की नगरी में किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ा है। लड्डू गोपाल के सिंहासन से बदली किस्मत, भक्ति और हुनर के मेल से बनाया कारोबार, तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। और सोने चांदी की इस बार राखी में कितनी है डिमांड, सनातन प्रतीकों की भी भारी डिमांड। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले करेंगे मठ मंदिरों में चल रहे झूलन उत्सव की। सावन का यह पवित्र महीना न केवल शिव जी को समर्पित है, बल्कि सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली और रिमझिम बारिश भी शुरू हो जाती है, और साथ ही कई जगह झूला झूलने की परंपरा भी है। ये परंपरा उत्तर भारत के मठ मंदिरों में इन दिनों बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मथुरा से लेकर अयोध्या तक और सीकर से लेकर पाली तक मंदिरों में शाम होते ही झूलन उत्सव की छटा बिखर जाती है।

0: भक्ति, उत्साह और प्रतीक के सौंदर्य से जुड़े श्रावण में झूलन उत्सव के रंग मठ मंदिरों में बिखरे पड़े हैं। क्या अयोध्या और क्या मथुरा, क्या सीकर और क्या पाली, झूलन उत्सव की रौनक इन दिनों हर तरफ देखते ही बन रही है। चाहे छोटे मंदिर हो या फिर बड़े, शाम होते ही ये मंदिर न सिर्फ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं, बल्कि इन मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह को सोने चांदी और फूलों से सजे झूले पर भजनों और गीतों के साथ झुलाया जाता है। इसे ही झूलन उत्सव कहा जाता है। मठ मंदिरों में होने वाली झूलन उत्सव की ये परंपरा खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में सावन के महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसकी एक तस्वीर ब्रज भूमि से सामने आई है। यहाँ ब्रज के तमाम मंदिरों में ठाकुर जी और राधा रानी को परंपरा के मुताबिक झूला झुलाया जा रहा है, जिसे देख श्रद्धालु खुशी से निहाल हो उठे।
1: सावन का महीना चल रहा है और स्वर्ण हिंडोले में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, क्योंकि बाल रूप में यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। जो ठाकुर जी की सेवा है ब्रज में, वो बाल रूप में ठाकुर जी यहाँ 7 वर्ष के हैं, तो इसलिए सावन के महीने में वर्षा होती है, तो वर्षा में भगवान को प्राचीन अनंत काल से झूला झुलाया जा रहा है। तो ठाकुर जी को यहाँ स्वर्ण हिंडोले में झूला झुलाया जा रहा है। ठाकुर जी अपने समय में पेड़ की लकड़ियों पे झूला झूलते थे। तो इस तरह जो मंदिर है ना, पूरे मंदिर की अगर सजावट की बात करें तो बड़े ही सुंदर सा और भव्यता और दिव्यता के साथ मंदिर में लाइटिंग लगाई गई है। और पूरा जो सावन मास है, सावन मास में ठाकुर जी को बड़े लाड़ लड़ाए जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी की बड़ी सेवा की जाती है। ठाकुर जी के लिए मंदिर में मनमोहक घटाएं सजाई जाती हैं। जैसा बाहर रूप होता है कि कभी बादल काले हो जाते हैं, कभी एकदम बारिश होने लगती है, तो इस तरह का जो मंदिर है वो मंदिर में कभी गुलाबी घटा होती है, कभी काली घटा होती है, कभी सफेद घटा होती है। तो सावन के महीने में जो निरंतर भगवान की सेवा है वो बड़े अनोखे और दिव्य तरीके से होती है।
2: हम यही ब्रजवासी हैं और ब्रज में ठाकुर जी हर सावन झूला झूलने आते हैं और यहाँ कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, मल्हार होते हैं और ठाकुर जी हर साल झूला झूलते हैं, हमें दर्शन देते हैं और द्वारकाधीश भगवान भी हर चांदी के झूले में झूलते हैं, सोने के में झूलते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के।
0: झूलन उत्सव को लेकर मथुरा जैसा ही हर्ष और उल्लास प्रभु श्री राम की नगरी में भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में इन दिनों ये झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। कहीं श्री राम और माता जानकी के विग्रह फूलों से सजे झूले पर विराजमान है, तो कहीं राधा कृष्ण और अन्य आराध्यों के झूलन उत्सव की मनोरम झांकियां सजाई गई हैं। अयोध्या के झूलन उत्सव की खासियत यह है कि इसमें भक्ति के साथ लोक परंपराएं भी जुड़ी हैं। सखियों के रूप में महिलाएं कजरी गीत गाती हैं, भजन मंडियां प्रस्तुति देती हैं और मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। यही परंपरा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है।
3: अयोध्या में झूल उत्सव का महोत्सव चल रहा है। दशरथ महल में पक्ष हम खड़े हैं और जो नजारा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो भगवान राम लला और माँ सीता जो है झूले पे विराजमान है, लोग आ रहे हैं और उनको झूला झुलाते नजर आ रहे हैं।
4: इन भक्तों का एक भाव है और उस भाव पूर्वक झूला झुलाते हैं और ठाकुर जी को जो झूला झुला लेगा वो निश्चित रूप से इस संसार के झूला झूलने से मुक्त हो जाएगा। ये आने वाले अग्रिम 28 तारीख पूर्णिमा तक।
5: यह अयोध्या की अद्भुत परंपरा है कि लगभग सभी मठ मंदिरों में भगवान के झूलन डाले जाते हैं और उन पे उनके श्री विग्रह को आसन देकर और झूला झुलाया जाता है। एक सामान्य भक्त को भी भगवान के श्री विग्रह के झूलन कराने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, उत्सव, अतिथियों का अभ्यागत स्वागत और कुल मिलाकर एक बड़ा प्रमोद का वातावरण रहता है।
0: सावन में रामनगरी के मठ मंदिरों में दिखाई दे रहा ये भव्य धार्मिक उत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम।
6: अच्छा, पुराना चलने वाला था।
0: वजह है कि अयोध्या के तमाम साधु संत ही नहीं बल्कि दर्शनों के लिए आए ये श्रद्धालु भी इन दिनों झूलन उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। यूपी के अलावा राजस्थान के भी मंदिरों में झूलन उत्सव की ये परंपरा बड़े भक्ति भाव के साथ निभाई जा रही है। इस मौके पर तरह तरह के धार्मिक आयोजन मंदिरों में रोजाना हो रहे हैं। उत्सव में शामिल होने के लिए कोई परिवार संग और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंच रहा है।
7: अलग अलग भगवान की झांकियां सजाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं फतेहपुर इलाके का, ये श्री नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मणा जी महाराज का मंदिर है। अलग अलग झांकियां हैं फतेहपुर में और तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग रूपों में भगवान के जो कृष्ण सुदामा के पांव है वो दुआ रहे हैं। वहीं अलग अलग देखिए कि किस तरीके से माता यशोदा की झांकियां है और रासलीला रामलीला की तमाम जो झांकियां इस मंदिर में सजाई गई है। तमाम जो लोग हैं शहर के यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग दर्शन करने के लिए फतेहपुर के इस मंदिर पहुँच रहे हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी सावन माह में ही माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। विवाह के बाद जब माता पार्वती सावन में अपने मायके गईं, तब उनके स्वागत में उत्सव मनाया गया। झूला झूलने की परंपरा को इसी आनंद और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर माता पार्वती और भगवान शिव की झूला लीला भी आयोजित की जाती है। सावन में भगवान को झूला झुलाने की ये परंपरा भक्त और भगवान के बीच प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, अयोध्या से मयंक शुक्ला, सीकर से राकेश गुर्जर और पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
8: और अगली अच्छी खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर एक कारीगर न सिर्फ अपने हुनर की वजह से चर्चा में है बल्कि उसकी बनाई चीजें भी खास आसपास के शहरों और राज्यों में काफी लोकप्रिय हो रही हैं। अंकुर नाम का ये कारीगर भगवान के लिए झूले, बेड और सिंहासन तैयार करता है, जिनकी कीमत 150 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है, ऐसे में अंकुर और उनका परिवार इन दिनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत झूले, बेड और सिंहासन तैयार कर रहे हैं।

0: भगवान के विग्रह के लिए बनाए गए एक से बढ़कर एक खूबसूरत सिंहासन, झूले और बेड जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोहले। ये शानदार कारीगरी है सहारनपुर के रहने वाले अंकुर नाम के कारीगर की, जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत करीब 6 साल पहले की थी, जिसे पहले पड़ोसियों ने पसंद किया, फिर रिश्तेदारों ने, और बाद में ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया।
1: हम ये कान्हाजी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला। जी,
2: कब से आप काम कर रहे
1: हो? हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हाजी आए थे, हमने अपने कान्हाजी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: अंकुर बताते हैं कि उन्होंने पहला पीस वेस्ट मटेरियल से खुद के लिए तैयार किया था। धीरे धीरे जब ये लोगों को पसंद आने लगा तो उन्होंने लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और जरी गोटे से सिंहासन, झूला और बेड बनाना शुरू कर दिया। इन्हें सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए फूल और मोर के डिजाइन के साथ ही इन पर आर्टिफिशियल क्रिस्टल चिपकाए जाते हैं, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
1: ये कहते हैं कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
2: बनाने में क्या क्या उपयोग?
1: बनाने में लकड़ी, पलाई और कपड़ा वगैरह, लेस वगैरह सब कुछ लगता है। डिजाइन तो काफी अलग है, मोर के हैं, ओम के हैं, राधे राधे के, अलग अलग आइटम के बनते हैं।
0: अंकुर का कहना है कि इस काम में भाई और पापा मदद करते हैं, जिसके चलते ये लोग एक दिन में 5 से 6 पीस तैयार कर लेते हैं। कीमत की बात करें तो इनकी कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक है। अंकुर बताते हैं कि त्योहार के समय तो खास तौर पर जन्माष्टमी के आसपास उनके बनाए सिंहासन, बेड और झूले की डिमांड आसपास के शहरों और पड़ोसी राज्यों से भी आती है, जिसे वो मुश्किल से ही पूरा कर पाते हैं।
1: पर डे में लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं। लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5,000 प्लस भी हो जाता है।
2: कितना ऑर्डर देखने को मिलता है?
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल तो। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है। जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
0: आपको बता दें कि सहारनपुर पूरी दुनिया में अपने उत्कृष्ट लकड़ी कारोबार और वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे वुडन सिटी भी कहते हैं। यहाँ का काष्ठ शिल्प मुगल काल से ही अपनी बारीक कारीगरी, बेल बूटों और जालीदार डिजाइंस के कारण अलग पहचान रखता है, जिसकी झलक अंकुर और उनके घर वालों के बनाए सिंहासनों, झूलों और बेड में भी नजर आती है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाइयों और बहनों के बीच प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार की बात, क्योंकि इस बार भाइयों से रक्षा करने के वायदे से जुड़ा ये पवित्र पर्व 28 अगस्त यानी कि इस शुक्रवार को मनाया जाएगा। और इस शुभ दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के तौर पर पवित्र धागा बांधेंगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक अभी से ही दिख रही है। भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए सोने चांदी की राखियों की काफी डिमांड है। इनमें सबसे ज्यादा मांग ओम, त्रिशूल, रुद्राक्ष और गणेश जी जैसे सनातन प्रतीकों वाली राखियों की है। देखिए देश में किस तरीके से बाजार गुलजार हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग परंपराओं की राखियों के साथ।

भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक, भाई बहनों के बीच विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक, एक दूसरे की देखभाल के रिश्ते को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षा के वचन से जुड़ा ये पवित्र बंधन भाई बहनों की तरफ से एक दूसरे की सलामती की कामना से जुड़ा पर्व है। इस शुभ दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के तौर पर पवित्र धागा बांधती हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है।

0: करीब महीने भर से बाजार रक्षाबंधन की रौनक के गवाह बन रहे हैं। एक से बढ़कर एक राखी अपने थीम, डिजाइन और रंग बिरंगे अंदाज की वजह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन इस बार ज्यादा ध्यान खींच रही है सोने चांदी की राखियां, जो बहनों की तरफ से अपने भाइयों के प्रति गहरा प्यार और स्नेह दर्शाने का एक बेहतरीन माध्यम बन गया है। खास बात यह है कि सोने चांदी की राखियों को रक्षाबंधन के बाद भी एक खूबसूरत ब्रेसलेट या पेंडेंट की तरह पहना जा सकता है। चांदी में बनी फेवरेट कार्टून वाली राखियां छोटे बच्चों को बेहद पसंद आती हैं।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रंग बिरंगी राखियों की बात करें तो हर एक स्टाइल में आपको राखियां जो है वो मिलेगी, चाहे वो आपकी भाभी के लिए हो, भाई के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। अलग अलग स्टाइल का जो राखियां हैं उससे पूरा बाजार जो है भर चुका है इस वक्त। लेकिन इन्हीं ट्रेडिशनल राखियों के बीच अब प्रीमियम राखियों का भी जमाना आ गया है। पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोग अब प्रीमियम राखियों की ओर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं। एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआती मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहां पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। तो उसी के बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए कार्टून करेक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। आप ये देखेंगे आपको यहाँ पे स्पाइडरमैन की बात, अगर आपका भाई है छोटे भाई को पहनानी है तो कुछ इस तरीके से स्पाइडरमैन वाली भीम, छोटा भीम वाली जो राखी है आपको, इसमें बाइक का डिजाइन है आपको वो दिख जाएगा। तो इस तरीके की राखी की जो वैरायटी है आपको वो दिखने वाली है।
0: सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों से सजी 925 स्टर्लिंग चांदी की राखियां आज के समय में केवल एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि परंपरा, आधुनिकता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम बन चुकी है।
1: बहुत लोग जो है थोड़ा स्पिरिचुअली होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको राखियों के ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से आपको त्रिशूल स्टाइल में रुद्राक्ष के साथ जो है आपको राखी का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं बोलूं आपको ओम का यहाँ पर जो है छोटा सा डिज़ाइन में आपको राखी दिख जाएगी। आपको श्री कृष्ण के लिए भी जो है एक यहाँ पर जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, आपको वो वाले डिजाइंस भी जो है यहाँ पर आपको दिखने वाले। बड़ों के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपको राधे राधे स्टाइल में जो है डिजाइन के साथ विद रुद्राक्ष आपको ये एक डिजाइन मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गणेश जी को बहुत मानते हो और राखी में आप उनका आशीर्वाद चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके के ऑप्शन भी जो है आपको मिलेंगे कि किस तरीके से मोतियों के साथ आपको जो है ये एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसके अंदर आपको गणेश जी दिख जाएंगे। तो वही यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिशूल के साथ, डमरू के साथ जो है ये राखी का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। नजरिए वाले हर कोई पहनाता है कि उस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे, तो इस तरीके की राखी जो है आपको मार्केट में मिलेगी। आपको छोटे बच्चों को पहनानी है या बड़े भाई को पहनाना और आप कृष्ण जी के भक्त है तो आपको ये काना स्टाइल में राखी जो है आपको ये एक ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। आप अगर आपको ये एक ओमकार का जो डिजाइन है आपको ये एक ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा।
0: बाजार में साधारण सूती धागे में पिरोए चांदी के पेंडेंट की डिमांड है जिनकी कीमत ₹1000 से शुरू हो जाती है। राखी के अंदाज में भारी ब्रेसलेट की कीमत ₹1000 तक पहुँच सकती है।
1: अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियां जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नजर आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें ये स्पेशली जो ऊपर की राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियाँ जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियाँ भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी।
0: समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार किलों, भव्य महलों और जीवन संस्कृति के लिए मशहूर जयपुर में सोने के दामों के बीच गोल्ड टच वाली राखी का भी ट्रेंड दिख रहा है। अद्भुत दिखने वाली इन राखियों को थेवा कला के तहत तैयार किया गया है। थेवा राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला है, जिसमें बेहद बारीक सोने की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़कर खूबसूरत डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसमें सोने की मात्रा काफी कम होती है, जबकि कांच और चांदी आधार का काम करते हैं। यही वजह है कि असली सोने का इस्तेमाल होने के बावजूद थेवा ज्वेलरी सामान्य गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में काफी कम कीमत में तैयार हो सकती है।
1: राखियां मैं एक बार दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत ये राखियां हैं। थेवा कला इसको कही जाती है, प्रतापगढ़ से आई है। 400 साल पुरानी कला है जो कांच के साथ बनती है, इसके ऊपर सोने का काम है। क्या ये इनोवेशन है, कैसे काम होता है और राखियों में किस तरीके से आप इसको लेके आई है?
2: जी, राखियां जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने। तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए, जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती है। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियां हैं इसमें। जी देखिए, अब जैसे
1: जी हाँ,
2: अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है। अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा। कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं, ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
0: प्रतापगढ़ से निकली यह पारंपरिक कला अब सोने चांदी की राखियों के जरिए नए और आधुनिक अंदाज में सामने आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा पर उदयकालीन त्रिमुहूर्त व्यापिनी होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा, जो शुक्रवार का दिन है। इस दिन एक साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा पर शत भिक्षा नक्षत्र, सुकर्मा योग और मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति का संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक इन संयोगों की वजह से इस रक्षाबंधन जैसे पर्व की शुभता और बढ़ने वाली है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: क्या तांबे के प्रयोग से स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है? क्या है तांबे के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक चमत्कारी धातु की बात करेंगे जिसको कहते हैं कॉपर यानी तांबा। तांबे का प्रयोग करके आपको किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं, ज्योतिष में तांबे को किस ग्रह के साथ जोड़ते हैं, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज तांबे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं। तांबा धातु का महत्व क्या है? देखिए, तांबा हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। तांबे को औषधीय धातु यानी मेडिसिनल धातु माना जाता है। ये विद्युत का सुचालक है और तांबे के अंदर अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ज्योतिष में तांबे का संबंध जोड़ा जाता है मंगल और सूर्य के साथ। मंगल और सूर्य की मुख्य धातु तांबे को मानते हैं। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के पित्त को और वात को नियंत्रित करता है, आपके पित्त और वात को कंट्रोल करता है। तांबे के बर्तनों का, तांबे के वस्तुओं का पूजा में या पूजा जैसे कामों में बहुत प्रयोग होता है। आम तौर पर हिंदू परंपरा में जो पूजा के बर्तन लोटा, चम्मच, थाली, ये सब प्रयोग होते हैं। आप ज्यादातर देखेंगे तांबे के बने हुए होते हैं, क्योंकि तांबे को सामान्यतः पवित्र धातु माना जाता है। तांबे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी।

मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। गणेश जी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब जब हम तांबे का प्रयोग करते हैं तो तांबे का असर हमारे शरीर और हमारे ग्रहों पर किस प्रकार पड़ता है, कैसे तांबा हमारे जीवन को और हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं, तांबे के पात्र से जल पीते हैं या तांबा धारण करते हैं तो तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर से सारा विष बाहर निकल जाता है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये मंगल को मजबूत करता है। तांबे के प्रयोग से मंगल मजबूत होता है और आपका रक्त शुद्ध होता है, रक्त आपका ठीक होता है। तांबे का प्रयोग करने से सूर्य भी मजबूत होता है, सूर्य भी प्रबल होता है, आपके आत्मविश्वास में, आपके उत्साह में वृद्धि होती है। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को, ये आपके डाइजेशन को काफी अच्छा कर देता है, आपके पेट की दिक्कतों को दूर करता है। तांबे के पात्र का जल पीने से, तांबे का जीवन में प्रयोग करने से शरीर शुद्ध होता है और तांबे का प्रयोग करने से पेट की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, पेट की समस्याओं से राहत मिल जाती है। तांबे के प्रयोग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय यात्रा पर जा सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, करियर में समस्या हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो तांबा बड़ा चमत्कारी है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर तांबे का गहरा असर पड़ता है। और तांबे का प्रयोग कैसे करें कि तांबे के प्रयोग से लाभ हो, तांबे का प्रयोग कैसे करेंगे? तांबे का एक छल्ला किसी भी रविवार को या मंगलवार को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आपको धारण करना चाहिए। अगर आप तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में पहने तो इससे आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों मजबूत होगा। और तांबे का छल्ला अगर आप अनामिका अंगुली में पहने तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, आपकी साहस की स्थिति बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। तांबे का छल्ला या तांबे का एक सिक्का धागे में डाल करके कमर में भी पहन सकते हैं। और अगर कमर में तांबा धारण करेंगे तो इससे नाभि की समस्या में और हार्मोन्स की समस्या में सुधार होगा। जिन बच्चों को चोट बहुत लगती है या जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, उनको छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर अपने गले में पहनना चाहिए। इसको पहनने से दुर्घटनाओं से बचाव होगा। आप रात भर एक तांबे के गिलास में या लोटे में पानी भरकर रख दें और सुबह उस जल को पिएं। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर विषमुक्त होता है, शरीर की गंदगी दूर होती है और पेट संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देखिए, तांबे के पात्र से पानी पीने से त्वचा की समस्या, पेट की समस्या, शरीर में जमे हुए विष की समस्या, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन तांबे के पात्र से दूध या दूध वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के साथ दूध मिलकर जहर की तरह काम करता है। वो आपको स्किन की दिक्कत दे सकता है, पेट में गंभीर समस्याएं आपके हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में कमजोरी है, तो या तो एक तांबे का छल्ला रविवार या मंगलवार को राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें, या तांबे का एक कड़ा बनवा लें और इसको गंगा जल से शुद्ध करके दाहिनी कलाई में अगर आप पहने तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से त्वचा की समस्या हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो तांबे के पात्र का जल पीना आरंभ करें, उसका

अगर आपकी संतान के जीवन में कोई समस्या चल रही है, संतान के जीवन में कोई परेशानी आ गई है, तो माता या पिता में से कोई भी नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करना शुरू कर दें। नियमित रूप से शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे।

0: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: ओणम यानी खुशियों, रंगों और परंपराओं का त्योहार, जो कि केरलम में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खेतों से लेकर कैंपस तक और गांवों से लेकर शहरों तक हर तरफ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो है ओणम का रंग। केरलम में ओणम महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 24 अगस्त से हुई है। राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य के कई हिस्सों में पर्यटन विभाग की ओर से हफ्ते भर चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि राजा महाबली के उस दौर की याद है जब उनके राज्य में सुख, शांति और समानता की मिसाल दी जाती थी। मान्यता है कि 10 दिनों के इस उत्सव में राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर लौटते हैं। उनके स्वागत में सजती है फूलों की खूबसूरत पुकलम, गूंजती है गीतों की धुनें और सजती हैं केले के पत्ते पर परोसा जाता है पारंपरिक व्यंजन। लेकिन इस बार ओणम का अंदाज थोड़ा जेंजी वाला है। केरलम के कॉलेज कैंपस में ओणम का जश्न खास आकर्षण बना हुआ है। यहाँ छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधानों में सजे नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की पुकलम बनाते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं तो कहीं ओणम के पारंपरिक खेलों का माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा रोमांच दिखा टग ऑफ वॉर में, जहां रस्सी खींचते छात्रों के बीच जीत की होड़ और दोस्ती की चेयरिंग ने कैंपस को पूरी तरह से त्योहार के रंग में रंग दिया। मलयाली समुदाय के लिए ओणम ऐसा त्योहार है जिसे मनाने का मौका कोई नहीं छोड़ता।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट।

0: 60 साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारी, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा केरल में लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल करने वाले बच्चों की भी।
1: जिनके बारे में बस पढ़ा हो, सुना हो, उसे करीब से देखने और उनसे बातें करने का मौका मिले तो वो एहसास खास हो जाता है, खासकर स्कूल के दिनों में। इन बच्चों के लिए भी आज का दिन खास था, उन्हें न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का मौका मिला बल्कि इन्होंने उनकी कलाई पर राखी भी बांधी और अपने मन की बातें भी शेयर की। CGI भी बच्चों से प्यार से मिले और उन्हें राखी के बदले उपहार और खूब सारा आशीर्वाद दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई की रहने वाली रागिनी के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वहीं बिहार के गया की नूर आयशा के लिए ये फखर की बात है कि उन्हें दिल्ली में रहते हुए ये मौका मिला।
2: सावन्य से भरी हुई रगरग है जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली गिरी जो शोलों से खेल चुके हैं, अब उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा, अब जो आज चाहे सर पर नहीं डरना है, जन्मे है तो दो बार नहीं मरना है।
1: हिमाचल के चंबा से लैंडस्लाइड का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे पहाड़ के एक हिस्से में हरकत होनी शुरू की और फिर देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। रफ्तार तेज होती गई और एक बड़ा हिस्सा मलबे और पत्थर के साथ नीचे आ गया। राहत की बात ये रही कि सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो चंबा के भरमौर इलाके में कोडला उरई सड़क मार्ग का बताया जा रहा है। सावन अब बस बीतने को है लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। ये सुंदर तस्वीरें बिहार के मुंगेर में असरगंज कांवड़िया पथ की है, जहां एक शख्स अपने परिवार की 19 बेटियों के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। कांधे पर कांवड़ उठाए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, महादेव का जय घोष करती बेटियों की टोली को जो भी देख रहा है गर्व से भरकर हौसला अफजाई कर रहा है। इन बेटियों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले संजीव के मुताबिक उनकी ये कोशिश मोबाइल और आधुनिकता के इस दौर में भी युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए है। वहीं लड़कियों ने कहा कि ये कांवड़ यात्रा उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक रूप से भी सनातन धर्म के प्रति आस्थावान बना रही है।
3: बच्चों को कितने दिनों से यात्रा,
4: किसी को 11 साल, किसी को 10 साल,
3: क्या मांगते हैं बाबा से हर साल?
5: बस मन में रखा हुआ वो अपने जान जाते हैं, उनसे मांगना नहीं, बस बोलबम का नारा लगाए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं।
3: क्या बाबा से जब मिलिएगा तो क्या मांगिएगा, क्या कहिएगा?
5: मांगना कुछ नहीं, बस वो सब जान जाते हैं, हमको क्या चाहिए वो अपने आप दे दें।
1: रामनगरी अयोध्या इन दिनों भक्ति, संगीत और उल्लास के रंग में रंगी नजर आ रही है। सावन शुक्ल एकादशी से अयोध्या के मठ मंदिरों में झूलन उत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। यहाँ के करीब 5,000 मंदिरों में इन दिनों हिंडोलों की डोर तन गई है। कहीं भगवान श्री राम और माता जानकी के विग्रह फूलों से सजे झूले पर विराजमान है तो कहीं राधा कृष्ण और अन्य आराध्यों के झूलन उत्सव की मनोरम झांकियां सजाई गई है। शाम होते ही यहाँ भजन कीर्तन, पद गायन, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों से वातावरण भक्ति में उठता है। वहीं राजस्थान के सीकर में भी लक्ष्मीनाथ मंदिर और श्री चित्रकूट बालाजी समेत कई मंदिरों में झूलनोत्सव की भव्य परंपरा देखने को मिली। फतेहपुर शेखावटी में नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में झूलोत्सव के दौरान नगर सेठ श्री ठाकुर जी की प्रतिमा को अमरनाथ की झांकी के रूप में भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही मंदिरों की भी भव्य सजावट की गई। केरल के पतनमथिट्टा में बच्चों की ये पहल खूब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इस पारंपरिक नृत्य के जरिए ये बच्चे अपनी सदियों पुरानी लोक कला और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओणम उत्सव के दौरान मनाया जाने वाला पुलिकाली नृत्य है, जिसे बाघ नृत्य भी कहा जाता है। बच्चों ने इस लुप्त होती ग्रामीण परंपरा को घर घर जाकर प्रस्तुत किया और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा। खास बात ये रही कि बच्चों ने यहाँ भारी रंगों वाले पुलिकाले की जगह केले के सूखे पत्तों से पोशाक बनाई, अपने हाथों से तैयार किए गए बाघ के मुखौटे पहने, कुछ बच्चे शिकारी बने और खिलौना बंदूकें लेकर नृत्य के जरिए बाघ के शिकार की कहानी बयां की।
0: और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के हिल यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में कई त्यौहार और पर्व अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं। उन्हीं में से एक पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव भी है, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें वहां की संस्कृति और विरासत देखने को मिलती है। अतीत की इस विरासत को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

0: हुड़के की गूंज, ढोल दमाव की थाप और माटी की अटूट आस्था के बीच पिथौरागढ़ में कुमाऊँ का ऐतिहासिक मैदान सोर घाटी की जीवंत लोक संस्कृति का गवाह बना। न कोई मंच था न पर्दे, बस माटी की सोंधी महक और लकड़ी के पीछे धड़कता सूर पर। मैदान में जब गलिया बैल हुक्का पीते किसान उतरे तो लगा मानो सोर घाटी खुद मुस्कुरा उठी हो, और जैसे ही शिव का गण लखिया भूत मैदान में उतरा पूरा कुमाऊँ जयकारों से गूंज उठा। कुमाऊँ की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
0: पारंपरिक रूप से लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों में बांधकर मैदान तक लाया गया। काले परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चमड़ लिए जब लखिया भूत का मैदान में प्रवेश हुआ तो भक्तों उसके आगे श्रद्धा से सिर झुका और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। लखिया भूत को जंजीरों में लाने की परंपरा ही इस हिल यात्रा की सबसे खास पहचान है। स्थानीय मान्यता में लखिया को भगवान शिव का गण और कुमाऊँ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी मानी जाती हैं। लखिया भूत को भगवान शिव के गण और वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कुमाऊँ में लखिया भूत की ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है।
2: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है जो नेपाल से शुरू होकर आज हमारे यहाँ पे केंद्रित है, और ये हर वर्ष यहाँ पे हिल यात्रा का मंचन होता है जिसमें लखिया बाबा के साथ साथ तमाम पात्र वहाँ पे मंचन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो धरोहर है, जो आस्था का केंद्र है, वीरभद्र के जो अवतार लखिया बाबा है, वो यहाँ पे तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से हिल यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया और उन्होंने इसे उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है। हिल यात्रा की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेतों में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रुपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज को दर्शाया जाता है। वहीं हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हॉल, नेपाली हॉल, बड़ी हॉल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं, जबकि ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हिल यात्रा की जड़ें भी खेती किसानी से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक परंपरा में इसे पहले हल यात्रा कहा जाता था। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है, लिहाजा समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। यानी नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। बारिश के मौसम में धान की रोपाई के बीच होने वाला ये उत्सव अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ा रहा है।
3: यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़, और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल, तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: हेल यात्रा की परंपरा के बारे में एक प्रमुख लोक कथा नेपाल से जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक कुमाऊँ के चार मेहर भाई नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। वहां उनकी वीरता से प्रभावित होकर नेपाल नरेश ने उन्हें कुछ पारंपरिक मुखौटे भेंट किए। इन्हीं मुखौटों के साथ पिथौरागढ़ में इस परंपरा के शुरू होने की मान्यता है। यही वजह है कि यहां के पारंपरिक मुखौटे केवल कलाकारों की वेशभूषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके साथ स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की स्मृतियां भी जुड़ी मानी जाती हैं।
4: जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाऊँ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसे की बलि दी गई थी, और इस भैंसे की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की शुरुआत मैदान में सीधे पात्रों के पहुँचने से नहीं होती, बल्कि पारंपरिक रूप से गांव के लोग और कलाकार ढोल नगाड़ों, ध्वज पताकाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊँ के ऐतिहासिक रूप की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पात्र एक एक करके मैदान की ओर आते हैं। इसी क्रम में लखिया भूत का आगमन सबसे खास माना जाता है। मंदिर से जंजीरों में निकलकर मैदान तक पहुंचने वाला लखिया पूरे आयोजन का केंद्र बन जाता है। मैदान में उसके पहुंचने के बाद श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शुभता और संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि उसके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति रहती है, गांव में खुशहाली आती है और फसल अच्छी होती है। इसी विश्वास के कारण हिल यात्रा के दौरान लखिया का दर्शन महज देखने का अनुभव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का क्षण होता है। लोग इसके सामने फूल चढ़ाते हैं, अपने परिवार और खेती के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखिया के जंजीरों में आने की परंपरा भी हिल यात्रा को देश के दूसरे लोक उत्सवों से अलग पहचान देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ₹35 किलो के रेट से प्याज उपलब्ध कराएगी सरकार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक बाजार में उतारने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक से ट्रेन के जरिए करीब 800 टन प्याज दिल्ली लाया जा रहा है। नासिक से प्याज लेकर आ रही कांदा एक्सप्रेस बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी। सरकार इसे यहां नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए ₹35 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुदरा ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। कांदा एक्सप्रेस भारी मात्रा में प्याज लेकर दिल्ली के अलावा चार अन्य केंद्रों चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी भी पहुंच रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के आज 10 साल पूरे हो गए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सालाना यूपीआई पर लेनदेन की संख्या पिछले एक दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है। इस डिजिटल क्रांति के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने पिछले 10 सालों में रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई से आए बदलाव के अनुभवों को शेयर करने को कहा है। यूपीआई को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई की निगरानी में विकसित किया था और इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। मध्य प्रदेश में रामगंज मंडी भोपाल नई रेल लाइन परियोजना के तहत ब्यावरा सोनकच्छ के बीच करीब 24.5 किलोमीटर लंबा रेलखंड ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां पहली बार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर इसका सफल स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन जैसे ही नेशनल हाईवे 4 लेन पर बने रेलवे ब्रिज से 120 की स्पीड में गुजरी, अधिकारियों और ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। भारतीय नौसेना में जल्दी ही एक और स्वदेशी पोत शामिल होने जा रहा है। दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनेगा। इसे खासतौर पर गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के नीचे संचालित होने वाले जटिल अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने किया है। इसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में होने वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। आपको बता दें कि ये नाम लोगों की पसंद से रखे गए हैं। मेले का उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा और इसका समापन 6 सितंबर को होगा। इस मेले में 10 से 12 लाख लोगों के आने की उम्मीद है।
5: और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन की। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भारी डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।

0: जो मंद मंद हंस रहे हैं, अपनी प्रभा से सुशोभित हो रहे हैं। सबका मन लगातार हर लेते हैं और अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में कान्हा के स्वागत के लिए बाजार भी सज गए हैं। उनके सिंहासन से लेकर पहनावे तक की तैयारियां हो रही हैं। कान्हा के स्वागत में बनाए गए सिंहासन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। कोई लाल, कोई हरा तो कोई मरून। बेहद सुंदर रंग बिरंगे सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों से बने ये सिंहासन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, तो इसकी भारी मांग अभी से होने लगी है। इन सिंहासन की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, और जब बात कान्हा की हो तो फिर क्या कहने।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
2: तो कब से आप काम कर रहे
1: हो? हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार श्री कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने की वजह से इनका पूरा परिवार काम में दिन रात जुटा हुआ है। अंकुर बताते हैं कि इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है, और जहां तक कीमत की बात है तो ये 150 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का है।
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल। तो
2: जन्माष्टमी आ रही है
1: जी, जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर भेजना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: ये पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
2: पब्लिक लेने आती है तो क्या कुछ रिव्यू देखी जाती है?
1: बस यही कहती है कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
0: अंकुर ये भी बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने सिंहासन बनाने का ऑर्डर भी दिया था। वहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले इनका परिवार फर्नीचर बनाने का काम करता था।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: अंकुर ने ये भी बताया कि लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। बता दें कि सहारनपुर अपने बेहतरीन लकड़ी के हस्तशिल्प और नक्काशीदार कान्हा जी के सिंहासन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और जन्माष्टमी के नजदीक आने पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल भी कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
4: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ।
0: मंगलवार 25 अगस्त को सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 115 अंक ऊपर 24,335 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। आज यानी मंगलवार 25 अगस्त को दिल्ली में सोने की कीमतों में 2700 रुपए की उछाल आई। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,67,100 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी रही। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी 3500 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,50,000 रुपए पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 24 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.46 रुपए हो गई।
3: 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हीरो और हैवान के बीच जबरदस्त टक्कर की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स की हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी अब एक नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दीपक मुकुट, संगीता अहिर और हुनर मुकुट की प्रोड्यूस की गई गन मास्टर G9 27 नवम्बर को रिलीज होगी। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म दायरा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है और अब दर्शकों को उसके ट्रेलर का इंतजार है, जो 31 अगस्त को रिलीज होगा। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में देने के बाद निर्देशक मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के साथ एक मजबूत कहानी और शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दृश्यम फ्रेंचाइजी अपने आखिरी चैप्टर के साथ लौट रही है। दृश्यम द कंक्लूजन में एक बार फिर अजय देवगन, विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़े पैमाने पर सामने आएगी। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और ऋषिता दत्ता समेत कई पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदारों में दिखेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डोंट बी शाय जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म में 4 नए चेहरे आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अंश दुग्गल नजर आएंगे। श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों की हल्की फुल्की कहानी पेश करेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। डोंट बी शाय 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज होगी। KGF 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हुए फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में यश और पूरी टीम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। फैंस ने अपने चाहते स्टार के लिए जमकर उत्साह दिखाया। इस शानदार रिस्पांस ने फिल्म को लेकर बनी जबरदस्त दीवानगी की झलक दिखा दी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक को वेंकट के नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।
3: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिश्निंग। न्यूज पथ में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नज़ारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्चे की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
3: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बोलचाल वाली मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के बाद अब नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की कमी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल है, जो कि मराठी भाषा वाले नियम के विरोध में शुरू की गई है। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की गई है। इनमें ऐप बेस्ड कैब सर्विस से जुड़े ड्राइवर भी शामिल हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। ड्राइवर्स का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी तैयारी उन्हें सरकार की ओर से दी गई ट्रेनिंग में नहीं कराई गई। नियम के तहत ड्राइवर्स को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 अगस्त से ड्राइवर्स के मराठी भाषा ज्ञान की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवर्स की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जांचे गए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स में 604 को मराठी की वर्किंग नॉलेज ना होने पर नोटिस मिला है। ड्राइवर्स का कहना है कि कम पढ़े लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं। दरअसल कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं है, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग क्लास में जाने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टेस्ट में डेली यूज भी यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या फिर CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल शामिल हैं। नियम के तहत नोटिस पाने वाले ड्राइवर्स को 1 महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका बैच 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर्स के लिए मुख्य मुद्दा भाषा नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी रोटी पर पड़ने वाला असर है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
5: एक ही एक मामला सामने आया कि भाई हम तो मराठी सीख लिए, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जब इंक्वायरी करने कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, तो वो कुछ और ही सवाल पूछ रहा है और उसमें हम अटक रहे। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या राय होगी?
6: देखिए, मराठी बोलना तो आना ही चाहिए। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मराठी बोलना चाहिए, जो भाषा यहाँ की वहाँ तो बोलना ही चाहिए सबको। लेकिन इसके ऊपर विवाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ऑफिसर लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग चले जाएंगे, जो नहीं बोल पाएगा उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, यहाँ टैक्सियां कम पड़ जाएंगी, लोग गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे आईटीओ को भी सोचना चाहिए कि मुद्दत दे करके जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको मुद्दत दे, उनको आगे बढ़ाए
5: आगे बढ़ाए। सर, कल मेरे से एक ऑटो चालक मिला और उनसे साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने तो मराठी सीख ली है, लेकिन 70-80% लोग जो यात्री बैठते हैं वो मराठी में बात नहीं करते, क्योंकि गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो पंजाबी हैं, वो साउथ वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे कंडीशन में एज ए मुंबईकर, आप क्या कहेंगे?
7: नहीं, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि उन सब भाषा मराठी, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी पे कमांड होना जरूरी है, एक अच्छी बात है। लेकिन सब भाषा आदमी के नॉलेज में आएगा वो पॉसिबल नहीं है, वो सब भाषा टैक्सी ड्राइवर सब भाषा में समझा नहीं पाएगा लोगों को अलग अलग।
8: देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आना चाहिए, ये जरूरी है, तो ये मातृभूमि है महाराष्ट्र की। और ये मतलब ऐसा है कि मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये मराठी एक मातृभाषा है, तो ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कि नो डाउट कि नहीं, पर ये जो 8,000 फाइन 10,000 फाइन जो आरटीओ मार रही है ये गलत है। किसी का लाइसेंस रद्द कर तुम उनको एक एक टाइम लिमिट दो कि भाई आपको इतने महीने में सीखना है कि आपको मराठी बोलना आना चाहिए। मराठी बोल रहे, सीख रहे ड्राइवर लोग, सीख रहे मराठी, पर जब आरटीओ पकड़ रही है तो वो दूसरा ही कुछ सवाल पूछती है, तो उसके अंदर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अभी मांगे गए फुड़े गए ये तो एक नॉर्मल है, ये तो कोई भी टैक्सी वाले को आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और नो रिक्शा वालों का मैं नहीं बता सकता, टैक्सी वालों का 100% बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि मराठी उनको आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं। पर ये आरटीओ का जुलूम है कि आरटीओ 8,000-10,000 फाइन मार रहे।
5: लेकिन आरटीओ तो सिखा भी तो रहा है फ्री में,
8: आरटीओ सिखा रहा है तो इतनी लाइन लगी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा सुबह से जाके रुक रहा है और रात शाम तक का वो काम धंधा करेगा कि ये मराठी सीखेगा। और 25-30 साल के बाद ये कायदा अगर तुमको निकालना ही था तो पहले निकालना था, या उसका एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि भाई एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको सीखना है। पर कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट अभी तुम एंड टाइम पे सब निकाल लोगे कि भाई मराठी बोलना है, मराठी सीखना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा टैक्सी वालों को।
9: बिल्कुल नहीं, सीखना चाहिए लेकिन जुलूम नहीं होना चाहिए। सीखो, बोलो, है महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सामने वाले जुल्म करके नहीं सिखा, गलत बात एकदम जुल्म करके नहीं। हाँ, सब जात के लोग है, मुस्लिम, महाराष्ट्र, कैथलिक, वो हर हर हर जात के है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि भाई नहीं आ रहा है, ये चलो फाइन मारो, चलो गांव जाओ। बहुत से दादागिरी भी कर, हद से ज्यादा दादागिरी कर, वो नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से करो ना, सब ठीक है, सब हो जाए।
10: देखिए, लोकल डायलेक्ट तो आना चाहिए व्यवहारिक तरीके से तो, लेकिन काफी लोगों को आता भी है, पर एक कंपल्शन करना थोड़ा ज्यादती जैसा हो जाएगा। बट अगर स्वेच्छा से करना चाहें तो सब लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे वो। लेकिन आप अगर आप थोपोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है।
3: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है। हर तरफ बप्पा के स्वागत की तैयारियां और भव्य पंडाल सजे हुए हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर किसी को इंतजार है अपने प्यारे गणपति बप्पा की एक झलक का। मुंबई की गलियों में इस वक्त बस बप्पा का ही रंग नजर आ रहा है। ढोल की थाप पर नाचते गाते भक्त और भव्य सवारियां पंडालों की ओर बढ़ रही है।

0: ढोल ताशों की गूंज, नगाड़ों की आवाज, और गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष।
1: गणपति बाप्पा मोरया।
0: आजकल मुंबई की सड़कों पर भक्ति का ऐसा ही नजारा है। भले ही गणेश उत्सव में अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन यहाँ की फिजाओं में उत्सव के रंग चढ़ने लगे हैं। गणेश प्रतिमाओं को पूरे विधि विधान साथ पंडालों की ओर ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या युवा, हर कोई गजानंद के स्वागत में नतमस्तक है। और हो भी क्यों ना, आखिर साल भर के इंतजार के बाद तब कहीं ये पावन मौका आता है जब भक्त अपने आराध्य से मन की मुराद कहेंगे। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है तो कोई ढोल की थाप पर झूम रहा है। मुंबई की पहचान बन चुका गणेश उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ये शहर की एकजुटता, संस्कृति और सामुदायिक उत्साह की भी सुनहरी तस्वीर पेश करता है। सालों से चली आ रही इसी परंपरा की कड़ी में भक्त और उल्लास के साथ काल चौकी के राजा की भव्य सवारी भी पंडाल की ओर निकली। भव्यता ऐसी कि नजरें ठहर जाएं। गजानंद की मनमोहक प्रतिमा, चेहरे पर दिव्य तेज, सिर पर सजा भव्य मुकुट और आभूषणों की चमक, बाप्पा के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की निगाहें बस अपने आराध्य पर टिकी है। किसी के हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए तो कोई बाप्पा के दिव्य दर्शन को मोबाइल कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सजने वाले गणेश पंडालों में आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं। बात कहें कामराज नगरचा महाराज के स्वागत के लिए उमड़े भक्तों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी।
2: देख, मतलब जैसा विसर्जन होता है, विसर्जन होने के 2 महीने बाद ही हमारा फिर से तैयारी चालू हो जाता है कि गणपति का क्या क्या प्लानिंग है, मीटिंग्स वगैरह ये है। और गणपति बप्पा हमारे मेहमान नहीं है, वो हमारे ही है, हमारे बीच के ही है, हम सब में गणपति बप्पा है। और हम हमेशा गणपति बप्पा को बहुत प्राथमिकता दिया हम लोगों ने, हमारे मंडल को आज 23 साल हो गए, इसीलिए हम लोग 23 तारीख को आगमन रखे हैं सर। मतलब 23 साल हो गए और ये आगमन गढ़ है 23, वो हिसाब से हम लोग ने रखा था।
0: बापा के आगमन के साथ ही मुंबई की रफ्तार में भक्ति का रंग घुल जाता है। पंडालों में तैयारियां तेज हैं, बाजारों में रौनक है और भक्तों के बीच बापा के स्वागत को लेकर जोश हाई है। गणेश प्रतिमाओं को पूरे भक्ति भाव के साथ उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब बस वो घड़ी आने वाली है जब बापा का दरबार सजेगा और भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चीन में रोबोट के बीच हो रहे हैं तगड़े मुकाबले। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स शुरू हो गए हैं। 16 देशों के 2000 से ज्यादा रोबोट 51 अलग अलग मुकाबलों में अपनी ताकत और हुनर दिखा रहे हैं। कई रोबोट इंसानों की तरह दौड़ रहे हैं तो कई पिचकस चलाने, कील ठोकने और बोतल खोलने जैसे काम कर रहे हैं। AI और आधुनिक तकनीक की मदद से ये रोबोट रास्ता खोजने और तेजी से काम करने में सक्षम है। बीन्स को चिमटे से उठाने जैसे काम में भी ये करीब 80-90% सटीकता हासिल कर रहे हैं। बोलीविया की राजधानी लापाज और एल ऑल्टो में भारी बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सड़कों से लेकर घरों और पहाड़ियों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बीच लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। कहीं स्नोमैन बनाया गया तो कहीं लोग बर्फ में खेलते और स्नो एंजल बनाते दिखे। वहीं एल ऑल्टो में बर्फ और कोहरे के बीच केवल कार सेवा जारी रही। हालांकि भारी बर्फबारी का असर उड़ानों पर भी पड़ा और कई फ्लाइट्स कुछ समय के लिए लेट हुई। चीन के चोंगकिंग में करीब 40 डिग्री की गर्मी के बीच लोगों ने हॉटपॉट का अनोखा मजा लिया। यहां पर्यटक ठंडे पानी के बीच बैठकर तीखा और गर्मा गर्म हॉटपॉट खाते नजर आए। गर्म हॉटपॉट और ठंडे पानी का यह अनोखा कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आया। तपते गर्मी में पानी के अंदर बैठकर तीखे खाने का अनुभव पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग इस अनोखे अंदाज का जमकर लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी और हॉटपॉट का ये कॉम्बिनेशन अब चर्चा में है। लंदन ज़ू में जानवरों का वजन किया गया और उसके पीछे मकसद सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि उनकी सेहत और ग्रोथ पर नजर रखना है। यहां सबसे हल्के जानवर का वजन करीब 1 ग्राम तक रहा, जबकि ऊंट और जिराफ का वजन 650 से 700 किलो तक पहुंचा। जानवरों को जबरदस्ती तराजू पर नहीं चढ़ाया जाता, कीपर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वे खुद वजन वाली जगह पर पहुंच जाएं। पक्षियों के लिए खास पर्च स्किल का इस्तेमाल होता है। सही वजन से डॉक्टरों को इलाज और जांच में भी मदद मिलती है। चीन के बीजिंग में पारंपरिक हेजेन लोक कला यिमाकान की शानदार गूंज सुनाई दी। नेशनल थिएटर में इस लोक कला पर आधारित खास नाटक पेश किया गया। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त यिमाकान गीत कहानी और अभिनय के जरिए अपनी संस्कृति और इतिहास को लोगों तक पहुंचाती है। इस प्रस्तुति में जापान के साथ युद्ध के दौर की कहानी को भी मंच पर जीवंत किया गया। कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में गीत और कथाओं के जरिए दर्शकों को इतिहास और लोक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की। प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा।
3: भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन बस आने को है। इसको लेकर देश में हर तरफ उत्साह का माहौल है। पारंपरिक से लेकर स्टाइलिश राखियों से बाजार गुलजार है। इको फ्रेंडली राखी बनाने का काम भी चल रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। वहीं देश की रक्षा में तैनात जवानों को राखी भेजने की मुहिम भी चल रही है।
5: रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, जिसके लिए बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियों और उपहारों से बाजारों में रौनक है। तरह तरह की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही हैं। आजकल सोना और चांदी के राखियों की डिमांड बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर लखनऊ के सराफा बाजार में सोने और चांदी की राखियों की धूम है। लोग इन्हें निवेश के तौर पर भी खरीद रहे हैं। आभूषण के दुकानों पर भी बहनें चांदी और सोने की राखियों को खरीदने के लिए पहुँचने लगी हैं।
6: इसमें मतलब सिल्वर लगा है गोल्ड के फॉर्म में। ये देखने में काफी यूनिक है और हैंडमेड है। गोल्ड का भी राखी ले सकती हूँ अपने भाई के लिए।
5: ज्वेलर्स ने भी रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारी की है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सोने और चांदी की आकर्षक राखियों का नया स्टॉक बाजार में उतारा है। 500 रुपए की चांदी की राखी से लेकर 50,000 रुपए तक की प्रीमियम सोने की राखियां बाजार में मौजूद हैं। चांदी की राखियों की ज्यादा डिमांड है।
7: हम लोग राखी में विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जिसमें वृद्धाश्रम राखी है, भाई बहन की राखी है, मेरे भैया राखी है। इस तरह कई तरह के अलग अलग नाम से राखी को बनाया गया है और स्टर्लिंग सिल्वर में विशेष तौर से हम लोगों ने गोल्डन राखी उतारी है, जिसमें गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है।
5: रक्षाबंधन पर सूरत के कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी हुई इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है। ये राखियां लोगों को न केवल पर्यावरण की रक्षा का संदेश देंगी, बल्कि गौमाता के सम्मान से भी जोड़ेगी। सूरत के माधव गौशाला में प्राकृतिक चीजों से राखियां बनाई जा रही है। इन राखियों को बनाने में गाय के गोबर और लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। ये राखी दिखने में सुंदर तो है ही, 100% इको फ्रेंडली भी है। यही नहीं, उपयोग के बाद इसे कूड़े में फेंकने की बजाय अगर गमले में डाल दी जाए तो ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाएगी।
8: और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इसका महत्व है, जिसमें पंचतत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी और ये सब इसके पंचतत्व से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने, जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक भाई एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे, जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं।
5: रक्षाबंधन का त्योहार सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि गौ सेवा और पर्यावरण सुरक्षा का हमारी परंपरा से जुड़ाव है। इन लोगों का कहना है कि सूरत में बन रही इन राखियों को भारत के हर हिस्से में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के पाली में स्थित इस मुख्य डाकघर की तस्वीरें देखिए। यहाँ डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान के तहत इन दिनों खास तौर से स्कूली बच्चों की लाइन लगी नजर आती है। ये बच्चे सीमा पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेजने यहाँ पहुँच रहे हैं और अब तक 25,000 से ज्यादा राखियां यहाँ से भेजी जा चुकी है। यहाँ आने वाले बच्चों को डाक विभाग के अभियान और रक्षाबंधन को लेकर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ी हुई है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें बहनों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। दुकानों में राखियों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है, जिसकी खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, स्टोन, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर समेत अलग अलग डिजाइन वाली राखियां सजी हुई है।
9: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बॉडी मांडर जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है, वो बहुत ट्रेंडिंग में है और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। इस बार फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है, वो लोग सब मांग रहे हैं।
5: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं, जिनकी कीमत 300 से 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजार में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भरत भूषण जोशी और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके
3: कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर मंडराया फॉलो ऑन का खतरा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर।

0: 80 और लहरू कुमारा 8 रन पर नाबाद लौटे हैं। वहीं बसिंधु सूर्या बंडारा ने 80 रन की पारी खेली। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मारव सुधार ने 3-3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। बारिश के कारण मंगलवार को तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म हो गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा GCT यानी ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। अब 25 अगस्त को खिताबी मुकाबले में प्रज्ञानंदा का सामना डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने कानकुन कंट्री टेनिस ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मेक्सिको के मिगुएल एंजेल रेस वरेला और बेलारूस के इवान ल्यूटारेविच को 6-3 7-6 से हराया। कानकुन की जीत अनिरुद्ध चंद्रशेखर के लिए चैलेंजर सर्किट का 11वां खिताब है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्योहार की और चंद्रग्रहण की। ये बड़ा संयोग है कि जिस दिन राखी बांधी जाएगी उसी दिन करीब 5 घंटे का चंद्रग्रहण है। साल का ये आखिरी ग्रहण क्या राखी के त्योहार पर असर डालेगा और क्या ग्रहण की वजह से राखी बांधने का मुहूर्त बदल जाएगा, इन सवालों को लेकर लोगों के मन में उलझन है। इसलिए आज आपको ग्रहण के बारे में विस्तार से हम बताएंगे, इसके बाद समझेंगे कि इस साल राखी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं और ग्रहों की चाल की वजह से ये राखी क्यों खास होने जा रही है। बात करेंगे 28 अगस्त को राखी बांधने से सबसे शुभ मुहूर्त की और आखिर में दिखाएंगे सोने और चांदी की राखियां। बदलते दौर में परंपरा और प्यार के साथ प्रीमियम लुक वाली ये राखियां डिमांड में रहे काफी। आज आपको राजस्थान की थेवा कला के बारे में भी बताएंगे, शानदार रॉयल राखियां भी आज आपको तमाम दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहण से। देखिए, राखी के त्योहार पर इस बार एक खास संयोग बनने जा रहा है। 28 अगस्त को भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इसी दिन साल का अंतिम चंद्रग्रहण भी लगेगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से राखी का त्योहार प्रभावित होगा, क्या सूतक मान्य होगा और भाई की कलाई पर राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा। चलिए आपको इन तमाम सवालों के जवाब और चंद्रग्रहण की जुड़ी जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

0: नीली पीली लाल गुलाबी रंग बिरंगी राखी। छोटे के लिए खिलौने वाली, बड़े के लिए डिजाइनर वाली। कोई चांदी से बनी है, कोई मोती जड़ी है। कोई ट्रेडिशनल, कोई इमोशनल, तो कुछ मॉडर्न या कहें जेन ज़ी टाइप। बाजार में राखियों की रौनक है, घरों में त्योहार का उत्साह। साल भर बहनें जिसका इंतजार करती हैं, वो दिन करीब है। 28 अगस्त को भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर प्यार का धागा बांधा जाएगा, लेकिन एक वजह से इस साल राखी खास हो गई है। संजोग ऐसा कि रक्षाबंधन पर ही यानी शुक्रवार को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यानी जब राखी का त्योहार मनाया जाएगा तब ग्रहण होगा जो 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: इस साल रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को अंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया, तो फिर त्योहार कब मनेगा? चंद्र ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी। स्वाभाविक है कि इस संयोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। उलझन इस बात को लेकर है कि क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा, क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा, क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा। इस साल रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी थोड़ी बहुत माथापच्ची है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण से चिंता वाली कोई बात नहीं। 28 अगस्त को ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होगा और दोपहर 12:30 खत्म होगा, पर यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बेशक अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में उसी समय रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अब रही बात सूतक काल की, तो यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहाँ आँखों से दिखाई देता है वहीं सूतक काल धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव मान्य होते हैं। चूँकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन से पहले भारत में सूतक काल लग जाएगा? सामान्य भारतीय धार्मिक पंचांग परंपरा के अनुसार भारत में इस चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
0: यानी मन में कोई शंका या सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। इसलिए बहनें 28 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। राखी की तारीख भी तय है और ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। तो अब आपको बताते हैं कि राखी बांधने का शुभ समय कौन सा है। असल में रक्षाबंधन पर भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि भद्रा में मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। पर इस साल 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा। यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मायने ये कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही कारण है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। फिर भी जानकारों की राय है कि 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ है। ध्यान ये रखना है कि सुबह 10:12 से दोपहर 12:20 तक राहु काल होगा, जिसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहनें।
0: अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम के समय भी करीब 7 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डेज टुडे।
3: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भाई बहन के रिश्ते की मिठास के साथ साथ ज्योतिषीय नजरिए से भी खास बताया जा रहा है। देखिए, जानकारों के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन करीब 11 शुभ योगों का संयोग बन रहा है। जी हाँ, शतभिषा नक्षत्र के साथ अतिगंड, शोभन, श्रीवत्व, सौम्य और विजय जैसे योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्राधि, बुधादित्य, विमल, विपरीत राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ धन, उभयचरी, शकट और सुरफा योग बनने की भी बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो शुभ योगों के ऐसे संयोग में पूजा पाठ, दान और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने जैसे धार्मिक कार्यों को विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं पर रक्षाबंधन के दिन ग्रहों की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। देखिए, सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, जिसे उनकी स्वराशि माना जाता है, जबकि गुरु कर्क राशि में स्थित होंगे, जो उनकी उच्च राशि है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना जाता है। वहीं पर गुरु ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और समृद्धि से जुड़ा माने जाते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में ग्रहों और नक्षत्रों का ये संयोग रक्षाबंधन के पर्व को धार्मिक आस्था के साथ ज्योतिषीय दृष्टि से खास बनाएगा। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजाने के लिए बाजार में इस बार राखियों की अनोखी रेंज देखने को मिल रही है। जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला ने राखी को शाही अंदाज दिया है। सोने की परत, रंगीन कांच और चांदी से तैयार ये राखियां परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल है। वहीं पर सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यानी कहीं सोने चांदी की चमक है तो कहीं पर प्रकृति से जुड़ी सादगी। रिपोर्ट देखिये।

0: सोने की चमक, चांदी की खनक, कहीं डायमंड का ग्लैमर तो कहीं मोतियों की नजाकत। भाई की कलाई के लिए इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक राखी है, लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक राखी ऐसी भी है जो आपको चौंका देगी। न सोना न चांदी, बल्कि गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार, यानी एक तरफ शान और शौकत तो दूसरी तरफ सादगी और प्रकृति से जुड़ाव। राखियों की इस रेंज में हर पसंद का रंग है और हर धागे में भाई बहन के रिश्ते की खास मिठास। रिश्तों की डोर जब प्यार से बंधती है तो उसमें सिर्फ धागा नहीं होता, भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और अपनों के लिए कुछ खास करने का जज्बा होता है। रक्षाबंधन पर इसी एहसास को इस बार बाजार ने एक नया अंदाज दिया है। कहीं 400 साल पुरानी राजस्थान की थेवा कला सोने चांदी के साथ भाई की कलाई तक पहुंच रही है, तो कहीं गाय के गोबर और लकड़ी से तैयार राखी पर्यावरण और परंपरा का संदेश दे रही है, यानी एक ही त्योहार में शाही चमक भी है और मिट्टी से जुड़ी सादगी भी। जयपुर के बाजारों में इस बार राखियों की दुनिया काफी रंगीन नजर आ रही है। सोने चांदी और डायमंड से सजी डिजाइनर राखियों की मांग बनी हुई है। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद बहनों का उत्साह कम नहीं हुआ है। दुकानों पर अलग अलग डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं ताकि भाई की कलाई पर इस बार कुछ खास नजर आए। लेकिन इन चमकदार राखियों के बीच राजस्थान की करीब 400 साल पुरानी थेवा कला ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रतापगढ़ से निकली ये पारंपरिक कला अब आधुनिक डिजाइन के साथ राखियों में दिखाई दे रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें अपने भाई के लिए सबसे सुंदर सबसे प्यारी राखी ढूंढ रही हैं, तो वही भाई मार्केट में अपनी बहन के लिए सबसे खूबसूरत तोहफे की तलाश में हैं। अगर मैं कहूं कि जयपुर में एक ऐसी जगह है जहां पे राखियां भी मिलेगी और उसी के साथ में बहुत ही खूबसूरत तोहफे भी मिलेंगे, और वो भी आम तोहफे या फिर आम राखियां नहीं, 400 साल पुरानी थेवा कला से बनी हुई सोने की जो राखियां हैं वो, और साथ ही में चांदी की भी बहुत खूबसूरत राखियां हैं वो इस जगह पे मिलेगी। और सोने के भाव क्योंकि अभी आसमान छू रहे हैं तो ये जो सोना है वो इतना महंगा नहीं होने वाला है। इनकी जो कीमत होगी वो असल में जो सोने की राखियां मिलती हैं उसके 1/10 कही जा सकती है, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा है पर सोने की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। बजट फ्रेंडली है और यही ऑप्शंस ज्वेलरी में भी अवेलेबल है, और ऐसी ज्वेलरी जो कि सभी भाई जो हैं वो अपनी बहनों के लिए ले सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। राखियां मैं एक बार दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत ये राखियां हैं। थेवा कला इसको कही जाती है, प्रतापगढ़ से आई है, 400 साल पुरानी कला है जो कांच के साथ बनती है, इसके ऊपर सोने का काम है।
0: थेवा कला में बेहद पतली सोने की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़ा जाता है। इसके आधार में कांच और चांदी का इस्तेमाल होता है, जबकि सोने की मात्रा बहुत कम रहती है। इसी तकनीक की वजह से असली सोने की खूबसूरती वाली ये राखियां सामान्य गोल्ड ज्वेलरी के मुकाबले कम कीमत में तैयार की जा सकती हैं।
1: क्या ये इनोवेशन है, कैसे काम होता है और राखियों में किस तरीके से आप इसको लेके आई है?
2: जी, राखियां जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़ा उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने, तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए हैं जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती है। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथिया हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियां हैं।
0: यानी भाई की कलाई पर सोने का स्पर्श भी और जेब पर अपेक्षाकृत कम बोझ भी। इनकी खासियत सिर्फ खूबसूरत डिजाइन तक सीमित नहीं है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कांच का रंग, आकृति, स्टोन, चेन और धागा चुन सकते हैं। रुद्राक्ष, देवी देवताओं की आकृतियां और दूसरे आध्यात्मिक प्रतीकों को भी डिजाइन में शामिल किया जा रहा है।
1: आप अपनी पसंद से बनवा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें तो आप इनको डिजाइन बता सकते हैं। ओम इसमें लिखा है, आप कोई और भगवान या फिर अपने भाई के नाम का इनिशियल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रुद्राक्ष है वैसे ही अलग अलग टाइप की बीड्स लग सकती हैं, बाद में चेंज किया जा सकता है, कलर अपने हिसाब से, चेन अपने हिसाब से, तो एक पर्सनलाइज जो टच होता है वो इन राखियों में आप कर सकते हैं। लाल कलर का कांच इसमें इस्तेमाल किया गया है, आप चाहे तो हरा या नीला भी कर सकते हैं। मैम आप ये बताइए कि किस किस तरीके से कस्टमाइज की जा सकती है, ये जो मेन इसका वो है आपने मुझे बताया था पेंडेंट भी बन सकता है, तो किस तरीके से क्या हो सकता है?
2: जैसे ये अभी ओम है तो अपन चाहे तो इसको पूरा यहाँ से निकाल के ब्रेसलेट पेंडेंट भी बना सकते हैं। इसके कलर ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, इसके शेप अपन चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इसका पूरा बड़ा राउंड में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, ट्रायंगल में चाहिए, कोई भी शेप इसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह से हम पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज सारे ऑप्शंस देते हैं।
1: अच्छा, सोना बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है और आपने बताया कि 1/10 प्राइस ही पड़ता है, कैसे इसकी बनावट है कि उसकी जो कीमत है वो इतनी कम हो जाती है?
2: इसकी बनावट ये है कि इसमें गोल्ड यूज होता है, बिल्कुल प्योर सोना, ऑथेंटिक गोल्ड ही यूज करते हैं, लेकिन एक पतली सी परत सोने की होती है, शीट होती है, उसको बारीकी से नक्काशी करते हैं और फिर रंगीन कांच के साथ उसको फ्यूज किया जाता है हीट एंड प्रेशर के साथ। एंड ये जो फ्यूजन टेक्निक है दिस इज अ वेरी सीक्रेट, एक सीक्रेट कला है ये। कुछ 15 से 20 कारीगर ही है जो इस कला को करते हैं, तो डिजाइनिंग हम करके पूरा उनसे बनवाते हैं। पीछे जो इसका कवर है वो पूरा चांदी का होता है, गोल्ड प्लेटिंग में होता है, तो इसीलिए ये एक बहुत खास सोना, चांदी और हैंडवर्क का एक नायाब नमूना ही कहो आप।
0: जयपुर की ज्वेलर विनीता मालवीय थेवा की इस पारंपरिक तकनीक को नए नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ा रही हैं। खास बात ये है कि राखी में चेन जोड़कर इसे बाद में पेंडेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी त्योहार गुजरने के बाद भी ये खूबसूरत निशानी अलमारी में बंद नहीं होगी।
1: और राखियों के बारे में आप
2: जी, सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है, भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख आज चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव। तो ये भी चीज एक ऐसी हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: रक्षाबंधन की खरीदारी सिर्फ भाइयों तक नहीं रुकी है, गिफ्टिंग के लिए नेक पीस, रिंग, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, मांग टीका और कई दूसरे ज्वेलरी पीसेस भी पसंद किए जा रहे हैं। चांदी और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर के विकल्प भी मौजूद हैं, जो देखने में आकर्षक हैं और बजट का ध्यान रखते हैं।
1: बहनों की जब हमने बात कर ही लिए तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए, यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है, कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं, इनके बारे में जानेंगे क्या कुछ ऑप्शंस हैं गिफ्टिंग के लिए।
2: गिफ्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हमने सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी निकाले हैं, जिसमें सिल्वर के अंदर अगर आपको बजट आपका 5,000, 10,000, 15,000 जो भी बजट है, हर बजट में हर कैटेगरी में, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनका पॉकेट मनी से गिफ्ट करना है तो वो उस अमाउंट में भी गिफ्ट कर सकते हैं, सिल्वर के, प्योर सिल्वर के रियल गिफ्ट्स।
1: चलिए हम एक बार आपको इस तरफ दिखाते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस है। मैम हमें बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे सेट्स लगे हुए हैं, मिनिमल ऑप्शंस हमने देखे क्रेमे की, कौन से ब्रेसलेट्स हैं, कौन सी चेन्स हैं, सेट्स की बारी है तो सेट्स लड़कियां कौन से ज्यादा पसंद कर रही हैं या फिर सबसे ज्यादा भाई कौन सा लेना चाहेंगे?
2: देखिए अब जो जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी हैं उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे। जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है, मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी। और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शंस है।
0: लेकिन बाजार की कहानी सिर्फ सोने चांदी की चमक तक नहीं है, बल्कि सूरत में रक्षाबंधन के लिए एक बिल्कुल अलग पहल देखने को मिल रही है। माधव गौशाला में गाय के गोबर और लकड़ी से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। इनका उद्देश्य त्योहार को प्रकृति और भारतीय परंपरा से जोड़ना है।
3: पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले विधाता ने गौ माता की उत्पत्ति की, और गौ माता अमरेश हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक गाय बचेगी तब तक देश बचेगा, और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसका महत्व जिसमें पंच तत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी और ये सब, इसके पंच तत्व से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक भाई एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो स्पर्श चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं।
0: प्राकृतिक सामग्री से बनी ये राखियां इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल सकती हैं, जिससे प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों से होने वाले कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इन राखियों के जरिए गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। बनाने वालों का मानना है कि त्योहारों के दौरान प्लास्टिक और दूसरे गैर जैविक सामान की जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएं।
4: रक्षाबंधन का त्योहार जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है, ये सभी जाति और सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के अंतर्गत इको फ्रेंडली राखी हमने बनाई है, क्योंकि अभी प्लास्टिक का प्रचलन ज्यादा है, राखियां जो है चाइना से आ रही है, प्लास्टिक की राखियां ज्यादा आ रही है, तो ये इको फ्रेंडली राखी, इसके अंदर गोबर का उपयोग किया गया है, लकड़ी के लोगों का उपयोग किया गया है, मतलब पूर्णतः इको फ्रेंडली है। गोबर का उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ में गाय माता का जुड़ाव बढ़े, जो गो आधारित जो चीजें हैं वो ज्यादा लोग यूज में करें, और गौ माता का जो गोबर है वो रेडिएशन से हमको मुक्ति दिलाता है। आजकल रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास मोबाइल है, टावर के तहत रेडिएशन आता है, ये सब रेडिएशन से निजात पालने के लिए हमने ये राखी जो है वो बनाई है।
0: गौशाला से जुड़ी इस पहल को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। सूरत के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इन्हें मंगवा सकते हैं। इस बार बाजार में राखियों के कई रंग हैं, कहीं सोने की चमक है, कहीं थेवा की विरासत और कहीं गौमय से जुड़ी प्रकृति की सादगी। बदलते समय के साथ राखी का अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट आज भी वही है जो एक छोटे से धागे को भी अनमोल बना देती है। जयपुर से रिदम जैन, सूरत से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज सुरे।
5: खास कार्यक्रम में इतने ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सात साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देश भर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: इंदौर में रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को अर्पित की जाएगी विशाल सनातन राखी, करीब 2.5 महीने से गजानन के लिए बनाई जा रही है राखी। राखी को आकर्षण रूप देने के लिए कोलकाता, जयपुर, मुंबई, सूरत से मंगाए गए सलमा सितारे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी, SSP को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। मेरठ के SSP ने छात्राओं को दिया आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा जताया। राजस्थान के अलवर में तेजी से चल रहा है राखी बनाने का काम, 35 से ज्यादा देशों में भेजी जाती है अलवर में बनी राखियां। अलवर में राखी के कारोबार से 10,000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा है रोजगार, राखियों की 50,000 से ज्यादा डिजाइन किए जा रहे हैं तैयार। बाजार में सोने चांदी, हीरे और ज्वेलरी राखियों की भारी डिमांड। जयपुर में राखियों के दिख रहे हैं नए और आकर्षक ट्रेंड, राजस्थान की 400 साल पुरानी थेवा कला का राखी के साथ अनोखा मेल। थेवा राखियों में सोने की पतली परत का होता है इस्तेमाल। की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़कर तैयार की जाती है थेवा राखियां। गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, जोर शोर से चल रही है तैयारियां। इस साल मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया, उद्घाटन 2 सितंबर को। फिल्म देश के मशहूर कलाकार देंगे परफॉर्मेंस, समापन 6 सितंबर को होगा। मुंबई में जोर शोर से चल रही है गणेश उत्सव की तैयारियां, पंडाल में पधारे खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल हुआ तैयार। इस बार किसान के अवतार में है खेतवाड़ी का लंबोदर मंडल की गणपति। केरल में शहर ओणम की धूम देखने को मिल रही है, 10 दिनों तक मनाया जाता है फसल का त्यौहार। ओणम पर पर्यटन विभाग ने राज्य में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, एक हफ्ते तक चलेंगे कार्यक्रम। राजधानी तिरुवनंतपुरम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य मेजबान। ओणम पर रामराज कॉटन ने 3,000 धोतियों से एशिया का सबसे बड़ा पूक्कलम बनाया।

0: 28 से रोजगार तक डिजिटल मदद करेगी उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 में योजना के लिए 2374 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट प्रावधान। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बुजुर्ग माता पिता के सम्मान और अधिकारियों की रक्षा करने के लिए नियमों का संशोधन। संतान या अन्य आश्रित रिश्तेदार देखभाल ना करें तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं बुजुर्ग। 7 साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक का जिला एक का प्रोडक्ट की नीति से बुलंदशहर की खुर्जा पॉटरी कारोबार को मिल रहे हैं पंख। ओडीओपी से कारीगरों को मिल रही है बेहतर ट्रेनिंग, मालिकों को सब्सिडी पर मिल रही है वित्तीय सहायता। दिल्ली की रहने वाली सोनल और उनके पति ने पेश की मिसाल, कचरे को रिसाइकिल करके बना रहे हैं उपयोगी। प्लास्टिक कचरे से तैयार किया जा रहे हैं पार्क और स्कूलिंग के लिए बेंच, डस्टबिन, प्लांटर, पोस्टर और कई तरह के कस्टमाइज प्रोडक्ट। दिल्ली में मिशन समृद्ध गांव का शुभारंभ हो गया, गांवों को खरीदी मुक्त और रोजगार से समृद्ध बनाना है लक्ष्य। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण 31 अगस्त को नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने की कवायद, महाराष्ट्र के नासिक से ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है 800 टन प्याज। कांदा एक्सप्रेस बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली के अलावा कांदा एक्सप्रेस प्याज लेकर चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई और गुवाहाटी भी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज हुई रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पड़ी राहत की फुहारें, बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत। त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली सरकार ने दी गुड न्यूज, लोगों को उपलब्ध कराएगी सस्ता प्याज और चीनी। रेखा गुप्ता सरकार का ऐलान, नेफेड से खरीदार दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे सस्ता प्याज। चीनी की बड़ी कीमतों के बीच बड़ा ऐलान, 35 रुपए किलो की दर पर चीनी बेचेगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाद्य मंत्री और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में चीनी की कमी नहीं, उत्तर प्रदेश में हर महीने 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, इसके मुकाबले 28 लाख टन का स्टॉक है। दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज, हर घर तक साफ और बिना रुकावट पानी पहुंचाने के लिए अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार कर रही है सरकार। सीएमओ ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड को एडीबी से 2500 करोड़ की फंडिंग मिल रही है। इंदौर में किन्नर समाज की भव्य शिवमय शोभा यात्रा निकाली गई, बैंड बाजों की धुन पर किन्नर समाज के लोग खूब झूमे। नंदलालपुरा के प्राचीन मठ से निकली शोभा यात्रा। मां मंडलेश्वर और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी यात्रा में हुई शामिल, देश में सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना। मानसून के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, दोनों धामों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। पिछले साल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे कुल 16,60,224 श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से हो रहे हैं भगवान के दर्शन। हेमकुंड साहिब में पिछले साल 274,441 श्रद्धालु पहुंचे थे, इस साल तकरीबन 275,787 श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर जताई खुशी, इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब में चले रहेंगे। सीकर में धूमधाम से संपन्न हुआ झूलन महोत्सव, 6 दिनों से जारी था सावन की महाकन्या उत्सव, खास अंदाज में हुआ नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर का श्रृंगार। अमरनाथ की झांकी के रूप में भव्य तरीके से सजाई गई है श्री ठाकुर जी की प्रतिमा। बड़ी संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। पूरे मंदिर परिसर को रंग रोगन और आकर्षक ढंग से सजाया गया, दूधिया रोशनी से नहाया। सावन की पौराणिक बीच अयोध्या में मठ मंदिरों फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं श्रीराम। अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में जारी आस्था का उत्सव, शाम होती ही मंदिरों में भजन कीर्तन और नृत्य की प्रस्तुतियां। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान को लगाया गया महाभोग। डमरू और झालर की धुन के बीच पंचमुखी महादेव की हुई महाआरती। सावन के इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को फूल मालाओं और झालों से आकर्षित लाइटों से सजाया गया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वडोदरा के पोस्ट ऑफिस की अनोखी पहल, बहनों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे। मात्र 10 रुपए में इन विशेष वाटरप्रूफ लिफाफों की कीमत है। रक्षाबंधन से पहले सूरत में अनोखी पहल, गाय के गोबर और लकड़ी से बनाई जा रही इको फ्रेंडली राखी। ये राखी देखने में सुंदर होने के साथ साथ 100% इको फ्रेंडली। इन राखियों को इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी में डालने पर इनमें प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती है खाद। रक्षाबंधन से पहले सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला खास नजारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस लाउंज में आयोजित खास कार्यक्रम में शिरकत की। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों के साथ किया संवाद, बच्चों को बांटे तोहफे। रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों पर दिल्ली सरकार की पैनी नजर, स्कूलों को लेकर जारी गाइडलाइंस। दिल्ली के स्कूलों के लिए जारी कर दी गई है गाइडलाइंस, स्वाइन फ्लू और H1N1 की रोकथाम को लेकर जागरूकता। छात्रों को नियमित रूप से साबुन के हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश की सरहद की रक्षा में जुटे अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर योजना सेल बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल अग्निवीरों को रोजगार दिलाने में मदद दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IFS के 2025 के बैच के ऑफिसर ट्रेनिंग से मुलाकात की। भारत में ऐतिहासिक UPI के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी। UPI के 10 साल पूरे होने के मौके पर अमित शाह ने भी लिखा पोस्टर, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। DRDO के विकसित मिसाइल तकनीक प्राइवेट कंपनियों को हस्तांतरित करने का रक्षा मंत्रालय की मोहर। जोधपुर में भारत के तरंग शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी वायुसेना के F-35 फाइटर जेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,446 प्रविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के साथ सेल्फी ली, नियुक्ति पत्र भी बांटे। योगी सरकार ने स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड मंजूर कर दिया, 3,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के पुनर्निर्माण। राजस्थान के स्कूल में टीचरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, विद्या संबल योजना के तहत रखे जाएंगे 76,000 टीचर। कुंभ की क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के 5 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस हुए सस्पेंड। सावन में पवित्र हरिद्वार को मिली खास पहचान, ओम पुल के पास विराजे 21 फीट ऊंचे महादेव, सफेद रंग के हैं महादेव की भव्य और विशाल प्रतिमा। झारखंड के हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव का भव्य समापन। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने महिला उद्यमियों से मुलाकात की। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना मकसद। केरल के पथानमथिट्टा में ओणम समारोह, बच्चों ने पारंपरिक कुलीकली को कला में भाग लिया। कुलीकली कला में दर्शाया जाता है एक बाघ के गांव में घुसने की कहानी। लद्दाख में 15वीं जिला करगिल ताइक्वांडो चैंपियनशिप संपन्न हुई। चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा युवा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। लद्दाख पुलिस के सहयोग से करगिल ताइक्वांडो एसोसिएशन का आयोजन किया गया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर के ऐतिहासिक डल झील। दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों पर एक्शन, रेखा सरकार, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग, बेड, दवाइयों और मेडिकल सुविधाएं। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फिनाले में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन खिताब। यूएस ओपन वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर। शिकारा राइड का मजा ले रहे हैं सैलानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: मु मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस साल अब तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेक चुके हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडा मौसम और मुश्किल चढ़ाई भी श्रद्धालुओं के हौसले को रोक नहीं पा रही। हर कदम के साथ श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ नजर आ रहा है।

0: ऊंचे पहाड़, चुनौतियों से भरा मौसम और कुदरत की खूबसूरती से सजा हेमकुंड साहिब तीर्थ। हिमालय की चोटियों में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिखों के इस पवित्र गुरुद्वारे में इन दिनों आस्था उमड़ रही है। मॉनसून के इस मौसम में पहाड़ों के ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है। यहाँ मौसम किसी भी वक्त करवट ले लेता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद मौसम खुल भी जाता है। रुक रुक कर हो रही बारिश से हेमकुंड साहिब में पारा भी लुढ़कने लगा है। लेकिन मौसम की इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। पवित्र सरोवर में स्नान करने के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह ने इस बार हेमकुंड साहिब में आस्था का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 23 मई से शुरू हुई थी। अभी तक 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ मत्था टेक चुके हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहा है। गुरुद्वारे में लगातार चल रहे लंगर में गर्म भोजन की व्यवस्था की गई है। तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने के रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रशासन और एजेंसियां भी मुस्तैद है।
1: बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। हम मुंबई से आए हैं और ये ट्रैक वगैरह तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। रास्ता पूरा कोई दिक्कत नहीं आई हमको इतनी दूर आते आते, और ऊपर आके तो ये नजारा कमाल है। और यहाँ सब लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पे आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत।
0: हेमकुंड साहिब तीर्थ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस तीर्थ स्थल के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद से चमोली में मौसम कई बार करवट ले चुका है। यात्रा शुरू होते समय जमकर बर्फबारी हो रही थी और अब लगातार हो रही बारिश रोज नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऊंचे पहाड़ों पर होने की वजह से इस तीर्थ स्थल पर कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी परेशानी होती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सोरघाटी पिथौरागढ़ के

0: उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हिल जात्रा उत्सव। अलग अलग तरह के मुखौटों से सजा सोर घाटी। सोर घाटी की ऐतिहासिक कुमौड़ हिल यात्रा का आयोजन आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों के बीच हुआ है। कुमौड़ के मैदान में जब लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों से बांधकर लाया गया तो हजारों लोग उस पल के गवाह बने। ये परंपरा ही हिल यात्रा की सबसे खास पहचान भी है।
1: सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर।
2: पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल। तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवाल लोग आए हैं।
0: काला परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए लखिया भूत का जब मैदान में प्रवेश होता है तो भक्त उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय मान्यता में लखिया भूत को भगवान शिव का गण और कुमौड़ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
3: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है।
0: माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है।
4: इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी, और उस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था, और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेत में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज का चित्रण होता है। हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हौल, नेपाली हौल, बड़ी हौल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं। ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है। समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।

0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण। 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल की पांच चमत्कारी वस्तुओं के बारे में कि इन वस्तुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनका हमारे जीवन में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपको बार बार कर्ज लेना पड़ जाता हो, ऐसी स्थितियां बार बार आती हों कि आपको कर्ज लेना पड़ता हो, तो हर मंगलवार को निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार हलवा पूरी बांटिएगा। अगर आप हर मंगलवार को ऐसा करें तो आपको कर्ज के जंजाल से छुटकारा मिलेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं 26 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:59 तक, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं कि तांबे का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
1: देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं मंगल की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं तांबे के बारे में, तांबे का मंगल से क्या संबंध है। देखिए, तांबा यानी कॉपर ये मंगल की प्रमुख धातु है। ये धातु औषधीय यानी मेडिसिनल मानी जाती है और तमाम रोगों के निवारण में, तमाम रोगों को दूर करने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लोग तांबे को बहुत पवित्र मानते हैं और इतना पवित्र मानते हैं कि तांबा धारण करने के बाद मांसाहार नहीं करते। मंगल के लिए दान करने में, मंगल का रत्न धारण करने में तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस नहीं लगता, तो तांबे का एक कड़ा मंगलवार को अपनी दाहिनी कलाई में पहनिएगा। और अगर रक्त संबंधी कोई समस्या है तो तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तांबे के साथ दूध का प्रयोग करना मना होता है, इसीलिए तांबे के पात्र से दूध का प्रयोग ना करें और तांबे के लोटे से शिव जी को दूध अर्पित ना करें। तांबे के साथ दूध मिलने पर वो पॉइजन हो जाता है, इसीलिए तांबे के पात्र से जल पीना बहुत फायदेमंद है, लेकिन तांबे के पात्र से दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: और अब वक्त हो गया है लाल रंग का मंगल से क्या संबंध है इसके बारे में जानने का और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
1: अब जानते हैं कि लाल रंग का, रेड कलर का मंगल से क्या संबंध है और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कैसे करना चाहिए। देखिए, लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रंग बताए गए हैं। लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है और मंगल को शक्तिशाली करने के लिए, मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल निगेटिव है, अगर आपकी कुंडली में मंगल नकारात्मक है, तो लाल रंग का प्रयोग करने से आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोल्ड कफ की दिक्कत रहती हो, ठंडक की समस्या रहती हो, सर्दी जुखाम की दिक्कत रहती हो, तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। खास तौर से लाल रंग का एक रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। अगर जोड़ों के दर्द की, ज्वाइंट पेन की दिक्कत है आपको, तो पैरों में और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा आपको बांधना चाहिए। देखिए, लाल रंग बड़ी तेजी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन लाल रंग बड़ा तीव्र कलर है, बड़ा तेज रंग है। अगर आपको सूट नहीं करेगा तो लाल रंग का प्रयोग करने से बेवजह के विवाद होंगे, बेवजह के झगड़े और दुर्घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए लाल रंग का प्रयोग करने में सावधानी बरतना जरूरी है।
0: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: कर्क कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, नौकरी में तरक्की होगी, वाद विवाद से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न अपराजिता जी ने हमें लिखा है और अपराजिता जी लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1992, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है लखनऊ। अपराजिता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अपराजिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कुंडली के हिसाब से आपका विवाह लखनऊ या लखनऊ के आसपास होने की संभावना ज्यादा है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, जानेंगे पंडित जी से कि वो आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
1: जी, अगला प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 8 जनवरी 2014, जन्म का समय सुबह के 8:40, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल बात नहीं सुनता, जिद्दी ज्यादा हो गया है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, क्या उपाय करें कि बेटे का जीवन बेहतर हो जाए। देखिए किरण जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने बेटे को लेके बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाला समय उनका ठीक है। मंगल की ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये समस्या हो रही है, तो बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में डाल दें, खेलने कूदने के लिए भेजें, साइकिल चलाने के लिए भेजें, थोड़ा शारीरिक परिश्रम करे तो मुझे लगता है लाभ होगा। इसके अलावा आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को बच्चे के गले में धारण करवाएं, और आप अपने बच्चे के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो काफी बेहतर होगा।
0: और चलिए जानते हैं कि मिट्टी और भूमि का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
1: अब बात करते हैं मिट्टी की और भूमि की। मिट्टी और जमीन, इसका मंगल से क्या संबंध है? ज्योतिष शास्त्र में और सामान्यतः मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, यानी पृथ्वी पुत्र माना जाता है। जमीन और जमीन से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जमीन पर और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का अधिकार है। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज है, मिट्टी का संबंध भी मंगल से होता है। अगर आप मिट्टी के पात्र से जल पिए, कुल्हर से अगर जल पिए, तो क्रोध की मात्रा में कमी आएगी। घर में मिट्टी के गमलों में अगर आप पौधे लगाएं तो घर में सुख शांति आएगी, मंगल की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप जब भी घर बनाएं, हर जगह मार्बल लगवा लें कोई बात नहीं, लेकिन घर में थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी सी जगह मिट्टी वाली अगर आप छोड़ दें तो घर में रहने वालों की बीमारियों से रक्षा होती है। जब मंगल गड़बड़ होता है तो जमीन पर सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जमीन पर सोने से मंगल के तत्व ज्यादा प्रबल होते हैं और मंगल की समस्याएं दूर हो जाती हैं।
0: और अब जानेंगे गुड़ के बारे में। जी हाँ, गुड़ का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार प्रयोग करें, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से।
1: अब जानते हैं गुड़ के बारे में, गुड़ का मंगल से क्या संबंध है। देखिए, गुड़ जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज है, इसको मंगल से संबंधित माना जाता है। गुड़ का नियमित सेवन करने से शक्ति मिलती है और रक्त आपका बढ़ता है। अगर शरीर में रक्त की कमी है, रक्त से संबंधित दिक्कत है, तो नियमित रूप से भुना हुआ चना और गुड़ आपको खाना चाहिए। अगर आपके जीवन में सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की संभावना बन गई है या चोट चपेट की संभावना बन गई है, तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप हर मंगलवार को गुड़ का दान करें और मंगल आपकी कुंडली में खराब हो, तो उसकी अशुभता से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा।
0: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य इस समय आपका बिगड़ सकता है, करियर में समस्या हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब जानेंगे जौ का मंगल से क्या संबंध है और इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए।
1: अब बात करते हैं एक अनाज की जिसका नाम है जौ। जौ का मंगल से क्या संबंध है? देखिए, जौ जो है ये शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। जौ को मंगल से जोड़ा जाता है। जब आप जौ का प्रयोग करते हैं, जौ को खाते हैं, तो ये आपके शरीर को शुद्ध करता है और विषमुक्त करता है। जौ का प्रयोग करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और रक्त शुद्ध होता है। अगर आपको मुकदमे परेशान कर रहे हो, कोर्ट कचहरी का मामला, कर्ज का मामला, मुकदमे का मामला परेशान करे, तो अपने घर के किसी कमरे के कोने में जौ को भारी चीज से दबा देना चाहिए और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहना चाहिए। अगर आपके कर्ज बढ़ते चले जा रहे हों, तो मंगलवार को चुटकी भर जौ बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, अगर मंगल की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, तो जौ की रोटी खानी चाहिए, मंगल की स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी।
0: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, उनका क्या कहता है राशिफल।
1: मकर राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की उपासना करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। हेमंत जी की जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1975। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य में लगातार मेरे दिक्कतें बनी हुई हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। देखिए हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने डाइजेशन का और अपने खान पान का ध्यान रखना है। पेट के अलावा, खान पान की समस्याओं के अलावा कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं है। केवल खान पान सुधारें, डाइजेशन का ध्यान रखें तो आपको लाभ होगा।

0: से छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न राजीव जी ने हमें लिखा है और राजीव जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1979, रात में 10:50 और जन्म का स्थान है वाराणसी। राजीव जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मैं अपनी नौकरी बदल पाऊंगा और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा? राजीव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस साल के आखिरी में आप अपनी नौकरी बदल पाएंगे, इस साल के आखिरी में आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन की संभावना भी थोड़ी बहुत आपके लिए बन रही है और आने वाले समय में करियर को लेकर के या पैसे को लेकर के कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य बनवा लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में, तो अगर हमारी कुंडली में हमारा मंगल अच्छा नहीं है, उसके प्रभाव अच्छे नहीं है, तो हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए?
0: जी देखिए, सामान्यता आप ये समझते हैं कि मंगल खराब है, मंगल नेगेटिव है, तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं कि अगर मंगल खराब है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि उससे लाभ हो। देखिए, हनुमान जी मंगल से संबंध रखने वाले देवता नहीं हैं, ये आपकी श्रद्धा और आपकी भावना है जिससे आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर मंगल खराब है कुंडली में, अगर मंगल जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनकी पूजा करने से मंगल की जो अधिक से अधिक अशुभता है, उस अशुभता को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान कार्तिकेय की स्तुति कर सकते हैं, भगवान कार्तिकेय का दर्शन और पूजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें और मंगल आपका अशुभ है, मंगल आपका निगेटिव है, तो उसकी नकारात्मक स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 26 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में बड़े जोखिम लेने से, रिस्क लेने से बचिए, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शाम के समय कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। देखिए शाम का समय लक्ष्मी पूजा का और माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक आपको कर्ज की समस्या परेशान कर सकती है।
1: और अब जानेंगे शुभ पहर के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है, आइए जानते हैं।
0: दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें, नौकरी संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की विशेषता क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है सिंह। इनको अपने क्रोध पर और सबके ऊपर शासन करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए, और सिंह वाले अगर थोड़ा विनम्र रहें तो जीवन में काफी तरक्की कर सकते हैं।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर बार बार आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो रही हों तो क्या करेंगे, सफेद रंग के कागज पर छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक बनाइएगा।

0: होना काफी हद तक रुक जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: बात करेंगे मठ मंदिरों में चल रहे झूलन उत्सव की। सावन का ये पवित्र महीना न केवल शिव जी को समर्पित है बल्कि सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली और रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है, साथ ही कई जगह झूला झूलने की परंपरा का भी आगाज हो जाता है।

0: भक्ति, उत्साह और प्रतीक के सौंदर्य से जुड़े श्रावण में झूलन उत्सव के रंग मठ मंदिरों में बिखरे पड़े हैं। क्या अयोध्या और क्या मथुरा, क्या सीकर और क्या पाली, झूलन उत्सव की रौनक इन दिनों हर तरफ देखते ही बन रही है। चाहे छोटे मंदिर हो या फिर बड़े, शाम होते ही ये मंदिर न सिर्फ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं, बल्कि इन मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह को सोने चांदी और फूलों से सजे झूले पर भजनों और गीतों के साथ झुलाया जाता है। इसे ही झूलन उत्सव कहा जाता है। मठ मंदिरों में होने वाली झूलन उत्सव की ये परंपरा खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में सावन के महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसकी एक तस्वीर ब्रज भूमि से सामने आई है। यहाँ ब्रज के तमाम मंदिरों में ठाकुर जी और राधा रानी को परंपरा के मुताबिक झूला झुलाया जा रहा है, जिसे देख श्रद्धालु खुशी से निहाल हो उठे।
1: सावन का महीना चल रहा है और स्वर्ण हिंडोले में ठाकुर जी विराजे हुए हैं, क्योंकि बाल रूप में यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है। जो ठाकुर जी की सेवा है ब्रज में, वो बाल रूप में है। ठाकुर जी यहाँ 7 वर्ष के हैं, तो इसलिए सावन के महीने में वर्षा होती है, तो वर्षा में भगवान को प्राचीन अनंत काल से झूला झुलाया जा रहा है। तो ठाकुर जी को यहाँ स्वर्ण हिंडोले में झूला झुलाया जा रहा है। जबकि ठाकुर जी अपने समय में पेड़ की लकड़ियों पे झूला झूलते थे। तो इस तरह जो मंदिर है ना, पूरे मंदिर की अगर सजावट की बात करें तो बड़े ही सुंदर सा और भव्यता और दिव्यता के साथ मंदिर में लाइटिंग लगाई गई है। और पूरा जो सावन मास है, सावन मास में ठाकुर जी को बड़े लाड़ लड़ाए जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी की बड़ी सेवा की जाती है। ठाकुर जी के लिए मंदिर में मनमोहक घटाएं सजाई जाती हैं। जैसा बाहर रूप होता है कि कभी बादल काले हो जाते हैं, कभी एकदम बारिश होने लगती है, तो इस तरह का जो मंदिर है, वो मंदिर में कभी गुलाबी घटा होती है, कभी काली घटा होती है, कभी सफेद घटा होती है। तो सावन के महीने में जो निरंतर भगवान की सेवा है, वो बड़े अनोखे और दिव्य तरीके से होती है।
2: हम यही ब्रजवासी हैं और ब्रज में ठाकुर जी हर सावन झूला झूलने आते हैं और यहाँ कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, मल्हार होते हैं और ठाकुर जी हर साल झूला झूलते हैं, हमें दर्शन देते हैं और द्वारकाधीश भगवान भी हर चांदी के झूले में झूलते हैं, सोने के में झूलते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के।
0: झूलन उत्सव को लेकर मथुरा जैसा ही हर्ष और उल्लास प्रभु श्री राम की नगरी में भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के करीब 5,000 मंदिरों में इन दिनों ये झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। कहीं श्री राम और माता जानकी के विग्रह फूलों से सजे झूले पर विराजमान है, तो कहीं राधा कृष्ण और अन्य आराध्यों के झूलन उत्सव की मनोरम झांकियां सजाई गई हैं। अयोध्या के झूलन उत्सव की खासियत यह है कि इसमें भक्ति के साथ लोक परंपराएं भी जुड़ी हैं। सखियों के रूप में महिलाएं कजरी गीत गाती हैं, भजन मंडियां प्रस्तुति देती हैं और मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। यही परंपरा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है।
3: अयोध्या में झूल उत्सव का महोत्सव चल रहा है। दशरथ महल में पक्ष खड़े हैं और जो नजारा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो भगवान राम लला और माँ सीता जो है झूले पे विराजमान है, लोग आ रहे हैं और उनको झूला झूलाते नजर आ रहे हैं।
4: इन भक्तों का एक भाव है और उस भाव पूर्वक झूला झूलाते हैं और ठाकुर जी को जो झूला झूला लेगा वो निश्चित रूप से इस संसार के झूला झूलने से मुक्त हो जाएगा। ये आने वाले अग्रिम 28 तारीख पूर्णिमा तक।
5: यह अयोध्या की अद्भुत परंपरा है कि लगभग सभी मठ मंदिरों में भगवान के झूलन डाले जाते हैं और उनपे उनके श्री विग्रह को आसन देकर और झूला झुलाया जाता है। एक सामान्य भक्त को भी भगवान के श्री विग्रह के झूलन कराने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, उत्सव, अतिथियों का अभ्यागत स्वागत और कुल मिला के एक बड़ा प्रमोद का वातावरण रहता है।
0: सावन में रामनगरी के मठ मंदिरों में दिखाई दे रहा ये भव्य धार्मिक उत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम।
6: अच्छा, पुराना चलने वाला था।
0: वजह है कि अयोध्या के तमाम साधु संत ही नहीं बल्कि दर्शनों के लिए आए ये श्रद्धालु भी इन दिनों झूलन उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। यूपी के अलावा राजस्थान के भी मंदिरों में झूलन उत्सव की ये परंपरा बड़े भक्ति भाव के साथ निभाई जा रही है। इस मौके पर तरह तरह के धार्मिक आयोजन मंदिरों में रोजाना हो रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए कोई परिवार संग और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंच रहा है।
6: अलग अलग भगवान की झांकियां सजाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं फतेहपुर इलाके का, ये श्री नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मणा जी महाराज का मंदिर है। अलग अलग झांकियां हैं फतेहपुर में और तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग रूपों में भगवान के जो कृष्ण सुदामा के पांव है वो दुआ रहे हैं। वहीं अलग अलग देखिए कि किस तरीके से माता यशोदा की झांकियां है और रामलीला की तमाम जो झांकियां इस मंदिर में सजाई गई है। तमाम जो लोग हैं शहर के यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग दर्शन करने के लिए फतेहपुर के इस मंदिर पहुँच रहे हैं।
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी सावन माह में ही माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। विवाह के बाद जब माता पार्वती सावन में अपने मायके गईं, तब उनके स्वागत में उत्सव मनाया गया। झूला झूलने की परंपरा को इसी आनंद और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर माता पार्वती और भगवान शिव की झूला लीला भी आयोजित की जाती है। सावन में भगवान को झूला झुलाने की ये परंपरा भक्त और भगवान के बीच प्रेम भक्ति और आनंद का प्रतीक है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, अयोध्या से मयंक शुक्ला, सीकर से राकेश गुर्जर और पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
7: यह खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलकर आ रही है, जहां पर एक कारीगर न सिर्फ अपने हुनर की वजह से चर्चा में बना हुआ है, बल्कि उसकी बनाई चीजें भी आसपास के शहरों और राज्यों में काफी लोकप्रिय हो रही हैं। अंकुर नाम का ये कारीगर भगवान के लिए झूले, बेड और सिंहासन बनाता है।
8: भगवान की विग्रह के लिए बनाए गए एक से बढ़कर एक खूबसूरत सिंहासन, झूले और बेड जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ये शानदार कारीगरी है सहारनपुर के रहने वाले अंकुर नाम के कारीगर की, जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत करीब 6 साल पहले की थी, जिसे पहले पड़ोसियों ने पसंद किया, फिर रिश्तेदारों ने और बाद में ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया।
9: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
10: कब से अभी काम कर रहे हैं?
9: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
8: अंकुर बताते हैं कि उन्होंने पहला पीस वेस्ट मटेरियल से खुद के लिए तैयार किया था। धीरे धीरे जब ये लोगों को पसंद आने लगा तो उन्होंने लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और जरी गोटे से सिंहासन, झूला और बेड बनाना शुरू कर दिया। इन्हें सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए फूल और मोर के डिजाइन के साथ ही इन पर आर्टिफिशियल क्रिस्टल चिपकाए जाते हैं, जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
9: ये कहते हैं कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान। बनाने में लकड़ी, प्लाई और कपड़ा वगैरह, लेस वगैरह सब कुछ लगता है। डिजाइन तो काफी अलग है, मोर के हैं, ओम के हैं, राधे राधे के, अलग अलग आइटम के बनते हैं।
8: अंकुर का कहना है कि इस काम में भाई और पापा मदद करते हैं, जिसके चलते ये लोग एक दिन में 5 से 6 पीस तैयार कर लेते हैं। कीमत की बात करें तो इनकी कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक है। अंकुर बताते हैं कि त्योहार के समय तो खासतौर पर जन्माष्टमी के आसपास उनके बनाए सिंहासन, बेड और झूले की डिमांड आसपास के शहरों और पड़ोसी राज्यों से भी आती है, जिसे वो मुश्किल से ही पूरा कर पाते हैं।
9: पर डे में लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
10: कौन कौन बनाता है?
9: भाई है, मैं और पापा जी हैं। लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5,000 प्लस भी हो जाता है।
10: कितना ऑर्डर इससे देखने को मिलता है?
9: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल तो। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर भेजना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
10: ये पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
9: सब निकल जाता है पहले ही।
8: आपको बता दें कि सहारनपुर पूरी दुनिया में अपने उत्कृष्ट लकड़ी कारोबार और वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे वुडन सिटी भी कहते हैं। यहाँ का काष्ठ शिल्प मुगल काल से ही अपनी बारीक कारीगरी, बेल बूटों और जालीदार डिजाइंस के कारण अलग पहचान रखता है, जिसकी झलक अंकुर और उनके घर वालों के बनाए सिंहासनों, झूलों और बेड में भी नजर आती है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बात करेंगे भाइयों और बहनों के बीच प्रेम के प्रतीक यानी रक्षाबंधन त्योहार की। इस बार भाइयों से रक्षा करने के वादे से जुड़ा ये पवित्र पर्व 28 अगस्त को है। भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए सोने चांदी की राखियां भी उनकी खाबी डिमांड देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा मांग जो है ओम, त्रिशूल, रुद्राक्ष और गणेश जी जैसे सनातन प्रतीकों वाली राखियों की है।

भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक, भाई बहनों के बीच विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक, एक दूसरे की देखभाल के रिश्ते को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षा के वचन से जुड़ा ये पवित्र बंधन भाई बहनों की तरफ से एक दूसरे की सलामती की कामना से जुड़ा पर्व है। इस शुभ दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के तौर पर पवित्र धागा बांधती हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है।

0: करीब महीने भर से बाजार रक्षाबंधन की रौनक के गवाह बन रहे हैं। एक से बढ़कर एक राखी अपने थीम, डिजाइन और रंग बिरंगे अंदाज की वजह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन इस बार ज्यादा ध्यान खींच रही है सोने चांदी की राखियां, जो बहनों की तरफ से अपने भाइयों के प्रति गहरा प्यार और स्नेह दर्शाने का एक बेहतरीन माध्यम बन गया है। खास बात यह है कि सोने चांदी की राखियों को रक्षाबंधन के बाद भी एक खूबसूरत ब्रेसलेट या पेंडेंट की तरह पहना जा सकता है। चांदी में बनी फेवरेट कार्टून वाली राखियां छोटे बच्चों को बेहद पसंद आती हैं।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है और ऐसे में बाजारों में जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर रंग बिरंगी राखियों की बात करें तो हर एक स्टाइल में आपको राखियां जो है वो मिलेगी, चाहे वो आपकी भाभी के लिए हो, भाई के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। अलग अलग स्टाइल का जो राखियां हैं उससे पूरा बाजार जो है भर चुका है इस वक्त। लेकिन इन्हीं ट्रेडिशनल राखियों के बीच अब प्रीमियम राखियों का भी जमाना आ गया है। पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोग अब प्रीमियम राखियों की ओर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन प्रीमियम सिल्वर राखी की। और आप देख सकते हैं कि आपको जो है सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है राखी के दिखने वाले। तो ये 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस सीजन में जो है ये खास होने वाली है वो इसलिए क्योंकि सिर्फ राखी के फेस्टिवल के बाद जो है आप एक धागे की तरह इसको उतार कर नहीं रख सकते, बल्कि आप बाद में भी जो है इसको कैरी कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट के तौर पर जो है आप इसको पहन सकते हैं और पूरे साल जो है इसको आप बहन भाई की जो प्यार की निशानी है उसके साथ जो है इसको कैरी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको सिल्वर के ऑप्शन जो है वो नजर आने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चों की राखी से शुरू करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है आपको दिखेंगे। शुरुआत ही मैं इन छोटी छोटी राखियों से करूंगी। आपको दिखेगा कि किस तरीके से बच्चों को कार्टून करेक्टर्स वाली राखियां पसंद होती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको स्पॉन्ज बॉब की राखी की बात करें या फिर एंग्री बर्ड की राखी की बात करें, आपको बच्चों के लिए हर एक ऑप्शन जो है नजर आने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लड़कियों के लिए यूनिकॉर्न वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी, आपको मिकी माउस वाली राखियां जो है वो दिख जाएगी और सभी प्योर सिल्वर में आपको ये राखियां जो है दिखने वाली है। तो उसी के बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएंगे क्योंकि

0: तो इस तरीके की राखी की जो वैरायटी है आपको वो दिखने वाली है।
1: सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों से सजी 925 स्टर्लिंग चांदी की राखियाँ आज के समय में केवल एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि परंपरा, आधुनिकता और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम बन चुकी है।
0: बहुत लोग जो है थोड़ा स्पिरिचुअली होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको राखियों के ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से आपको त्रिशूल स्टाइल में रुद्राक्ष के साथ जो है आपको राखी का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं बोलूं आपको ओम का यहाँ पर जो है छोटा सा डिज़ाइन में आपको राखी दिख जाएगी। आपको श्री कृष्ण के लिए भी जो है एक यहाँ पर जो बना हुआ आप देख सकते हैं, आपको वो वाले डिजाइन भी जो है यहाँ पर आपको दिखने वाले। बड़ों के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आपको राधे राधे स्टाइल में जो है डिज़ाइन के साथ विद रुद्राक्ष आपको ये एक डिज़ाइन मिलने वाला है। लेकिन अगर आप गणेश जी को बहुत मानते हो और राखी में आप उनका आशीर्वाद चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके के ऑप्शन भी जो है आपको मिलेंगे कि किस तरीके से मोतियों के साथ आपको जो है ये एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसके अंदर आपको गणेश जी दिख जाएंगे। तो वही यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिशूल के साथ, डमरू के साथ जो है ये राखी का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। नजरिए वाले हर कोई पहनाता है कि उस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे, तो इस तरीके की राखी जो है आपको मार्केट में मिलेगी। आपको छोटे बच्चों को पहनानी है या बड़े भाई को पहनाना और आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो आपको ये काना स्टाइल में राखी जो है आपको ये एक ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। आप अगर आपको ये ओम एक ओमकार का जो डिजाइन है आपको ये एक ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा।
1: बाजार में साधारण सूती धागे में पिरोए चांदी के पेंडेंट की डिमांड है जिनकी कीमत ₹1000 से शुरू हो जाती है। राखी के अंदाज में भारी ब्रेसलेट की कीमत ₹1000 तक पहुँच सकती है।
0: अच्छा, अगर इनकी कीमतों की बात करूँ तो ये सभी जो जितनी भी धागे वाली राखियाँ जो आप देख रहे हैं सिल्वर के साथ, इनकी कीमत जो 1000 से सिर्फ 1500 के बीच में आपको नज़र आ जाएगी। वही अगर आप कुछ इस स्टाइल के राखियों की बात करें, ये स्पेशली जो ऊपर की राखियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सिल्वर में, ये भाभियों के लिए राखी है। अगर आपको अपनी भाभी को पहनाना है तो आप इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक के साथ आप इनको कुछ ऐसी राखियाँ जो है पहना सकते हैं कि राखी का त्यौहार भी मने और साथ ही साथ कुछ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का ट्रेडिशनल लुक वो जो है पहन सके। आपको कुछ इस सिल्वर में इस तरीके की राखियाँ भी जो है वो मार्केट में दिख जाएगी। और इनकी अगर रेट की बात करें तो ये कभी आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है पड़ेगी।
1: समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार किलों, भव्य महलों और जीवन संस्कृति के लिए मशहूर जयपुर में सोने के दामों के बीच गोल्ड टच वाली राखी का भी ट्रेंड दिख रहा है। अद्भुत दिखने वाली इन राखियों को थेवा कला के तहत तैयार किया गया है। थेवा राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला है जिसमें बेहद बारीक सोने की परत को रंगीन कांच के साथ जोड़कर खूबसूरत डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसमें सोने की मात्रा काफी कम होती है जबकि कांच और चांदी आधार का काम करते हैं। यही वजह है कि असली सोने का इस्तेमाल होने के बावजूद थेवा ज्वेलरी सामान्य गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में काफी कम कीमत में तैयार हो सकती है।
2: राखियां मैं एक बार दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत ये राखियां हैं। थेवा कला इसको कही जाती है, प्रतापगढ़ से आई है। 400 साल पुरानी कला है जो कांच के साथ बनती है, इसके ऊपर सोने का काम है। क्या ये इनोवेशन है, कैसे काम होता है और राखियों में किस तरीके से आप इसको लेके आई है?
3: जी, राखियां जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने। तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती है। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियां हैं इसमें। जी देखिए, अब जैसे
2: जी हाँ,
3: अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है। अगर आपके भाई का नाम ए से, बी से, सी से, जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा। कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: प्रतापगढ़ से निकली यह पारंपरिक कला अब सोने चांदी की राखियों के जरिए नए और आधुनिक अंदाज में सामने आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा पर उदयकालीन त्रिमुहूर्त व्यापिनी होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा जो शुक्रवार का दिन है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जयंती स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बे इंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार। लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

0: यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहरपुर के बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोर। प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है ठेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही है जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है ठेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली यह ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने। तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए हैं जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती हैं। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखी। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, जी मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या कोई सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे जो वो पूरी हमेशा पहन सके भाई जी। सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख का चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव, तो ये भी चीज है कैसी है हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं।
2: का चांदी है तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव, तो ये भी चीज है कैसी है हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली।

0: ये भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख आज चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव। तो ये भी चीज है कैसी है, हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको अब भाई हमेशा पहनेगा।
1: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं।
0: का चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी के भाव। तो ये भी चीज है।

0: रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
1: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
2: मैं तो यही कहूंगी सभी बहने आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है। हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
3: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का। कस्टमर के ऊपर डिफरेंट करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है।
4: बहुत जड़ी का है, प्लस का कुछ का है ना, सारी पैटर्न स्टमी है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
5: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: एक तरफ जहां रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो वहीं सूरत में कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। यहां गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये अनूठी पहल है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है।
1: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: उत्तराखंड में माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने भी एक अनोखी पहल की है। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाएं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षक और पारंपरिक राखियां बना रही हैं।
2: ये हमने प्राकृतिक राखी बना रखी है, हमने केदार पाती ला रखी है और इसके साथ हमारा भोज पत्र है। ये हमारे जो है जंगलों में मिलता है यहाँ, और ये हमने जो उसकी राखी बना रखी है, ये ब्रह्म कमल भी है। ये ब्रह्म कमल भी हमने जो है जंगल से ला रखा है, ये हमारे जंगल में होता है। ये सारे हमने जो है जंगल से ला रखे हैं और इसी से हम जो है राखी तैयार कर रहे हैं।
0: जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक है, वहीं राजस्थान के पाली में डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जहां स्कूली छात्राएं सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। अब तक यहां से देश के जवानों के लिए 25,000 से ज्यादा राखियां भेजी जा चुकी हैं।
3: माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
4: जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन, एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगो युगो पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आई।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
2: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
3: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
2: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
4: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग का थोड़ा रियायत हो जाता।
2: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के हिल यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में कई त्यौहार और पर्व अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं, उन्हीं में से एक पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव भी है, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें वहां की संस्कृति और विरासत देखने को मिलती है। अतीत की इस विरासत को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

0: हुड़के की गूंज, ढोल दमाव की थाप और माटी की अटूट आस्था के बीच पिथौरागढ़ में कुमाऊँ का ऐतिहासिक मैदान सोर घाटी की जीवंत लोक संस्कृति का गवाह बना। न कोई मंच था न पर्दा, बस माटी की सोंध महक और लकड़ी के पीछे धड़कता सुर पर। मैदान में जब गलिया बैल हुक्का पीते किसान उतरे तो लगा मानो सोर घाटी खुद मुस्कुरा उठी हो। और जैसे ही शिव का गण लखिया भूत मैदान में उतरा, पूरा कुमाऊँ जयकारों से गूंज उठा। कुमाऊँ की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
0: पारंपरिक रूप से लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों में बांध कर मैदान तक लाया गया। काले परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चंवर लिए जब लखिया भूत का मैदान में प्रवेश हुआ तो भक्तों ने उसके आगे श्रद्धा से सिर झुका और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। लखिया भूत को जंजीरों में लाने की परंपरा ही इस हिल यात्रा की सबसे खास पहचान है। स्थानीय मान्यता में लखिया को भगवान शिव का गण और कुमाऊँ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी मानी जाती है। लखिया भूत को भगवान शिव के गण और वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कुमाऊँ में लखिया भूत की ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है।
2: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियां बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है जो नेपाल से शुरू होकर आज हमारे यहाँ पे केंद्रित है, और ये हर वर्ष यहाँ पे यात्रा का मंचन होता है जिसमें लखिया बाबा के साथ साथ तमाम पात्र वहाँ पे मंचन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो धरोहर है, जो आस्था का केंद्र है, वीरभद्र के जो अवतार लखिया बाबा है, वो यहाँ पे तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से हिल यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इसे उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है। हिल यात्रा की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेतों में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज को दर्शाया जाता है। वहीं हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हॉल, नेपाली हॉल, बड़ी हॉल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं, जबकि ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हिल यात्रा की जड़ें भी खेती किसानी से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक परंपरा में इसे पहले हल यात्रा कहा जाता था। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है, लिहाजा समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। यानी नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। बारिश के मौसम में धान की रोपाई के बीच होने वाला ये उत्सव अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ा रहा है।
3: यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़, और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल, तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: खेल यात्रा की परंपरा के बारे में एक प्रमुख लोक कथा नेपाल से जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक कुमाऊँ के चार मेहर भाई नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। वहां उनकी वीरता से प्रभावित होकर नेपाल नरेश ने उन्हें कुछ पारंपरिक मुखौटे भेंट किए। इन्हीं मुखौटों के साथ पिथौरागढ़ में इस परंपरा के शुरू होने की मान्यता है। यही वजह है कि यहां के पारंपरिक मुखौटे केवल कलाकारों की वेशभूषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके साथ स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की स्मृतियां भी जुड़ी मानी जाती हैं।
4: जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाऊँ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी, और उस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की शुरुआत मैदान में सीधे पात्रों के पहुँचने से नहीं होती, बल्कि पारंपरिक रूप से गांव के लोग और कलाकार ढोल नगाड़ों, ध्वज पताकाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊँ के ऐतिहासिक रूप की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पात्र एक एक करके मैदान की ओर आते हैं। इसी क्रम में लखिया भूत का आगमन सबसे खास माना जाता है। मंदिर से जंजीरों में निकलकर मैदान तक पहुंचने वाला लखिया पूरे आयोजन का केंद्र बन जाता है। मैदान में उसके पहुंचने के बाद श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शुभता और संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि उसके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति रहती है, गांव में खुशहाली आती है और फसल अच्छी होती है। इसी विश्वास के कारण हिल यात्रा के दौरान लखिया का दर्शन महज देखने का अनुभव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का क्षण होता है। लोग इसके सामने फूल चढ़ाते हैं, अपने परिवार और खेती के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखिया के जंजीरों में आने की परंपरा भी हिल यात्रा को देश के दूसरे लोक उत्सवों से अलग पहचान देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन की। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है, ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भारी डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।

0: जो मंद मंद हंस रहे हैं, अपनी प्रभा से सुशोभित हो रहे हैं। सबका मन लगातार हर लेते हैं और अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में कान्हा के स्वागत के लिए बाजार भी सज गए हैं। उनके सिंहासन से लेकर पहनावे तक की तैयारियां हो रही हैं। कान्हा के स्वागत में बनाए गए सिंहासन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। कोई लाल, कोई हरा तो कोई मरून। बेहद सुंदर रंग बिरंगे सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों से बने ये सिंहासन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, तो इसकी भारी मांग अभी से होने लगी है। इन सिंहासन की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, और जब बात कान्हा की हो तो फिर क्या कहने।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
2: कब से आप काम कर रहे
1: हैं? हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार श्री कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने की वजह से इनका पूरा परिवार काम में दिन रात जुटा हुआ है। अंकुर बताते हैं कि इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है, और जहां तक कीमत की बात है तो ये 150 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का है।
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल। तो जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
2: पब्लिक लेने आती है तो क्या कुछ रिव्यू देखी जाती है?
1: बस यही कहती है कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
0: अंकुर ये भी बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने सिंहासन बनाने का ऑर्डर भी दिया था। वहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले इनका परिवार फर्नीचर बनाने का काम करता था।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: अंकुर ने ये भी बताया कि लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। बता दें कि सहारनपुर अपने बेहतरीन लकड़ी के हस्तशिल्प और नक्काशीदार कान्हा जी के सिंहासन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और जन्माष्टमी के नजदीक आने पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल भी कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हीरो और हैवान के बीच जबरदस्त टक्कर की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन की हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी अब एक नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दीपक मुकुट, संगीता अहिर और हुनर मुकुट की प्रोड्यूस की गई गन मास्टर G9 27 नवम्बर को रिलीज होगी। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म दायरा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है और अब दर्शकों को उसके ट्रेलर का इंतजार है, जो 31 अगस्त को रिलीज होगा। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में देने के बाद निर्देशक मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के साथ एक मजबूत कहानी और शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दृश्यम फ्रेंचाइजी अपने आखिरी चैप्टर के साथ लौट रही है। दृश्यम द कंक्लूजन में एक बार फिर अजय देवगन, विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़े पैमाने पर सामने आएगी। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और ऋषिता दत्ता समेत कई पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदारों में दिखेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डोंट बी शाय जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म में 4 नए चेहरे आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अंश दुग्गल नजर आएंगे। श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों की हल्की फुल्की कहानी पेश करेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। डोंट बी शाय 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज होगी। KGF 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हुए फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में यश और पूरी टीम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। फैंस ने अपने चाहते स्टार के लिए जमकर उत्साह दिखाया। इस शानदार रिस्पांस ने फिल्म को लेकर बनी जबरदस्त दीवानगी की झलक दिखा दी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक को वेंकट के नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।
3: न्यूज वक्त में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
4: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नजारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
3: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बोलचाल वाली मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के बाद अब नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की कमी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल है, जो कि मराठी भाषा वाले नियम के विरोध में शुरू की गई है। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की गई है। इनमें ऐप बेस्ड कैब सर्विस से जुड़े ड्राइवर भी शामिल हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। ड्राइवर्स का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी तैयारी उन्हें सरकार की ओर से दी गई ट्रेनिंग में नहीं कराई गई। नियम के तहत ड्राइवर्स को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 अगस्त से ड्राइवर्स के मराठी भाषा ज्ञान की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवर्स की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जांचे गए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स में 604 को मराठी की वर्किंग नॉलेज ना होने पर नोटिस मिला है। ड्राइवर्स का कहना है कि कम पढ़े लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं। दरअसल कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं हैं, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग क्लास में जाने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टेस्ट में डेली यूज भी यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या फिर CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल शामिल हैं। नियम के तहत नोटिस पाने वाले ड्राइवर्स को 1 महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका बैच 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर्स के लिए मुख्य मुद्दा भाषा नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी रोटी पर पड़ने वाला असर है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
5: एक ही एक मामला सामने आया कि भाई हम तो मराठी सीख लिए, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जब इंक्वायरी करने कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, तो वो कुछ और ही सवाल पूछ रहा है और उसमें हम अटक रहे। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या राय होगी?
6: देखिए, मराठी बोलना तो आना ही चाहिए। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मराठी बोलना चाहिए। जो भाषा यहाँ की वहाँ तो बोलना ही चाहिए सबको, लेकिन इसके ऊपर विवाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ऑफिसर उस लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग चले जाएंगे, जो नहीं बोल पाएगा उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, यहाँ टैक्सियां कम पड़ जाएंगी, लोग गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे आईटीओ को भी सोचना चाहिए कि मुद्दत दे करके जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको मुद्दत दे, उनको आगे बढ़ाए।
5: सर, कल मेरे से एक ऑटो चालक मिला और उनसे साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने तो मराठी सीख ली है, लेकिन 70-80% लोग जो यात्री बैठते हैं वो मराठी में बात नहीं करते, क्योंकि गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो पंजाबी हैं, वो साउथ वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे कंडीशन में, एज ए मुंबईकर आप क्या कहेंगे?
7: नहीं, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि उन सब भाषा मराठी, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी पे कमांड होना जरूरी है, एक अच्छी बात है, लेकिन सब भाषा आदमी के नॉलेज में आएगा वो पॉसिबल नहीं है। वो सब भाषा टैक्सी ड्राइवर सब भाषा में समझा नहीं पाएगा लोगों को अलग अलग।
8: देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आना चाहिए, ये जरूरी है, ये मातृभूमि है महाराष्ट्र की। और ये मतलब ऐसा है कि मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये मराठी एक मातृभाषा है, तो ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कि नो डाउट कि नहीं, पर ये जो 8,000 फाइन, 10,000 फाइन जो आरटीओ मार रही है ये गलत है। किसी का लाइसेंस रद्द कर तुम उनको एक टाइम लिमिट दो कि भाई आपको इतने महीने में सीखना है कि आपको मराठी बोलना आना चाहिए। मराठी

0: 100% बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि मराठी उनको आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं, पर ये आरटीओ का जुलूम है कि आरटीओ 8-8 हजार 10-10 हजार फाइन मार रहे।
1: लेकिन आरटीओ तो सिखा भी तो रहा है फ्री में,
0: आरटीओ सिखा रहा है तो इतनी लाइन लगी हुई है, कोई कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा सुबह से जाके रुक रहा है और रात शाम तक का वो काम धंधा करेगा कि ये मराठी सीखेगा। और 25-30 साल के बाद ये कायदा अगर तुमको निकालना ही था तो पहले निकालना था, या उसका एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि भाई एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको सीखना है। पर कुछ बोला नहीं है और डायरेक्ट अभी तुम एंड टाइम पे सब निकाल लोगे कि भाई मराठी बोलना है, मराठी सीखना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा टैक्सी वालों।
2: बिल्कुल नहीं, सीखना चाहिए लेकिन जुलूम नहीं होना चाहिए। सीखो बोलो, है महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सामने वाले जुल्म करके नहीं सीखा, गलत बात एकदम जुल्म करके नहीं। हाँ, सब जात के लोग है, मुस्लिम, महाराष्ट्र, कैथलिक, हर जात के है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि भाई नहीं आ रहा है, ये चलो फाइन मारो, चलो गांव जाओ, बहुत से दादागिरी भी कर, हद से ज्यादा दादागिरी कर, वो नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से करो ना, सब ठीक है, सब हो जाए।
3: देखिए, लोकल डायलेक्ट तो आना चाहिए व्यवहारिक तरीके से तो, लेकिन काफी लोगों को आता भी है, पर एक कंपल्शन करना थोड़ा जाति जैसा हो जाएगा। बट अगर स्वेच्छा से करना चाहें तो सब लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे वो, लेकिन आप अगर आप थोपोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोड

रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। साहिल देव जयंती स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बे इंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार। लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

0: यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहर जयपुर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा बिखेर रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें मार्केट में अपने भाई के लिए उनकी पसंद की राखी ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाई मार्केट में अपनी बहनों के लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स की तलाश में है। और अभी जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों ही ऑप्शंस एक ही छत के नीचे, क्योंकि भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही हैं जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है थेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली ये ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने, तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती हैं। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियाँ। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, जी मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे जो वो पूरी हमेशा पहन सके भाई। जी सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी की भाव, तो ये भी चीज है कैसी है, हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको अब भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। नेक पीस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कलेक्शन देखने में बिल्कुल रॉयल लुक देता है और बजट में भी फिट बैठता है।
1: अच्छा, राखियां तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से आप रेनोवेट कर सकते हैं, पर अब बहनों की जब हमने बात कर ही ली तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए। यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है, कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं।
0: राखियों की तरह ही रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए आपके बजट में काफी ऑप्शन मौजूद है।
2: जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी है उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म चले और फिनिशिंग पूरी गोल्ड वाली है।
0: परंपरा और आधुनिकता का ये अनोखा मेल रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को और भी खास बना रहा है। तो इस बार कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बल्कि राजस्थान की 400 साल पुरानी विरासत और कला का एक यादगार तोहफा सजने जा रहा है, जो न सिर्फ आपके बजट में होगा बल्कि यादगार के तौर पर आपके साथ लंबे समय तक रहेगा।
1: यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने दिखाए हैं आपको कि किस तरीके से राखियां तो है ही जिसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं, पर ये ज्वेलरी भी है, और इस ज्वेलरी की खासियत ये भी है कि राखी जिस तरीके से कस्टमाइज हो रही है वैसे ही हो रहे हैं। आप यहाँ डिजाइन देखिए और आप अपने हिसाब से इनको कलर्स बता सकते हैं या स्टोन्स बता सकते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं वो सेमी प्रेशियस यूज हो रहे हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये दिखने में सोना लग रही है, बहुत ही हैवी लुक की भी है, बहुत मिनिमल लुक की भी है, पर ये है चांदी की जो कि इसको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाता है। हालांकि जो ठेवा कला है उसमें सोना बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी सोने की राखी बजट में यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग डिजाइन में मिल रही है, चाहे आप अपने भाई के नाम का इनिशियल लिखवा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल राखी जो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड बन चुकी है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप बाद में एज अ पेंडेंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ये यूनिक जो रेंज है ये जयपुर में सोन कांच में नजर आ रही है इस रक्षाबंधन के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: देखिए भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए सबसे खास धागे को चुन रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे हैं। यही वजह है कि इस बार देश भर के बाजारों में परंपरा के साथ इनोवेशन वाली राखी का खूब ट्रेंड है।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन अब दूर नहीं है। ऐसे में बाजारों में रौनक अभी से ही दिखने लगी है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें और रौनक से सराबोर बाजार। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बाजारों की रंगत इस बात की गवाही दे रही है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व अब नजदीक है। बाजार में रौनक अपने शबाब पर है। इस बार बाजार में 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन मौजूद हैं, जिसमें कपल राखी से लेकर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की भारी डिमांड है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भी बाजार की रौनक में चार चांद लगा रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है। जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां भी इन दिनों खूब डिमांड में है, जिनकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजारों में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें करनाल के कर्णगेट बाजार में भी नजर आ रही हैं, जहां इन दिनों रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
2: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़की के लिए भी अच्छी है। जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
3: मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है। हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का। कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है।
5: बहुत जड़ी का है, प्लस का और कुछ का है ना, सारी पैटर्न स्टमी है, पसंद करिए। डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
6: राखी का डिमांड स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: तरफ जहां रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो वहीं सूरत में कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। यहां गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये अनूठी पहल है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है।
1: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: उत्तराखंड में माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने भी एक अनोखी पहल की है। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाएं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षक और पारंपरिक राखियां बना रही हैं।
2: ये हमने प्राकृतिक राखी बना रखी है, हमने केदार पाती ला रखी है और इसके साथ हमारा भोज पत्र है। ये हमारे जो है जंगलों में मिलता है यहाँ, और हमने जो उसकी राखी बना रखी है ये ब्रह्म कमल भी है। ये ब्रह्म कमल भी हमने जो है जंगल से ला रखा है, ये हमारे जंगल में होता है। ये सारे हमने जो है जंगल से ला रखे हैं और इसी से हम जो है राखी तैयार कर रहे हैं।
0: जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक है, वहीं राजस्थान के पाली में डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जहां स्कूली छात्राएं सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। अब तक यहां से देश के जवानों के लिए 25,000 से ज्यादा राखियां भेजी जा चुकी हैं।
3: माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
4: जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन, एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है, जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आए।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं, तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविका या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है, तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
2: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
3: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
2: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
4: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग को थोड़ा रियायत हो जाता।
2: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नज़ारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
8: और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के हिल यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में कई त्योहार और पर्व अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं, उन्हीं में से एक पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव भी है, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें वहां की संस्कृति और विरासत देखने को मिलती है। अतीत की इस विरासत को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

0: हुड़के की गूंज, ढोल दमाव की थाप और माटी की अटूट आस्था के बीच पिथौरागढ़ में कुमाऊँ का ऐतिहासिक मैदान सोर घाटी की जीवंत लोक संस्कृति का गवाह बना। न कोई मंच था न पर्दा, बस माटी की सोंध महक और लकड़ी के पीछे धड़कता सोर का। मैदान में जब गलिया बैल हुक्का पीते किसान उतरे तो लगा मानो सोर घाटी खुद मुस्कुरा उठी हो। और जैसे ही शिव का गण लखिया भूत मैदान में उतरा, पूरा कुमाऊँ जयकारों से गूंज उठा। कुमाऊँ की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
0: पारंपरिक रूप से लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों में बांधकर मैदान तक लाया गया। काले परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चमड़ लिए जब लखिया भूत का मैदान में प्रवेश हुआ तो भक्तों ने उसके आगे श्रद्धा से सिर झुका और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। लखिया भूत को जंजीरों में लाने की परंपरा ही इस हिल यात्रा की सबसे खास पहचान है। स्थानीय मान्यता में लखिया को भगवान शिव का गण और कुमाऊँ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी मानी जाती है। लखिया भूत को भगवान शिव के गण और वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कुमाऊँ में लखिया भूत की ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है।
2: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है जो नेपाल से शुरू होकर आज हमारे यहाँ पे केंद्रित है, और ये हर वर्ष यहाँ पे हिल यात्रा का मंचन होता है जिसमें लखिया बाबा के साथ साथ तमाम पात्र वहाँ पे मंचन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो धरोहर है, जो आस्था का केंद्र है, वीरभद्र के जो अवतार लखिया बाबा है, वो यहाँ पे तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से हिल यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इसे उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है। हिल यात्रा की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेतों में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रुपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज को दर्शाया जाता है। वहीं हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हॉल, नेपाली हॉल, बड़ी हॉल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं, जबकि ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हिल यात्रा की जड़ें भी खेती किसानी से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक परंपरा में इसे पहले हल यात्रा कहा जाता था। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है, लिहाजा समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। यानी नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। बारिश के मौसम में धान की रोपाई के बीच होने वाला ये उत्सव अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ा रहा है।
3: यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल, तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: हेल यात्रा की परंपरा के बारे में एक प्रमुख लोक कथा नेपाल से जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक कुमाऊँ के चार मेहर भाई नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। वहाँ उनकी वीरता से प्रभावित होकर नेपाल नरेश ने उन्हें कुछ पारंपरिक मुखौटे भेंट किए। इन्हीं मुखौटों के साथ पिथौरागढ़ में इस परंपरा के शुरू होने की मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ के पारंपरिक मुखौटे केवल कलाकारों की वेशभूषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके साथ स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की स्मृतियाँ भी जुड़ी मानी जाती हैं।
4: जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाऊँ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी, और उस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की शुरुआत मैदान में सीधे पात्रों के पहुँचने से नहीं होती, बल्कि पारंपरिक रूप से गांव के लोग और कलाकार ढोल नगाड़ों, ध्वज पताकाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊँ के ऐतिहासिक रूप की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पात्र एक एक करके मैदान की ओर आते हैं। इसी क्रम में लखिया भूत का आगमन सबसे खास माना जाता है। मंदिर से जंजीरों में निकलकर मैदान तक पहुंचने वाला लखिया पूरे आयोजन का केंद्र बन जाता है। मैदान में उसके पहुंचने के बाद श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शुभता और संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि उसके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति रहती है, गांव में खुशहाली आती है और फसल अच्छी होती है। इसी विश्वास के कारण हिल यात्रा के दौरान लखिया का दर्शन महज देखने का अनुभव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का क्षण होता है। लोग इसके सामने फूल चढ़ाते हैं, अपने परिवार और खेती के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखिया के जंजीरों में आने की परंपरा भी हिल यात्रा को देश के दूसरे लोक उत्सवों से अलग पहचान देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन की। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भारी डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।

0: जो मंद मंद हंस रहे हैं, अपनी प्रभा से सुशोभित हो रहे हैं, सबका मन लगातार हर लेते हैं और अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में कान्हा के स्वागत के लिए बाजार भी सज गए हैं। उनके सिंहासन से लेकर पहनावे तक की तैयारियां हो रही हैं। कान्हा के स्वागत में बनाए गए सिंहासन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। कोई लाल, कोई हरा तो कोई मरून। बेहद सुंदर रंग बिरंगे सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों से बने ये सिंहासन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, तो इसकी भारी मांग अभी से होने लगी है। इन सिंहासन की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, और जब बात कान्हा की हो तो फिर क्या कहने।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
2: कब से आप काम कर रहे हैं?
1: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार श्री कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने की वजह से इनका पूरा परिवार काम में दिन रात जुटा हुआ है। अंकुर बताते हैं कि इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है, और जहां तक कीमत की बात है तो ये 150 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का है।
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल। तो
2: जन्माष्टमी आ रही है, तो मेन चीज
1: जन्माष्टमी पर डिमांड आती है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: ये पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
2: पब्लिक लेने आती है तो क्या कुछ रिव्यू देखी जाती है?
1: बस यही कहती है कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
0: अंकुर ये भी बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने सिंहासन बनाने का ऑर्डर भी दिया था। वहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले इनका परिवार फर्नीचर बनाने का काम करता था।
1: वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं पर डे?
1: पर डे में लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: अंकुर ने यह भी बताया कि लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। बता दें कि सहारनपुर अपने बेहतरीन लकड़ी के हस्तशिल्प और नक्काशीदार कान्हा जी के सिंहासन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और जन्माष्टमी के नजदीक आने पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल भी कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हीरो और हैवान के बीच जबरदस्त टक्कर की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स की हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी अब एक नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दीपक मुकुट, संगीता अहिर और हुनर मुकुट की प्रोड्यूस की गई गन मास्टर G9 27 नवम्बर को रिलीज होगी। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म दायरा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है और अब दर्शकों को उसके ट्रेलर का इंतजार है, जो 31 अगस्त को रिलीज होगा। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में देने के बाद निर्देशक मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के साथ एक मजबूत कहानी और शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दृश्यम फ्रेंचाइजी अपने आखिरी चैप्टर के साथ लौट रही है। दृश्यम द कंक्लूजन में एक बार फिर अजय देवगन, विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़े पैमाने पर सामने आएगी। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और ईश्वरता दत्ता समेत कई पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदारों में दिखेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डोंट बी शाय जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म में 4 नए चेहरे आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अंश दुग्गल नजर आएंगे। श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों की हल्की फुल्की कहानी पेश करेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। डोंट बी शाय 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज होगी। KGF 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हुई फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में यश और पूरी टीम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। फैंस ने अपने चहेते स्टार के लिए जमकर उत्साह दिखाया। इस शानदार रिस्पांस ने फिल्म को लेकर बनी जबरदस्त दीवानगी की झलक दिखा दी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक को वेंकट के नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।
3: न्यूज वक्त में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नजारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
3: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बोलचाल वाली मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के बाद अब नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की कमी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल है, जो कि मराठी भाषा वाले नियम के विरोध में शुरू की गई है। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की गई है। इनमें ऐप बेस्ड कैब सर्विस से जुड़े ड्राइवर भी शामिल हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। ड्राइवर्स का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी तैयारी उन्हें सरकार की ओर से दी गई ट्रेनिंग में नहीं कराई गई। नियम के तहत ड्राइवर्स को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 अगस्त से ड्राइवर्स के मराठी भाषा ज्ञान की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवर्स की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जांचे गए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स में 604 को मराठी की वर्किंग नॉलेज ना होने पर नोटिस मिला है। ड्राइवर्स का कहना है कि कम पढ़े लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं। दरअसल कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं है, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग क्लास में जाने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टेस्ट में डेली यूज भी यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या फिर CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल शामिल हैं। नियम के तहत नोटिस पाने वाले ड्राइवर्स को 1 महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका बैच 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर्स के लिए मुख्य मुद्दा भाषा, नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी रोटी पर पड़ने वाला असर है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
4: एक ही एक मामला सामने आया कि भाई हम तो मराठी सीख लिए, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जब इंक्वायरी करने कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, तो वो कुछ और ही सवाल पूछ रहा है और उसमें हम अटक रहे। क्या कहेंगे आप, इसमें क्या राय होगी?
5: देखिए, मराठी बोलना तो आना ही चाहिए। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मराठी बोलना चाहिए। जो भाषा यहाँ की वहाँ तो बोलना ही चाहिए सबको। लेकिन इसके ऊपर विवाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ऑफिसर लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग चले जाएंगे जो नहीं बोल पाएगा, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे या टैक्सियां कम पड़ जाएंगे, लोग गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे आईटीओ को भी सोचना चाहिए कि मुद्दत दे करके जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं मुद्दत दे उनको आगे बढ़ाए।
4: सर, कल मेरे से एक ऑटो चालक मिला और उनसे साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने तो मराठी सीख ली है, लेकिन 70-80% लोग जो यात्री बैठते हैं वो मराठी में बात नहीं करते, क्योंकि गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो पंजाबी हैं, वो साउथ वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे कंडीशन में एज ए मुंबईकर, आप क्या कहेंगे?
6: नहीं, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि उन सब भाषा मराठी, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी पे कमांड होना जरूरी है, एक अच्छी बात है। लेकिन सब भाषा आदमी के नॉलेज में आएगा वो पॉसिबल नहीं है। वो सब भाषा टैक्सी ड्राइवर सब भाषा में समझा नहीं पाएगा लोगों को अलग अलग।
7: देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आना चाहिए, ये जरूरी है। ये मातृभूमि है महाराष्ट्र की, और ये मतलब ऐसा है कि मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये मराठी एक मातृभाषा है, तो ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कि नो डाउट कि नहीं, पर ये जो 8,000 फाइन, 10,000 फाइन जो आरटीओ मार रही है ये गलत है। किसी का लाइसेंस रद्द कर तुम उनको एक एक टाइम लिमिट दो कि भाई आपको इतने महीने में सीखना है कि आपको मराठी बोलना आना चाहिए। मराठी बोल रहे हैं, सीख रहे हैं ड्राइवर लोग, सीख रहे हैं मराठी, पर जब आरटीओ पकड़ रही है तो वो दूसरा ही कुछ सवाल पूछती है, तो उसके अंदर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अभी मांगेंगे फूडेंगे ये तो एक नॉर्मल है, ये तो कोई भी टैक्सी वाले को आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और रिक्शा वालों का मैं नहीं बता सकता, टैक्सी वालों का 100% बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि मराठी उनको आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं, पर ये आरटीओ का जुलूम है कि आरटीओ 8-8 हजार 10-10 हजार फाइन मार रहे।
8: लेकिन आरटीओ तो सिखा भी तो रहा है फ्री में,
7: आरटीओ सिखा रहा है तो इतनी लाइन लगी हुई है, कोई कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा सुबह से जाके रुक रहा है और रात शाम तक का वो काम धंधा करेगा कि ये मराठी सीखेगा, और 25-30 साल के बाद ये कायदा अगर तुमको निकालना ही था तो पहले निकालना था, या उसका एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि भाई एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको

0: आरस्टन कैथलिन हर हर हर जात के है।
1: ओके,
0: लेकिन तुम ये मत बोलो कि भाई नहीं आ रहा है, ये चलो फाइन मारो, चलो गांव जाओ, बहुत से दादागिरी भी कर, हद से ज्यादा दादागिरी कर, वो नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से करो ना, सब ठीक है, सब हो जाए।
2: देखिए लोकल डायलेक्ट तो आना चाहिए व्यवहारिक तरीके से तो, लेकिन काफी लोगों को आता भी है, पर एक कंपल्शन करना थोड़ा ज्यादती जैसा हो जाएगा। बट अगर स्वेच्छा से करना चाहें तो सब लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे वो, लेकिन आप अगर आप थोपोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
11: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जयंती स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बेइंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार। लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

0: यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहर जयपुर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा बिखेर रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें मार्केट में अपने भाई के लिए उनकी पसंद की राखी ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाई मार्केट में अपनी बहनों के लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स की तलाश में है। और अभी जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों ही ऑप्शंस एक ही छत के नीचे, क्योंकि भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही हैं जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है थेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं, तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली ये ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने। तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती हैं। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियाँ। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे जो वो पूरी हमेशा पहन सके। भाई जी, सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है, भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी की भाव, तो ये भी चीज एक ऐसी है हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। नेक पीस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कलेक्शन देखने में बिल्कुल रॉयल लुक देता है और बजट में भी फिट बैठता है।
1: अच्छा, राखियां तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से आप इनोवेट कर सकते हैं, पर अब बहनों की जब हमने बात कर ही ली तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए। यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है। कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं।
0: राखियों की तरह ही रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए आपके बजट में काफी ऑप्शन मौजूद हैं।
2: जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी है उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये भी बहने जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहने पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहने जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाओ, मीनाकारी सारे ऑप्शंस डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है,

0: बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन जड़ाओ मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है। बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये
1: अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए सबसे खास धागे को चुन रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे हैं। यही वजह है कि इस बार देश भर के बाजारों में परंपरा के साथ इनोवेशन वाली राखी का खूब ट्रेंड है।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन अब दूर नहीं है, ऐसे में बाजारों में रौनक अभी से ही दिखने लगी है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें और रौनक से सराबोर बाजार, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बाजारों की रंगत इस बात की गवाही दे रही है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व अब नजदीक है। बाजार में रौनक अपने शबाब पर है। इस बार बाजार में 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन मौजूद हैं, जिसमें कपल राखी से लेकर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की भारी डिमांड है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भी बाजार की रौनक में चार चांद लगा रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां भी इन दिनों खूब डिमांड में है, जिनकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजारों में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें करनाल के कर्ण गेट बाजार में भी नजर आ रही हैं, जहां इन दिनों रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
2: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो, और इनफेक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
3: मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का, कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है। बहुत जड़ी का है, प्लस का और कुछ का है, सारी पैटल स्टमी है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
5: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, मतलब ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का, कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25

0: से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है।
1: बहुत ज्वेलरी का है, प्लस का और कुछ का है ना, सारी पैटर्न स्टमी है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
2: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, पर ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।
0: तक है 400 रुपए तक है।
1: बहुत ज्वेलरी का है, प्लस का और कुछ का है ना, सारी पैटर्न स्टमी है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
2: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, पर ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: एक तरह
1: स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: एक तरह
1: हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पार्लियामेंटल से भिजवाई जा चुकी है।
2: कि जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
3: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन, एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण

0: ने इसी वचन को निभाया
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा बंधन से जुड़ी एक और कहानी है, जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आए।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं, तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षा बंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएम स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
3: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
4: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
3: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
5: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग को थोड़ा रियायत हो जाता।
3: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नज़ारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: बात करते हैं पिथौरागढ़ के हिल यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में कई त्योहार और पर्व अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं, उन्हीं में से एक पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव भी है जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें वहां की संस्कृति और विरासत देखने को मिलती है। अतीत की इस विरासत को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

0: हुड़के की गूंज, ढोल दमाव की थाप और माटी की अटूट आस्था के बीच पिथौरागढ़ में कुमाऊँ का ऐतिहासिक मैदान सोर घाटी की जीवंत लोक संस्कृति का गवाह बना। न कोई मंच था न पर्दा, बस माटी की सोंध महक और लकड़ी के पीछे धड़कता सूर पर। मैदान में जब गलिया बैल हुक्का पीते किसान उतरे तो लगा मानो सोर घाटी खुद मुस्कुरा उठी हो। और जैसे ही शिव का गण लखिया भूत मैदान में उतरा, पूरा कुमाऊँ जयकारों से गूंज उठा। कुमाऊँ की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
0: पारंपरिक रूप से लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों में बांध कर मैदान तक लाया गया। काले परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चमड़ लिए जब लखिया भूत का मैदान में प्रवेश हुआ तो भक्तों ने उसके आगे श्रद्धा से सिर झुकाया और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। लखिया भूत को जंजीरों में लाने की परंपरा ही इस हिल यात्रा की सबसे खास पहचान है। स्थानीय मान्यता में लखिया को भगवान शिव का गण और कुमाऊँ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी मानी जाती है। लखिया भूत को भगवान शिव के गण और वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कुमाऊँ में लखिया भूत की ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है।
2: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियाँ बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है जो नेपाल से शुरू होकर आज हमारे यहाँ पे केंद्रित है, और ये हर वर्ष यहाँ पे हिल यात्रा का मंचन होता है जिसमें लखिया बाबा के साथ साथ तमाम पात्र वहाँ पे मंचन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो धरोहर है, जो आस्था का केंद्र है, वीरभद्र के जो अवतार लखिया बाबा है, वो यहाँ पे तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से हिल यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया और उन्हें से उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है। हिल यात्रा की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेतों में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज को दर्शाया जाता है। वहीं हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हॉल, नेपाली हॉल, बड़ी हॉल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं, जबकि ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हिल यात्रा की जड़ें भी खेती किसानी से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक परंपरा में इसे पहले हल यात्रा कहा जाता था। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है, लिहाजा समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। यानी नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। बारिश के मौसम में धान की रोपाई के बीच होने वाला ये उत्सव अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ा रहा है।
3: यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल, तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुवार लोग आए हैं।
0: हेल यात्रा की परंपरा के बारे में एक प्रमुख लोक कथा नेपाल से जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक कुमाऊँ के चार मेहर भाई नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। वहां उनकी वीरता से प्रभावित होकर नेपाल नरेश ने उन्हें कुछ पारंपरिक मुखौटे भेंट किए। इन्हीं मुखौटों के साथ पिथौरागढ़ में इस परंपरा के शुरू होने की मान्यता है। यही वजह है कि यहां के पारंपरिक मुखौटे केवल कलाकारों की वेशभूषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके साथ स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की स्मृतियां भी जुड़ी मानी जाती हैं।
4: जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाऊँ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसी की बलि दी गई थी, और उस भैंसी की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की शुरुआत मैदान में सीधे पात्रों के पहुँचने से नहीं होती, बल्कि पारंपरिक रूप से गांव के लोग और कलाकार ढोल नगाड़ों, ध्वज पताकाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊँ के ऐतिहासिक रूप की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पात्र एक एक करके मैदान की ओर आते हैं। इसी क्रम में लखिया भूत का आगमन सबसे खास माना जाता है। मंदिर से जंजीरों में निकलकर मैदान तक पहुंचने वाला लखिया पूरे आयोजन का केंद्र बन जाता है। मैदान में उसके पहुंचने के बाद श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शुभता और संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि उसके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति रहती है, गांव में खुशहाली आती है और फसल अच्छी होती है। इसी विश्वास के कारण हिल यात्रा के दौरान लखिया का दर्शन महज देखने का अनुभव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का क्षण होता है। लोग इसके सामने फूल चढ़ाते हैं, अपने परिवार और खेती के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखिया के जंजीरों में आने की परंपरा भी हिल यात्रा को देश के दूसरे लोक उत्सवों से अलग पहचान देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन की। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भारी डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।

0: जो मंद मंद हंस रहे हैं, अपनी प्रभा से सुशोभित हो रहे हैं, सबका मन लगातार हर लेते हैं और अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में कान्हा के स्वागत के लिए बाजार भी सज गए हैं। उनके सिंहासन से लेकर पहनावे तक की तैयारियां हो रही हैं। कान्हा के स्वागत में बनाए गए सिंहासन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। कोई लाल, कोई हरा तो कोई मरून। बेहद सुंदर रंग बिरंगे सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों से बने ये सिंहासन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, तो इसकी भारी मांग अभी से होने लगी है। इन सिंहासन की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, और जब बात कान्हा की हो तो फिर क्या कहने।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
2: कब से अभी काम कर रहे
1: हैं? हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार श्री कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने की वजह से इनका पूरा परिवार काम में दिन रात जुटा हुआ है। अंकुर बताते हैं कि इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है, और जहां तक कीमत की बात है तो ये 150 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का है।
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल। तो
2: जन्माष्टमी आ रही है
1: जी, जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
2: पब्लिक लेने आती है तो क्या कुछ रिव्यू देके जाती है?
1: बस यही कहती है कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
0: अंकुर ये भी बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने सिंहासन बनाने का ऑर्डर भी दिया था। वहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले इनका परिवार फर्नीचर बनाने का काम करता था।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000+ भी हो जाता है।
0: अंकुर ने ये भी बताया कि लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। बता दें कि सहारनपुर अपने बेहतरीन लकड़ी के हस्तशिल्प और नक्काशीदार कान्हा जी के सिंहासन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000+ भी हो जाता है।
0: 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और जन्माष्टमी के नजदीक आने पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल भी कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हीरो और हैवान के बीच जबरदस्त टक्कर की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स की हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी अब एक नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दीपक मुकुट, संगीता अहिर और हुनर मुकुट की प्रोड्यूस की गई गन मास्टर G9 27 नवम्बर को रिलीज होगी। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म दायरा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है और अब दर्शकों को उसके ट्रेलर का इंतजार है, जो 31 अगस्त को रिलीज होगा। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में देने के बाद निर्देशक मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के साथ एक मजबूत कहानी और शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दृश्यम फ्रेंचाइजी अपने आखिरी चैप्टर के साथ लौट रही है। दृश्यम द कंक्लूजन में एक बार फिर अजय देवगन, विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़े पैमाने पर सामने आएगी। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और ऋषिता दत्ता समेत कई पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदारों में दिखेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डोंट बी शाय जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म में 4 नए चेहरे आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अंश दुग्गल नजर आएंगे। श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों की हल्की फुल्की कहानी पेश करेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। डोंट बी शाय 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज होगी। KGF 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हुई फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में यश और पूरी टीम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। फैंस ने अपने चाहते स्टार के लिए जमकर उत्साह दिखाया। इस शानदार रिस्पांस ने फिल्म को लेकर बनी जबरदस्त दीवानगी की झलक दिखा दी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक को वेंकट के नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।
3: न्यूज वक्त में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नज़ारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसान की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में दो शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
3: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बोलचाल वाली मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के बाद अब नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की कमी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल है, जो कि मराठी भाषा वाले नियम के विरोध में शुरू की गई है। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की गई है। इनमें ऐप बेस्ड कैब सर्विस से जुड़े ड्राइवर भी शामिल हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। ड्राइवर्स का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी तैयारी उन्हें सरकार की ओर से दी गई ट्रेनिंग में नहीं कराई गई। नियम के तहत ड्राइवर्स को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 अगस्त से ड्राइवर्स के मराठी भाषा ज्ञान की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवर्स की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जांचे गए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स में 604 को मराठी की वर्किंग नॉलेज ना होने पर नोटिस मिला है। ड्राइवर्स का कहना है कि कम पढ़े लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं। दरअसल कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं है, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग क्लास में जाने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टेस्ट में डेली यूज भी यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या फिर CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल शामिल हैं। नियम के तहत नोटिस पाने वाले ड्राइवर्स को 1 महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका बैच 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर्स के लिए मुख्य मुद्दा भाषा नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी रोटी पर पड़ने वाला असर है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
4: एक ही एक मामला सामने आया कि भाई हम तो मराठी सीख लिए, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जब इंक्वायरी करने कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, तो वो कुछ और ही सवाल पूछ रहा है और उसमें हम अटक रहे। क्या कहेंगे आप, इसमें क्या राय होगी?
5: देखिए, मराठी बोलना तो आना ही चाहिए। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मराठी बोलना चाहिए। जो भाषा यहाँ की वहाँ तो बोलना ही चाहिए सबको, लेकिन इसके ऊपर विवाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ऑफिसर उस लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग अगर चले जाएंगे जो नहीं बोल पाएगा उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, यहाँ टैक्सियाँ कम पड़ जाएंगे, लोग गाली गाली मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे आईटीओ को भी सोचना चाहिए कि मुद्दत दे करके जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको मुद्दत दे, उनको आगे बढ़ाए
4: आगे बढ़ाए। सर, कल मेरे से एक ऑटो चालक मिला और उनसे साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने तो मराठी सीख ली है, लेकिन 70-80% लोग जो यात्री बैठते हैं वो मराठी में बात नहीं करते, क्योंकि गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो पंजाबी हैं, वो साउथ वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे कंडीशन में, एज ए मुंबईकर आप क्या कहेंगे?
6: नहीं, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि उन सब भाषा मराठी, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी पे कमांड होना जरूरी है, एक अच्छी बात है। लेकिन सब भाषा आदमी के नॉलेज में आएगा वो पॉसिबल नहीं है। वो सब भाषा टैक्सी ड्राइवर सब भाषा में समझा नहीं पाएगा लोगों को अलग अलग।
7: देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आना चाहिए, ये जरूरी है। ये मातृभूमि है महाराष्ट्र की, और ये मतलब ऐसा है कि मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये मराठी एक मातृभाषा है, तो ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कि नो डाउट कि नहीं, पर ये जो 8,000 फाइन, 10,000 फाइन जो आरटीओ मार रही है ये गलत है। किसी का लाइसेंस रद्द कर तुम उनको एक एक टाइम लिमिट दो कि भाई आपको इतने महीने में सीखना है कि आपको मराठी बोलना आना चाहिए। मराठी बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, ड्राइवर लोग सीख रहे हैं मराठी, पर जब आरटीओ पकड़ रही है तो वो दूसरा ही कुछ सवाल पूछती है, तो उसके अंदर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अभी मांगे गए फुड़े गए ये तो एक नॉर्मल है, ये तो कोई भी टैक्सी वाले को आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और नो, रिक्शा वालों का मैं नहीं बता सकता, टैक्सी वालों का 100% बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि मराठी उनको आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं, पर ये आरटीओ का जुलूम है कि आरटीओ 8-8 हजार 10-10 हजार फाइन मार रहे।
4: लेकिन आरटीओ तो सिखा भी तो रहा है फ्री में,
7: आरटीओ सिखा रहा है तो इतनी लाइन लगी हुई है, कोई कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा सुबह से जाके रुक रहा है और रात शाम तक का वो काम धंधा करेगा कि ये मराठी सीखेगा, और 25-30 साल के बाद ये कायदा अगर तुमको निकालना ही था तो पहले निकालना था, या उसका एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि भाई ये एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको सीखना है, पर कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट अभी तुम एंड टाइम पे सब निकाल लोगे कि भाई मराठी बोलना है, मराठी सीखना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा टैक्सी वालों।
8: बिल्कुल नहीं, सीखना चाहिए लेकिन जुलूम नहीं होना चाहिए, सीखो बोलो है महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सामने वाले जुल्म करके नहीं सिखा, गलत बात एकदम जुल्म करके नहीं। हाँ, सब जात के लोग है, मुस्लिम, महाराष्ट्र, कैथलिक, हर जात के है, लेकिन तुम ये मत बोलो कि भाई नहीं आ रहा है, ये चलो फाइन मारो, चलो गांव जाओ, बहुत से दादागिरी भी कर, हद से ज्यादा दादागिरी कर, वो नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से करो ना, सब ठीक है, सब हो जाए।
9: देखिए लोकल डायलेक्ट तो आना चाहिए व्यवहारिक तरीके से, तो लेकिन काफी लोगों को आ,

0: थोड़ा गलत हो जाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। जयंती स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बे इंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार। लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

0: यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहर जयपुर के बाजारों में इस बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा बिखेर रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें मार्केट में अपने भाई के लिए उनकी पसंद की राखी ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाई मार्केट में अपनी बहनों के लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स की तलाश में है। और अभी जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों ही ऑप्शंस एक ही छत के नीचे, क्योंकि भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही हैं जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है जिसका नाम है थेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली ये ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने। तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए हैं जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती हैं। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियाँ। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से बी से सी से जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे जो वो पूरी हमेशा पहन सके भाई। जी सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, 2.25 लाख चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी की भाव, तो ये भी चीज है कैसी है, हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको अब भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहने ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। नेक पीस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कलेक्शन देखने में बिल्कुल रॉयल लुक देता है और बजट में भी फिट बैठता है।
1: अच्छा, राखियां तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से आप रेनोवेट कर सकते हैं, पर अब बहनों की जब हमने बात कर ही ली तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए। यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है। कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं।
0: राखियों की तरह ही रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए आपके बजट में काफी ऑप्शन मौजूद हैं।
2: जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी है उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी, और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाव, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है, बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म चले और फिनिशिंग पूरी गोल्ड वाली है।
0: परंपरा और आधुनिकता का ये अनोखा मेल रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को और भी खास बना रहा है। तो इस बार कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बल्कि राजस्थान की 400 साल पुरानी विरासत और कला का एक यादगार तोहफा सजने जा रहा है, जो न सिर्फ आपके बजट में होगा बल्कि यादगार के तौर पर आपके साथ लंबे समय तक रहेगा।
1: यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने दिखाए हैं आपको कि किस तरीके से राखियां तो है ही जिसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं, पर ये ज्वेलरी भी है, और इस ज्वेलरी की खासियत ये भी है कि राखी जिस तरीके से कस्टमाइज हो रही है वैसे ही हो रहे हैं। आप यहाँ डिजाइन देखिए और आप अपने हिसाब से इनको कलर्स बता सकते हैं या स्टोन्स बता सकते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं वो सेमी प्रेशियस यूज हो रहे हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये दिखने में सोना लग रही है, बहुत ही हैवी लुक की भी है, बहुत मिनिमल लुक की भी है, पर ये है चांदी की जो कि इसको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाता है। हालांकि जो ठेवा कला है उसमें सोना बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी सोने की राखी बजट में यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग डिजाइन में मिल रही है, चाहे आप अपने भाई के नाम का इनिशियल लिखवा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल राखी जो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड बन चुकी है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप बाद में एज अ पेंडेंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ये यूनिक जो रेंज है ये जयपुर में सोन कांच में नजर आ रही है इस रक्षाबंधन के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज फ्राइडे जयपुर।
3: देखिए, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए सबसे खास धागे को चुन रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे हैं। यही वजह है कि इस बार देश भर के बाजारों में परंपरा के साथ इनोवेशन वाली राखी का खूब ट्रेंड है।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन अब दूर नहीं है, ऐसे में बाजारों में रौनक अभी से ही दिखने लगी है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें और रौनक से सराबोर बाजार, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बाजारों की रंगत इस बात की गवाही दे रही है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व अब नजदीक है। बाजार में रौनक अपने शबाब पर है। इस बार बाजार में 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन मौजूद हैं, जिसमें कपल राखी से लेकर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की भारी डिमांड है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भी बाजार की रौनक में चार चांद लगा रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां भी इन दिनों खूब डिमांड में है, जिनकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजारों में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें करनाल के कर्ण गेट बाजार में भी नजर आ रही हैं, जहां इन दिनों रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
2: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो, और इनफैक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
3: मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का, कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीस तक है, 400 रुपए तक है।
5: बहुत जड़ी का है, प्लस का और कुछ का है, नहीं ना, सारी पेटल स्टेम में है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
6: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी, अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: एक तरफ जहां रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो वहीं सूरत में कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। यहां गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये अनूठी पहल है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है।
1: गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: उत्तराखंड में माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने भी एक अनोखी पहल की है। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाएं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षक और पारंपरिक राखियां बना रही हैं।
2: ये हमने प्राकृतिक राखी बना रखी है, हमने केदार पाती ला रखी है और इसके साथ हमारा भोज पत्र है। ये हमारे जो है जंगलों में मिलता है यहाँ, और हमने जो उसकी राखी बना रखी है ये ब्रह्म कमल भी है। ये ब्रह्म कमल भी हमने जो है जंगल से ला रखा है, ये हमारे जंगल में होता है। ये सारे हमने जो है जंगल से ला रखे हैं और इसी से हम जो है राखी तैयार कर रहे हैं।
0: जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक है, वहीं राजस्थान के पाली में डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जहां स्कूली छात्राएं सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। अब तक यहां से देश के जवानों के लिए 25,000 से ज्यादा राखियां भेजी जा चुकी हैं।
3: माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
4: कि जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का, अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी, लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आए।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
7: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
8: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
7: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
9: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ, तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग को थोड़ा रियायत हो जाता।
7: हर साल सावन भादो के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साठ साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के हिल यात्रा की। देवभूमि उत्तराखंड में कई त्योहार और पर्व अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं, उन्हीं में से एक पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव भी है, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें वहां की संस्कृति और विरासत देखने को मिलती है। अतीत की इस विरासत को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस हिल यात्रा में भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया भूत से आशीर्वाद लेने की परंपरा है।

0: हुड़के की गूंज, ढोल दमाऊ की थाप और माटी की अटूट आस्था के बीच पिथौरागढ़ में कुमाऊँ का ऐतिहासिक मैदान सोर घाटी की जीवंत लोक संस्कृति का गवाह बना। न कोई मंच था न पर्दा, बस माटी की सोंध महक और लकड़ी के पीछे धड़कता सोर का रंग। मैदान में जब गलिया बैल हुक्का पीते किसान उतरे तो लगा मानो सोर घाटी खुद मुस्कुरा उठी हो, और जैसे ही शिव का गण लखिया भूत मैदान में उतरा पूरा कुमाऊँ जयकारों से गूंज उठा। कुमाऊँ की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी अपनी संस्कृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं। लोग अभी भी देखने आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री और उनका कल्चर क्या है, और वो सामने जाके लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा इतिहास है और इसमें हम जीते हैं, और ये ओरिजिनली नेपाल से ज्वाइन हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये देख के। इवन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सालों से यहाँ पे हिल यात्रा देखने आ रही हूँ और मुझे हमेशा वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, और मैं लोगों को आगे जाके बता पाती हूँ कि मैं यहाँ से आती हूँ और ये मेरा कल्चर है।
0: पारंपरिक रूप से लखिया भूत को उसके मंदिर से जंजीरों में बांध कर मैदान तक लाया गया। काले परिधान, गले में रुद्राक्ष, कमर में रस्सी और हाथ में काला चमड़ लिए जब लखिया भूत का मैदान में प्रवेश हुआ तो भक्तों ने उसके आगे श्रद्धा से सिर झुका और पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लिया। लखिया भूत को जंजीरों में लाने की परंपरा ही इस हिल यात्रा की सबसे खास पहचान है। स्थानीय मान्यता में लखिया को भगवान शिव का गण और कुमाऊँ का ग्राम देवता माना जाता है। इस लोक पर्व की जड़ें नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा से जुड़ी मानी जाती हैं। लखिया भूत को भगवान शिव के गण और वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कुमाऊँ में लखिया भूत की ग्राम देवता के रूप में पूजा की जाती है।
2: देखिए, आस्था, संस्कृति, लोक संस्कृति और वीरता की जो गाथा हिल यात्रा है वो लगभग 500 सालों से पहले चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सजो के दी है, और हमारी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, जो जेंजी है, जो अल्फा है, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ लखिया बाबा का जो एक रौद्र रूप है, जो वीरभद्र का रूप यहाँ पे है, वो तमाम क्षेत्र में जो दर्शक हैं, जो लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, युवा हैं, हमारी दीदियां बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो इस पर्व के लिए आते हैं और लखिया बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये एक वीरता की गाथा है जो नेपाल से शुरू होकर आज हमारे यहाँ पे केंद्रित है, और ये हर वर्ष यहाँ पे यात्रा का मंचन होता है जिसमें लखिया बाबा के साथ साथ तमाम पात्र वहाँ पे मंचन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो धरोहर है, जो आस्था का केंद्र है, वीरभद्र के जो अवतार लखिया बाबा है, वो यहाँ पे तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास से हिल यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इसे उत्तराखंड की आस्था, विश्वास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। माना जाता है कि हिल यात्रा की परंपरा 500 सालों से चली आ रही है और हर साल इसका आयोजन धूमधाम से होता है। हिल यात्रा की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहाड़ का पारंपरिक जीवन किसी मंच या पर्दे पर नहीं बल्कि खुले मैदान में जीवंत किया जाता है। अलग अलग मुखौटे और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन के रंगों को प्रस्तुत करते हैं। कहीं बैलों के जरिए खेतों में होने वाले काम दिखाए जाते हैं तो कहीं धान की रोपाई और ग्रामीण महिलाओं के कामकाज को दर्शाया जाता है। वहीं हिरण, चीतल जैसे पात्र पहाड़ के जंगल और प्रकृति से इंसान के पुराने रिश्ते को सामने लाते हैं। यही नहीं, गलिया बैल, छोटी हॉल, नेपाली हॉल, बड़ी हॉल, हिरण और चीतल जैसे पात्र आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहते हैं, जबकि ढोल, नगाड़े, हुड़के और मंजीरे की धुन इन प्रस्तुतियों में जान डाल देती है। हिल यात्रा की जड़ें भी खेती किसानी से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक परंपरा में इसे पहले हल यात्रा कहा जाता था। हल खेती का प्रमुख औजार है और यात्रा का संबंध उत्सव से है, लिहाजा समय के साथ इसका प्रचलित नाम हिल यात्रा हो गया। यानी नाम से लेकर आयोजन तक इस लोक पर्व में पहाड़ की कृषि संस्कृति की छाप दिखाई देती है। बारिश के मौसम में धान की रोपाई के बीच होने वाला ये उत्सव अच्छी फसल की कामना से भी जुड़ा रहा है।
3: यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, और मतलब ये सोर की बहुत प्रसिद्ध हिल यात्रा है। हिल यात्रा का मतलब होता है हिल माने कीचड़ और यात्रा माने कीचड़ में खेले जाने वाला खेल, तो मतलब ये हमारा लखिया बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कुंवार लोग आए हैं।
0: हेल यात्रा की परंपरा के बारे में एक प्रमुख लोक कथा नेपाल से जुड़ी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक कुमार के चार मेहर भाई नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा में शामिल होने गए थे। वहाँ उनकी वीरता से प्रभावित होकर नेपाल नरेश ने उन्हें कुछ पारंपरिक मुखौटे भेंट किए। इन्हीं मुखौटों के साथ पिथौरागढ़ में इस परंपरा के शुरू होने की मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ के पारंपरिक मुखौटे केवल कलाकारों की वेशभूषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके साथ स्थानीय इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की स्मृतियाँ भी जुड़ी मानी जाती है।
4: जो हिल यात्रा का उत्सव जो हमारे इस कुमाऊँ के ऐतिहासिक मैदान में मनाया जाता है, इसका 500 साल पुराना इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नेपाल में एक इंद्र यात्रा नाम से उत्सव चलता था। वहाँ पे जब तीर्थाटन के लिए गए थे तो वहाँ पे राजा की शर्तानुसार एक भैंसे की बलि दी गई थी, और इस भैंसे की बलि के बाद प्रसन्न होकर नेपाल के नरेश के द्वारा हमें ये जो मुखौटे हैं, इन मुखौटों को उपहार स्वरूप हमें यहाँ पे दिया गया था। और लगातार 500 सालों से इस हिल यात्रा का यहाँ पे अनवरत यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान लखिया के दर्शन करने के लिए आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
0: हिल यात्रा की शुरुआत मैदान में सीधे पात्रों के पहुँचने से नहीं होती, बल्कि पारंपरिक रूप से गांव के लोग और कलाकार ढोल नगाड़ों, ध्वज पताकाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊँ के ऐतिहासिक रूप की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पात्र एक एक करके मैदान की ओर आते हैं। इसी क्रम में लखिया भूत का आगमन सबसे खास माना जाता है। मंदिर से जंजीरों में निकलकर मैदान तक पहुंचने वाला लखिया पूरे आयोजन का केंद्र बन जाता है। मैदान में उसके पहुंचने के बाद श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। स्थानीय लोक विश्वास में लखिया भूत को शुभता और संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि उसके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति रहती है, गांव में खुशहाली आती है और फसल अच्छी होती है। इसी विश्वास के कारण हिल यात्रा के दौरान लखिया का दर्शन महज देखने का अनुभव नहीं रहता, श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का क्षण होता है। लोग इसके सामने फूल चढ़ाते हैं, अपने परिवार और खेती के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखिया के जंजीरों में आने की परंपरा भी हिल यात्रा को देश के दूसरे लोक उत्सवों से अलग पहचान देती है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात वेस्ट मटेरियल से बन रहे कान्हा जी के सिंहासन की। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने वाला है। ऐसे में कान्हा के जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर बाजार में तरह तरह के सजावट के सामान देखने को मिल रहे हैं। कहीं कान्हा की वेशभूषा वाले कपड़े, तो कहीं मुकुट, तो कहीं सिंहासन। लेकिन यूपी के सहारनपुर में कारीगरों का एक परिवार कान्हा जी का विशेष तरह का सिंहासन तैयार कर रहा है, जिसकी भारी डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के साथ झूले और बेड की भी मांग बढ़ गई है।

0: जो मंद मंद हंस रहे हैं, अपनी प्रभा से सुशोभित हो रहे हैं। सबका मन लगातार हर लेते हैं और अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में कान्हा के स्वागत के लिए बाजार भी सज गए हैं। उनके सिंहासन से लेकर पहनावे तक की तैयारियां हो रही हैं। कान्हा के स्वागत में बनाए गए सिंहासन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। कोई लाल, कोई हरा तो कोई मरून। बेहद सुंदर रंग बिरंगे सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। अलग अलग रंगों से बने ये सिंहासन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कान्हा जी के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, तो इसकी भारी मांग अभी से होने लगी है। इन सिंहासन की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, और जब बात कान्हा की हो तो फिर क्या कहने।
1: हम ये कान्हा जी का आइटम बना रहे हैं, सिंहासन, बेड और झूला जी।
2: तो कब से आप काम कर रहे हैं?
1: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: सहारनपुर के अंकुर का पूरा परिवार श्री कान्हा जी के लिए तरह तरह के सिंहासन, झूले और बेड बनाने का काम करता है। जन्माष्टमी का त्योहार करीब होने की वजह से इनका पूरा परिवार काम में दिन रात जुटा हुआ है। अंकुर बताते हैं कि इनके पास 7 इंच से लेकर लगभग 3 फीट तक का सिंहासन है, और जहां तक कीमत की बात है तो ये 150 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक का है।
1: काफी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं फिलहाल। तो जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
2: पूरे साल जो बनाते हैं वो सब निकल जाता है?
1: सब निकल जाता है पहले ही।
2: पब्लिक लेने आती है तो क्या कुछ रिव्यू देखी जाती है?
1: बस यही कहती है कि ऐसा सामान कोई नहीं बनाता, हमारी दुकान पे बनता है वाला सामान।
0: अंकुर ये भी बताते हैं कि उनके इस काम की शुरुआत घर से ही हुई थी, जब कान्हा जी के लिए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सुंदर सा सिंहासन बनाया था। उनकी इस कला को देखकर पड़ोसियों ने खूब तारीफ की थी और उन्होंने सिंहासन बनाने का ऑर्डर भी दिया था। वहीं से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले इनका परिवार फर्नीचर बनाने का काम करता था।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: अंकुर ने ये भी बताया कि लकड़ी, प्लाई, कपड़ा और गोटे से बनाए जाने वाले इन सिंहासनों पर मोर, ओम और राधे राधे जैसे अलग अलग डिजाइनों से सजावट की जाती है। बता दें कि सहारनपुर अपने बेहतरीन लकड़ी के हस्तशिल्प और नक्काशीदार कान्हा जी के सिंहासन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है।
1: जी वेस्ट से पहले तो, लेकिन अब पूरा इसी के लिए आता है अलग से सामान।
2: कितने बना लेते हैं
1: पर डे में? लगभग 5-6 पीस बना लेते हैं।
2: कौन कौन बनाता है?
1: भाई है, मैं और पापा जी हैं जी।
2: तो साइज कौन कौन से साइज हैं?
1: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे।
2: प्राइस
1: 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है।
0: 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, ऐसे में अंकुर का कहना है कि देश भर से कान्हा जी के सिंहासन, झूले और बेड के लिए ढेर सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और जन्माष्टमी के नजदीक आने पर इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तैयार माल भी कम पड़ जाता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें हीरो और हैवान के बीच जबरदस्त टक्कर की झलक देखने को मिल रही है। फिल्म में अक्षय और सैफ के साथ बोमन ईरानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर और शारी भाषमी भी अहम किरदारों में हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स की हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इमरान हाशमी अब एक नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। दीपक मुकुट, संगीता अहीर और हुनर मुकुट की प्रोड्यूस की गई गन मास्टर G9 27 नवम्बर को रिलीज होगी। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म दायरा का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है और अब दर्शकों को उसके ट्रेलर का इंतजार है, जो 31 अगस्त को रिलीज होगा। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में देने के बाद निर्देशक मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के साथ एक मजबूत कहानी और शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी। दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दृश्यम फ्रेंचाइजी अपने आखिरी चैप्टर के साथ लौट रही है। दृश्यम द कंक्लूजन में एक बार फिर अजय देवगन, विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़े पैमाने पर सामने आएगी। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, रजत कपूर और ईश्वरता दत्ता समेत कई पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं। वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदारों में दिखेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डोंट बी शाय जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म में 4 नए चेहरे आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाटी और अंश दुग्गल नजर आएंगे। श्रुति मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्यार, दोस्ती और रिश्तों की हल्की फुल्की कहानी पेश करेगी। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है। डोंट बी शाय 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज होगी। KGF 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश की अगली फिल्म टॉक्सिक को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में हुई फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में यश और पूरी टीम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। फैंस ने अपने चाहते स्टार के लिए जमकर उत्साह दिखाया। इस शानदार रिस्पांस ने फिल्म को लेकर बनी जबरदस्त दीवानगी की झलक दिखा दी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक को वेंकट के नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।
3: न्यूज वक्त में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
4: जिंदगी की असली खुशी दूसरों की खुशी में ही छिपी होती है। ये नन्ही बच्ची बड़े प्यार से चिड़ियों को दाना खिला रही है। बच्ची के चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसे ये छोटा सा काम कितना सुकून दे रहा है। वहीं चिड़िया भी बिना किसी डर के उसके हाथ से दाना चुग रही है। ये नजारा इंसान और प्रकृति के बीच के निश्चल प्रेम, भरोसे और अपनापन की खूबसूरत मिसाल है। बच्ची का ये दयालु अंदाज वाकई दिल जीतने वाला है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा पल भी दिलों को जोड़ देता है। रास्ते से गुजर रहे एक अनजान शख्स को छोटी सी बच्ची ने प्यार से राखी बांध दी। शख्स ने भी बच्ची के सामने सिर झुकाकर उसका आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच का ये पल बेहद भावुक करने वाला था। बच्ची ने राखी के पवित्र धागे से एक अनजान इंसान को भाई बना लिया। सोशल मीडिया पर सामने आया ये वीडियो रिश्तों और इंसानियत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। जो चीज हमें देखने में बेहद आसान लगती है, उसके पीछे कई घंटों और दिनों की मेहनत छिपी होती है। इस वीडियो में लाइन से बैठे कलाकार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर से छलांग लगाना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त अभ्यास, संतुलन और हिम्मत की जरूरत होती है। कलाकारों ने अपने हुनर और शानदार तालमेल से ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चों की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है। वीडियो में पिंक फ्रॉक पहनी एक नन्ही बच्ची अपने पापा से पैरों में पायल पहनवा रही है। पायल पहनते वक्त बच्ची के चेहरे पर खिली मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। पापा और बेटी के बीच का ये खूबसूरत पल लोगों का ध्यान खींच रहा है। बच्ची की क्यूटनेस और उसकी मासूम अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहे हैं। पढ़ाई अगर मजेदार अंदाज में हो तो बच्चों को चीजें आसानी से समझ आती हैं। चीन में 2 शिक्षक बच्चों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर बिजली का प्रयोग मजेदार तरीके से समझा रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान जैसे ही बच्चों के बाल ऊपर की तरफ सीधे खड़े हुए, पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। बच्चे एक दूसरे के बाल देखकर खूब हंसने लगे। शिक्षकों का ये मजेदार तरीका और बच्चों की मासूम हंसी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भी खूब गुदगुदा रहा है।
3: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बोलचाल वाली मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के बाद अब नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की कमी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, और इसकी बड़ी वजह ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की 3 दिन की हड़ताल है, जो कि मराठी भाषा वाले नियम के विरोध में शुरू की गई है। महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता की गई है। इनमें ऐप बेस्ड कैब सर्विस से जुड़े ड्राइवर भी शामिल हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरटीओ अधिकारियों की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। ड्राइवर्स का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनकी तैयारी उन्हें सरकार की ओर से दी गई ट्रेनिंग में नहीं कराई गई। नियम के तहत ड्राइवर्स को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 अगस्त से ड्राइवर्स के मराठी भाषा ज्ञान की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवर्स की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जांचे गए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स में 604 को मराठी की वर्किंग नॉलेज ना होने पर नोटिस मिला है। ड्राइवर्स का कहना है कि कम पढ़े लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं। दरअसल कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं हैं, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग क्लास में जाने से उनकी कमाई प्रभावित होती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि टेस्ट में डेली यूज भी यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या फिर CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल शामिल हैं। नियम के तहत नोटिस पाने वाले ड्राइवर्स को 1 महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका बैच 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। फिलहाल दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर्स के लिए मुख्य मुद्दा भाषा नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी रोटी पर पड़ने वाला असर है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
5: एक ही एक मामला सामने आया कि भाई हम तो मराठी सीख लिए, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जब इंक्वायरी करने कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, तो वो कुछ और ही सवाल पूछ रहा है और उसमें हम अटक रहे। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या राय होगी?
6: देखिए, मराठी बोलना तो आना ही चाहिए। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ मराठी बोलना चाहिए। जो भाषा यहाँ की वहाँ तो बोलना ही चाहिए सबको, लेकिन इसके ऊपर विवाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो ऑफिसर लोग कार्रवाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग चले जाएंगे, जो नहीं बोल पाएगा उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, यहाँ टैक्सियां कम पड़ जाएंगी, लोग गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसे आईटीओ को भी सोचना चाहिए कि मुद्दत दे करके जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको मुद्दत दे, उनको आगे बढ़ाए
5: आगे बढ़ाए। सर, कल मेरे से एक ऑटो चालक मिला और उनसे साफ तौर से कहना है कि भाई मैंने तो मराठी सीख ली है, लेकिन 70-80% लोग जो यात्री बैठते हैं वो मराठी में बात नहीं करते, क्योंकि गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो पंजाबी हैं, वो साउथ वाले हैं। तो अब मैं क्या करूं ऐसे कंडीशन में, एज ए मुंबईकर आप क्या कहेंगे?
7: नहीं, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि उन सब भाषा मराठी, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी पे कमांड होना जरूरी है, एक अच्छी बात है, लेकिन सब भाषा आदमी के नॉलेज में आएगा वो पॉसिबल नहीं है। वो सब भाषा टैक्सी ड्राइवर सब भाषा में समझा नहीं पाएगा लोगों को अलग अलग।
8: देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आना चाहिए, ये जरूरी है, तो ये मातृभूमि है महाराष्ट्र की, और ये मतलब ऐसा है कि मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये मराठी एक मातृभाषा है, तो ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कि नो डाउट कि नहीं, पर ये जो 8,000 फाइन, 10,000 फाइन जो आरटीओ मार रही है ये गलत है। किसी का लाइसेंस रद्द कर तुम उनको एक एक टाइम लिमिट दो कि भाई आपको इतने महीने में सीखना है कि आपको मराठी बोलना आना चाहिए। मराठी बोल रहे, सीख रहे ड्राइवर लोग, सीख रहे मराठी, पर जब आरटीओ पकड़ रही है तो वो दूसरा ही कुछ सवाल पूछती है, तो उसके अंदर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अभी मांगे गए, फूड़े गए, ये तो एक नॉर्मल है, ये तो कोई भी टैक्सी वाले को आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और नो रिक्शा वालों का मैं नहीं बता सकता, टैक्सी वालों का 100% बॉम्बे के अंदर ऐसा है कि मराठी उनको आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं। पर ये आरटीओ का जुलूम है कि आरटीओ 8,000-10,000 फाइन मार रही।
5: लेकिन आरटीओ तो सिखा भी तो रहा है फ्री में,
8: आरटीओ सिखा रहा है तो इतनी लाइन लगी हुई है, कोई कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा सुबह से जाके रुक रहा है और रात शाम तक का वो काम धंधा करेगा कि ये मराठी सीखेगा। और 25-30 साल के बाद ये कायदा अगर तुमको निकालना ही था तो पहले निकालना था, या उसका एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि भाई एक टाइम लिमिट है, इतने टाइम के अंदर आपको सीखना है। पर कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट अभी तुम एंड टाइम पे सब निकाल लोगे कि भाई मराठी बोलना है, मराठी सीखना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा टैक्सी वालों को।
9: बिल्कुल नहीं, सीखना चाहिए लेकिन जुलूम नहीं होना चाहिए। सीखो बोलो, है महाराष्ट्र में मराठी आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सामने वाला जुल्म करके नहीं सिखा, गलत बात एकदम जुल्म करके नहीं। हाँ, सब जात के लोग है, मुस्लिम, महाराष्ट्र, कैथलिक, हर हर हर जात के है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि भाई नहीं आ रहा है, ये चलो फाइन मारो, चलो गांव जाओ, बहुत से दादागिरी भी कर, हद से ज्यादा दादागिरी कर, वो नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से करो ना, सब ठीक है, सब हो जाए।
10: देखिए लोकल डायलेक्ट तो आना चाहिए व्यवहारिक तरीके से तो, लेकिन काफी लोगों को आता भी है, पर एक कंपल्शन करना थोड़ा जाति जैसा हो जाएगा। बट अगर स्वेच्छा से करना चाहें तो सब लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे वो, लेकिन आप अगर आप थोपोगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज़ टुडे।

0: वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, अब रोडवेज बसों में करेंगी मुफ्त यात्रा, करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नेवी को मिलेगा दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमिशनिंग। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, राजकोट में लगेगा सौराष्ट्र का सबसे बड़ा मेला, 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। देशभर में रक्षाबंधन की जबरदस्त तैयारियां, जयपुर में करीब 400 साल पुरानी थेवा कला राखी का ट्रेंड, दिल्ली में गोल्ड और सिल्वर की राखियां बनी आकर्षण का केंद्र।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी रक्षाबंधन की। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद अनोखा होता है, कहीं बे इंतहा प्यार तो कभी छोटी मोटी मीठी सी तकरार। लेकिन जब रक्षाबंधन का ये पावन दिन आता है तो रेशम का एक नाजुक सा धागा इस रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और अटूट विश्वास के पक्के बंधन में बांध देता है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उन अनगिनत खट्टी मीठी यादों और खुशियों का जश्न है जो हर साल हमारे दिलों को और करीब लेकर आता है। वैसे तो इस मौके पर हर साल बाजार में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बाजार में डिमांड है राखी के रॉयल स्टाइल की। गुलाबी नगरी जयपुर में इस खास मौके के लिए स्पेशल 400 साल पुरानी थेवा कला से तैयार की गई राखियों की खूब डिमांड है। देखिए,

यूं तो भाई बहन के प्यार की निशानी एक धागे से जुड़ी होती है और इसी धागे से जुड़ा होता है भाई बहन का संसार। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और अनोखे ट्रेंड वाली राखियों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई। गुलाबी शहर जयपुर के बाजार

0: तारों में इस बार रक्षाबंधन की रौनक कुछ अलग ही छटा बिखेर रही है।
1: देश भर में रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ बहनें मार्केट में अपने भाई के लिए उनकी पसंद की राखी ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाई मार्केट में अपनी बहनों के लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट्स की तलाश में है। और अभी जयपुर में हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों ही ऑप्शंस एक ही छत के नीचे, क्योंकि भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें सोना और चांदी दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को सोने या चांदी की राखियां पहनाना चाह रही हैं, जो लंबे समय तक काम में आए, उसको संभाल के रखी जाए, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाए।
0: राखी का त्योहार यूं तो रेशम के धागे से शुरू हुआ था, लेकिन बदलते वक्त ने इसे ज्वेलरी शॉप तक पहुंचा दिया है, जहां गोल्ड और सिल्वर की राखियों की जबरदस्त डिमांड है। लेकिन सबसे खास है राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक कला से तैयार थेवा कला राखियां।
1: प्रतापगढ़ से आई एक ऐसी कला जो कि 400 साल पुरानी है, जिसका नाम है थेवा, उनसे बनी हुई राखियां आपको दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही खास है। और ये जो है ये राखियां रियल गोल्ड से बनती है, पर इनका जो प्राइस है वो असली गोल्ड का 1/10 माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आप रियल गोल्ड ले रहे हैं, जो दिखने में भी सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन्स में अवेलेबल है, और प्राइजेस, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं, तो ये आपके बजट में भी आएगा।
0: प्रतापगढ़ से निकली ये ऐतिहासिक कला अब सोने और चांदी के साथ एक नए आधुनिक अंदाज में बहनों की पहली पसंद बन रही है। इस पारंपरिक कला में रंगीन कांच के ऊपर सोने की बेहद बारीक और महीन परत से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसमें कांच और चांदी आधार का काम करते हैं, जिससे असली सोना इस्तेमाल होने के बावजूद इसकी लागत सामान्य गोल्ड ज्वेलरी से काफी कम आती है।
2: जी, राखियाँ जो है हमेशा एक बहनों के लिए बड़े उनके प्यार का बंधन होता है भाइयों का, तो एक स्पेशल उस हमने चाहा कि राखी खाली भाई एक ही दिन नहीं पहने, जो भी बहन उसको गिफ्ट करे वो पूरे साल पहने, तो इसलिए हम थेवा के साथ में नए इनोवेशन लेके आए हैं, जिसमें वो अपने भाई का नाम भी डाल सकती है। कुछ आपको अगर किसी स्पिरिचुअल कोई भगवान को मानते हैं, गणेश हो गया, शिव जी हो गया, ओम हो गया, साथी हो गया, हर तरह के पैटर्न की राखियाँ। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हमने भाई का नाम लिखा है, अगर आपके भाई का नाम ए से, बी से, सी से, जिस भी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है वो आ जाएगा, कोई आप भगवान को मानते हैं वो आ जाएगा। इसमें जो स्ट्रिंग्स है ये भी आप प्रेशियस और सेमी प्रेशियस बीड्स के अंदर कस्टमाइज करवा सकते हैं, ताकि ये ऐसा गिफ्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, वो भाई हमेशा प्यार से साथ में रखेगा, और एक कला का प्रेम भी है इसके अंदर।
1: ये जो राखी है इसमें ओम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
2: जी,
1: तो ओम आजकल जो है एक नया ट्रेंड है कि स्पिरिचुअल राखी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम ये ओम है, ओम के अलावा हम इसमें और क्या क्या बनवा सकते हैं?
2: ओम के अलावा इसके अंदर अगर आप किसी गॉड को मानते हैं, जैसे शिव जी हो गए, भगवान जी हो गए, साथिया हो गया, या सिख लोग हैं वो सिख का लोगो हो गया, राजपूती लोगो हो गया, जिस भी धर्म का आप जो भी मानते हैं उसका लोगो आ सकता है, एनीथिंग।
0: सोने चांदी के आसमान छूते दामों के बीच ये गोल्ड टच वाली थेवा राखियां बजट फ्रेंडली विकल्प बनकर उभरी हैं। असली सोने की बेहद पतली परत होने के कारण कई डिजाइन तो सामान्य सोने की कीमत के लगभग 10वें हिस्से में ही तैयार हो जाते हैं, यानी जेब पर भारी पड़े बिना असली सोने की चमक। लेकिन सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आपका बजट अगर कम है और सिल्वर ज्वेलरी आपको पसंद है तो आपके लिए भी काफी ऑप्शन है बाजार में।
2: ज्यादा से ज्यादा लोग यही बनवाना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल हो, यूनिक हो, जो मार्केट में मिल रही है रेगुलर राखियों से हटके हो, कि हाँ अगर मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया है तो वो एक एकदम स्पेशल चीज उसके पास में पहुंचे, जो वो पूरी हमेशा पहन सके भाई। जी, सिल्वर राखियों में अभी हमने इसलिए सिल्वर में भी कस्टमाइज राखियां काफी सारी बनवाई है, भाई के नाम से, कृष्ण जी के नाम से, सारे भगवान के नाम से, ताकि एक अगर सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पता है सिल्वर भी आजकल कोई कम तो रहा नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट बड़ी है, 2.25 लाख चांदी है, तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख 4 लाख जो भी है चांदी की भाव, तो ये भी चीज है कैसी है, हमेशा साथ में रखने वाली, ये नहीं कि भाई ने आज पहनी और कल वो राखी डस्टबिन में जाएगी, नहीं, उसको भाई हमेशा पहनेगा।
0: ये तो हुई भाइयों की कलाई पर सजने वाली राखी की बात। सिर्फ बहनें ही नहीं, भाइयों के पास भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए थेवा ज्वेलरी के शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। नेक पीस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कलेक्शन देखने में बिल्कुल रॉयल लुक देता है और बजट में भी फिट बैठता है।
1: अच्छा, राखियां तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से आप रेनोवेट कर सकते हैं, पर अब बहनों की जब हमने बात कर ही ली तो भाइयों का भी काम आसान किया जाए। यहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब बहन सोने की या फिर चांदी की राखी लेके आ रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई को भी उतना अच्छा तोहफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे पास में यहाँ पे चांदी के बहुत सारे जो बहुत ही डेलिकेट पर बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद है। कई सारी चेन्स हैं, कलरफुल ऑप्शंस हैं।
0: राखियों की तरह ही रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए आपके बजट में काफी ऑप्शन मौजूद है।
2: जिनकी बहनें मैरिड हो चुकी हैं उनकी चॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में जाएंगे तो थेवा ज्वेलरी एंड ज्यादा बड़े बड़े पीसेस वो हैवी वाले हो जाएंगे जो शादी के बाद बहनें पहनना पसंद करती है। मंगलसूत्र ऑप्शन आ गया लाइट में, ये भी बहनें जो है वो शादी के बाद पहनेंगी। और जो मैम अनमैरिड है वो इस टाइप की अनमैरिड गर्ल्स के हिसाब से ऑप्शन। मैम जो है सिल्वर में हमने कुंदन, जड़ाव, मीनाकारी सारे ऑप्शन डाले हैं, सिमिलरली जैसे गोल्ड में होता है। बेस मेटल बस हमने गोल्ड रिप्लेस करके सिल्वर कर दिया है ताकि लुक फील टच पूरा गोल्ड का है, और एक अच्छी सी गोल्ड की प्लेटिंग देते हैं 3 माइक्रोन गोल्ड की, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म चले और फिनिशिंग पूरी गोल्ड वाली है।
0: परंपरा और आधुनिकता का ये अनोखा मेल रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को और भी खास बना रहा है। तो इस बार कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बल्कि राजस्थान की 400 साल पुरानी विरासत और कला का एक यादगार तोहफा सजने जा रहा है, जो न सिर्फ आपके बजट में होगा बल्कि यादगार के तौर पर आपके साथ लंबे समय तक रहेगा।
1: यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने दिखाए हैं आपको कि किस तरीके से राखियां तो है ही जिसको आप कस्टमाइज करा सकते हैं, पर ये ज्वेलरी भी है। और इस ज्वेलरी की खासियत ये भी है कि राखी जिस तरीके से कस्टमाइज हो रही है वैसे ही हो रहे हैं। आप यहाँ डिजाइन देखिए और आप अपने हिसाब से इनको कलर्स बता सकते हैं या स्टोन्स बता सकते हैं। जितने भी स्टोन्स हैं वो सेमी प्रेशियस यूज हो रहे हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है ये दिखने में सोना लग रही है, बहुत ही हैवी लुक की भी है, बहुत मिनिमल लुक की भी है, पर ये है चांदी की जो कि इसको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनाता है। हालांकि जो थेवा कला है उसमें सोना बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी सोने की राखी बजट में यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग डिजाइन में मिल रही है। चाहे आप अपने भाई के नाम का इनिशियल लिखवा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल राखी जो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड बन चुकी है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसको आप बाद में एज अ पेंडेंट भी कैरी कर सकते हैं। तो ये यूनिक जो रेंज है ये जयपुर में सोन कांच में नजर आ रही है इस रक्षाबंधन के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज स्टूडियो जयपुर।
3: देखिए, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके पर बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए उस सबसे खास धागे को चुन रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे हैं। यही वजह है कि इस बार देश भर के बाजारों में परंपरा के साथ इनोवेशन वाली राखी का खूब ट्रेंड है।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन अब दूर नहीं है, ऐसे में बाजारों में रौनक अभी से ही दिखने लगी है। रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें और रौनक से सराबोर बाजार, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बाजारों की रंगत इस बात की गवाही दे रही है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व अब नजदीक है। बाजार में रौनक अपने शबाब पर है। इस बार बाजार में 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन मौजूद हैं, जिसमें कपल राखी से लेकर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की भारी डिमांड है। पारंपरिक राखियों से लेकर स्टाइलिश ब्रेसलेट और मॉडर्न डिजाइन की राखियां भी बाजार की रौनक में चार चांद लगा रही हैं।
1: इस बार कपल सेट्स की बहुत डिमांड है राखी में, और एडी राखी की बहुत डिमांड है, जो अमेरिकन डायमंड वाली नगो वाली राखी आती है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, 300-400 रुपए पीस है, लेकिन अच्छे डिमांड में है। फैमिली पैक्स भी आए हुए हैं, फैमिली पैक्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेबल आइटम्स हैं, और कपल की राखी की बहुत अच्छी डिमांड है।
0: अमेरिकन डायमंड और नग वाली राखियां भी इन दिनों खूब डिमांड में हैं, जिनकी कीमत 300 से लेकर 400 रुपए के करीब है। बाकी बाजारों में 10 रुपए से शुरू होकर 800 रुपए की कीमत वाली राखियां भी मिल रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें करनाल के कर्ण गेट बाजार में भी नजर आ रही हैं, जहां इन दिनों रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों की भरमार है। दुकानों पर सजी फैंसी जरकन और डिजाइनर राखियां ग्राहकों का मन मोह रही हैं। बाजारों में भाभियों के लिए लूम्बा राखी और बच्चों के लिए क्रेजी लुक वाली राखियों की भरमार है। बच्चों के लिए खासतौर से छोटा भीम, डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स और स्माइली जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
2: काफी सुंदर सुंदर स्लीक स्टाइल की राखियां आप लोग आ सकते हो और यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो, और इनफेक्ट बच्चों की भी राखियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत लड़कों के लिए भी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं उनसे रिलेटेड भी राखियां हैं।
3: मैं तो यही कहूंगी सभी बहने आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है।
0: बिहार के गया में भी रक्षाबंधन की रौनक दिख रही है, हर तरफ रंग बिरंगी राखियां हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में इस बार जरी वाली राखी और स्टोन राखी की डिमांड सबसे ज्यादा है।
4: बहुत सा पेटल की राखी पसंद करी है, जड़ी का राखी पसंद करी है, स्टोन का राखी है, बहुत टाइप का, कस्टमर के ऊपर डिफेंड करता है कि कस्टमर को किस टाइप का चाहिए। राखी 25 से लेके आपको 40 रुपीज तक है, 400 रुपए तक है। बहुत जड़ी का है, प्लस का कुछ का है, सारी पैटल स्टमी है, पसंद करिए, डब्बे वाली राखी पसंद करिए।
5: राखी का डिमांड है, स्टोन राखी लोग खोजते अभी आ रहे हैं, थोड़ा ब्रासलेट राखी का भी है, बाकी जरी का भी राखी अभी अच्छा डिमांड था, जो इस साल जरी राखी खूब जोरों से चल रहा है।

0: तरफ जहां रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार हैं, तो वहीं सूरत में कुछ लोगों ने अनोखी पहल की है। यहां गाय के गोबर और लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की ये अनूठी पहल है। इन राखियों की बिक्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रही है।
1: की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कला मतलब कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन ही विल फील गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं।
0: उत्तराखंड में माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने भी एक अनोखी पहल की है। रक्षाबंधन के मौके पर ये महिलाएं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पौधों और धार्मिक महत्व से जुड़े वनस्पति अवयवों से आकर्षक और पारंपरिक राखियां बना रही हैं।
2: ये हमने प्राकृतिक राखी बना रखी है, हमने केदार पाती ला रखी है और इसके साथ हमारा भोज पत्र है। ये हमारे जो है जंगलों में मिलता है यहाँ, और ये हमने जो उसकी राखी बना रखी है, ये ब्रह्म कमल भी है। ये ब्रह्म कमल भी हमने जो है जंगल से ला रखा है, ये हमारे जंगल में होता है। ये सारे हमने जो है जंगल से ला रखे हैं और इसी से हम जो है राखी तैयार कर रहे हैं।
0: जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में रौनक है, वहीं राजस्थान के पाली में डाक विभाग की ओर से राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत हुई है, जहां स्कूली छात्राएं सरहद पर देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के लिए राखियां भेज रही हैं। अब तक यहां से देश के जवानों के लिए 25,000 से ज्यादा राखियां भेजी जा चुकी हैं।
3: माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें विभिन्न सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा राखियां भारत के सैनिकों के नाम से पाली मंडल से भिजवाई जा चुकी है।
4: कि जिन सैनिकों को किसी कारणवश या छुट्टी नहीं मिल पाती है राखी पर, जो अपनी बहनों की कमी महसूस करते हैं, ताकि ये राखी उनको मिले और उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, हमने थोड़ी कोशिश की है ताकि उनको अच्छा लगेगा।
0: रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां, प्यार और दुलार का प्रतीक है। सिर्फ बहनें और भाइयों की कलाई पर रेशमी धागा बांधकर स्नेह बंधन को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को प्यार, सम्मान और रक्षा का वचन देते हैं। यही बात रक्षाबंधन को पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार बना देती है। सूरत से संजय सिंह राठौर, सहारनपुर से राहुल कुमार, करनाल से कमलदीप, पाली से भरत भूषण जोशी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गया से पंकज कुमार और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि ये वो शुभ और खास दिन होता है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करते हैं। इस खास दिन से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी मौजूद हैं। क्या है वो मान्यताएं, चलिए आपको बताते हैं।

0: रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की वो डोर है जो भाई बहन को जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है, क्योंकि इस पवित्र धागे में बंधी है युगों युगों पुरानी संस्कृति। हमारी पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का महत्व बेहद गहरा है। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इससे जुड़ी है कई पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया और इस दौरान उनके बाएं हाथ की उंगली से रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने संकट के समय द्रौपदी का साथ निभाने का वचन दिया। द्रौपदी के चिरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया।
1: कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का, अभय वर देने का था, इस प्रकार से हम मानते हैं।
0: रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इस बारे में कोई सटीक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रख कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। लेकिन राजा बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गए और उन्होंने आम महिला का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया और बदले में राजा बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आए।
1: सबसे पहले जो हम उल्लेख पाते हैं तो माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को सेविकाई या कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा बलि को बांधी थी। माता ने स्वरूप बदल के और रक्षा सूत्र महाराज बलि को बांधा था, जो कि वामन स्वरूप में वरदान स्वरूप राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे। तब फल प्रतिस्वरूप रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन मानते हुए लक्ष्मी को उन्होंने उपहार स्वरूप वो अपना वरदान वापिस लेकर श्री नारायण को मुक्त किया था अपने द्वारपाल की मुक्ति से।
0: पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन रक्षाबंधन के इस धागे का मोल कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर ये धागा सजाती है तो इसमें भाई की लंबी उम्र की दुआ और भाई की आंखों में बहन की सुरक्षा का अनकहा वादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल के इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: वाराणसी से अब राहत की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार दूसरे दिन नीचे जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी अब घट रहा है, यानी काशी में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। घाटों पर अभी भी गंगा का पानी मौजूद है, लेकिन घटता जलस्तर बड़ी राहत दे रहा है।
7: आस्था की नगरी काशी का हर रंग निराला है। इन दिनों यहाँ गंगा की लहरें जब उफान पर थी, तब भी यहाँ श्रद्धा का माहौल सजा हुआ था। अब धीरे धीरे गंगा का पानी उतर रहा है। लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर कम हुआ तो काशी वासियों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई।
8: राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है, पक्के घाट डूब चुके हैं।
7: भक्तों को यकीन है कि जल्द गंगा घाटों पर स्नान और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहले जैसी व्यवस्था होगी। गंगा का जलस्तर घटना नाव चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक होते ही फिर से गंगा की लहरों पर उनकी नाव चल पड़ेगी और वो यात्रियों को काशी के दर्शन करवा पाएंगे। यानी हर किसी की नजर काशी की गलियों से लेकर गंगा घाटों तक है।
9: अब गंगा मैया 2-2.5 फीट एक ही दिन में नीचे आ गई हैं। अब इससे हम लोगों को चाहिए कि गंगा आरती जो दिखाया जा रहा था, हाँ तो जो दिखाया जा रहा था उससे हम लोग को दिखाने का अगर परमिट कर देते तो हम लोग का थोड़ा रियायत हो जाता।
7: हर साल सावन भादों के महीने में गंगा की उभरती लहरें घाटों को अपने आगोश में ले लेती है। काशी का ये नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि इस दौरान छत पर गंगा आरती की जाती है, यानी सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। अब धीरे धीरे गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और घाट फिर से गुलजार होंगे। फिर से गंगा स्नान और गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ काशी एक बार फिर अपने पूरे रंग में नजर आएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: क्या लाल रंग का मंगल से कोई विशेष संबंध है? क्या तांबा मंगल के प्रभाव पर असर डाल देता है? कौन सी है मंगल की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनका प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो
3: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।